शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः।
1: आइए दोस्तों, दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र और प्यारे से प्रोग्राम में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। जैसा मैंने कई बार कहा, दिव्य दर्शन यानी कि अपने आप को पहचानने का ये प्रोग्राम है, जहां पर हम एक दूसरे से संबंधित बिल्कुल साधारण मनुष्यों से, साधारण इंसानों से बातचीत करते हैं कि ये विषय दरअसल आम जनता के लिए क्या है। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है वो है प्रवीण कुलकर्णी साहब। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि वो क्या समझते हैं, क्या हमें बताते हैं, कैसी वो प्रैक्टिसेस करते हैं, कैसा उनका जीवन है। तो मैं प्रवीण जी से आभार प्रकट करते हुए, उनका स्वागत करते हुए उनसे गुजारिश करूंगा कि प्रवीण जी अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे सुनने वालों को बातचीत कीजिए उनसे कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं।
2: सबसे पहले नमस्कार और अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहूंगा समीर जी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने सर्वसाधारण विचार आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो पेशे से मैं एक फ्रीलांस ट्रांसलेटर हूं
1: जी,
2: और कंटेंट राइटिंग करता हूं, माने वेब कंटेंट जो होता है वो
1: जी जी जी।
2: मैं कर्नाटका से हूं और बस अपनी 60 साल की जिंदगी में जो भी सीखा है वो आपके सामने बातचीत के थ्रू शेयर करना चाहूंगा बस।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, जाहिर से बात है, जब व्यक्ति जैसे प्रवीण जी ने बताया कि वो कंटेंट राइटर हैं, तो उनके पास शब्द हैं, उन्होंने वाक्यों को बनाना सीखा है, वो जानते हैं शब्दों का मतलब क्या होता है, उनमें कितनी गरिमा होती है। मैं पूरी पूरी उम्मीद करता हूं कि आज का ये विषय, आज की ये बातचीत बहुत समझदारी से भरपूर होगी, हमें कुछ तयशुदा तौर पर सीखने को मिलने वाला है। तो प्रवीण जी, चलिए बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल साधारण इंसान के लिए बात करते हुए करें, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, यानी कि हिंदी में कहें तो आध्यात्म, इसको आप कैसे समझाएंगे, क्या मतलब है इसका?
2: आध्यात्म, आद्य माने सबसे पहला, आत्मा माने अपनी आत्मा, आध्यात्म माने जो अपने आत्मा से शुरू हो, आत्मा माने खुद, जो मुझे

0: मुझे जो चीज पहले रखती है, समथिंग दैट कीप्स मी इन फ्रंट, समथिंग दैट ओरिएंट्स मी, दैट इज अध्यात्म। वैसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करूं तो मेरी इंट्रोडक्शन हुई स्पिरिचुअलिटी में मेरे स्कूल के सालों में।
1: ओह दैट्स नाइस।
0: अध्यात्म मेरे ख्याल से ये होता है कि खुद की आत्मा को समझें
1: जी,
0: खुद की आत्मा को समझें और वो जो निर्माता है उसके साथ अपना संबंध जोड़ें और वो संबंध समझें। मेरे लिए ये अध्यात्म है।
1: ओके बिल्कुल ही सरल भाषा में, बिल्कुल ही आसान तरीके से प्रवीण जी ने जैसे हमें बताया है दोस्तों, उसको लिटरली ही लीजिए एक बार को, क्योंकि उससे समझने में, आगे की बातचीत को समझने में जरा आसानी हो जाएगी। सुंदर, अगर आज के जो जनरेशन है, ठीक है हम तो एक जनरेशन पहले की बात कर रहे हैं जिन्होंने कुछ समझा, जिन्होंने कुछ महसूस किया, अनुभव किया, अपने चारों तरफ देखा, अपने बड़ों लोगों को ऑब्जर्व किया और कुछ मान्यताएं हमको सिखाई गई, हमने बनाई। लेकिन यही चीज अगर हम आज की जनरेशन को समझाना चाहें तो आज की जनरेशन कुछ भी आध्यात्मिक आपको दिखाई देती है या सिर्फ बस मजे कर रही है, या फिर यूं कह लीजिए फैशन है तो उसको फॉलो करते चलो, कुछ ऐसा हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप?
0: अध्यात्म तो पहले से ही है, माने अनादि और अनंत है
1: जी।
0: अध्यात्म का तो ना ही, अध्यात्म की तो ना ही शुरुआत हुई ना ही उसका अंत होगा। जैसे मैंने कहा, आई वॉज इंट्रोड्यूस टू स्पिरिचुअलिटी ड्यूरिंग माई स्कूल डेज
1: जी।
0: आई स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम, एक जेसुइट स्कूल में पढ़ा मैं। और उन दिनों हमारे लिए एक, माने पूरे दिन में एक क्लास वो होता था जिसे कहा जाता था मॉरल साइंस।
1: मॉरल साइंस
0: बीइंग अ जेसुइट स्कूल, जो कैथोलिक बच्चे थे वो बच्चे अपना रिलीजन पढ़ते थे, और हम लोग जो नॉन कैथोलिक थे हमें मॉरल साइंस का क्लास लिया जाता था। तो उस मॉरल साइंस के क्लास में आई वॉज इंट्रोड्यूस टू The teachings and preachings of, you know, Swami Vivekanand, Swami Dayanand Saraswati. और ऐसे चलते चलते जब मैं कॉलेज के मेरे दिनों में मेरी इंट्रोडक्शन हुई स्वामी चिन्मयानंद के राइटिंग्स पे
1: जी,
0: तो ये तो मैंने बहुत सालों से है ही
1: जी।
0: और अध्यात्म ना, जैसे मैंने कहा, अध्यात्म अनादि है, अनंत है। आज की पहले की पीढ़ी में था और हमारे पहले जो पीढ़ी थी उनको भी यही लगता था कि हमारे जैसे हमारे बच्चे नहीं हैं
1: जी।
0: लेकिन आज हमें, हम में से भी कई लोगों को ऐसा लगता हो कि हमारे बच्चे हमारे जैसे है नहीं। लेकिन मैं यहां ये कहूंगा कि उतना वक्त भी तो मिलना चाहिए अगली पीढ़ी को कि पिछली पीढ़ी को पढ़ें, उनका काम समझें, जानें। उतना अगर हम उन्हें वक्त दें तो शायद वो पढ़ भी लें। सो लाइक आई सेड, स्पिरिचुअलिटी इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, द इनर सेल्फ एंड द हायर सेल्फ, which could be interpreted as the mind, the soul and the universe.
1: Right.
0: लेकिन इन चीजों को समझने के लिए हमारी जो पीढ़ी है, अगली पीढ़ी, उन्हें उतना वक्त भी देना चाहिए, उन्हें उतना अवेयरनेस और उतना एक्सपोजर भी देना चाहिए, जहां से ये बच्चे कुछ समझ सकें।
1: जी।
0: वो समझते नहीं है, इसका इसका थोड़ा दोष तो हम पर भी आता है कि हमने उन्हें समझाया नहीं। ये होता है कि समझाने वाला और समझने वाला जब दोनों मोर और लेस एक ही प्लेन पे आ जाएं, तब चीजें आसान हो जाती हैं। स्पिरिचुअलिटी इज द इज द जर्नी इनवर्ड टू इंट्रोस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड टू रियलाइज टू मैनिफेस्ट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन एंड द अल्ट्रा ह्यूमन द सुपर ह्यूमन यू नो द कॉस्मिक एनर्जी. स्पिरिचुअलिटी टू मी इज द कंपास ऑफ द माइंड एंड द सोल. लेकिन ये बात समझने के लिए बच्चों में कुछ कुछ समझ तो आनी चाहिए. दे नीड टू हैव और दे नीड टू डेवलप अ सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग.
1: करेक्ट. सो द पॉइंट इज जी
0: वो आचार आचार इमीडिएटली मैच्योर नहीं होता है. अचार में इतने सारे मसाले डाले जाते हैं. जब मसाले उस चीज में नींबू हो या आम हो अचार में मिलजुल गुल जाने के बाद तब जाके अचार तैयार होता है. लाइकवाइज वी ऑल्सो नीड टू इन्वेस्ट इन अवर नेक्स्ट जनरेशन. वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट फॉर आवर सेल्स एंड वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट वी नीड टू गिव देम ऑल्सो टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट. इंट्रोस्पेक्शन पे एक छोटी सी कविता मुझे याद आती है डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की
1: जी.
0: और ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का इसके साथ संबंध है या नहीं है मुझे पता नहीं है. बट माय स्पिरिचुअलिटी ऑफ लाइफ हैज बीन दिस माय अप्रोच टू लाइफ हैज बीन दिस कि हरवंश राय जी की वो कविता कि कविता का शीर्षक है जीवन की आपाथापी में
1: जी.
0: कहते हैं कि जीवन की आपाथापी में कब वक्त मिला जीवन की आपाथापी में कब वक्त मिला कहीं कुछ देर बैठ ये सोच सकूं जो भी किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला. तो ये समझ पहले ये सोच हमने करनी है पहले बाद में बच्चों को सिखानी है. है बच्चों को आज के पीढ़ी जो है काफी सृजनशील हैं, काफी हमसे ज्यादा होशियार हैं वो. दे एब्सॉर्ब थिंग्स मच फास्टर देन वी डिड. बहुत बहुत प्रगत पीढ़ी है आजकल की
1: जी.
0: व्हाई आई से दिस इज बिकॉज यू नो इन स्पाइट ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस चेंजेस इन लाइफस्टाइल वेस्टर्नाइज्ड थिंकिंग और द सो कॉल्ड मॉडर्न थिंकिंग स्पिरिचुअलिटी ऑब्वियसली इज फॉलोड बाय टूडेज यूथ. हाँ अब बात यह हो सकती है कि हमारे पीढ़ी में बहुत ज्यादा लोग धार्मिक थे या आध्यात्मिक थे. अध्यात्म ज्यादा प्रचलित था हमारे दिनों लेकिन आज कम है. लेकिन आज कम है माने आज की पीढ़ी अभी 20-25 की है. उन्हें 30-35 तक आने दीजिए वो ज्यादा प्रगल्भ हो जाएंगे ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे
1: जी.
0: तो उसके लिए उन्हें वक्त भी देना चाहिए.
1: बिल्कुल ठीक बात है.
0: सी देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ पीपल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज अडॉप्टिंग आवर कल्चर एंड आवर लाइफस्टाइल वेयर एज आवर ओन यूथ आर सीन टू बी टेकन ओवर बाय वाइसेस बाय वल्गैरिटी वायलेंस एंड एन ओवरडोज ऑफ सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन.
1: करेक्ट.
0: दिस सेड The earlier we come back to our roots, the better it will be for our youth and our future generations. ये बात तो तय है. मैंने हम अपने पुराने आध्यात्मिक पद्धति के तरफ हमने आना जरूरी तो है लेकिन इसमें हम जल्दबाजी भी नहीं कर सकते.
1: जी हाँ.
0: उसके लिए वक्त भी देना चाहिए. एंड यहाँ एक लोहार की नहीं चलेगी सर, 100 सोनार के ही लगेंगे. क्योंकि क्योंकि हाँ नहीं क्योंकि हम हमारे हाथ में लोहा नहीं है सर. हमारे हाथ में सोना है. तो सोने के लिए सोनार के 100 ही लगेंगे. ये है.
1: यू आर वेरी ट्रू. बड़ी खूबसूरत तरीके से बात बताई आपने. कई बार मैं मानता हूं प्रवीण जी और आपने इस बात को कहा तो उसी बात को मैं मान रहा हूं कि हम ये जनरेशन गैप की कहानी हमेशा रही है हमेशा रहेगी. हमारे से जो ऊपर थे वो हमारे बारे में ऐसा सोचते थे, हम अपने नीचे वालों के बारे में ऐसा सोचते हैं फिर। लेकिन आपने कहा भी कि उनको थोड़ा वक्त दीजिए, जैसे हमको दिया गया वैसे उनको भी दीजिए, तो दे विल कम अप विद समथिंग मोर ब्यूटिफुल देन वी डिड।
0: हमें वक्त दिया गया या नहीं, ये अलग बात है सर। अगर हमें वक्त ना भी दिया गया हो तो भी हमने कहीं वो चेन ब्रेक करना है कि जो शक्ति हमारे साथ बरती गई वही शक्ति हमने आगे बरतनी नहीं है।
1: करेक्ट,
0: वी हैव टू मेक अ चेंज समवेयर,
1: राइट।
0: वी हैव टू प्ले द गेम चेंजर्स। इफ आवर पेरेंट्स वर लेस अंडरस्टैंडिंग, वी हैव टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन।
1: करेक्ट, समझ
0: कहीं ना कहीं हमने ये जनरेशन गैप कम करना है।
1: ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, नो डाउट।
0: बिल्कुल,
1: बहुत सुंदर। तो दोस्तों बस 2 मिनट का एक पॉज लेते हैं, विचार करते हैं प्रवीण जी ने क्या कहा, और इस बीच में इस प्यारे से भजन को सुन लेते हैं और फिर वापस आते हैं प्रवीण जी के पास।

0: बहुत सुंदर भजन। प्रवीण जी, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा, बात अभी यंग जनरेशन की ही हो रही थी, आध्यात्म की, उनकी समझ की, तो जाहिर से बात है आज की यंग जनरेशन और यूं देखा जाए तो आज का पूरा जमाना सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डूबा हुआ है। अब
1: बिल्कुल
0: एक बहुत ही साधारण सा सवाल उठ के बाहर आता है कि साहब, सोशल मीडिया का आध्यात्म पर क्या असर पड़ता है, या उल्टा कह लें, आध्यात्म को सोशल मीडिया यूज कैसे करता है, इसके बारे में क्या विचार है आपका?
1: सोशल मीडिया अध्यात्म को यूज कैसे करता है? तो I may be called negative or I may be called a little blunt, but social media आजकल लेटी को यूज कर रहा है
0: जी।
1: वो एक तरह से मार्केटिंग के तौर पे यूज कर रहा है। ये मेरा हम्बल ओपिनियन है, ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। Why I say this is because अध्यात्म में कोई खर्चा नहीं होता। अध्यात्म has no pre-qualifications। लेकिन आजकल अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो इस कोर्स के उतने फीस भरिए, उस कोर्स के इतने फीस भरिए, ऑनलाइन कोर्स है, आपके वक्त पे हो जाएगा। ये सारी चीजें देख ऑल्दो आई मिट साउंड सिनिकल एंड नेगेटिव, सोशल मीडिया यू नो लाइक अ पर्टिकुलर जॉनर ऑफ फिल्म्स, जहां वायलेंस दिखाया जाता है, जहां गलत चीजें दिखाई जाती हैं, जहां वल्गैरिटी दिखाई जाती है, दीज थिंग्स हैव बीन डिस्ट्रैक्टिंग एंड डिस्टर्बिंग द यंग माइंड्स एंड इन टर्न अफेक्टिंग एंड करप्टिंग अवर सोशल फाइबर। बट इन स्पाइट ऑफ सच डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्टर्बेंसेस, टू स्टे ट्रू टू वंस कॉन्शियंस इज द टेस्ट ऑफ वंस स्पिरिचुअलिटी। ऑन अ वेरी होपफुल नोट, I could say, like all other aspects of our life, is like a matchbox. Sir, देखिए एक माचिस की जो तीली होती है, उस माचिस की तीली से आप दिया जला सकते हैं भगवान के सामने
0: जी।
1: जब अंधेरा हो तो आप मोमबत्ती जला सकते हैं। बुरा काम करना हो तो आप किसी का घर भी जला सकते हैं।

0: उससे बुरा काम करना हो
1: जी
0: तो किसी पे पेट्रोल डाल के उसे जला
1: भी जला सकते हैं।
0: सर ये रिसोर्स हमारे पास है, इस रिसोर्स का हम कैसे उपयोग करते हैं ये हमारी सोच हमारे माइंडसेट पर निर्भर है।
1: बहुत सुंदर। तो किस तरीके से सोशल मीडिया आध्यात्म को यूज कर रही है या आध्यात्म में सोशल मीडिया का हम पदार्पण या कंट्रीब्यूशन या कोलैबोरेशन देखते हैं वो चीज प्रवीण जी ने अभी हमें बताई। अमेजिंगली ब्यूटीफुल। इस बात को भी विचार करने की बहुत जबरदस्त आवश्यकता है। देखिए सोशल मीडिया मुझे ऐसा लगता है दोस्तों एक दुधारी तलवार है, अगर हमें चलाना ना आया तो वो हमें काट देगी और अगर उसको सही इस्तेमाल करना आया तो वो हमारा फायदा भी कर सकती है। जैसे बताया प्रवीण जी ने बड़ी खूबसूरती से कि किस किस तरीके से यूज करते हैं, किसी का नुकसान पहुंचाना चाहें तो हम अंधेरे में उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जला भी सकते हैं। तो देर आर थिंग्स विच वी नीड टू डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू। बहुत सुंदर। चलिए विचार करिए, विचार करिए, दो मिनट का पॉज लीजिए, विचार कीजिए। हम वापस आते हैं इस भजन के बाद।

0: बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हुए चलिए, सोशल मीडिया की बात हो गई, यूथ की बात हो गई, अब सोशल स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्म की हमारे पर असर क्या होता है, इफेक्ट क्या है, बेनिफिट्स क्या है, प्रवीण जी थोड़ी सी उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या आध्यात्म हमारा जो तनाव है, एंग्जाइटी है, परेशानियां हैं और हम हमेशा बहुत ज्यादा सोचने में डूबे रहते हैं, अगर इसको साधारण भाषा में और कहें, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग, डूबे ही हैं हम उसमें, इसमें आध्यात्म हमारी मदद कैसे करता है, इससे आजाद होने में, मेरा कहने का मतलब है?
1: ये बात तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, लेकिन क्योंकि जिन जिन तीन चीजों का आपने जिक्र किया है, ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी एंड वन मोर थिंग, तो आई कैन रिलेट टू ऑल दोस थ्री सिचुएशंस इन व्हिच यू सेड यस, स्पिरिचुअलिटी डज हेल्प इन मैनेजिंग एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग एंड यू नो आवर डिफिकल्ट माइंडसेट।
0: जी,
1: इंसान जब समुद्र में गिर जाता है तो हाथ पैर तो चलाने ही पड़ते हैं, हाथ पैर चलाते वक्त जो धीरज होता है, वो धीरज होता है, होती है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज द फोर्स दैट पुशेस अस टू कीप गोइंग,
0: राइट।
1: स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट हेल्प्स अस टू स्टे ग्राउंडेड एंड अवे फ्रॉम दी, हम क्या कहते हैं उन छह चीजों को, षड्रिपु ना, कभी कभी एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, ऐसी चीजें ना हो और इंसान अगर कम कष्टों से सक्सेस मिल जाए तो एक तरह का अहम आ जाता है। तो वैसे हालात में स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स अस टू स्टे ग्राउंडेड एंड अवे फ्रॉम दी सिक्स पर्सनल एनिमीज। पर्सनल एनिमीज आई से बिकॉज षड्रिपु, षड माने छे, रिपु माने एनिमीज। षड्रिपु होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर।
0: जी,
1: अगर स्पिरिचुअलिटी से हम लेवल हेडेड रहें, अगर हम अपने मन पे काबू कर पाए तो हम इन षड्रिपु से दूर रह सकते हैं। मेरे पिताजी ने कुछ किया हो, उसके बाद मैंने कुछ किया हो, तो हम ये भूल जाते हैं कि मेरे पिताजी ने भी कुछ किया था, मुझे सिर्फ ये याद रहता है कि मैंने क्या किया है।
0: जी,
1: आज मेरे पास अगर 11-12 हैं तो मैं ये भूल जाता हूं कि मेरे पिताजी ने 10 किए हैं और मैंने सिर्फ एक या दो उसमें
0: ऐड किए,
1: बढ़ाए।
0: जी,
1: वो जो 10 का बेस है, आई बिल्ट अप ओनली 1 or 2 ऑन दैट बेस। So this level-headed thinking, this humility comes from spiritual thinking, spiritual way of life.
0: जी,
1: spiritual माने ये नहीं कि आप सिर्फ नाक पकड़ के meditation करें, ध्यान धारणा करें, प्राणायाम करें। Spirituality also, like I said, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कहीं कुछ देर बैठ ये सोच सकूं, जो भी किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। अगर ये बात हम अपने ध्यान में रखें तो हम लेवल हेडेड आसानी से रह सकते हैं।
0: जी,
1: इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज, डिस्ट्रेस एंड एडवर्सिटी, इट इज दिस स्पिरिचुअल थिंकिंग दैट कीप्स अस गोइंग विथ रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स फुलफिलिंग अवर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स टुवर्ड्स एवरीवन। Those who are weak at heart and mind,
0: जी,
1: मैंने ऐसा नहीं कि हर कोई ऐसा करता है, लेकिन जिनका spiritual way of life, spiritual way of thinking जिनकी नहीं होती या कम होती है, they tend to harm themselves either through vices, बुरी आदतें हों, substance abuse हों, या फिर extreme steps जैसे suicide हों।
0: जी,
1: स्पिरिचुअलिटी सर्व्स एज अ लाइट हाउस ड्यूरिंग द स्टॉर्म इन आवर लाइव्स, as we undertake the journey through the ocean of life.
0: Wow, beautiful.
1: That is where spirituality helps us mm-hmm. in overcoming stress, anxiety, overthinking, and from my own example, depression also.
0: Okay.
1: Yes.
0: Right. Amazing. बड़ी गहरी बात बताई है साहब प्रवीण जी ने. इस बारे में बिल्कुल बहुत प्यार से विचार करने की आवश्यकता है. प्रवीण जी के इस बातचीत को मुझे लगता है बार बार सुनने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है. देन ओनली हम किसी एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि किस तरीके से हम अपने स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को, ओवरथिंकिंग को भी ओवरकम कर सकते हैं. बहुत सुंदर. लीजिए ना एक प्यारा सा भजन पेश करता हूं, फिर हाजिर होता हूं प्रवीण जी के पास.

0: प्रवीण जी, सिंपल बात अभी तक हुई जो थोड़ी सी गंभीरता से भरी हुई थी, हम लोगों को बहुत विचार करने की आवश्यकता है। वैसे भी दिव्य दर्शन का ये प्रोग्राम गंभीर ही है, हमारी जिंदगी के बारे में है। इट्स नॉट फन, इट्स सीरियस। तो अगर हम आगे बढ़े तो दो शब्द हैं जिनको बहुत आसानी से आपस में मिक्स कर दिया जाता है, हम कंफ्यूज भी रहते हैं। एक है अध्यात्म और दूसरा है धर्म, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। तो प्रवीण जी, आपको क्या लगता है, ये एक ही चीजें हैं या अलग अलग हैं?
1: अब देखिए, सिक्का तो एक ही है
0: जी,
1: लेकिन सिक्के के दो बाजू हो सकते हैं। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन आर टू सेपरेट कंसेप्ट्स।
0: ओके,
1: ऑल्दो देर मे बी अ फ्यू सिमिलैरिटीज सच एज शोइंग द पाथ ऑफ राइचियसनेस, धर्म हो या स्पिरिचुअलिटी हो, आपको सही रास्ते पे ही चलाएंगे। ना धर्म कहेगा ना स्पिरिचुअलिटी कहेगी कि आप कोई बुरा काम करो। देन दे बोथ स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन टीच यू बिलीफ एंड फेथ इन द हायर सेल्फ और द सुप्रीम सुपर ह्यूमन एंटिटी। बट देन इन स्पाइट ऑफ दीज सिमिलैरिटीज बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड राइटियसनेस एंड रिलीजन
0: जी,
1: द डिफरेंस विल डेफिनेटली आउटनंबर द सिमिलैरिटीज।
0: अच्छा सर,
1: बिकॉज मैंने कहीं पढ़ा था कि स्पिरिचुअलिटी बिगिंस वेयर रिलीजन एंड्स।
0: जी आह, क्या बात है
1: जी। जहां जहां रिलीजन खत्म हो,
0: जहां धर्म रुकता हो,
1: जहां धर्म थम जाता है, वहां से अध्यात्म शुरू हो जाता है। आई से दिस बिकॉज रिलीजन बाइंड्स अ पर्सन टू अ पर्टिकुलर गॉड, टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स, टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलीजियस परफॉर्मेंसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस, कस्टम्स एटसेट्रा, टू बी परफॉर्म थ्रू अ पर्सन, थ्रू अ पर्सन्स लाइफ जर्नी। धर्म कोई भी हो, हर धर्म के अपने अपने मायने होते हैं, अपने अपने फ्रेमवर्क होते हैं, अपने अपने ढांचे होते हैं
0: जी।
1: और उस धर्म के मार्ग पर, उस ढांचे के अंदर ही आपको चलना पड़ता है।
0: ओके,
1: यू आर नॉट यूजुअली अलाउड टू ब्रेक द फ्रेमवर्क, यू कैन नॉट बी अ गेम चेंजर। वेयर एज स्पिरिचुअलिटी लिबरेट्स यू फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेस एंड बाइंडिंग्स। देर आर नो डूज एंड डोंट्स इन स्पिरिचुअलिटी। ओनली थिंग इज योर एक्शंस हैव टू कन्फॉर्म टू योर कॉन्शंस। धर्म में क्या करना है यह आपको वेदों में, आपने बाकी के धर्म ग्रंथों में बताया गया है। अध्यात्म में क्या करना है यह कहीं लिखा हुआ नहीं है। आप जिनके बारे में पढ़े हो, आप जिनको पढ़े हो, उनके विचार अगर आपको सही लगते हैं तो आप उनके दिखाए मार्ग पर चलिए, बस इतना सा है। सी, रिलीजन इंट्रोड्यूसेस यू टू द कंसेप्ट ऑफ गॉड। इन कॉन्ट्रास्ट स्पिरिचुअलिटी टेक्स यू ऑन एन इनवर्ड जर्नी एंड इंट्रोड्यूसेस यू टू द सबकॉन्शियस यू, टू द कॉन्शियस यू विच इज योर सोल, योर आत्मा एंड योर इनर सेल्फ।
0: जी,
1: रिलीजन इज एन आउटसाइड अफेयर, वेयर एज स्पिरिचुअलिटी इज अ टोटल इनसाइड अफेयर।
0: ऑलराइट,
1: आप एक 100 लोगों का एक ऑड ग्रुप ले लें, तो पीपल कैन बी फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, येट दे मे शेयर द सेम कंसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी।
0: यस,
1: दैट इज व्हाई आई फील रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी आर टू वेरी सेपरेट थिंग्स।
0: सो इट्स इट्स इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल. ये बात को समझना बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों, कि अध्यात्म और धर्म दोनों एक चीज, अलग अलग चीजें हैं. और जैसा बहुत ही सिंपल भाषा में प्रवीण जी ने समझाया कि जहां पर धर्म एक तरीके से पूरा होता है, वहां से अध्यात्म शुरू होता है. बहुत खूबसूरत. ओके, विचार कीजिए इसी विचार पर एक बार और गहराई से, और तब तक लीजिए इस भजन को, आनंद लीजिए. हम वापस आते हैं.

0: बहुत सुंदर प्रवीण जी, आपने अभी तक हमें बताया अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, आज की जेनरेशन के बारे में जो कि तयशुदा तौर पर स्मार्ट है, ज्यादा रिसेप्टिव है, सिर्फ उसको सिखाने की आवश्यकता है जो कि हमारा धर्म है, हमको करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल मीडिया का यूसेज के बारे में आपने बताया, फिर हमें बताया अध्यात्म के फायदे के बारे में, किस तरह से हम स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग से आजादी पा सकते हैं, और डिफरेंस रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच। अब आपकी ये सारी की सारी बातें सुनकर कोई व्यक्ति अगर प्रभावित हो जाए और उसे लगे कि चलिए छोड़िए, धर्म तो चलिए जो हो गया, मतलब मैं कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन में नहीं जाऊं लेकिन आध्यात्मिक हो जाऊं, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को, स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3, बिल्कुल सिंपल बेबी स्टेप्स, क्या करे कि वो आध्यात्म की तरफ चल पड़े?
1: वेल, आपने, मेरे ख्याल से आप ही ने जवाब दे दिया।
0: मैंने समराइज किया सर जो आपने कहा।
1: जी जी बिल्कुल नहीं, आपने दो लब्जों में उत्तर दे दिया अपने प्रश्न का।
0: जी,
1: आपने कहा बेबी स्टेप्स, तो दैट इज एवरीथिंग। देखिए, जब हम चलना शुरू करते हैं, जब हम बच्चे होते हैं
0: जी,
1: एकदम से थोड़े ही ना चलते हैं,
0: लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं।
1: पता नहीं कितने सौ बार हम लड़खड़ाए, कितने बार हम गिरे, कितने बार हमने चोटें खाई, सर पे चोट खाई,

0: तो पढ़ाई पूरी कंसंट्रेशन के साथ की हमने. दैट कंसंट्रेशन आल्सो वी लर्न्ड थ्रू बेबी स्टेप्स ओनली.
1: करेक्ट.
0: दैट इज व्हाई आई सेड कि आपने अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया है. लाइकवाइज इवन इन स्पिरिचुअलिटी, कोई 10 ग्रंथ एक दिन में पढ़े ना तो ये मुमकिन है, ना ही ऐसा करना चाहिए, ना ही उसे कुछ हासिल होगा. तो स्पिरिचुअलिटी में भी बेबी स्टेप्स ही लेने हैं. स्पिरिचुअलिटी मेक्स द जर्नी इजियर.
1: प्रवीण जी, बहुत ही प्यारा संदेश, बहुत ही प्यारा व्याख्यान हमें ठीक से समझने के लिए आपने समझाया. बहुत बहुत आभार है आपका. थैंक यू सो वेरी मच. यो इस प्रोग्राम में आकर आपने हमारे साथ,
0: प्लेजर ऑलवेज.
1: थैंक यू सर. प्लीज टेक केयर.
0: थैंक यू.

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: दिव्य दर्शन के इस बहुत ही प्यारे से पवित्र प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आज हमारे साथ एक बहुत प्रबुद्ध मनुष्य इंसान व्यक्तित्व मौजूद हैं। ये हैं कर्नल वीडी सिंह साहब, जो भारतीय सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। 30 सालों तक इन्होंने भारतीय सेना में हमारे देश की सेवा की और सैन्यकाल के दौरान आखिरी 2 सालों में ये लद्दाख में रहे, जहां पर बौद्ध धर्म का प्रभाव इनके ऊपर बहुत गहरा हुआ। ये एक अनुभवी विमान चालक होने के साथ साथ एक गीतकार भी हैं। इन्होंने हमारे आज के कलाकार प्रोग्राम में भी शिरकत की और बहुत बहुत प्यार पाया। तो कर्नल वीडी सिंह साहब, आपका स्वागत करता हूं मैं। हमारे श्रोताओं को जो आज आपका आपके विचार सुनने वाले हैं आध्यात्म के बारे में, कुछ कहिए
1: जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आपका समीर कि आपने एक ऐसे विषय के बारे में मुझे बात करने के लिए आमंत्रित किया जो कि हम सभी लोगों के जीवन के अंदर निहित है। और मेरे अगर मैं कहूं आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी, तो मतलब इसका मतलब जीवन के गहरे अर्थ और एक उद्देश्य की खोज करना है जी। जो कि किसी धर्म जाति से नहीं बंधा होता है। और इसमें शांति, करुणा, दूसरों के साथ जुड़ाव महसूस करना, जिसको हम बोलते हैं ना एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन, और ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से इस चीज को प्राप्त किया जा सकता है।
0: ओके जी, दैट्स सो ब्यूटीफुल, दैट्स सो अमेजिंग। जाहिर सी बात है, इस प्रोग्राम में अभी दोस्तों हम लोग इसी तरह की कुछ बातें करने वाले हैं जिसे हम अपने आप को पहचान पाए। तो शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को, और वीडी सिंह साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि उनके

0: अनुसार, उनके हिसाब से, उनके परसेप्शन में आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी क्या चीज है? हाउ डू यू डिफाइन स्पिरिचुअलिटी सर?
1: जी वैसे तो आध्यात्म के ऊपर लोग बाग अलग अलग तरीके से व्याख्यान देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आध्यात्म के कुछ एक पहलू होते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी होता है। उससे सबसे पहले तो होता है आत्मज्ञान, अपनी वास्तविक प्रकृति जिसको हम आत्मा बोलते हैं उसको समझना और जानना। और ये भगवत गीता में भी इसका वर्णन किया गया है मेरे ख्याल से अध्याय नंबर 2 में।
0: जी,
1: आत्मा, आत्मा और परमात्मा का संबंध, ये भी एक बहुत खास पहलू है इसका। और ये समझना कि जो आत्मा जो है यानी व्यक्ति, वो ही परमात्मा का एक अंश है, और इनके बीच के संबंध को अनुभव करना और एक आंतरिक खोज करना, यानी बाहरी दुनिया से हटकर अपनी आंतरिक चेतना, कॉन्शियसनेस और एक्सपीरियंसेस पर ध्यान को केंद्रित करना। और मैं क्योंकि निचिरन बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ हूं पिछले कुछ सालों से, तो जन्म और मृत्यु से मुक्ति भी इसका एक बहुत खास पहलू है। आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य उस चीज को प्राप्त करना है जिसे मृत्यु छीन नहीं सकती, यानी जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना। हमारी सारी जिंदगी इसी डर में बीत जाती है कि हाँ मैं मरूंगा, कब मरूंगा, मेरे मरने का क्या जरिया होगा।
0: जी,
1: तो और साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रक्रिया, ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें ध्यान, योग, मनन और ज्ञान के माध्यम से आत्मा को हम पोषित करते हैं और इसलिए आत्मिक शांति और आनंद मिलता है।
0: ओके, ऑल राइट। सो दोस्तों, जितना सिंह साहब बता रहे हैं उसके हिसाब से जितना मुझे पकड़ में आया, जितना मुझे प्यारा लगा, अच्छा लगा, वो यही है कि हम आंतरिक खोज करते हैं, अपने आप को खोजते हैं, उसी को बस आध्यात्म कहते हैं, यानी कि आत्मा की खोज को आध्यात्म कहा जा सकता है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बात कही साहब आपने। जाहिर सी बात है, विचार करने की बात है। और देखिए दोस्तों, पर्पस, ये जो उद्देश्य है इस पूरे प्रोग्राम का, वो यही है कि किस तरह से हम अपने आप को और बेहतर खोज पाए। आज सिंह साहब से हमारी बात हो रही है तो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा और कुछ ना किसी ना किसी रास्ते पर हम चल भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मैं प्रस्तुत करता हूं एक प्यारा सा भजन, पवित्र होकर फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। तो सिंह साहब, मुझे ये बताने की कृपा करें कि क्या धर्म और आध्यात्मिकता एक ही चीज है या इनमें कुछ अंतर है? मेरा मतलब, अगर हम सरल भाषा में बात करें तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, क्या डिफरेंस है इसमें?
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये समीप। आध्यात्म का संबंध व्यक्तिगत अनुभव और आंतरिक सत्य से है
0: जी,
1: जबकि धर्म अक्सर संगठित अनुष्ठानों और बाहरी नियमों से जुड़ा होता है, लेकिन दोनों का लक्ष्य परम सत्य को पाना हो सकता है। आप देखिए, एक धार्मिक व्यक्ति केवल अपने अंतर्ज्ञान पर ही निर्भर नहीं रहता है, बल्कि उसकी आस्था और विश्वास बाहरी कई नियम और कर्मकांडों से जुड़े होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रोटोकॉल्स। धार्मिक व्यक्ति केवल उसको फॉलो करना और भक्ति करना जानता है, लेकिन वो जिज्ञासु नहीं बन पाता। जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो जिज्ञासु और जागरूक दोनों है, और अपना मार्गदर्शन अपनी जिज्ञासा के आधार पर करता है। एक धार्मिक व्यक्ति खुद से अधिक ईश्वर को मानता है और जानता है और ईश्वर की सेवा करना चाहता है
0: जी।
1: जबकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी आत्मा को परमात्मा से बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वो ना तो किसी नियम में बंधा है, ना किसी आस्था में और ना ही किसी भक्ति में, वो केवल अपने स्व से बंधा है। स्व का मतलब स्वयं
0: जी, वन सेल्फ, अपने आप से।
1: जी,
0: बहुत खूब, इतने प्यारे ढंग से इसको डिस्क्राइब किया है सिंह साहब ने। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि इस पूरे प्रोग्राम को बहुत प्यार से ध्यान लगाकर सुनें तो बहुत कुछ क्लियर हो पाएगा, हम कैसे जिंदगी को जी रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, आगे बढ़ते हुए ये प्यारा सा भजन प्रस्तुत करता हूं, इसका आनंद ले।
2: हे प्रभु, हे मालिक, हम सब तेरी ही संतानें हैं। तू हमारा परम पिता परमेश्वर है। हम तेरी शरण में हैं प्रभु, हम तेरी अर्चना करते हैं, हमारी रक्षा करो।

0: सिंह साहब, क्या कभी कोई व्यक्ति बिना धर्म के आध्यात्मिक हो सकता है? मेरा मतलब इस क्वेश्चन को ठीक से समझना जरूरी है कि फर्ज कीजिए मैं किसी रिलीजन को ना अपनाऊं फिर भी मैं स्पिरिचुअल हो जाऊं, इज दैट पॉसिबल?
1: ये भी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा आपने
0: जी
1: समीर जी। यानी बिल्कुल एक बुकिश नॉलेज वाली बात है, किताबी तौर पर या सैद्धांतिक तौर पर
0: जी
1: नहीं है जरूरी।
0: ओके,
1: कोई जरूरत नहीं है किसी धर्म विशेष का पालन करने की, लेकिन अध्यात्म की जो भी किताबें हम पढ़ते हैं वो किसी न किसी धर्म से ही आती हैं, है कि नहीं?
0: जी जी जी जी।
1: मैं अगर बोल दूं कि नहीं, आपको किसी धर्म का पालन करने की जरूरत नहीं है आध्यात्मिक होने के लिए, तो फिर आप क्या करने वाले हो? आप बताओ, आध्यात्मिक अध्यात्म का अर्थ भी आपको कौन बताएगा? दुनिया में हजारों लोग धार्मिक हैं, उसमें से 99% माली आध्यात्मिक नहीं है, सिर्फ धार्मिक हैं
0: जी।
1: तो उनके लिए धर्म का मतलब क्या है? मान्यता है, यानी बिलीव्स
0: जी,
1: और कुछ एक ऐसी बिलीव जो हजारों साल से चली आ रही है तो उसको मान लो। क्यों? क्योंकि वो चली आ रही है
0: जी जी।
1: फलाना पुरानी कहानी इससे संबंधित है, उसको मान लो, क्योंकि वास्तव में अध्यात्म का धर्म के बिना कोई अस्तित्व है ही नहीं। धर्म के केंद्र पर होता है अध्यात्म। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, धर्म के केंद्र पर होता है अध्यात्म। और ऐसे भी कह सकते हो कि धर्म में से कोई भी धर्म हो उसमें से अगर बाकी सब चीजें हटा दो
0: जी,
1: जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बहुत आसान शब्दों में बोलते हैं कि यानी उसको अगर आप सफाई कर दो कचरे की तरह, कई एक चीजें होती हैं
0: जी, जी,
1: तो उसमें जब जो सेंटर थीम जो उसकी बचेगी वही है अध्यात्म सेल्फ, यानी एक आप ह्यूमन रिवॉल्यूशन होता है वो
0: जी,
1: उसी हर एक धर्म के अंदर एक सेंट्रल थीम होती है, वही चीज होती है अध्यात्म। और हमको अध्यात्म की जो ज्ञान मिलता है वो किसी ना किसी रिलीजियस बुक से मिलता है
0: जी जी जी। मैं समझ सकता हूँ सर, ये दरअसल छोटा सा प्रश्न मेरे दिमाग में आया इस वजह से था कि कहीं पर मैं पढ़ रहा था तो वहीं से ये क्वेश्चन उठा। वैसे तो ये बहुत ज्यादा गूढ़ सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा मेरे समझ में आया नहीं, लेकिन फिर भी कि कुछ महात्मा रहे जैसे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की बात करें हम, तो विवेकानंद मेरे जो पढ़ने में आया, और उसके बाद एक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी वो चीज भी मैंने देखी, तो उन लोगों का संबंध बहुत ज्यादा रिलीजन के साथ दिखलाई नहीं दिया, लेकिन वो बहुत जबरदस्त आध्यात्मिक थे। उन्होंने बहुत कुछ बताया जीने के तरीकों को और समझ अपने आप को समझने के तरीकों के बारे में। विवेकानंद जी ने बहुत बहुत कुछ कहा, तो वहां से मेरे दिमागी ये प्रश्न उठा कि क्या हम रिलीजन को और अध्यात्म को अलग कर सकते हैं, तो वो चीज मैंने आपसे पूछने की कोशिश की सर
1: जी।
0: चलिए कोई नहीं, ये जैसे मैंने कहा ये बहुत ही सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, विषय ही बहुत सब्जेक्टिव है, तो इसके बारे में बहुत सारे विचार करने की आवश्यकता है, और सब ठीक है, कोई भी विचार अपने आप में गलत है ही नहीं जब हम बात करते हैं आध्यात्मिकता की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और पेश करता हूं, प्रस्तुत करता हूं ये प्यारा सा भजन।

0: सिंह साहब, आध्यात्म की जब हम बात करते हैं, ये जो पूरा विषय, ये जो पूरा पैराडाइम चल रहा है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, वहां दो चीजें आती हैं, नंबर वन ध्यान और दूसरा प्रार्थना, मेडिटेशन एंड प्रेयर। तो इनके बीच में क्या फर्क है सिंह साहब?
1: ओके, देखिए मेडिटेशन और प्रार्थना ना तो एक दूसरे के पर्याय हैं और ना ही एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब ना सिनोनिम है एक दूसरे के और ना ही वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ध्यान और प्रार्थना में थोड़ा सा अंतर है
0: जी।
1: ध्यान के जरिए आप अपने अवचेतन मन को शांत करते हैं, शांत अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस शांत, जबकि प्रार्थना के जरिए आप अदृश्य शक्ति से ऊर्जा लेते हैं। प्रार्थना को देवी शक्ति से भी जोड़ा जाता है। प्रार्थना और मेडिटेशन में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये कि प्रार्थना में ईश्वर को स्वयं से अलग माना जाता है और वो आपसे हायर पेडेस्टल पे हैं, इसलिए ईश्वर को आप अलग मानते हैं। लेकिन मेडिटेशन में आप स्वयं को ईश्वरीय अंश का एक हिस्सा मानते हैं।
0: वाह, क्या बात कही, बहुत खूब, बहुत खूब। कि मेडिटेशन में, ध्यान में दोस्तों हम ईश्वर के ही एक अंश हैं, और प्रेयर में हम ईश्वर को एक ऊपर शक्ति मानते हुए प्रार्थना करते हैं उनसे, अपने समझदारी के लिए या किसी भी चीज के लिए हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं
1: जी।
0: बहुत खूब, बड़ी प्यारी बात कही साहब। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए इस भजन का भी आनंद ले लें।

0: सिंह साहब, क्या आपको ऐसा लगता है जितना भी आपने बौद्ध धर्म का प्रैक्टिस की, उसको अपनाया, उसे समझा, तो क्या आध्यात्मिकता से हम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं? क्या ये कुछ ऐसी ट्रीटमेंट हो सकती है? आजकल बहुत प्रॉब्लम है स्ट्रेस की, तो कैन वी यू नो टेक दिस मेडिकेशन ऑफ आध्यात्म?
1: आपने सही पूछा। हमारी रोजमर्रा की जो लाइफ है वो इतनी बिजी है कि हम बहुत सी मंडेन चीजों के पीछे पड़े रहते हैं
0: जी,
1: और हम हर चीज के बारे में सोचते हैं कि इसका यानी मेटीरियलिस्टिक वे में क्या इसका टेक अवे होना चाहिए, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि आध्यात्म, एक दैनिक आध्यात्मिक अभ्यास से आप बहुत कुछ अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी निजी से, मैं फौज में रहा हूं और मैंने हर किस्म का माहौल देखा है, यानी बहुत खराब से खराब भी देखा है, और यानी जहां पे उग्रवाद बहुत चरम सीमा पे था, और डिफिकल्ट जगहों पे सर्व करना, जैसे जंगलों में, डेजर्ट में, हाई ऑल्टीट्यूड में, तरह तरह के लोगों के साथ मिलना जुलना, ये इससे मुझको एक अपने अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हुआ ही। साथ में कुछ एक मैंने दिमाग में पॉइंट्स है जो कि मैं आपके साथ और जो भी सुनने वाले मित्र लोगों के साथ साझा करूंगा
0: जी।
1: एक सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आपको अपना स्ट्रेस कम करना हो, स्ट्रेस तो हर एक हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रेस ना हो, तो आप छोटी छोटी चीजें को ध्यान रखें, जैसे कि माइंडफुलनेस, यानी अगर आप दैनिक काम में काम करते करते थक जाते हैं, ज्यादातर तो मानसिक थकान ही होती है
0: जी,
1: तो आप फिर माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं, यानी जैसे आप अगर आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो आपको वर्तमान के कामों पर फोकस होना ये सिखाता है। जैसे कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपका पूरा फोकस उसी पर रहेगा ना, आप किसी और बात का ख्याल करके प्रेशर नहीं करेगा, आप ये नहीं सोचेंगे कि प्रेशर कुकर में 3 सीटी आ चुकी है कि नहीं करने, मतलब आपका ध्यान उस पर रहेगा। तो इस अभ्यास की विशेषता ये है कि ये कहीं भी आप कर सकते हैं, आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है और आपको वर्तमान में जीना सिखाता है। और वहीं इसके अलावा अगर एक आप बहुत ज्यादा नहीं तो 10 मिनट के छोटे छोटे 2-3 सेशंस आप दिन में करें, है ना, जिसमें कि आप एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, कुछ करें, तो ये आपके मन को शांत और स्थिर रहेगा। और दूसरी चीज जो मैंने सीखी कि जिससे हमारा स्ट्रेस कम होता है, वो है कि हमको प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए
0: जी,
1: है ना, जैसे आप सुबह सुबह पार्क के अंदर घूमने जाते हैं, जस्ट स्विच ऑफ एवरीथिंग अपने दिमाग से, आप प्रकृति के बीच में हैं, और ये एक यानी मॉर्निंग वॉक फॉर मेडिटेशन, मेडिटेशन का एक प्रकार मॉर्निंग वॉक भी होता है
0: जी,
1: आपकी आंखें खुली हुई हैं, मन पूरी तरीके से ध्यान की अवस्था में है, ये है। तीसरा जो है एक बहुत अच्छा पॉइंट, वो है कि सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, आभारी रहे, रोजाना आपके कई ऐसे काम होते हैं आप दूसरों की मदद लेते हैं, चाहे वो आपका सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो आपका धोबी हो, आप समय समय पर उनका आभार व्यक्त करते रहे, बहुत बड़ी बात है ये, इससे न केवल आपका दिल महसूस हल्का महसूस होगा बल्कि आपका माहौल भी बड़ा पॉजिटिव बना रहेगा। और खुद को स्थिर रखने के लिए कुछ साधारण मंत्रों का जाप रखें, यानी वो मंत्र आप कोई भी हो सकता है, तरह तरह के मंत्र होते हैं, मंत्रों की जो ऊर्जा है, देखिए दिस इज वेरी साइंटिफिक, ये हमारे सनातन के ऊपर भी इस पे बहुत कुछ किया गया, कहा गया है, आज से नहीं हजारों सालों से कहा गया है कि जो मंत्र की ऊर्जा होती है, जिसको विच इज अ पार्ट ऑफ एक्चुअली फिजिक्स, साउंड ऑफ फिजिक्स होती है ये हमारे मन और शरीर पर बहुत गहरा और पॉजिटिव असर डालती है। और अपने मन को आप पॉजिटिव रख सकते हैं और आसपास की जो वाइब्स हैं वो भी आपके मंत्र जो आप अपने दिल से बोलेंगे उसको वो पॉजिटिव रखेंगे, इस तरीके से कुछ है। और आजकल तो आप देखिए, लोगों से मैं खुद भी जुड़ा हुआ हूँ, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ निशिरन बौद्धिज्म, इसी प्रकार से कई और किस्म की भी आध्यात्मिक कम्युनिटीज हैं, उसके साथ जुड़ना हाँ अच्छा होता है, इसका ऐसा मतलब नहीं कि कोई अपने धर्म के बारे में एडवर्टीजमेंट कर रहा है, ये एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दी यू नो, जिसमें कि अगर आप मेडिटेशन के बारे में बातचीत हो रही है, कुछ हो रही है, किसी धर्म के बारे में उसमें कोई बात नहीं हो रही है, तो इस किस्म की जो आध्यात्मिक कम्युनिटी है उससे जुड़ना चाहिए, और इससे संबंधित कोई लिटरेचर हो। अब जैसे कि मैं तो अपना उदाहरण दे सकता हूं, मैं जब से बुद्धिज्म से जुड़ा हूं, मेरे पास हर महीने एक किताब आती है इसके संबंध में, सो वैल्यू क्रिएशन बोलते हैं उसको, वैल्यू क्रिएशन पूरे वर्ल्ड के अंदर आती है, खाली ऐसे नहीं, अलग अलग भाषाओं में, उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती है कि हमें अपने जीवन को, ह्यूमन रिवोल्यूशन को, ह्यूमन रिवोल्यूशन मतलब हुआ आज जो हूं कल मुझे अपना ही बेहतर वर्जन चाहिए, मुझे किसी के साथ कोई कॉम्पीट नहीं करना है।
0: जी जी,
1: ये है। Okay. इस तरीके से हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं।
0: बहुत खूब, बहुत सुंदर, विचार करने की आवश्यकता है दोस्तों। चलिए इस प्यारे से भजन को सुनते सुनते ही मनन करते हैं सिंह साहब ने क्या बताया।

0: और आगे बढ़ते हुए सिंह साहब सजेस्ट कीजिए, आपने तो बहुत दुनिया देखी, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस महसूस किया लिया, तो नई जनरेशन के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, जेन ज़ी के लिए आध्यात्मिकता कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है एंड हाउ एग्जैक्टली दे शुड गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, क्योंकि उनको तो हर चीज बहुत अट्रैक्टिव चाहिए. सो आध्यात्मिकता उनके लिए क्या मीनिंग रख पाएगी, कुछ सजेस्ट कीजिए.
1: जी बहुत सही बात आपने पूछी. अध्यात्म अध्यात्म के ये जो कुछ एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं
0: जी,
1: जो कि इनको अट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने कोशिश की है इन चीजों को कंपाइल करने की कि अब जैसे आजकल के दौर में शायद ही कोई ऐसा यंगस्टर होगा जो बातचीत में कर्मा, वाइब्स, एनर्जी, पॉजिटिविटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करता हो, भले उसे समझ में ना आते, लेकिन ये सारे शब्द जो है ये अध्यात्म से जुड़े हैं
0: जी जी,
1: और इसको लोकप्रिय बनाते हैं. लेकिन सोचने वाली बात क्या है कि आज का जो युवा जो है, जेन ज़ी की आप बात कर रहे हैं, वो अध्यात्म में क्या क्या नई चीजें सीख रहे हैं. अब 21वीं सदी में क्योंकि अध्यात्म की लोकप्रियता बढ़ी है, वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर इतने टेंशन बढ़ गए हैं, कॉरपोरेट लेवल पर कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ गई है, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा लोगों की, जेलेसी भी होती है और लोग दुश्मनी भी निकालते हैं, इस किस्म की तमाम चीजें आपकी सिर के ऊपर रहती है
0: जी.
1: तो 21वीं सदी में जो आध्यात्म की लोकप्रियता इसलिए बढ़ी है, और इसका मुख्य कारण यह है कि आज के युवाओं में उन्हें फैशन, हेल्थ और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे जो लेटेस्ट शौक हैं, उसके साथ साथ उन्होंने आध्यात्म को अपने जीवन में एक थोड़ी सी जगह दे दी है, विच इज वेरी गुड. अध्यात्म कुछ लोगों के लिए परेशानी भरे जीवन की जरूरत है, जबकि कुछ लोगों के लिए आकर्षित करने वाली चीज है. तो उसमें से जैसे एक है जो बहुत आजकल चल रही है, उसको बोलते हैं एफर्मेशन.
0: ओके,
1: यस यस. तो आज के वक्त में जब डिजिटल चैटिंग, SMS, WhatsApp वगैरह बहुत लोकप्रिय है, यही कारण है कि लोग इन टूल्स के जरिए पॉजिटिव विचारों को या अलग अलग तरह के कोट्स, इसी बहाने देखिए लोग बात थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, कोट्स को शेयर करने में बड़ी दिलचस्पी दिखाते हैं, चाहे भले ही वो
0: समझ में ना आया
1: जी, और किसी को इंप्रेस करने के लिए हो
0: जी, जी.
1: इसीलिए इससे एफर्मेशन को कुछ बढ़ावा तो मिलता है. एफर्मेशन एक ऐसी चीज है समीर जी, जिसे आप पॉजिटिव चीजें लिखकर, खुद से बोलकर या मन में सोचकर या दूसरों से शेयर करके अपनी पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं. तो ये तो एफर्मेशन. इसी मॉडर्न पर्सपेक्टिव के अंदर इस्तेमाल होता है हीलिंग क्रिस्टल्स का. आजकल के दौर में एनर्जी रिवाइव करने के बहुत से तरीके अपनाए जा रहे हैं
0: जी जी,
1: और इसका कारण है कि बढ़ती हुई मांग, आजकल का युवा कई तरह की मानसिक, शारीरिक परेशानियां, ट्रॉमा से भी जूझ रहे हैं, लोग के आए दिन ब्रेकअप होते रहते हैं, मतलब देखिए क्या क्या चीजें हो रही हैं, और इसका इलाज फिर अल्टीमेटली कहां ढूंढ रहे हैं, आध्यात्म में. तो इसी में उनको हर एक चीज का एक जरिया होता है, तो उसमें एक क्रिस्टल हीलिंग का भी जो है वो काफी आजकल चर्चा रहती है. वो इसलिए है कि ये हमें पता है कि आज से हजारों साल पहले ही चीज लिखी गई है कि मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिससे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक ये सारी चीजें उनसे कंट्रोल होती है, उस चक्रों की ऊर्जा से
0: जी.
1: तो जब भी उन चक्रों में से कोई आउट ऑफ सिंक हो जाता है, तब उसको हीलिंग की आवश्यकता होती है. ये हीलिंग क्रिस्टल के द्वारा की जाती है. हालांकि मैं चाहूंगा कि कभी किसी और सेशन में हम इसके ऊपर और डिटेल में बात करें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही यानी डिटेल्ड सब्जेक्ट है. लेकिन क्योंकि अभी बात हो रही है जेन ज़ी वालों की, तो उनमें हीलिंग क्रिस्टल का बहुत उपयोग हो रहा है.
0: ओके ओके ओके
1: जी. और
0: ये बड़ी
1: और जी जी, और अगर थोड़ा सा अपने यानी योगाभ्यास में अगर थोड़ा सा लोग पढ़ लें कि कितने किस्म के चक्र होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, तो ये और भी फिर आसान हो जाता है उनके लिए कि हम किस तरीके, किस किस्म के क्रिस्टल की जो बात करते हैं, वो अलग अलग तरह के स्टोन्स होते हैं प्रेशर से सनी क्वेश्चन, तो उनसे किस तरीके से हीलिंग की जा सकती है. ये है
0: अमेजिंग. देखिए दोस्तों, किस तरीके से हम अपने आप को शांत करें, स्ट्रेस फ्री हो, नई जनरेशन किस तरीके से आध्यात्म को अपना सकती है, सिंह साहब ने उसके बारे में बहुत प्रैक्टिकल तरीके से हमें बताया है. चलिए विचार कीजिए. बार बार मैं कह रहा हूं, ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा विचार करने का ही है. हमें सिंह साहब जैसे लोगों से उनके विचार सुनने को मिल रहे हैं, और हम उन विचारों पर विचार कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पेश करता हूं, प्रस्तुत करता हूं ये प्यारा सा भजन।

0: सिंह साहब, एक थोड़ा सा अटपटा सा सवाल कह लीजिए, या ये सवाल बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में आता ही रहता है लगातार, लेकिन या तो हम पूछने से डरते हैं या सोचने से डरते हैं, आत्मा के एग्जिस्टेंस के बारे में क्या ख्याल है? आत्मा होती है क्या सर?
1: जी, बहुत बहुत गहरा सब्जेक्ट है समीर। मैंने इसके ऊपर काफी खुद यानी एक पर्सनल एकेडमिक इंटरेस्ट लेके स्टडी भी किया है, और उसको मैं बहुत बहुत ही छोटे से टाइम है क्योंकि उसमें मैं कोशिश करूंगा बताने की
0: जी
1: कि इसके ऊपर बहुत से शोध किए गए हैं, बहुत सी रिसर्च वर्क की गई है
0: जी
1: कि आत्मा का अस्तित्व होता है। पहली बात तो ये बिल्कुल सही बात है, आत्मा का अस्तित्व यानी हर जीवन और हर कर्म में आत्मा की अनंत यात्रा का हिस्सा है। तो इसमें जो साइंटिफिक इसकी जो बैकग्राउंड है वो एक सब्जेक्ट होता है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स का। तो क्वांटम मैकेनिक्स और आत्मा के अस्तित्व के बीच में बड़े बड़े साइंटिस्ट और विचारकों ने एक गहरा संबंध स्थापित किया है। लोग चाहे सुनने वाले तो वो जाकर इसके बारे में गूगल के ऊपर वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, एक कंसेप्ट होता है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ये सिद्धांत ये बताता है कि एक कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ये दो रूपों में अस्तित्व में रह सकता है, एक वेव्स के रूप में और एक सॉलिड के रूप में, यानी एक तरंग के रूप में और एक ठोस कण के रूप में। इसी प्रकार मानव का अस्तित्व भी केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है बल्कि आत्मा के रूप में एक नॉन फिजिकल अस्तित्व भी है
0: जी।
1: यानी जब हमारा शरीर खत्म हो जाता है, जिंदगी खत्म नहीं आती है
0: जी,
1: ये ध्यान रखना, जो हमारा फिजिकल सेल्फ जो है वो खत्म हो चुका है, यानी हम जिस

0: मिट्टी से आए उसी मिट्टी में चला गया वापस
1: जी।
0: लेकिन जो हमारे अंदर से बाहर निकली वो आत्मा है।
1: Okay.
0: वो आत्मा नॉन फिजिकल, और फिर वो एक किसी नए शरीर को ढूंढता है जी। इसी तरीके से दूसरा एक जो लॉजिक है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। ये भी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, और ये दर्शाता है कि जो हमारी चेतना है कॉन्शियसनेस, वही वास्तविकता को प्रभावित कर सकती है। ये आत्मा के अस्तित्व का संकेत देता है, क्योंकि चेतना किसी भी भौतिक संरचना है ना, जैसे कि मस्तिष्क हुआ फिजिकल चीज हुई ना
1: जी,
0: के परे भी कार्य करता है।
1: ऑलराइट, ओके।
0: इसी तरीके से एक एक और कंसेप्ट है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो ट्यूबुल्स। माइक्रो ट्यूबुल और आत्मा, वैज्ञानिकों ने ये प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया है कि हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन के अंदर माइक्रो ट्यूब्यूल में क्वांटम लेवल की घटनाएं होती रहती हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि आत्मा इन सूक्ष्म संरचनाओं में भी विद्यमान होती हैं। तो टोटल निष्कर्ष ये निकलता है आत्मा के अस्तित्व के बारे में कि आत्मा का अस्तित्व एक संभावित वैज्ञानिक वास्तविकता है। ये केवल धार्मिक या दार्शनिक विश्वास तक ही सीमित नहीं है, ये साइंटिफिक रियलिटी है ये।
1: ऑलराइट, सो जैसा सिंह साहब ने बताया, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स और इस तरीके के पैरानॉर्मल कॉन्सेप्ट्स को समझने की रिसर्च लगातार चालू है। जैसा सिंह साहब ने बताया, पार्टिकल एंड वेव इफेक्ट, टाइम एंड स्पेस एक साथ एग्जिस्टेंस में कभी नहीं होता, या तो टाइम होगा या स्पेस होगा। फिर इसके बाद पार्टिकल इफेक्ट एंड वेव इफेक्ट के बारे में भी सिंह साहब ने हमें डिस्क्राइब किया। इसके बारे में और अगर जानकारी चाहिए हो दोस्तों, तो हम लोग गूगल कर सकते हैं, नहीं तो सिंह साहब से भी संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं पेश करता हूं ये प्यारा सा, प्रस्तुत करता हूं ये प्यारा सा भजन। सोचिए, विचार कीजिए और इसके साथ आनंद लीजिए।

0: बहुत बहुत ही सुंदर। सिंह साहब, क्या पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं आप, या कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते हैं? आई मीन, दोबारा से जन्म लेना एंड जो भी हमने किया उसका क्या फल में मिलने वाला है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप?
1: जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि पुनर्जन्म या कर्म सिद्धांत के बारे में। देखिए, गीता और उपनिषद पुनर्जन्म को केवल एक धार्मिक विचार नहीं मानती, बल्कि जीवन और आत्मा की अनिवार्य सच्चाई मानते हैं। इसलिए पुनर्जन्म को केवल विश्वास कहके नकारा नहीं जा सकता। ये आत्मा की अमरता, कर्म का न्याय और मोक्ष की आकांक्षा, इन तीनों चीजों का संगम है। आपने देखा होगा अक्सर सच्ची कहानियां हम लोग के आंखों के सामने आती रहती है कि फला फला परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और जब वो 4 या 5 साल का हुआ तो उसको बोध हुआ कि पिछले जन्म में उसकी मृत्यु फला फला वजह से हुई थी, या तो अर्ध नेचुरल या अननेचुरल, और उसके परिवार के लोग अभी भी हैं और ये बात सच निकलती है
0: जी।
1: तो ये पुनर्जन्म की ही तो बात है, यानी आप अपने पुराने जीवन से आप क्या चीज लेके आए हो, अपने अपने कर्म आप लेके आए हो जिनका हिसाब किताब आप इस जन्म के अंदर दोगे। और कई लोग की जो जो मन होता है, देखिए आप जब आत्मा की बात करते हैं तो ये बेसिकली मन के बारे में बात कर रहे हैं
0: जी।
1: वही चीज ट्रांसफर होके एक नए शरीर के अंदर नए शरीर को धारण कर लेती है। तो पुनर्जन्म है, बिल्कुल होता है।
0: और कर्म प्रधान, मतलब जैसे हम जो भी काम करते हैं उसके फल के बारे में कई लोग कहते हैं कि इसी जन्म में हमको फल मिल जाएगा, कुछ लोग कहते हैं जो आपने इस जन्म में किया उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट?
1: जी जी, देखिए ऐसा है समीर के स्वर्ग और नरक सब कुछ यहीं पर है, ये हमारा एक्सपीरियंस बताता है। अब किसी को स्वर्ग का एक्सपीरियंस इससे मिलता है कि भाई यानी उसको सारे हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त हो गई
0: जी,
1: तो उसको स्वर्ग मिल गया, या उसके अपने कर्मों की वजह से यानी उसने नीच कर्म किए या कुछ किए तो उसका उसका फल मिल गया। आपने किसी के साथ गलत किया तो वो चीज आ गई। एक बड़ी अच्छी कहावत है, कर्मा स्ट्राइक्स बैक। आपने अच्छे कर्म किए हैं ना, आपने एक के साथ किए हैं वो कई गुना बढ़ के आपके पास आता है, आपने गलत कर्म किए हैं तो वो भी कई गुना बढ़ के आपके पास यानी मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आ जाते हैं।
0: Okay.
1: और निचिरन बुद्धिज्म के अंदर एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि किसी भी मनुष्य के जीवन के अंदर वो 10 तरह के यानी लाइफ स्टेट्स, उनको बोलते हैं वर्ल्ड, 10 वर्ल्ड्स, 10 तरह के जो वर्ल्ड्स होते हैं वो उनमें ऊपर नीचे जाता रहता है, यानी फ्रॉम द स्टेज ऑफ हेलिश एक्सपीरियंस टू अटेनिंग बुद्धाहुड। बुद्धाहुड अटेंड करने का मतलब कि आप हर चीज से परे हो गए, आप बिल्कुल जैसे कि कहते ना कि भगवान बुद्ध को एक उसकी प्राप्ति हो गई थी, उनको एक ऐसा परमात्मा वाला ज्ञान हो गया था कि उसके आगे कुछ नहीं चाहिए था। तो ये हमारी 10 अवस्थाएं हैं जिनके बीच में हम ऊपर नीचे होते रहते हैं हमारे सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। कई बार ऐसा होता है और ये माना भी जाता है और होता भी है कि हमारे जब आखिरी यानी हमारा फिजिकल सेल्फ, हमारा शरीर जब खत्म होने वाला होता है उस वक्त हमारे कर्म कैसे हैं, यदि उस वक्त भी हम पाप कर रहे हैं तो वो एक बुकमार्क बन जाता है। समीर जी, मेरी अपनी थ्योरी है कि वो एक बुकमार्क होता है और उसी बुकमार्क पे आपका अगला जीवन खुलता है।
0: ओके,
1: आपने गलत, आपके आखिरी टाइम में जिस स्टेट में है आप, जो लाइफ स्टेट में है, उस लाइफ स्टेट को आप एक समझिए कि भगवान बुकमार्क रख देता है। हम यहां पर बात करते हैं यूनिवर्स की, क्योंकि निराकार ब्रह्म के पास ना है, तो वो जो यूनिवर्स है वहां पे एक लगाते हैं, कहता बेटा अब जो नया तुम्हारा जीवन स्टार्ट हो रहा है क्योंकि तुमने पिछले जन्म में कुकर्मों का मतलब आपने खदान खोद दी थी पूरी है, और अब यहां से अब ये आप पे निर्भर करता है। भगवान जो है वो कभी किसी से नफरत नहीं करता है, अभी डिपेंड करता है कि आप उस स्टेट से ऊपर जाने के लिए क्या क्या करोगे। तो मैंने बताया कि आपने गलत काम किए, जब आपने अपने प्राण छोड़े उस वक्त आप जो है को बहुत बड़े माफिया थे, बहुत बड़े डाकू डकैत जो भी रहे आप। जब आपका अगला जन्म होगा तो अगले जन्म में आपको उस सब चीज को ठीक करना होगा।
0: okay.
1: क्योंकि आपका बुकमार्क वहीं से शुरू हो रहा है
0: जी।
1: तो
0: दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ही प्यारे तरीके से इसको कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ते हुए आपने हमें बताया है, तो जाहिर सी बातें जरा ज्यादा ठीक से समझ में आती है बात, बहुत खूब। चलिए दोस्तों, एक और प्यारा सा भजन प्रस्तुत करता हूं।
2: रेडियो टंटिया भील, आपके झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, 90.8 FM। सुनते रहिए आपके झाबुआ की आवाज।

0: बहुत सब बहुत खूबसूरत है सिंह साहब। जाहिर सी बात है डेविल्स एडवोकेसी बहुत इजी होती है, कोई भी दसियों तरीके के यक्ष प्रश्न खड़े कर सकता है। तो क्या कभी कोई ऐसा समय आपकी जिंदगी में भी आया जब आध्यात्मिकता से स्पिरिचुअलिटी पर आपको संदेह हुआ, शक हुआ, उसको नकार देने की इच्छा हुई? क्या समय कोई ऐसा आया था, और अगर आया तो आपने क्या किया फिर?
1: देखिए मेरा ऐसा सोचना इसके बारे में
0: जी
1: कि आध्यात्मिक मार्ग पर जब हम चलते हैं तो आत्म परिवर्तन स्वाभाविक है ना, मतलब कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं रहती है। हालांकि इसके लिए धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है, और अगर एक्सपेक्टेड परिणाम तुरंत नहीं मिलते हैं तो बहुत से लोग निराश हो जाते हैं
0: जी।
1: एक बहुत स्वामी जी हैं, स्वामी मुकुंदानंद
0: जी,
1: वो ये बताते हैं कि आध्यात्मिक पथ पर उत्साह का क्या महत्व है और हम हर समय अपने आप को कैसे प्रेरित रख सकते हैं। वो तो उनके विचारों से मैं सहमत हूं, और मैंने देखा है कि ये अपनी जिंदगी में भी इस चीज का जो है बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है कि आध्यात्मिक यात्रा कठिन तो है, हमें आंतरिक परिवर्तन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उत्साहित रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है
0: जी।
1: और किसी कार्य को करने की जो मोटिवेशन मिलती है, प्रेरणा, वो इस बात पे भी निर्भर करती है कि हमारी जो बुद्धि है उसे कितना महत्व दे रही है। तो हम अपने आध्यात्मिक प्रयासों में तभी उत्साहित रहेंगे अगर हम दो चीजों के बारे में अच्छी तरीके से जान रहे हैं। पहला कि मानव जीवन अनमोल है, दिस ह्यूमन लाइफ इज प्रेशियस
0: जी।
1: लोग कहते हैं ना कि हजारों योनि में जन्म लेने के तब मनुष्य जन्म में योनि तब मनुष्य योनि के बाद जन्म होता है, तो भाई उसको वेस्ट मत करो। दूसरी चीज ये ध्यान रखो कि जो मानव जीवन है ये अस्थाई है, नथिंग इज परमानेंट। तो आप सोच रहे हो तो दुनिया भर के तो प्लान बनाते रहो, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, लेकिन जीवन तो वही है ना 80-90-100 साल के अंदर, ये अस्थाई जीवन है। लेकिन वो जो जीवन है वो बहुत अनमोल है, तो जो चीज अनमोल है उसको आप बहुत सोच समझ के आप उसके ऊपर ध्यान देंगे। और ये वही बात है कि आपके पास सब तरह के साधन है, आप उसके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो केवल आप ही उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपकी वजह से बाकी कुछ और लोगों को भी चीज का फायदा मिलना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे मैं अपनी महंगी गाड़ी लेके जा रहा हूं, उस गाड़ी में 5 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, वो कोई व्यक्ति है जिस बेचारे को अपने स्थान पे जल्दी पहुंचना है, मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं रोक के कहूं भाई साहब बैठ जाइए, मैं भी उसी रास्ते जा रहा हूं
0: जी।
1: ये चीजें लोग करते नहीं है लेकिन करना चाहिए। तो इससे उससे क्या होता है, आपका जो विश्वास है आध्यात्म के अंदर वो बना रहता है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी संगति, मेरा माहौल और मेरे माँ बाप के द्वारा दिए संस्कारों ने मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कभी कि जो आध्यात्मिक यात्रा है इसमें मुझे कोई शक होना चाहिए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस तरीके का भाग्यशाली होना भी बहुत आ, आ, आ,

0: करके हमें आज पता चली। आपका बहुत बहुत आभार सर। चलते चलते बस आध्यात्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर क्या कहना चाहेंगे हमारे मित्रों को?
1: कुछ एक बातें दिमाग में रखिए कि अपने पॉजिटिविटी के मदद से किसी भी चीज को कब फुल स्टॉप करना है वो जरूर ध्यान में रखिए। हमें हर चीज करें, यानी हर चीज की एक फाइनाइट लिमिट होती है, उसको हमेशा ध्यान में रखें। और जब कोई सिचुएशन आए ऐसी कि जिसमें आपको लग रहा है कि आप कंफ्यूज हैं, तो अपने आप को परमात्मा से जोड़ें और आपको सॉल्यूशन मिलेगा। द एंटायर यूनिवर्स विल कम बाय योर साइड, और जो आपके कंफ्यूजन है आपको उसका हल भी खुद ही मिल जाएगा। और इसके लिए धैर्यता के साथ थोड़ा पॉजिटिविटी और रियलिटी के लिए अपने थॉट्स को क्रिएट करके रखें, और तभी हो सकता है जब आप ट्रूली ये सारी प्रैक्टिसेस करें जो हमने अभी डिस्कस किए हैं अबाउट अटेनिंग स्पिरिचुअलिटी।
0: वाओ, बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। इन पॉइंट्स को विचार में रखते हुए, बार बार मनन करते हुए, हम तयशुदा तौर पर अध्यात्म की तरफ और अपने कदम बढ़ाएंगे, शांति पाएंगे। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: थैंक यू समीर। जय हिंद।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। आइसलैंडिक वुमेन स्ट्राइक, एक दिन ने बदली सोच। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि सिर्फ एक दिन, हाँ बस एक दिन, पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है? हम 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट्स, फ्लावर्स, स्पीचेस, अप्रिसिएशन मैसेजेस और क्या नहीं, लेकिन इस सेलिब्रेशन के पीछे एक लंबी कहानी है, स्ट्रगल की कहानी, वॉइस की कहानी, और एक ऐसे दिन की कहानी जिसने सबको हिला दिया। 1975, देश आइसलैंड। अब आइसलैंड छोटी सी कंट्री है, पॉपुलेशन कम है, लेकिन जो वहां हुआ वो दुनिया की सबसे पावरफुल इक्वालिटी मूवमेंट्स में से एक माना जाता है। 24 अक्टूबर 1975 को आइसलैंड की लगभग 90% वुमेन ने डिसाइड किया कि आज हम काम नहीं करेंगे। और ध्यान दीजिए, सिर्फ ऑफिस का काम नहीं, घर का काम भी नहीं, ना कुकिंग, ना क्लीनिंग, ना चाइल्ड केयर, ना ऑफिस अटेंडेंस।

एक दिन के लिए वुमेन सिंपली स्टॉप्ड। इमेजिन कीजिए, स्कूल्स डिस्टर्ब हो गए, ऑफिसेस हाफ एम्प्टी हो गए, फैक्ट्रीज रुक गई, बच्चे फादर्स के साथ ऑफिसेस में बैठे हुए, टेलीफोन एक्सचेंजेस पर क्योस, न्यूज़पेपर्स लेट और क्या नहीं। एक दिन में पूरे देश को समझ आ गया कि अनपेड लेबर होता क्या है, इनविजिबल कंट्रीब्यूशन क्या होता है और विमेन के बिना सिस्टम कैसे कोलैप्स हो सकता है। और सबसे पावरफुल बात, ये स्ट्राइक वायलेंट नहीं थी, ये अग्रेसिव भी नहीं थी, ये डिग्निफाइड थी, साइलेंट थी, लेकिन इंपैक्ट अर्थ शैटरिंग। उस स्ट्राइक के सिर्फ एक साल बाद 1976 में आइसलैंड ने इक्वल राइट्स एक्ट पास किया और 1980 में आइसलैंड ने दुनिया की पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड फीमेल प्रेसिडेंट दी विद दिस फिन बोगा डोटीर। सोचिए, एक दिन की कलेक्टिव एक्शन ने पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल दिया। और इसी दौर में 1975 को यूनाइटेड नेशंस ने भी ऑफिशियली 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में अडॉप्ट किया। वुमेन्स डे सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि जब वुमेन यूनाइट होती हैं तो नरेटिव्स शिफ्ट होते हैं और जब हम वुमेन्स डे पर एम्पावरमेंट बोलते हैं तो याद रखिए, एम्पावरमेंट कोई गिफ्ट नहीं होता, वो क्लेम किया जाता है। आइसलैंड की वुमेन ने हमें यही सिखाया कि कभी कभी दुनिया को समझाने के लिए लाउड स्पीच नहीं, सिर्फ एक साइलेंट पॉज काफी होता है। पॉज कर देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: मैंने डिसाइड किया मैं डिजिटल डिटॉक्स करूंगी। फोन साइड पे रखा, डीप ब्रेथ ली। 5 मिनट बाद ऐसी क्यूरियोसिटी हुई कि मैंने फिर से फोन उठाया और चेक किया लोग क्या कर रहे होंगे मेरे बिना। फोन उठाया, किसी ने कोई मैसेज नहीं किया था। तब मुझे समझ आया, मेरा डिटॉक्स नहीं, दुनिया का पीस चल रहा है।
2: मैं उनका चेहरा देखकर ही समझ जाती थी कि वो मुझे हंसाने की कोशिश करने वाले हैं, और पहले से ही कह देती थी, हाँ किशोरदा, पहले गाना फिर हंसना। वाकई उनके साथ गाने में बड़ा मजा।

इंडिया की असली शेरनियां, ग्राउंड लेवल हीरोज, या कहूं शीरोज। दोस्तों, वुमेन्स डे के दिन हम अक्सर सेलिब्रिटीज को सेलिब्रेट करते हैं, फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस, सीईओज। लेकिन आज मैं आपको मिलवाना चाहती हूं उन वुमेन से जो हेडलाइंस में कम आती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर रेवोल्यूशन क्रिएट करती हैं। कहानी शुरू होती है बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के गांव से। नाम बीना देवी, लोग उन्हें कहते हैं मशरूम महिला। अब मशरूम सुनते ही आपको लगता होगा छोटा सा कोई क्रॉप, लेकिन बीना देवी ने मशरूम को लाइवलीहुड रेवोल्यूशन बना दिया। उन्होंने खुद मशरूम कल्टीवेशन सीखा, फिर गांव की औरतों को ट्रेनिंग दी, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, फिर मार्केट लिंकेजेस क्रिएट किए। आज उनके इनिशिएटिव्स हजारों फैमिलीज की इनकम इंप्रूव कर रहे हैं। उन्हें मिला नारी शक्ति पुरस्कार, लेकिन अवार्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट था कॉन्फिडेंस। एक गांव की वुमन ने ये प्रूव किया कि एम्पावरमेंट शब्द से नहीं, स्किल से आता है। अब एक और कहानी, मालविका अय्यर। चाइल्डहुड एक्सीडेंट में दोनों हाथ खो दिए, लाइफ रुक सी गई, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी रीराइट की, फिर से लिखी। जी हाँ, फिर से लिखी। आज वो डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, यूएन फोरम्स पर बोल चुकी हैं। उन्होंने एक बार कहा था, डिसेबिलिटी इज नॉट इनेबिलिटी, इट इज अ डिफरेंट एबिलिटी। क्या बात है। फिर एक और नाम, कलावती देवी जी का, बिहार की ही एक और वुमन। उन्होंने मैसोनरी सीखी और 4000 से ज्यादा टॉयलेट्स बनाए स्पेशली वुमेन सेफ्टी के लिए। सोचिए, सैनिटेशन, डिग्निटी, सेफ्टी, ये सभी एम्पावरमेंट के सही मायने हैं, सही मकसद हैं, सही मतलब हैं। वुमेन्स डे सिर्फ ग्लास सीलिंग तोड़ने की बात नहीं करता दोस्तों, ये मड हाउसेस में डिग्निटी बनाने की भी बात करता है। इंडिया में आज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बढ़ रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रूरल इकोनॉमी का बैकबोन बन चुके हैं, पुलिस फोर्सेस में वुमेन रिप्रेजेंटेशंस ग्रो हो रहे हैं, स्टार्टअप्स वुमेन लेड हो रहे हैं। पर सबसे बड़ा चेंज क्या है जानते हैं? माइंडसेट। आज की लड़की सिर्फ परमिशन नहीं मांगती, वो पार्टिसिपेशन क्लेम करती है। और वुमेन्स डे हमें ये याद दिलाता है कि हर विलेज, हर मोहल्ला, हर शहर में एक बीना देवी है जो बस एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रही है। देकर देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: लड़कियां बोलती हैं, मैं बस 5 मिनट में रेडी हो जाऊंगी, और साइंस आज तक रिसर्च कर रहा है कि ये 5 मिनट अर्थ के हैं या जुपिटर के, क्योंकि जुपिटर का एक दिन 10 घंटे का होता है। बस वही वाला 5 मिनट होता होगा ये शायद। What?

राइट टू सिट, एक कुर्सी की क्रांति। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत अजीब सा सवाल करना चाहती हूँ। आपने कभी किसी मॉल, किसी कपड़े की दुकान या ज्वेलरी स्टोर में सेल्स वुमन को नोटिस किया है? शायद नहीं। वो पूरा दिन खड़ी रहती है, कभी 6 घंटे, कभी 8, कभी 10 घंटे तक। और हम बस आते हैं, कपड़े ट्राई करते हैं, उल्टे सुल्टे जैसे भी उन्हें वहीं छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन केरला की कैलिकट शहर में एक औरत ने एक दिन ये डिसाइड किया कि ये नॉर्मल नहीं है। उनका नाम है विजी पली थोड़ी। उन्होंने देखा कि शॉप्स में मेल स्टाफ को चेयर्स मिलती हैं, पर फीमेल सेल्स स्टाफ को पूरा दिन खड़ा रहना पड़ता है। रीजन, कस्टमर के सामने बैठना अच्छा नहीं लगता। सोचिए, डिग्निटी का मेजर भी जेंडर के हिसाब से। विजी खुद एक वर्कर थी, उन्होंने इस इनइक्वालिटी को अनएक्सेप्ट किया। उन्होंने डिमांड की बस एक सिंपल चीज की, राइट टू सिट। जी हाँ, बैठने का अधिकार। कुर्सी मांगना कोई रेवोल्यूशन लगता है? नहीं ना। लेकिन जब सिस्टम के अगेंस्ट जाते हो तो छोटी छोटी डिमांड्स भी क्रांति बन जाती हैं। विजी ने वुमेन वर्कर्स को ऑर्गेनाइज किया, मीटिंग्स की, प्रोटेस्ट्स किए, मीडिया को इन्वॉल्व किया, शॉप ओनर्स को कन्फ्रंट किया, और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने वुमेन को ये एहसास दिलाया कि कंफर्ट भी इम्पोर्टेंट है, उनका राइट है। हमें लगता है एम्पावरमेंट मतलब सीईओ बनना, रॉकेट साइंटिस्ट बनना या पुलिस ऑफिसर बनना। बिल्कुल सही, पर कभी कभी एम्पावरमेंट का मतलब होता है मुझे बैठने दो। लॉन्ग वर्किंग आवर्स में खड़े रहने से हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे कि वेरिकोस वेन्स, जॉइंट पेन, क्रॉनिक फटीग। पर इससे भी ज्यादा डेंजरस होता है नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट। विजी ने ये नॉर्मलाइजेशन तोड़ दिया। आखिरकार केरला में पॉलिसीज चेंज हुई, शॉप्स को सीटिंग्स प्रोवाइड करनी पड़ी। एक कुर्सी सिर्फ फर्नीचर नहीं थी, वो एक स्टेटमेंट थी। और 2018 में बीबीसी ने विजी को अपनी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन की लिस्ट में इंक्लूड किया। जी हाँ, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, एक कुर्सी के लिए लड़ी गई लड़ाई के लिए। दोस्तों, वुमेन्स डे पर जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो सिर्फ बोर्डरूम्स की नहीं, रिटेल फ्लोर्स की भी बात करें, क्योंकि चेंज तब कंप्लीट होता है जब वो हर लेवल पर हो। आज अगर आप किसी दुकान में जाओ और देखो कि सेल्स वुमन बैठी है, तो याद रखना वो कुर्सी किसी ने जीती है, और हर जीती हुई कुर्सी एक जीती हुई इज्जत होती है। देखकर देखो,

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: पहले लोग घर की घंटी बजाते थे, अब मोबाइल की घंटी बजती है सारा दिन। पहले लोग कहते थे कौन आया है, अब कहते हैं कौन ऑनलाइन आया है। रिश्ते भी अब ऐसे ही हो गए हैं, सामने बैठकर बात नहीं करेंगे पर लास्ट सीन जरूर चेक करेंगे। What?

0: होता है।
1: मलाला, एक आवाज जो गोली से भी ज्यादा पावरफुल थी। दोस्तों, कभी कभी दुनिया बदलने के लिए आर्मी चाहिए नहीं होती, कभी कभी सिर्फ एक आवाज काफी होती है। ये कहानी है एक लड़की की जो स्कूल जाना चाहती थी, बस इतनी सी बात, छोटी सी बात। ईयर 2012, एक 15 साल की लड़की मलाला यूसुफ़ज़ई, उसने सिर्फ कहा था कि लड़कियों को पढ़ने का हक है। सिंपल सी बात है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। तालिबान ने अनाउंस कर दिया कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए और लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी। सोचिए, जब आपके सपने पर किसी और का हक हो जाए, कोई और उस पे अपनी मोहर लगा दे, तो कैसा लगता होगा? मलाला ने ब्लॉग लिखना शुरू किया। बीबीसी उर्दू के लिए अनोनिमसली लिखती गई और बस लिखती गई। वो बताती थी कि कैसे स्कूल्स बंद हो रहे थे, कैसे लड़कियां डर के मारे घर में बैठी हैं, कैसे एजुकेशन एक लग्जरी बन गई है। और फिर 9th अक्टूबर 2012 स्कूल बस एक मास्क्ड गनमैन चढ़ा, उसने पूछा मलाला कौन है, और फिर गोली चली। एक 15 साल की बच्ची को सिर्फ इसीलिए शूट कर दिया गया क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। मलाला बच गई, सर्जरी हुई, वो यूके शिफ्ट हुई, और फिर उसने चुप रहना चूज नहीं किया, कभी नहीं। उसने दुनिया के सामने खड़े होकर कहा, वन चाइल्ड वन टीचर वन बुक वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड, यानी एक बच्चा, एक शिक्षक, एक किताब और एक कलम पूरा देश बदल सकता है, पूरी दुनिया बदल सकता है। जिसे चुप कराने के लिए गोली चलाई गई थी, उसकी आवाज और तेज हो गई। ये सिर्फ हिम्मत की कहानी नहीं है, ये एजुकेशन के हक की कहानी है, ये इस बात की कहानी है कि लड़कियां सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं, दुनिया की जिम्मेदारी भी संभाल सकती हैं। मलाला ने मलाला फंड शुरू किया, जो वर्ल्ड ओवर गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम करता है। आज भी दुनिया में 100 मिलियन से ज्यादा लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती, और हर बार जब कोई लड़की क्लासरूम में एंटर करती है, वो सिर्फ खुद नहीं, अपनी फ्यूचर जनरेशंस को एम्पावर करती है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हम अक्सर सेलिब्रेट करते हैं सक्सेस स्टोरीज, लेकिन मलाला हमें एक और चीज सिखाती है, रेजिस्टेंस। कभी कभी फेमिनिज्म लाउड स्लोगन्स नहीं होता, कभी कभी फेमिनिज्म बस यही होता है कि मन में डर को जीते और उस डर से आगे बढ़े। मैं डर के नहीं रहूंगी, बंद के नहीं रहूंगी, और कोई मुझे रोक नहीं सकता अपने हक की लड़ाई लड़ने से। और अगर आप गौर करें, मलाला की कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ये हर उस जगह की कहानी है जहां लड़कियों को कहा जाता है ये तुम्हारे लिए नहीं है। और हर बार जब कोई लड़की कहती है मैं ट्राई करूंगी, वहीं से रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। दोस्तों, वुमेन्स डे सिर्फ रोजेस और विशेस का दिन नहीं, ये उन आवाजों को याद करने का दिन है जो सिस्टम के अगेंस्ट खड़ी हुई, गिरी, संभली, फिर खड़ी हुई। और अगर आज भी किसी घर में एक लड़की अपने सपने के लिए लड़ रही है, तो याद रखिए, हर मलाला पहले एक नॉर्मल लड़की होती है जिसकी बहुत नॉर्मल सपने होते हैं और इच्छाएं होती हैं। फर्क सिर्फ ये होता है, सिर्फ इतना सा कि वो डर से बड़ा सपना चूज करती है। तो आज आपके पास कोई लड़की अगर है जो पढ़ना चाहती है, कुछ नया सीखना चाहती है, अपना करियर बनाना चाहती है, उसे रोकिए मत, उसका सपोर्ट सिस्टम बनिए। क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है तो सिर्फ एक लाइफ नहीं बदलती, एक पूरा परिवार, एक पूरा समाज उसके साथ आगे बढ़ता है। और शायद इसीलिए एक आवाज, एक पेन, एक क्लासरूम कभी कभी दुनिया की सबसे पावरफुल चीज होती है। इस्तेमाल कर कर देखिए।

डेनाली, जब महिलाओं ने सिर्फ पहाड़ नहीं सोच भी चढ़ ली। दोस्तों, कभी कभी सबसे ऊंचा पहाड़ पत्थर का नहीं होता, सोच का होता है। 1970, नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा माउंटेन डेनाली और एक ऑल वुमेन एक्सपेडिशन टीम ने ये डिसाइड किया, हम समिट करेंगे। उस जमाने में माउंटेनियरिंग सिर्फ मेल डोमिनेटेड थी। लोग कहते थे वुमेन फिजिकली वीक होती हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस हैंडल नहीं कर सकती। और ये सिर्फ वेदर का चैलेंज नहीं था, ये परसेप्शन का चैलेंज था। ग्रेस होमोन और उनकी टीम ने ट्रेनिंग की, प्रेपरेशन की और फिर डेनाली के बेस कैंप तक पहुंच ही गई। माइनस टेम्परेचर्स, हैवी इक्विपमेंट्स, स्नो स्टॉर्म्स, एल्टीट्यूड सिकनेस का स्ट्रेस, पर उनसे ज्यादा हैवी था सोसाइटी का सारा डाउट। हर स्टेप के साथ वो सिर्फ माउंटेन क्लाइंब नहीं कर रही थी, वो स्टीरियोटाइप्स तोड़ रही थी। और जब उन्होंने समिट अचीव किया, वो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल विक्ट्री नहीं थी, वो एक सिंबॉलिक विक्ट्री थी। उन्होंने प्रूव किया करेज का जेंडर नहीं होता, स्ट्रेंथ स्टीरियोटाइप से नहीं डिसाइड होती। आज हम वुमेन माउंटेनियर्स को एवरेस्ट, K2, अंटार्कटिका एक्सपेडिशंस में जाते अक्सर देखते हैं, पर ये रास्ता किसी ने सबसे पहले बनाया था ये शायद बहुत कम ही लोगों को पता है। और हर समिट के पीछे एक अनसीन स्ट्रगल होता है। डेनाली एक्सपेडिशन ने माउंटेनियरिंग कम्युनिटी को फोर्स किया रीथिंक करने के लिए। क्या हम टैलेंट को जेंडर के लेंस से देख रहे हैं? वुमेन्स डे पर जब हम ग्लास सीलिंग की बात करते हैं तो याद रखिए, कुछ सीलिंग स्नो से बनी होती हैं और कुछ माइंडसेट से। और जब वुमेन उन दोनों को तोड़ देती हैं, तो दुनिया का नया एल्टीट्यूड मिलता है, एक नई ऊंचाई मिलती है। दोस्तों, हर वुमन की लाइफ में एक डेनाली होता है, एक चैलेंज जो लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, पर जब वो करती हैं तो सिर्फ अपनी नहीं पूरी जनरेशन की हाइट को बदल देती हैं, बढ़ा देती हैं। और शायद इसीलिए वुमेन्स डे सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, एलिवेशन है। करके देखिए,

फ्रंटलाइन फियरलेस वुमेन हु वेयर करेज। दोस्तों, जब हम वुमेन्स डे की बात करते हैं तो हम सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, लेकिन आज मैं आपको उन वुमेन की कहानी सुनाना चाहती हूं जो यूनिफॉर्म पहनती हैं, पुलिस यूनिफॉर्म। दिल्ली पुलिस में आज हजारों वुमेन ऑफिसर्स सर्व कर रही हैं। सोचिए, नाइट पेट्रोल, रेस्क्यू ऑपरेशंस, क्राउड कंट्रोल, इन्वेस्टिगेशंस, ये सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शंस नहीं है, ये रिस्क डिस्क्रिप्शंस हैं। सोच कर देखिए। एक ऑफिसर ने शेयर किया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में जब उन्होंने एक छोटी बच्ची को रेस्क्यू किया और उसे उसकी माँ के गले लगते देखा तो सारी थकान खत्म हो गई। उन्होंने कहा, फियर तो हर ड्यूटी का पार्ट है, लेकिन पर्पस उससे बहुत बड़ा है। वुमेन ऑफिसर्स को सिर्फ क्रिमिनल्स का सामना नहीं करना पड़ता, कभी कभी स्टीरियोटाइप्स का भी करना पड़ता है। फील्ड वर्क टफ है, नाइट ड्यूटी सेफ नहीं, फैमिली का क्या, लेकिन आज वुमेन ऑफिसर्स क्राइम ब्रांचेस लीड कर रही हैं, साइबर सेल्स हैंडल कर रही हैं, एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स चला रही हैं। और सिर्फ ये दिल्ली की कहानी नहीं, इंडियन एयरफोर्स में वुमेन फाइटर पायलट्स, आर्मी में वुमेन कमांडिंग ऑफिसर्स, स्पोर्ट्स में वुमेन वर्ल्ड चैंपियंस, स्टेम फील्ड्स में साइंटिस्ट्स, और हर जगह एक चीज कॉमन है, डिटर्मिनेशन। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हिस्ट्री लेबर राइट्स मूवमेंट से शुरू हुई थी, वोटिंग राइट्स, इक्वल पे, फेयर वर्किंग आवर्स। आज हम उस जर्नी का एक्सटेंशन देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन, लीडरशिप, विजिबिलिटी। लेकिन सफर कंप्लीट नहीं है अभी।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है संगीत की दुनिया का सतरंगी रंग। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज की शख्सियत केवल एक नाम नहीं, एक यात्रा है। वर्दी से सुरों तक की यात्रा, कानून व्यवस्था से कला संवर्धन तक की यात्रा, 1989 में डीवाईएसपी के रूप में पुलिस सेवा की शुरुआत, 2003 आईपीएस बैच, राजस्थान के अनेक जिलों में ऐतिहासिक कार्यकाल, 800 किलो से ज्यादा नारकोटिक्स की जब्ती, कई ब्लाइंड मर्डर सुलझाए और छोटी सादरी जैसे पुलिस जनसंवाद के अभिनव प्रयोग किए। लेकिन इस दृढ़ और अनुशासित अधिकारी के भीतर एक संवेदनशील हृदय भी धड़कता रहा, जो संगीत, गजल, शायरी और संस्कृति से प्रेम करता था। 2013 की एक शाम दोस्तों के बीच उठी एक सरल सी बात, आज एक अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक आंदोलन बन चुकी है, सृजन द स्पार्क। भारत के 12 शहरों में अध्याय, यूएसए, यूके और कनाडा तक विस्तार, 400 से अधिक वैश्विक ऑनलाइन प्रस्तुतियां, और अब उदयपुर में एक वैश्विक संगीत संस्थान का स्वप्न, एपिटोम ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक। आज हमारे साथ हैं सेवा, संवेदनशीलता और सृजन के अद्भुत संगम रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर तथा चीफ पैट्रन प्रसन्ना कुमार जी खमेसरा। खमेसरा जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: आलोक जी नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, तथा मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि आप अपने रेडियो स्टेशन के माध्यम से कुछ लोगों को जो समाज के लिए काम कर रहे हैं उनको सामने लाने का कार्य कर रहे हैं।
1: चलिए सर, तो शुरुआत करते हैं, और शुरुआत से ही करते हैं। उदयपुर में आपका कदाचित बचपन बीता रहा है, तो कैसा रहा, क्या घर का माहौल था, क्या घर में भी संगीत और संवेदनशीलता को आकार दिया आपके बचपन में, कुछ उसके बारे में छोटी बड़ी बातें हमें बताइए।
2: जहां तक मेरे परिवार और बचपन की बात है, मेरे ग्रैंडफादर दादाजी आजादी के पहले बीएससी और एलएलबी किए हुए थे। उन्होंने जयपुर महाराजा कॉलेज से बीएससी किया था। रहने वाले

0: जयपुर के हैं, लेकिन यहाँ आके उन्होंने बीएससी करके इंदौर से एलएलबी किया था। इसी तरीके से फादर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचडी में रहे। तो
1: अच्छा
0: फादर की पोस्टिंग राजस्थान के विभिन्न शहरों में अलग अलग जगह रही, तो इसलिए मेरा बचपन भी कभी फालना, कभी डूंगरपुर, कभी निम्बाड़ा, इस तरीके से व्यतीत हुआ। और उसके बाद में 9वीं के बाद में मैं उदयपुर पापा जी के साथ, फैमिली के साथ, जब हम लोग उदयपुर आए तो वहां से मेरा ग्रेजुएशन उदयपुर का है। और उसके बाद में मैंने एमबीए भी सुखड़ी यूनिवर्सिटी उदयपुर से उस वक्त किया था 87 में।
1: जी चलिए, तो उदयपुर से ही आपका बहुत सबका रहा है। तो फिर आपने एमबीए की शिक्षा भी ली और खेलों में भी आपकी रुचि थी, तो क्या इन दोनों चीजों ने, शिक्षा और खेलों ने, आपके जीवन को कुछ संतुलन दिया? कुछ दोनों चीजों में इंटरेस्ट आपका रहा है, तो कुछ उसके बारे में बताइए।
0: जी, ये एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हमारी लाइफ का रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स मेरे लिए बहुत बचपन से ही बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है, और इसी के साथ पढ़ाई में भी। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि न केवल पढ़ाई में हम लोग क्लास में काफी आगे रहे, बट विभिन्न खेलों के माध्यम से सभी लोगों के साथ में, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे टेबल टेनिस हो, चाहे हॉकी हो, तो इसको कॉलेज लेवल पे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला।
1: भाई ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्रिकेट और हॉकी दोनों आप खेलते थे। नॉर्मली लोग क्रिकेट खेलते हैं तो हॉकी नहीं खेलते, हॉकी खेलते हैं तो क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन आप दोनों खेलते थे, तो बहुत ही खूबसूरत बात है। तो क्रिकेट और हॉकी की बात पे खमिश्रा साहब, हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा संगीत को भी अपने कार्यक्रम में लाते हैं और एक गाने के लिए रुक जाते हैं, एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, फिर आगे बातचीत करेंगे। और आगे हम बातचीत करेंगे आपसे, आपके जो डिस्टिंग्विश्ड पुलिस कैरियर है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करें।

0: 1989 से आईपीएस तक की यात्रा, कौन सा मोड़ आपको सबसे निर्णायक लगता है? कई तरह तरह की मोड़ आए होंगे, तो कुछ उसके बारे में बताइए, कौन सा आपको ऐसा लगता था बहुत चेंजेस आए जहां से आपकी लाइफ में?
1: आलोक जी, सबसे बड़ा चेंज तो इस पुलिस में सर्विस में आने का ही रहा, क्योंकि कहीं दूर दूर तक भी ये ख्याल नहीं था कि मैं इस पुलिस की नौकरी में आऊंगा। जब मैंने एमबीए किया था, तब हमने हमारे पारिवारिक अंकल की एक फैक्ट्री थी, तो उस फैक्ट्री को हमने एमबीए करने के बाद में करियर बनाने का किया था। फिर अचानक हमारे एक मित्र का मेरे पास में एक पत्र आता है, उस पत्र को मेरे चाचा जी ने पढ़ा, क्योंकि मैं अहमदाबाद उस वक्त शिफ्ट हो चुका था एमबीए करने के बाद में। उसमें उसने लिखा था कि दो नावों की सवारी करना उचित नहीं होता, और जब चाचा जी ने इस चीज पढ़ा तो उन्होंने मुझे बोला कि जाके एग्जाम दे लीजिए, साल दो साल के लिए कोशिश कर लीजिए, हो जाता है ठीक है, नहीं तो वापस इसमें आइए। तो वह एग्जाम मैंने, एक मित्र की चिट्ठी ने मेरा पूरा करियर वहां से चेंज कर दिया, और मैं एग्जाम दी और पहले अटेम्प्ट में मेरा एस डीवाईएसपी सिलेक्शन हुआ है।
0: दैट्स वंडरफुल। देखिए, कोई ना कोई ट्रिगर होता है, एक चिट्ठी ट्रिगर बन गई आपके लिए।
1: जी
0: और नहीं तो आप अपने बिजनेस में ही लग जाते, फैक्ट्री संभालते। वाह।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एज ए प्रोफेशन मेरे को एमबीए के बाद में एक नेचुरल रिकॉर्ड्स वही था कि इंडस्ट्री लाइन में जाएं, क्योंकि मुझे जॉब नहीं करना था, तो इंडस्ट्री लाइन में जाने वाले थे। एकदम से ट्विस्ट आ गया करियर में पूरा टोटली।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। चित्तौड़गढ़ में भी आपका काफी लंबा टेन्योर रहा है, उस दौरान नेतृत्व का आपका मूल सिद्धांत क्या था? आपने काफी वहां कुछ अच्छे अच्छे काम भी किए हैं पुलिस सेवा के दौरान, तो उसके बारे में कुछ बताइए, ऐसा क्या खास रहा वहां के टेन्योर में?
1: जी, चित्तौड़ का मेरा कार्यकाल पूरे करियर में काफी एक अलग सा स्थान रखता है। वैसे जैसे मैं आपको बताया था कि 89 में मैं एज डीवाईएसपी प्रोबेशनर के तौर पर करियर शुरू किया। उसके बाद मैं पहली पोस्टिंग हिंडौन डीवाईएसपी, फिर छोड़ीसाली डीवाईएसपी, फिर राजसमंद डीवाईएसपी, फिर प्रतापगढ़, फिर वापस झुंझुनू। ये मेरी डीवाईएसपी के तौर पर पोस्टिंग रही। देन एडिशनल एसपी के तौर पर प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, दौसा, सिरोही आगे मेरी पोस्टिंग रही। आईपीएस बनने के बाद में मेरी पहली पोस्टिंग आईपीएस बनते ही एसपी डूंगरपुर हुई थी, और एसपी डूंगरपुर से मेरी पोस्टिंग चित्तौड़ एसपी के तौर पर रही, जो बहुत लंबी पोस्टिंग है। एसपी 4 साल 8 महीने करीब, जो अपने आप में काफी लंबा समय हो जाता है, वो मेरी पोस्टिंग रही। अब चूंकि चित्तौड़ कानून व्यवस्था की दृष्टि से और दृष्टि से भी काफी सेंसिटिव रहता है, तो जैसा आपने कहा कि हमेशा ही कुछ न कुछ चीज चैलेंजिंग होता रहा लाइफ में वहां पे, और उस चीज को हमने जैसे भी है डील किया, और समय वहां निकला। उसके बाद में एसडीआईजी जयपुर में मेरे को 2.5 साल रहने का काम रहा, उसके बाद में आईजी भरतपुर और आईजी कोटा के तौर पे मेरा करियर चलता रहा। लास्ट में आईजी क्राइम के तौर से मैं लास्ट में जयपुर से रिटायर हुआ था।
0: अच्छा,
1: तो इस
0: कोटा
1: पूरे
0: भी
1: लंबे,
0: लिया।
1: जी, इस पूरे लंबे कैरियर में सभी जगह का एक अपना महत्व रहा है और अलग अलग अनुभव रहे हैं।
0: नहीं, चित्तौड़ में जैसे आपने बताया 4 साल एज एसपी, तो आपकी पुलिस के हिसाब से काफी लंबे समय है, मतलब आपने
1: चार
0: बहुत
1: साल
0: ही
1: आठ महीने सर, और
0: 4 साल
1: ये लगातार पोस्टिंग रही, तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा
0: ना, रिकॉर्ड सही
1: एक
0: है, बिल्कुल सही बात है।
1: जी।
0: अच्छा, ये छोटी सादरी एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत बात होती है, जब भी कोई पुलिस वाले पुराने मिलते हैं तो ये इंटरफेस प्रोग्राम पुलिस जनसंबंधों में, ये कौन सी पहल आपने इनिशिएटिव लिया था, कुछ इसके बारे में बताएंगे शॉर्ट में हमें?
1: मेरी पहली पोस्टिंग से मेरे मस्तिष्क में ख्याल था कि हमें जनता के साथ जुड़ाव, जो आज हम पुलिस अधिकारियों में काफी अच्छा देखते हैं, लेकिन उस वक्त समय के साथ, क्योंकि ये 92, 93, 94 के आसपास की बातें हैं, तो उस वक्त थोड़ा सा ये चीज पहली बार करने का मौका मिला, जनता को अपने साथ जोड़ने का। और इस एक्सपेरिमेंट को हमने छोटी साड़ी जब मेरी पोस्टिंग थी तब शुरू किया था, और पूरे सर्किल के सारे जितने भी गांव हैं, पंचायत है, उस सब जगह हमारा जाना हमने सुनिश्चित किया था लोगों के बीच में, और जनता के साथ जो संवाद डायरेक्ट हमने स्थापित किया था उसमें हमारे तत्कालीन एसपी साहब का भी काफी रोल रहा था। और उसके बाद में इंटरफेस प्रोग्राम, जब मैं राजसमंद एडिशनल एसपी था, तो हमने विद्यार्थियों को, क्योंकि हमारा मानना है कि जब एज बड़ी हो जाती है, आदमी जब वयस्क हो जाता है, तो उसको पुलिस के बारे में जो बचपन से ही जो बात आ जाती है वही उसके दिमाग में चलती रहती है। हमारा सोच ये था इस विषय में कि अगर कम एज के बच्चों को ही शुरू से अगर हम पुलिस के बारे में जो गलत फहमियां हैं उनको दूर करें और पुलिस की वर्किंग एक्चुअली किस तरीके की होती है उसकी रियल लाइफ जानकारी देंगे, तो भविष्य में आगे जाके जब वो एज ए नागरिक बड़े होंगे तो उनके मन में पुलिस के बारे में कोई गलत फहमी नहीं होगी, और जो पुलिस जैसी है उसको एक्चुअल पुलिस किस तरीके का काम करती है, अच्छी या बुरी, उसको खुद को जानने का मौका मिले। और ये बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि काफी लोग बच्चे, क्योंकि हम लोग उस दौरान में सैकड़ों स्कूल में गए, कॉलेज में गए, विद्यार्थियों से बात की, और उसके बाद में उनकी पुलिस से संबंधित रवैये में कुछ परिवर्तन डेफिनेटली आए।
0: अच्छा, तो मतलब ये बच्चों को जोड़ना, ये तो बहुत ही एक तरह से इनोवेटिव सी बात है। कि तो आपके स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जाते थे, वहां कुछ उनसे इंटरेक्शन करते थे बच्चों से,
1: जी जी
0: स्टूडेंट से?
1: जी
0: राइट राइट
1: बिल्कुल, सैकड़ों की संख्या में हम पहले इन्फॉर्म करते थे स्कूल में, फिर नेक्स्ट डे हमारे अधिकारी और हम स्वयं जाते थे, बच्चों से 1.5 घंटा पूरा बात करके उसके बाद में उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन के तौर पे वो पूरा इंटरफेस चलाया गया था। इसी तरीके से छोटी साड़ी प्रयोग में हमने ग्रामीण जनता, शहर की जनता, उनको डायरेक्ट जोड़ते हुए और हमारे पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को उनके साथ रेगुलर टच बनाए रखने के लिए ये प्रयोग चालू किया था। दोनों ही प्रयोग अपनी जगह काफी अच्छे रहे, सक्सेस रहे, और पब्लिक में पुलिस के प्रति एक पॉजिटिव भावना का उदय हुआ।
0: चलिए, बहुत इनफैक्ट अब तो आजकल तो ये काफी इंट्रेक्शन होने लगे। लेकिन आप जब
1: जी
0: 92-93 की बात करें, उस टाइम में थोड़ी सी पुलिस फोर्स एलूफ सी रहती थी, तो आपने एक तरह से उनको कनेक्ट करने की कोशिश की। बहुत खूबसूरत है, मजा आ गया सुनकर। तो अब सर, आप ये बताइए, जैसे कुछ नार्कोटिक्स और ब्लाइंड मर्डर वगैरह भी आपने सॉल्व किए हैं, तो ये जब मसले चलते होंगे तो काफी स्ट्रेस भी रहता होगा, क्योंकि पूरी फोर्स मोबिलाइज करनी पड़ती है और आपको इन्फॉर्मर्स भी खबर देते होंगे। तो इस टाइम अपना किस तरह से आप एलएस बना के रखते हैं, किस तरह से डायरेक्शंस देते हैं, कुछ इसके बारे में अंदर की कोई बात बताइए, कैसे करते हैं जब इस तरह का टफ सिचुएशंस होती हैं?
1: जी, मैं इसमें एक लाइन बताना चाहूंगा कि जब मेरी राजसमंद और चित्तौड़ पोस्टिंग थी, क्योंकि उस दौरान हमने करीब 800 किलो से ऊपर अफीम का सीजर इन दोनों जगह की पोस्टिंग्स में किया, जो अपने आप में काफी एक कीर्तिमान सा लगता है। और जब वो अपने ब्लाइंड मर्डर्स की बात की, क्योंकि पुलिस और क्राइम का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि पुलिस है ही इसीलिए कि क्राइम हो, क्राइम जब होता है तो उसको वापस डिटेक्ट करने का, खोलने का पुलिस का काम रहता है। तो ये तो पूरे कैरियर में क्राइम को कंट्रोल करना, और अगर कोई क्राइम हो गया है तो उसको, ब्लाइंड मर्डर हो, लूट हो, डकैती हो, उसको खोलने का तो बहुत सारा अनुभव रहा है। और जहां तक आपने कहा कि स्ट्रेस, डेफिनेटली स्ट्रेस, क्योंकि पुलिस का काम इसी तरीके का है कि 24 घंटे कुछ न कुछ लगातार चलता रहता है, और विशेष तौर पर स्ट्रेस आता था लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम्स के दौरान, जब कभी कोई हिंदू मुस्लिम या और कोई लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम्स होती थी तो उसमें स्ट्रेस आता था। लेकिन अब इस स्ट्रेस को अगर हम घर पे लाएंगे तो स्ट्रेस और बढ़ता था। हम लोगों ने कोशिश की कि हमारे सहयोगियों के साथ में मिलकर उस स्ट्रेस को तत्काल डील करें, जो भी प्रॉब्लम है उसको तत्काल डील करें, कैसे इसको खोलें, जनता के साथ अच्छा संबंध बनाए रखें, और पुलिस कर्मियों में एज ए टीम वर्क, टीम स्पिरिट की तरह काम करें। और घर पे आने के बाद जो आपका मूल प्रश्न है कि स्ट्रेस से कैसे डील करते थे,
0: जी,
1: घर पे आने के बाद में पुलिस संबंधी कोई घर पे चर्चा नहीं। और जिस पे आपने मेरे परिचय में जो बात कही थी कि संगीत, स्पोर्ट्स, इनके माध्यम ये हमें डी स्ट्रेस करने का एक बहुत अच्छा माध्यम।
0: मजा आ गया आपकी बात सुन के। तो इसी संगीत का जो ने जिस तरह से जीवन में आपको डी-स्ट्रेस किया है, इसी को लेके यहाँ हम एक गाना सुन लेते हैं अच्छा सा, और फिर आगे बातचीत जारी रखते हैं।

0: तो वेलकम बैक हमेशा जी। अब आते हैं आप, हम दूसरी तरफ रुख करते हैं। एक सख्त पुलिस अधिकारी के भीतर संगीत का यह कोमल, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? क्या आपको बचपन से गाना गाना पसंद था या संगीत पसंद था, कुछ बताइए। ये बहुत ही दिलचस्प होगा।
1: ये वास्तव में बहुत दिलचस्प आपका प्रश्न है। मैं पूरे लाइफ में कभी कोई गाना नहीं गा पाया। ये एक चीज आपको बताते हुए थोड़ा आपको भी सुनते हुए अजीब लगा होगा, लेकिन ये सत्य है कि मैं कभी गाना नहीं गाता। लेकिन उसके बावजूद बचपन से जो संगीत का शौक लगा, वो शौक लगा हमारे घर पे दादाजी के जमाने का एक रेडियो हुआ करता था, और
0: जी
1: फादर ने, मैं जब छोटा था, बहुत छोटा था, तो एक मुझे टेप रिकॉर्डर ला के दिया था।
0: ओके
1: और स्कूल से जब मैं 5वीं के बाद में, जब चौथी 5वीं में जब पढ़ता था, घर जब आता था, तो उस रेडियो पे, जो मर्फी का एक छोटा रेडियो हुआ करता था उस
0: बिल्कुल
1: जमाने में,
0: बिल्कुल बर्फी का होता
1: तो
0: था।
1: उस पे 12:30 बजे बाद जो संगीत ऑल इंडिया रेडियो पे जो गाने आते थे वो मैं सुनता था। और धीरे धीरे ऐसी आदत बचपन से ही होती चली गई कि मुझे बताते हुए भी अच्छा लगता है कि कभी बुधवार शाम को अमीन सयानी का बिना का गीत माला
0: आय
1: सुन रहे हैं,
0: हाय हाय
1: कभी 7:05 सुबह जो पुराने गाने ऑल इंडिया रेडियो पे आते थे और द सर्विस पे 7:30 से 8 के बीच में वो सुनते थे, रेडियो सलोन सुनते थे मॉर्निंग में, और दिन में ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस पे जो 3:30 बजे बाद वाले जो गाने आते थे वो सुनना। और धीरे धीरे आदत ऐसी पड़ गई कि रात को 12:30 से 1 बजे पुराने गानों का एक प्रोग्राम रेडियो पर आया करता था, उसको सुनते हुए। विविध भारती के कार्यक्रमों का तो खैर कहना ही क्या था, आपने पुरानी दिनों की
0: संगीत सरिता हवा
1: याददाश्त
0: महल सब बिल्कुल। अब ये तो आपने दिल की बात छेड़ दी। हम तो वैसे भी रेडियो के दीवाने हैं, और अभी 13 को सर वर्ल्ड रेडियो डे था, उस दिन भी
1: जी।
0: बहुत कार्यक्रम आए थे, बहुत बहुत। और ये तो आपने जो जो बताया बिल्कुल मजा आ गया। और रेडियो सिलोन, अमीन सयानी, अब मैं कुछ, मेरे पास अमीन सयानी जी के बारे में, मैं भी उनका बहुत शैदाई हूँ, तो आपके साथ शेयर करूंगा मैं कभी। चलिए तो ये
1: स्पेशल तौर पे जब 7:55 हुआ करता था रेडियो सिलोन का लास्ट गाना, जब केएल सहगल साहब का बजना
0: केएल
1: शुरू
0: सहगल साहब का
1: करता
0: आता था, और पहला गाना वो चुप है जमाना आज पहली तारीख है, किशोर
1: बिल्कुल
0: कुमार
1: सर,
0: वाला जो
1: वो
0: गाना,
1: दिन
0: जो
1: अलग
0: फर्स्ट
1: थे,
0: तारीख, फर्स्ट
1: बिल्कुल
0: तारीख होती थी जब हमेशा वो गाना आता था। बिल्कुल सही बात है,
1: जी
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पुराने गाने और अमीन सयानी और शिव कुमार सरोज, गोपाल, ये स्टारवर्स थे सर एनाउंसर उस जमाने के।
1: अमीन सैनी साहब का पूरा जो बिना का गीतमाला का जो रहा है, जो उनका सफर बाद में उन्होंने अलग से पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड भी
0: हाँ
1: कराया था, वो मेरे पास है।
0: हाँ बिल्कुल
1: और कभी
0: बिल्कुल
1: कभी अभी भी सुनता हूँ उनकी आवाज, और मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है, कल परसों मैं अमीन सैनी के बारे में वापस पढ़ रहा था
0: अरे वाह।
1: कहीं
0: मैं अभी उनकी एक बहुत बड़ी आ रही है, मेरे को आज ही मिली है, मैं आपके पास में एक उसका टीजर आया है और एक पूरा प्रोग्राम आ रहा है अमीन से, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये तो बात अपनी और दूसरी शुरू हो गई। चलिए, क्योंकि हम लोग तो दीवाने हैं सर। तो एक तरह से संगीत आपके लिए तनाव मुक्ति का तो माध्यम रहा ही है, और आपने जैसे बताया विविध भारती तो बाद में शुरू हुआ, लेकिन विविध भारती भी हम लोग ये रात को जो मनचाहे गीत तो आया करते थे, छाया गीत प्रोग्राम आया करता था, बहुत ही बढ़िया
1: जी।
0: था। चलिए
1: और इसी के साथ में मैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में मेरा शौक रहा है, तो
0: जी
1: 1971-72 ऑनवर्ड्स, जब मैं 7-8 साल का था, तब से ही क्रिकेट टेस्ट मैचेस की कमेंट्री सुनना, टेनिस मैचेस की कमेंट्री सुनना, हॉकी मैच जो वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस 72 का, जो एमस्टरडम अपन हॉलैंड से फाइनल में 3-2 से हारे थे, उसकी
0: हाँ
1: कमेंट्री मैंने लाइव 7-8 साल की उम्र में सुनी थी।
0: हाय हाय,
1: तो
0: तो
1: वो शौक जो आपने, जो बिल्कुल जसदेव सिंह जी, मुरली
0: जसदेव
1: मनोहर मंजू, सुशील दोषी, सब बाद में सुनते रहे इनको,
0: सिंह जी,
1: तो ये
0: जसदेव
1: सारा
0: सिंह
1: शौक, ये सारा शौक इसीलिए, सारा स्पोर्ट्स का, म्यूजिक का, ये सभी, इसका शौक शुरू करने वाला मेरे लिए रेडियो रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। जसदेव सिंह साहब की अभी 2009 में मेरी उनकी डेथ से पहले मुलाकात
1: जी
0: हुई थी, बहुत
1: जी
0: बढ़िया।
1: जी जी
0: चलिए सर, तो मजा आ गया सारी बातचीत करके, इनफैक्ट डी स्ट्रेस हो गए हम भी। मुझे भी आपने डी स्ट्रेस कर दिया। तो अब आते हैं खमसा साहब 2013 की उस शाम के बारे में कुछ बातचीत करते हैं जब सजन द स्पार्क का विचार जन्मा। उस क्षण को आप कैसे याद करें, कैसे उन लम्हों को याद करते हैं, क्या हुआ था उस दिन, कुछ ये तो बताइए उस शाम को क्या खास बात हुई थी।
1: एक्चुअली उस दौरान मेरी पोस्टिंग उदयपुर में थी और मेरे मन में काफी दिनों से ख्याल था कि कुछ न कुछ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जहां नए आने वाली टैलेंट को एक शोकेस करने का मौका मिले, साथ में जो एस्टेब्लिश्ड अच्छे बड़े सिंगर्स हैं उनको भी रूबरू कराने का जनता के साथ ऐसा कोई अवसर मिले। जब ही हमने शुरू किया तो मेरे 5-7 दोस्तों को घर पे बुलाया था, उनके साथ में सारी चर्चा शुरू की गई और चर्चा शुरू करते ही सबने इस पे पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया और देखते ही देखते पहले प्रोग्राम जब हमने शुरू किया तो हमारे साथ में 38-40 जने, फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने किया था वो हमारे एक मित्र के गार्डन में किया था, 40 जने जोड़े। तो उसके बाद से फिर लगातार ये अपने आप में क्योंकि इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट चलता चला गया, देखते ही देखते पूरे शुरुआत उदयपुर से हुई, फिर राजस्थान में 6 चैप्टर हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, झुंझुनू, भीलवाड़ा, इसी तरीके से इंडिया में 6 बड़े शहरों में और अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली वगैरह चैप्टर से इसके लॉन्च हुए। और देखते देखते मुझे खुद को पता नहीं ये कैसे अपने आप में बढ़ता चला गया सब मित्रों के सहयोग से।
0: नहीं बहुत खूबसूरत, तो आपको क्या अंदाजा लगा था उस टाइम के एक अंतरराष्ट्रीय मंच बन जाएगा आपकी एक छोटी सी जो गार्डन में आपने एक शुरुआत की थी, महफिल टाइप लगाई होगी उस टाइम, तो आपने अभी इतना बड़ा इंटरनेशनल फोरम बन जाएगा, कुछ अंदाजा था उस टाइम?
1: टू बी फ्रैंक एनफ उस वक्त ऐसा कोई अंदाजा नहीं था, शुरुआत में इतना ही था कि ये उदयपुर में है और हमारे मित्रों के साथ सहयोग से कुछ सुनेंगे करेंगे, लेकिन हमारे एक अजीज मित्र जो उन दिनों हिंदुस्तान जिंक में कर रहे थे एज ए सीईओ, तो उन्होंने इसको और सपोर्ट देने के लिए फैसला किया और सपोर्ट से फिर जब एक दो बार बड़े कार्यक्रम हुए तो लोगों का जुड़ाव भी इसके साथ बढ़ता चला गया और फिर देखते ही देखते सभी जगह हमारे जो दोस्त लोग हैं उनके सहयोग से आज एक संगीत की दुनिया में एक बड़ा नाम अपने आप में ये ऑर्गेनाइजेशन कर चुका है।
0: नहीं सर, इसके लिए आपको सलाम है, क्योंकि देखिए क्या है कि मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि किसी भी चीज को शुरुआत करना तो फिर भी शुरुआत हो जाती है, लेकिन इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन करना, बनाए रखना उसको और आगे बढ़ाता रहना, ये बहुत मुश्किल होता है और जिस तरह का हमारा माहौल है उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो वो जो सस्टेन आपने किया है इसको और बढ़ाया है तो ये बहुत बहुत ही अद्भुत है, मैं तो यही कहूंगा।
1: तो सर इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो हमारे मित्रों का और उन साथियों का जो इसके साथ जुड़ते चले गए, और इसके पीछे एक प्रिंसिपल इसमें हमेशा काम किया डिसेंट्रलाइजेशन का।
0: जी जी,
1: हमने जहां जहां भी ये चैप्टर्स बने वहां सेपरेट ट्रस्ट आज जो सब जगह बहुत अपने आप में अच्छा कार्य कर रहा है, उसके पीछे कारण ये है कि सब जगह सेपरेट ट्रस्ट बने जो उनके ऑफिस बिल्डर्स होते हैं वो उस ट्रस्ट के और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो अपने आप में पूर्णतया सक्षम है, अपने सारे फैसले वही लेते हैं, वही अपना सारा डिसीजन लेते हैं, और क्योंकि बड़ा डेमोक्रेटिक वे में ऑर्गेनाइजेशन वो लोग भी अपने लेवल पे काफी उस तरीके से चलाते हैं, तो इसमें लोगों को जुड़ने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई और सारे अच्छे लोग इसके साथ जुड़ते चले गए, और चूंकि भावना सही है, किसी का इसके पीछे कोई गलत इंटेंशन नहीं है, तो जो अच्छे लोग जब एक साथ चलते हैं तो फिर और काफी लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं और यही इसकी ताकत है।
0: हाँ वो बात तो बिल्कुल आपकी सही है, बजा फरमाया आपने, क्योंकि डिसेंट्रलाइज करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन आपने सही लोगों को जोड़ा और सही लोग इसलिए जुड़े कि आप सही थे, तो ये दोनों बातें एक दूसरे पे बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है, आपने अच्छे लोगों को जोड़ा और वो भी इसलिए जुड़े कि आप जो शुरू का सेंट्रल फिगर है वो सही होता है, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए इसी सही और खूबसूरत बात पे कि एक छोटी सी चीज की शुरुआत होती है और आगे बढ़ जाती है, हम एक कोई अच्छा सा गाना सुन लेते हैं और फिर आगे इस सफर की शुरुआत करते हैं।

0: हाँ हमेश साहब, आज 12 भारत में आपके चैप्टर्स हैं, यूएसए, यूके, कनाडा में विस्तार है, तो वही जैसा आपने अभी थोड़ा सा जिक्र कर ही दिया था कि प्रबंधन का मॉडल क्या है, कुछ और बताना चाहेंगे इसके बारे में?
1: इसका विशेष रूप से जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो फैला हुआ है, ये कोविड पीरियड में ऑनलाइन प्रोग्राम्स जब शुरू किए तो बताते हुए अच्छा लगता है कि कोविड में ऑनलाइन प्रोग्राम्स, क्योंकि बाद में तो काफी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हुए, लेकिन शुरुआती ऑर्गेनाइजेशन सर्जन द स्पार्क हुआ करता था उस वक्त। उदयपुर और जयपुर हमारे दो चैप्टर वर्क कर रहे थे, जोधपुर भी था। उसके बाद में जब ऑनलाइन शुरू हुए, पूरे वर्ल्ड से हमारे साथ में श्रोता जुड़ने शुरू हुए उस प्रोग्राम्स में, तो धीरे धीरे आपस के संपर्क से, दोस्तों के संपर्क से अलग अलग जगह चैप्टर्स लॉन्च हुए। और बताते हुए अच्छा लगता है कि 400 से ज्यादा ऑनलाइन प्रोग्राम उस वक्त कोविड पीरियड में किए गए थे। कुल मिला के आज तक 400 से ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, ऑनलाइन प्रोग्राम, लेकिन 200-250 से ऊपर, 250-300 से ऊपर प्रोग्राम ऑफलाइन यानी स्टेज प्रोग्राम अलग अलग शहरों में जहां हमारे सर्जन चैप्टर्स हैं वहां किए गए हैं। और इसके माध्यम से संगीत की सेवा करने का, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काफी प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी एक, जैसा अपन ने बात की है, डिस्ट्रेस करने का एक बहुत बढ़िया मौका, और समाज के साथ जुड़ने के लिए उनको एक मौका मिला है।
0: ये तो आपने बता दिया, मेरे जहन में अभी दो सवाल आए हैं, तो आप तक कफ है। एक तो मुझे ये बताइए कि सृजन द स्पार्क, जो आपने नाम दिया है इस मूवमेंट को या सांस्कृतिक आंदोलन को, ये नाम कैसे आया, पहला तो ये, और क्या आपके लिए कुछ लोग टेक्निकली भी आपसे जुड़े हुए, क्योंकि ये एमपी फेसबुक के प्रोग्राम्स, ये जो लाइव करना ऑनलाइन, ये भी काफी टेक्निकल सा काम है, तो कुछ इन दोनों चीजों के बारे में बताइए।
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। वास्तव में जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम रख रहे थे जी, तो शुरू में सृजन, क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी रही, सृजन कैसे नाम आया और द स्पार्क कैसे जुड़ा।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: 1998 में मुझे आज भी याद है, 1998 में तलत महमूद साहब की डेथ हुई थी।
0: आए हाय हाय हाय।
1: तो उनकी याद में हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखना चाहा था, और राजसमंद झील के अंदर हमने वो प्रोग्राम बहुत बड़े लेवल पे कुछ मित्रों के साथ आयोजित करवाया था जी। तब इसका नाम हमने सृजन 98 दिया था, तो वही नाम हमेशा से जहन में रहा, और जहां जहां भी हम रहे, कभी सृजन द स्पार्क की तब फॉर्मली कोई ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था, लेकिन जहां कोई भी संगीत का कार्यक्रम होते थे तो हम सृजन का नाम उसमें लिखते थे। ये मेरे दिमाग में शुरू से रहा। अब जब 2013 में जब हम लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया, तो शुरू में सृजन की बात आई, हमने कही केवल इस नाम से तो और भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे और कार्यक्रम होते ही रहे हैं सृजन, क्योंकि अपने आप में काफी, हमने कहा इसमें कुछ ना कुछ ऐसा एडजेक्टिव जोड़ा जाए, तो क्योंकि हम नए आर्टिस्ट को बढ़ावा देने का इसके पीछे मेन मकसद था, जो उनको मंच देने के लिए एक ऐसी स्पार्क ढूंढने का हमारे मन में ख्याल, इसलिए द स्पार्क इसमें जोड़ा गया।
0: नहीं नहीं, ये आपने क्लेरिफाई कर दिया, स्पार्क मतलब नई टैलेंट्स के हिसाब से, जिसमें स्पार्क हो, और सृजन तो क्रिएटिविटी है ही। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और तलत महमूद साहब की याद करके आपने बहुत मजा कर दिया कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो
1: मुझे विशेष तौर पे रविवार के दिन शाम को 4 बजे बाद बैठ के तलत महमूद को जो सुनने का रेडियो को मजा आता था, टेप रिकॉर्ड पे वो अलग ही था।
0: बस सर, मैं तो उस जमाने में जब वो रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करते थे, तो इनके एलपी आया करते थे तलत महमूद साहब के, मधुशाला के, और वो सारे, वो मुझे आज भी याद है कि वो दिन क्या क्या दिन हुआ करते थे।
1: सर इसी बात पे मुझे मैं पहले बताना भूल गया, हमारे घर पे उस वक्त का जिसको चूड़ी वाला बाजा कहते थे, पुराने जमाने का रिकॉर्ड प्लेयर हाथ से चलाने वाला, वो हुआ करता था, और मेरे पास 1930s की रिकॉर्ड्स, उस वक्त की जो एक साइड में एक ही सॉन्ग उसमें होता है, तो वो रिकॉर्ड्स भी, और आज भी उस पर कभी कभी सुनते हैं तो कुछ अलग ही अनुभूति होती है।
0: आए, आए, आए। 78 RPM के जो रिकॉर्ड हुआ करते थे, बिल्कुल बिल्कुल. फिर बाद में EP आए, फिर LP आए, लेकिन 78 RPM में वो चाबी लगा के, और फिर कभी जब उसकी चाबी खत्म हो जाती थी तो बड़ा वैसा गाना बजता था.
1: पिन मिलना बड़ा मुश्किल,
0: पिन मिलना उसको उल्टा करके टेढ़ा करके उसमें पिन लगाया करते थे. अरे साहब क्या क्या किस, बड़ा नॉस्टैल्जिक है ये सारी बातें करना. तो वो चीज ही नहीं रही. क्या रिकॉर्ड पेयर ही खत्म हो गए. फिएस्टा का एक HMV का आता था वो मेरे पास,
1: बिल्कुल खत्म. इवन अब तो CD भी खत्म हो गई, कैसेट्स खत्म हो गए, CD खत्म हो गए, दौर ही अलग आ गया.
0: अब ये जो आप ग्लोबल म्यूजिक इंस्टीट्यूशन बनाना चाह रहे हैं, ये क्या विजन है, कुछ बताएंगे इसके बारे में?
1: ये हमारे उदयपुर ऑर्गेनाइजेशन के जो साथी हैं उन सब लोगों का एक ख्याल था कि अपन जब संगीत के लिए काम करना चाहते हैं तो एक अपनी खुद की एकेडमी हो. तो इसके लिए उन्होंने अपनी सेविंग से, क्योंकि सजन का कोई भी कार्यक्रम कभी भी कोई टिकटेड या डोनेशन कार्ड पे नहीं होता, सब मेंबर्स अपने खुद का कंट्रीब्यूट करके या कोई स्पॉन्सर कोई हो जाता है तो उसी के थ्रू करते हैं.
0: okay, okay.
1: तो उसके थ्रू आपस में इकट्ठा करके अपने सेविंग्स के थ्रू एक एकेडमी बनाने का फैसला किया, और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने एक जमीन ली है. और बताते हुए लगता है कि हमने शायद 6 अप्रैल को इसी वर्ष 2025 में अकेडमी के कंस्ट्रक्शन का काम भी हमारी उदयपुर टीम ने शुरू किया है, और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले 2 सालों में सभी साथियों के सहयोग से और कोई अच्छे, अगर कोई बड़े इंडस्ट्रीज जुड़ेंगे तो इसको जल्दी इस बिल्डिंग को पूरा करने का काम किया जाएगा. इस जगह हम लोग चाहते हैं कि हमारी फोक आर्ट्स को, हमारी लोक कलाओं को, हमारे अच्छे संगीत को आगे बढ़ाने के लिए ये अकेडमी एक अच्छी तरीके से काम करे, बाहर के अच्छे एक्सपर्ट्स को बुला के बच्चों को ट्रेन करें, और जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनका परिचय भी उस एकेडमी के माध्यम से उभरते हुए आर्टिस्ट को कराए.
0: जी बहुत खूबसूरत साहब, और ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आपका कोई प्रोग्राम में टिकटिंग नहीं होती है और सब लोग आप ही रिसोर्सेज मोबिलाइज करके और प्रोग्राम करते हैं, और फिर आपको, आपने उसको मूर्त रूप भी दे दिया है जो आपका विजन है. इनफैक्ट वो जमीन पर उतर गया है होगा और 1-2 साल के अंदर वो पूरा मतलब फाइनल शेप में आ जाएगा. बहुत खूबसूरत है. तो इसी जो संगीत की आप सेवा कर रहे हैं इसी के नाम पे रुक के एक हम गाना सुन लेते हैं और फिर आगे चलते हैं.

0: वेलकम बैक हमेशा साहब। जश्न परवाज जैसे बड़े आयोजनों की रूपरेखा कैसे तैयार करते हैं? आपके पास कुछ एक्सपर्ट हैं, किस तरह से ये शुरुआत करते हैं? क्योंकि जश्न परवाज ही बहुत शब्द ही अपने आप में अनूठा है।
1: जब 2014 में हमने पहली बार, जैसे मैंने आपको बताया था, हिंदुस्तान जिंक के एक सीनियर अफसर हमारे साथ जुड़े थे।
0: जी
1: उन्होंने जब कहा कि नहीं, इसको एक बड़े लेवल पे एक प्रोग्राम आयोजित किया जाए उदयपुर में, तब जैसा स्वजन द स्पार्क नाम कैसे हुआ, उसी तरीके से जश्न परवाज नाम भी हमारे एक मित्र हैं उदयपुर में, जो हमारे शुरू से इस संस्थान के एक पिलर की तरह काम कर रहे हैं, अब्बास अली बंदूकवाला जी, उन्होंने कहा कि इसका नाम, क्योंकि अपन एक जश्न शुरू कर रहे हैं तो इसका परवाज
0: परवाज
1: जो एक उड़ान है उसी हिसाब से इसको
0: उड़ान
1: रखा जाए, तो जश्न परवाज नाम रखा गया। और पहले प्रोग्राम को हमने एक मुशायरे के तौर पर आयोजित किया था,
0: ओहो वंडरफुल।
1: पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों प्रोग्राम शुरुआती मुशायरे, जिसमें तमाम देश के जो बड़े शायर हैं, जिनको आप सोच सकते हैं, सभी शायर, चाहे निदा फाजली साहब हो, चाहे वसीम बरेलवी हो, चाहे
0: राहत इंदौरी
1: शकील लाजमी
0: हो,
1: हो, चाहे राहत इंदौरी साहब हो, चाहे अनवर जलालपुरी हो, या शिनकाफ निजाम हो जोधपुर वाले, और मतलब सारे एक से एक, हसन कमल साहब हैं, सारे शायर हमारे यहाँ उन मुशायरे में आए, और उस इसीलिए पहला नाम जश्न परवाज के नाम से ही हमने इसको हमेशा के लिए एस्टेब्लिश किया। बाद में इस कार्यक्रम में पंकज उदास, सुरेश वाडकर वगैरह सभी, सुदेश भोंसले साहब, कविता सेठ, सभी ये उदयपुर में, और नई प्रतिभा के तौर पे जो प्रतिभा सिंह बघेल, आज पूरे इंडिया में उसका वर्ल्ड वाइड नाम है।
0: अच्छा, प्रतिभा सिंह बघेला, इनका मैंने भी सुना है कहीं।
1: ऐसे और नितिन मुकेश जी, इन सबके प्रोग्राम उदयपुर, जयपुर में भी राजकुमार रिजवी साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, उषा उत्तुप जी, अभी जस्ट रिसेंटली कविता कृष्णमूर्ति जी का, इन सभी के प्रोग्राम, और अलग अलग चैप्टर्स ने अपने अपने बड़े प्रोग्राम इस तरीके से आयोजित किए हैं, जिसमें देश के ख्यातनाम सिंगर्स आर्टिस्ट आए हैं। साथ में हमने एक इसमें एक और विशेष बात रखी है कि संगीत के क्षेत्र में या आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में जो विशेष जिनका योगदान रहा है, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी सजेंद्र स्पार्क के द्वारा हर चैप्टर में दिया जाता है, और आज तक करीबन 22 से ज्यादा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अलग अलग चैप्टर्स के द्वारा दिए जा चुके हैं, और उसमें देश के तमाम ख्यातनाम संगीतकार, गीतकार और गायक उसमें सम्मानित हूँ। मतलब मेरा तो ये मानना है कि वो हमें सम्मानित करने के लिए आए, हम तो उन्हें क्या सम्मानित करेंगे,
0: जी, बिल्कुल।
1: वे लोग सभी आए हैं।
0: इनफैक्ट आपने मेरा अगला जो सवाल था उसका भी जवाब दे दिया कि जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होते हैं, आपने उन बड़े बड़े लोगों को जोड़ा है। तो अब मुझे एक सिर्फ ये बताइए, जैसे अनूप जलोटा साहब है, रूप कुमार राठौड़ है,

0: ऐसा इंसिडेंट हो, कोई एनेक्डोट हो, अगर आप हमें हमारे साथ कोई शेयर करना चाहें तो प्लीज, स्वागत है।
1: यादें अनेक हैं। मैं एकदम लेटेस्ट अभी जब हमने डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, जिनको इसी वर्ष पद्म विभूषण भी केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था, कविता जी के प्रोग्राम में जब उनको इनवाइट किया था हमने, और हमें यकीन नहीं था कि हमारे इनविटेशन पे वो, बेसिकली वो कविता जी के हस्बैंड भी हैं, तो नॉर्वे वगैरह गए हुए थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप भी पधारिए और हम आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करना चाहते हैं। सो ही वाज सो ग्रेसफुल, बहुत इजीली उन्होंने हाँ कर दिया। लेकिन चूंकि हम कोई भी आर्टिस्ट जो जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हम देते हैं, कभी हम उनसे ये रिक्वेस्ट नहीं करते हैं कि आप कहीं सोलो, आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो भी है बीच प्रोग्राम के दौरान कुछ अपना एक जस्ट ऑडियंस के लिए थोड़ा सा अपना प्रस्तुति
0: प्रस्तुति।
1: डॉक्टर एल सुब्रमण्यम साहब जो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, ही वाज सो सिंपल, और जितने आज तक हमारे आर्टिस्ट आए उन सब ने कुछ न कुछ ऐसा किया। बट मैं इसमें ये था कि डॉक्टर एल सुब्रमण्यम कहीं करें ना करें, क्योंकि कविता जी का प्रोग्राम है उस बीच में, लेकिन वो स्टूल लगा के बाहर साइड में बैठ गए चेयर पे जब कविता जी का प्रोग्राम चल रहा था, और मुझे बुला के उन्होंने कहा कि बिल्कुल चिंता ना कीजिए, मैं करूंगा। और हम ये सोच रहे थे 5 मिनट का वो परफॉर्म करेंगे, लेकिन उन्होंने करीबन आधे घंटे का परफॉर्मेंस दिया और पब्लिक को बड़ा जबरदस्त उसका आनंद मिला। तो ऐसे उषा मंगेशकर जी ने जब उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, तो उसपे जैसा हमें बताया गया कि लता जी ने उस वक्त तुरंत ही अवार्ड लेती, जैसे उषा जी ने अवार्ड ग्रहण किया था उन्होंने स्वयं ट्वीट किया था। और ये बात सत्य है कि उनको लता जी ने ही कहा था कि अब अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, आप जाइए, और पहले वो उषा जी थोड़ा हिचक रही थी, वो लता जी के कहने पर वो आई थी। कुछ यादें बड़ी अच्छी अच्छी यादें हैं। कल्याण जी आनंद जी भाई के जब आनंद जी भाई आए थे, He was such a jam person कि रात को प्रोग्राम के बाद में 12 से लेकर 3 बजे तक हम होटल में जहाँ रुके थे, उनके साथ जो चर्चाएं हुई, वो चर्चा का अपने आप में एक अलग ही आनंद था।
0: वो तो शायद हंसी मजाक भी काफी करते हैं
1: बहुत ज्यादा। मैं वही
0: मैंने सुना है,
1: जबकि उस वक्त होटल में खाना बंद हो चुका था, तो वापस से नया खाना बनवाया था, तो उसके लिए जो 2-3 घंटे टाइम लगा बीच में, तो उन्होंने बड़ा एंजॉय किया उस समय को, और हम लोगों को भी लगा कि अच्छा ही हुआ कि खाना नहीं बना।
0: सही बात है। तो अब मैं थोड़ा सा एक सवाल पूछ रहा हूँ, आई डोंट नो सही है, जैसे आप लोग कलाकारों का सम्मान करते हैं, तो ये लोकप्रियता से जुड़ा है या योगदान से जुड़ा है, मतलब जो संगीत के प्रति योगदान है उससे जुड़ा है, किस तरह, क्या पैरामीटर डिसाइड करते हैं, किस तरह से करते हैं?
1: सर इसमें दोनों ही है, लोकप्रियता तो है ही, लेकिन इसके साथ में चूंकि हम लोग जो ये अवार्ड करते हैं, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे भी लोग का हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है जिनका कंट्रीब्यूशन भारतीय संगीत, भारतीय कला संस्कृति को बहुत ज्यादा, लेकिन आम तौर पे लोग उनको नहीं जानते आज।
0: जी जी,
1: जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि महान गीतकार योगेश जी, आज आप आम जनता से पूछेंगे तो वो नहीं जानेंगे, लेकिन योगेश जी को हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किया। पियानो के बहुत बड़े प्लेयर ब्रायन सिलास को हमने किया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, उनको बुला के उनको हमारा ऑर्गेनाइजेशन उनसे सम्मानित हुआ। इसी तरीके से जैसे पर्दे के पीछे रहते हैं गीतकार हैं, समीर अंजान हैं, बहुत बड़े गीतकार हैं, हजारों गाने उन्होंने लिखे हैं, लेकिन आम जनता नहीं जानती, वो गाने वाले के बारे में जानती है। वो ऐसे लोग को भी हम लोग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज तक करीबन 50 से ऊपर ऐसी विभूतियां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के अलावा, हम लोग हमारे देश की जो 6 महान आर्ट एंड कल्चर की विभूतियां रही हैं, चाहे वो नंदलाल बोस साहब हो, ओंकारनाथ ठाकुर साहब हो, टीवी पलुस्कर साहब हो, इन सब के नाम से, अमीर खुसरो साहब के नाम से हम लोग 6 अवार्ड और हर साल देते हैं। तो उसमें देश की करीबन 50 से ऊपर ऐसी विभूतियां जो पर्दे के पीछे है, वो सामने कहीं नहीं है, वो पत्रकार भी हो सकते हैं जो सिनेमा पे लिखते हैं या संगीत पे लिखते हैं,
0: पेंटर भी हो सकते हैं,
1: और कोई डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई टीवी एक्टर भी हो सकता है, ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहके जिन्होंने संगीत और आर्ट की, जैसे हमने अपने राजकुमार केशवानी जी के बारे में जो बात करना,
0: अरे राजकुमार केशवानी जी की याद आ गई, मैं भी फैन हूँ, तो डेथ हो गई उनकी।
1: हाँ उनकी डेथ हो गई, वो हमारे साथ बहुत गहरे जुड़े हुए थे और
0: अच्छा,
1: ऐसे लोग को हमने सम्मानित करने का, पंकज ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सम्मानित किया है जो पीछे से संगीत की और आर्ट कल्चर की बहुत सेवा करते हैं।
0: राजकुमार केशवानी के बारे में तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनका, फैन भास्कर के अंदर उनका एक कॉलम आया
1: रसरंग आया करता
0: था, रसरंग बिल्कुल,
1: जब भी पंकज दुबे लिख रहे हैं अभी आजकल
0: बिल्कुल। हाँ हाँ, तो वो राजकुमार केशवानी जब तक थे तो मैं काफी रेगुलरली पढ़ता था उस कॉलम को, शायद संडे वनडे को आता था मेरे घर।
1: जी संडे को आता था, और आपको बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी हर महीने उनसे लंबी टेलीफोन पे बात, जब तक वो जीवित रहे हुआ करती थी हमेशा।
0: अरे वाह वाह वाह वाह,
1: हम बहुत संगीत पे चर्चा करते थे
0: और पुराने किस्से सुनाते थे, और उर्दू भी बहुत अच्छी थी उनकी, और मैं थोड़ा उर्दू का शैदा ही हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था उनकी बात सुनते, पुराने पुराने किस्से लाते थे, अरे मजा आ गया था। अब खमेसरा साहब बकौल अमीन सयानी करीब करीब पायदान पर ही आ गए हैं, आपका जिस तरह का लीडरशिप स्टाइल है, आप पर्दे के पीछे रहकर काम करना ज्यादा है ऐसा लोग कहते हैं, क्या नेतृत्व शैली का हिस्सा है, बताइए इसके बारे में।
1: जैसा मैंने पहले भी अपनी बातचीत में आपको बताया था कि थोड़ा मेरा डेमोक्रेटिक रूप से अपना रुझान रहता है हर मामले में, पुलिस की नौकरी में भी शुरू से लेकर आखिर तक मैंने अपने नीचे मातहत जो भी कर्मचारी रहे उनको कभी मातहत नहीं माना, मैंने साथ का कार्य करने वाला उनको माना है, एक ही एम की उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उनको अपने टीम का सदस्य माना है। तो सब जब मिलके काम करते हैं, आपसी राय से करते हैं, हो सकता है कि फाइनल डिसीजन हमेशा हमने लिया हो, जैसे मान लीजिए मैं सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हूँ या आईजी हूँ उस जिले का या उस रेंज का, अगर मेरे पास पूरी जिम्मेवारी है तो डेफिनेटली सारा फाइनल कॉल मेरा रहेगा, फाइनल डिसीजन मेरा रहेगा। लेकिन अगर हम पांच व्यक्तियों से बात करके और उस डिसीजन की तरफ आगे अग्रसर होते हैं तो वो हमेशा बेहतर होता है। ये कार्यप्रणाली शुरू से रही और मुझे इसमें कहते हुए संकोच नहीं है कि मेरे सभी साथियों का, मुझे पुलिस में चाहे वो कांस्टेबल हो या चाहे अधिकारी हो, सबका बहुत सहयोग मिला, और उसी सहयोग से और टीम स्पिरिट से काम करने की वजह से पुलिस की जो लंबी 35 साल की यात्रा रही वो संपन्न हुई थी। और वही कार्यप्रणाली चाहे कहीं भी रहे, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो चाहे खेल के क्षेत्र में, वही कार्यप्रणाली हमेशा मेंटेन रखी गई।
0: बहुत खूबसूरत साहब, क्या क्या बढ़िया बात बताई है आपने। और पुलिस सेवा और सांस्कृतिक सेवा, ये दोनों ही सेवाएं आप कर रहे हैं, दोनों के एक ही रूप है, एक ही ध्येय, और आपने करीब करीब बता ही दिया कि किस तरह से कर रहे हैं। अच्छा मैं खमिश्रा साहब, अब चूंकि हम इतनी आराम से बातें कर रहे हैं, आपने शुरुआत में कहा था, आई डोंट नो मुझे ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं, कि आप गाना नहीं गाते, ठीक है, लेकिन माशाल्लाह आपकी जो आवाज आ रही है ऑनलाइन मेरे को बहुत बहुत खूबसूरत है और बहुत बढ़िया आवाज आ रही है, तो अगर कुछ गुनगुना ना चाहें तो गुनगुना दीजिए, कोई पंक्तियां सुनाना चाहें तो पंक्तियां सुना दीजिए, कोई शेर व शायरी सुनाना चाहें तो वो सुना दीजिए, कुछ कर सकते हैं हमारे लिए।
1: हमारे अजीज और जो हमारे सदन के पैटर्न भी हैं उस्ताद अहमद हुसैन साहब, मोहम्मद हुसैन साहब
0: जी,
1: उनकी गजल की लाइन है जो मैं ऐसे ही आपको बोल के सुना सकता हूँ कि जर्रों से राह गुजर कर चमक अपनी छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। और जहाँ गुनगुनाने की आप बात कहेंगे तो मुझे बचपन से केवल एक गाना, मैं कभी कभी एक आध लाइन उसकी गुनगुना देता हूँ कि जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, ये हमारा बड़ा फेवरेट गाना रहा है। और बड़ी इसमें कल्याण जी आनंद जी साहब की दम रही है, और आनंद जी साहब से जो इस वजह पर जब चर्चा हुई तो अलग ही बात थी।
0: शायद सफर फिल्म का गाना है जहां तक मुझे याद
1: जी
0: है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, किशोर साहब को इसमें फिल्म अवार्ड मिला, किशोर कुमार जी को इसमें,
0: राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और फिरोज खान की पिक्चर थी, बड़ी प्यारी पिक्चर थी, और जीवन से हरी ते मजबूर करें जीने के लिए, एक ये दो गाने बहुत ही मकबूल थे इस पिक्चर के।
1: ये मैं जब 7-8 साल का था तब, 8-9 साल का तब मैंने गाना पहली बार सुना था, और तब से एक फेवरेट गाना ये और एक मन्ना डे साहब का जिंदगी कैसी है पहेलिया है, कोई सुना नहीं कोई जाना नहीं,
0: बहुत ही बढ़िया आनंद का।
1: उसके गीतकार साहब योगेश जी को जब हमने बुलाया तो इसी बैठ के जो उन्होंने सारी चीजें बताई वो जिंदगी के अमूल्य यादों में से हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया साहब आपके साथ सारा कुछ, जितनी बातें हुई इतनी नॉस्टैल्जिक हैं कि मैं क्या कहूं, कि इंटरव्यू तो बहुत होते हैं लेकिन आपके साथ बात करके मजा आ गया। तो अब लास्ट में कुछ युवा पीढ़ी को आप कोई मैसेज देना चाहें, कोई संदेश देना चाहें, खासकर शास्त्रीय संगीत गजल और कला के संदर्भ में, तो आपका स्वागत है।
1: युवा पीढ़ी को मेरा एक संदेश हमेशा रहेगा कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप चाहे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बाद में आप किसी नौकरी में आएंगे या बिजनेस करेंगे, वो आपका प्रोफेशनल लाइफ का अलग हिस्सा है, लेकिन साथ में आपको अपना इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए या रखने के लिए उसके लिए आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिफरेंट फील्ड्स में अपनी रुचि को बनाए रखेंगे, आप इंजीनियर की नौकरी कर रहे हैं, आप प्रोफेसर हैं, ठीक है आपके सब्जेक्ट में आप अच्छा करें, बहुत अच्छा करना चाहिए, आप बिजनेसमैन हैं, करिए, लेकिन साथ के साथ अपने चारों तरफ जीवन में जो अलग विधाएं हैं, चाहे वो आप संगीत का हो, चाहे कोई पेंटिंग का हो, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे किसी अन्य स्पोर्ट्स का हो, चाहे पॉलिटिक्स का हो, किसी का भी हो, आप अपनी रुचि अन्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं, ये नहीं कहता कि आप 5 तरीके की रुचि पैदा करें, लेकिन 1-2-3 जो भी आप कर सकते हैं आप मेंटेन रखें। उसकी वजह से क्या होगा कि आपके संपर्क बहुत अच्छे बनेंगे, आप जिस प्रोफेशन में उस प्रोफेशन का कार्य भी आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। मैं अपना खुद का एग्जांपल बताता हूं कि जिस फील्ड में मैं रहा पुलिस में, क्योंकि अगर मैं इन डिफरेंट चैनल के माध्यम से ज्यादा लोगों से नहीं जुड़ पाता तो जिंदगी में पुलिस और वही एक सर्कल रह जाता। समाज के जो आगे रहने वाला तबका जो रहता है हर फील्ड का अलग अलग, वो आपके संपर्क में रहता है, तो कानून व्यवस्था में भी आपको बहुत मदद करता था, तो आपके प्रोफेशन में भी ये मदद करेगा। और आप एक डिफरेंट, आप चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, आप एक डिफरेंट किस्म के डॉक्टर, डिफरेंट किस्म के इंजीनियर, डिफरेंट किस्म के प्रोफेसर कहलाएंगे, वो आपकी छवि को एक अलग निखार देगा, तो ये मैं अवश्य कहना चाहूंगा।
0: बहुत बढ़िया सर, बहुत ही वजनदार बात है और बहुत ही अहम बात है। तो दोस्तों आज की बातचीत ने साबित कर दिया कि जीवन केवल एक पेशे का नाम नहीं होता, वह एक दृष्टि का नाम होता है। एक और वर्दी में अनुशासन, दूसरी ओर सुरों में संवेदना, एक और अपराध नियंत्रण की कठोरता, दूसरी ओर कला संरक्षण की कोमलता। प्रसन्ना खमेसरा जी ने दिखाया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो समाज को सुरक्षा भी दे और संस्कृति को भी संबल दे। सृजन द स्पार्क सिर्फ एक संस्था नहीं, एक सांस्कृतिक आंदोलन है जहां कलाकारों को सम्मान मिलता है, युवा प्रतिभाओं को मंच मिलता है और भारतीय संगीत को वैश्विक पहचान। खमेसरा जी, आपने अपने कर्म से सेवा की, अपने स्वप्न से सृजन किया, इसके लिए हम दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपका आज हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: आलोक जी, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसलिए भी कि आज आपने ऐसी ऐसी चर्चा हमारे साथ छेड़ी की, बचपन की बात की, सारी नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स अभी भी मन में रह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बातचीत आपके द्वारा मेरे साथ की गई।
0: तो दोस्तों अगर इस बातचीत ने आपके भीतर भी कला के प्रति सम्मान जगाया हो तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि संस्कृति तभी जीवित रहती है जब समाज उसे जीवित रखता है। मैं हूं आलोक कुमार, आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ, तब तक संगीत सुनते रहिए, संवेदनशील बने रहिए। नमस्कार।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज।
1: जब सिनेमा ने बोलना सीखा, और जानते हैं भारत में मूक और बोलती फिल्मों का रोचक इतिहास।
2: वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, शत प्रतिशत बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। March 14, 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी।
3: पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी।
4: शोबोट।
3: और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था,
5: हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सबकी शुरुआत होनी थी।
3: अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया।
6: खुदा के नाम पे प्यार।
3: इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है।
6: अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है घर लेने की, ले दे खुदा के नाम पे प्यारे, ताकत है घर देने।
2: आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी।
7: You see, as I told you, they are free.
8: Alma, you're safe.
7: Never fear, my little one. We were more than a match for those cutthroats.
2: फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे।

0: बदतमीज, पुस्ता, जबान दराज,
1: इन तीनों में से मेरा कोई भी नाम नहीं, मुझे तो सिर्फ दिलावर कहते हैं।
2: उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थीं। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने।
3: यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी।
1: हाँ, देवी जन्म से अछूत लेकिन कर्म से देवी,
3: ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था,
4: मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है।
2: जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी।
0: मैंने जिस मंत्र की साधना की, उसे ध्यान से

0: इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ, एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों से बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थीं। अर्देशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था।
1: अभी तक की जानकारी के अनुसार आलम आरा फिल्म की कोई भी प्रति मौजूद नहीं है। इस फिल्म का पुनर्निर्माण 1956 और 1973 में नानू भाई वकील के निर्देशन में किया गया। इस फिल्म के प्रचार में प्रयोग की गई ये टैगलाइन आज के दौर में भी कितनी सटीक और सार्थक है। All living, breathing, 100% talking।
2: जब सिनेमा ने बोलना सीखा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज,
1: बांगुई।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आप सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई। नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए है ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है, इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजदूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं, अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई मैं भी चलता हूँ।
0: इस तरह शहर से आए लोग जंगल से बेरोक टोक लकड़ी काटते रहे और मुखिया बांगुई को माला माल करते रहे। मुखिया को गांव से, गांव के लोगों से, खेतीबाड़ी से कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। उसे तो सिर्फ अपने शानदार तिमंजिले मकान के बनकर पूरा होने में दिलचस्पी थी। उधर गांव के लोगों के पास खाने को नहीं था। और इधर मुखिया अपने ऊंचे मकान में बैठा बांसुरी बजा रहा था। तभी आ गया बरसात का मौसम।
3: ए, ए, ए,
2: एक कहां बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
3: जानते हैं भाई जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
2: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
3: अरे वाह ये भी कोई
2: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
3: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
2: अच्छा भाई बोलो क्या बात है, बोलो।
3: मैं बोलूं? अच्छा अच्छा, देखो भैया तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
2: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
4: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है, अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
2: अच्छा और मुखिया जी क्या फाके करे? मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। बढ़िया अनाज
0: गांव वालों की बेरोजगारी, भूख, बीमारी की समस्याएं बढ़ती रही। मगर मुखिया बांगुई इन सब से बेखबर अपने ऊंचे मकान में मगन था। एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही। नदी, नाले, बांध सभी उफनने लगे। व्हाइट वोल्टा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। जंगल के जो पेड़ नदी की धारा को रोके रखते थे वो कट चुके थे, इसीलिए नदी की धारा इस बार बेरोक टोक गांव में घुस आई। गांव वाले घर बार छोड़कर ऊंची पहाड़ियों की तरफ भागने लगे। गांव के खेत, खलिहान, झोपड़े, मकान पानी में डूब गए। आखिर एक दिन
5: मुखिया जी
6: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
5: माफ कीजिएगा लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
6: ओहो आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
5: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
6: तो भरने दो।
5: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
6: अरे तो जाने दो।
5: लेकिन मुखिया जी इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
6: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है और ये हमारी बांसुरी भी है।
5: लेकिन मुखिया जी,
6: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
5: जी मगर
6: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
7: मुखिया जी
6: अब क्या है?
7: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
6: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
5: मुखिया जी
6: चैन नहीं लेने देंगे, अब क्या है?
5: जी वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
6: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
5: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी,
4: अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है। हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
6: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो, इस महल को छोड़कर भाग रहे हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
8: जैसी आपकी मर्जी।
6: अरे ये तो सचमुच चला गया। कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की तीसरी मंजिल भी पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा है। हे भगवान, अरे कहाँ जाऊँ मैं? ये पानी में डूब रहा हूँ मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे कोई है? अरे बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूँ मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़,

आखिर पहुंच गया। यहां तो इस तरह के कितने पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई उस पेड़ पर भूखा बदहाल 4 दिनों तक बैठा रहा। और सचमुच इस घटना ने मुखिया बांगुई की आंखें खोल दी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि भूख क्या होती है, बेघर बार होने का दुख क्या होता है। इसके बाद जब वो अपने उजड़े गांव के निवासियों के बीच पहुंचा तो उसने अपने हाथों से उन सब के लिए झोपड़े बनाए और हां, अपने हाथों से बहुत से पेड़ भी लगाए। फिर कभी किसी को उन्हें काटने नहीं दिया।
1: दीजिए नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: संतुलित आहार।

तू एक होनहार लड़की थी। पढ़ाई में तो वो तेज थी ही, पर उससे भी ज्यादा उसे खेल प्यारा था, जिसके लिए वो भोजन भी छोड़ देती थी। वो माँ की डांट तो खा लेती, पर नहीं खाती तो खाना ठीक से नहीं खाती। अरे भाई, उसे खेलने की जल्दी जो लगी रहती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि खाना न खाने की वजह से शीलू बहुत ही कमजोर होती चली गई। और इसी कमजोरी के कारण शीलू का खेलना भी बंद हो गया। अब तो ज्यादातर वो बिस्तर में ही लेटी रहती। हाँ भाई, वो बीमार हो गई थी। एक बार क्या हुआ कि इसी बीमारी की हालत में एक दिन नींद में शीलू को लगा मानो रसोई घर में रखी खाने की चीजें आपस में बातें कर रही हैं और उससे कुछ कह रही हैं। उसने देखा कि कटोरे में रखा दही फिसल फिसल कर उसके पास आया और बोला,

अपनी बात जैसे ही पूरी की, रोटी की टोकरी में से एक रोटी दौड़कर शीलू के पास आई और बोली,

तभी क्या हुआ बच्चों, कढ़ाई में रखी तरकारी यानी सब्जी भी शीलू के पास आ गई और वो बोली,

इसके बाद अचानक शीलू को किसी के आने की आवाज आई। शीलू ने गौर से देखा, अरे ये तो गोल मटोल लाल लाल सेब है जो बड़ी देर से सबकी बातें सुन रहा था। सेब बोला,

यानी आहार जब संतुलित होता है, यानी शीलू अगर खाती थोड़ी मात्रा में लेकिन ठीक समय पर दूध दाल रोटी सब्जी और दही, तो ये भोजन होता एकदम सही, क्योंकि इसमें मिलता शीलू को प्रोटीन विटामिन खनिज लवण। कहो कैसी रही।

0: सेब की बात सुनकर शीलू की नींद अचानक खुल गई और न जाने उसे क्या हुआ कि उसने जल्दी से अपनी माँ को बुलाया और कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए आप मेरे लिए रोटी सब्जी दूध दही और रसोई में जो भी खाने की चीज रखी हो उसे जल्दी से ले आओ, कुछ भी हो। माँ को बड़ी खुशी हुई कि शीलू ने कम से कम कुछ खाने को मांगा तो सही।
1: संतुलित आहार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: आधा पूरा।

0: मैं खाऊंगा। चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा,
1: मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा।
2: अरे अरे अरे, चुन्नू मुन्नू तो बहुत परेशान हैं।
3: हाँ दीदी।
2: भला बताओ तो क्यों परेशान हैं?
3: रसगुल्ला खाने के लिए।
2: अरे भाई, तो फिर खाते क्यों नहीं?
3: क्योंकि क्योंकि
2: अरे भाई, इसमें सोचने की क्या बात है? देखो, रसगुल्ला तो है एक, और चुन्नू मुन्नू है दो भाई, तो दोनों पूरा पूरा रसगुल्ला कैसे खा सकते हैं?
3: हाँ दीदी, ये बात तो है।
2: तो अब वो क्या करें, जरा बताओ तो। नहीं समझ में आई? चलो इसी बात पर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ।
4: हाँ दीदी, कहानी कहानी।
2: कहानी सुनकर तुम ये समझ जाओगे कि चुन्नू मुन्नू क्या करें। ठीक है?
3: ठीक है।
2: तो सुनो, गोपाल और मोहन दो दोस्त थे। कौन थे?
4: दोस्त।
2: दोनों एक साथ स्कूल जाते, एक साथ खेलते और एक ही साथ खाना भी खाते।
3: अच्छा।
2: एक दिन की बात है, मोहन की माँ बीमार हो गई। मोहन ने माँ से कहा कि आज खाना मत बनाओ, मैं एक सेब लेकर स्कूल जाता हूँ। तो बच्चों, मोहन एक सेब लेकर स्कूल चला गया। क्या लेकर गया स्कूल?
4: सेब।
2: एक सेब, शाबाश। और मोहन का दोस्त गोपाल उस दिन एक रोटी लेकर आया।
3: अच्छा।
2: मोहन और गोपाल साथ में ही खाते थे ना?
3: हाँ, वो साथ में खेलते भी थे
1: और खाते भी साथ में थे।
2: शाबाश। जब दोनों खाना खाने बैठे तो दोनों ने अपना अपना खाना निकाला। बोलो तो उन दोनों ने क्या क्या निकाला?
3: मोहन ने एक सेब निकाला।
2: हाँ।
3: और गोपाल ने एक रोटी निकाली।
2: बिल्कुल ठीक। अब ये बताओ कि

0: दोनों ने क्या किया?
1: क्या किया दीदी?
0: गोपाल ने एक रोटी निकाली और एक पूरी रोटी को आधा आधा कर लिया।
1: क्या कर लिया दीदी?
0: उसने एक पूरी रोटी के दो बराबर बराबर टुकड़े कर लिए।
1: अच्छा, रोटी के दो बराबर बराबर टुकड़े कर लिए। ओहो, तो इस तरह उसने एक पूरी रोटी को आधा आधा कर लिया।
0: बिल्कुल सही।
1: तो फिर क्या हुआ दीदी?
0: तो अब हुआ ये कि आधी रोटी गोपाल को मिली और आधी रोटी मोहन को मिली।
1: अच्छा, आधी रोटी गोपाल को मिली और आधी रोटी मोहन को मिली।
0: शाबाश। अब दोनों दोस्तों ने आधी आधी रोटी खाई।
1: वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छा तरीका है, एक ही रोटी दोनों ने खा ली। फिर क्या हुआ दीदी?
0: फिर मोहन ने अपना एक सेब निकाला और सेब को भी आधा आधा कर लिया। और
1: गोपाल ने आधा सेब खाया और मोहन ने आधा सेब खाया।
0: अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। अब समझे तुम मैंने ये कहानी क्यों सुनाई?
1: हाँ दीदी, हम समझ गए।
0: क्या समझ गए?
1: यही कि चुन्नू मुन्नू ने भी एक रसगुल्ले का क्या किया होगा?
0: बोलो तो, क्या किया?
2: एक पूरे रसगुल्ले को आधा आधा कर लिया
1: और आधा चुन्नू ने खाया और आधा मुन्नू ने खाया।
0: शाबाश। आ गई ना बात समझ में?
1: हाँ दीदी।

0: वो
1: दीदी हमें खिलौने खिलाने लाडू ना दीदी।
2: अच्छा अच्छा अच्छा दिलाती हूँ खिलौने खिलौने वाले। ओ खिलौने वाले
3: जी बहन जी
2: इधर आओ।
3: जी बहन जी क्या दूँ?
2: खिलौने वाले इन बच्चों को खिलौने दे दो।
1: मैं चश्मा लूंगा, मैं गेंद दूंगी, मैं बल्ला भी लूंगा और वो देख गुड़िया कितनी सुंदर है, मैं तो गुड़िया भी लूंगी। हाँ मैं भी।
2: बच्चों तुम्हें खिलौना तो मिलेगा पर एक एक ही खिलौना मिलेगा बस।
1: अच्छा तो मैं गुब्बारा लूंगा।
2: ठीक
4: नहीं मैं गुब्बारा लूंगी।
1: मैं भी गुब्बारा ही लूंगा।
4: मैं भी गुब्बारा लूंगी।
2: अरे
1: गुब्बारे चाहिए हमें। हाँ, गुब्बारे चाहिए।
3: बच्चों मेरे पास तो एक ही गुब्बारा है, तुम दोनों को कैसे दूं?
1: कोई बात नहीं भैया, हम गुब्बारे का आधा आधा कर लेंगे।
3: गुब्बारे का आधा आधा कैसे करोगे भैया?
4: हम गुब्बारे को आधा आधा कर लेंगे, हमारी दीदी ने बताया है हमें।
3: नहीं बेटे, गुब्बारे को हम आधा आधा नहीं कर सकते।
2: हाँ बच्चों, गुब्बारे को हम आधा आधा नहीं कर सकते।
1: क्यों? चुन्नू मुन्नू ने भी तो रसगुल्ले को आधा आधा कर लिया था, वैसे ही हम भी गुब्बारे को आधा आधा कर लेंगे।
2: ये कोई रसगुल्ला थोड़े ही है, ये आधा आधा करने से फट जाएगा।
1: नहीं हम तो
4: हम
1: कर लेंगे,
4: आधा करना है।
2: अरे बेटा भला गुब्बारा आधा आधा कैसे होगा?
4: नहीं हम तो गुब्बारा लेंगे, हमें
2: अच्छा,
4: चाहिए।
2: अच्छा अच्छा ठीक है, तुम गुब्बारा लो और खुद ही आधा आधा करके देख लो, देखो ये आधा होता है कि नहीं। देखो गुब्बारे वाले।
3: जी बहन जी
2: जरा ये गुब्बारा दे दो इन बच्चों को।
3: लीजिए बहन।
1: लाओ भैया।
2: लो।
1: आ, आ, आ, आ।
2: देखा फट गया ना गुब्बारा? मैंने कहा था ना गुब्बारा आधा करोगे तो फट जाएगा।
1: तो क्या अब हम इससे नहीं खेल सकेंगे?
2: बच्चों सब चीजें आधी नहीं की जाती, जैसे तुमने अभी गुब्बारा आधा किया तो वो फट गया और बेकार हो गया, अब तुम इससे नहीं खेल सकते।
1: तो दीदी क्या ये गेंद भी नहीं आधी हो सकती?
2: आधी तो कर सकते हैं पर आधी करने से ये बेकार हो जाएगी।
4: तब तो ये गुड़िया पतंग चश्मा कुछ भी आधा आधा नहीं हो सकता?
2: नहीं बेटे, इन्हें भी आधा नहीं कर सकते, ये भी आधा करने से बेकार हो जाएंगी।
4: अच्छा तब तो मैं गेंद लूंगी
1: और मैं एक बल्ला, दोनों मिलकर खेलेंगे।
4: खेलेंगे।
2: अब गेंद और बल्ला आधा आधा तो नहीं करोगे ना?
1: नहीं दीदी, ये कोई सेब और रोटी थोड़ी ही ना है।
2: खिलौने वाले इनको दे दो जो मांगते हैं।
3: जी बहन जी। बोलो बच्चों क्या दूं?
1: मैं तो लाल बल्ला।
4: मुझे वो लाल नहीं हरी वाली गेंद चाहिए।
3: अच्छा, हरी वाली ले लो। और ये तुम्हारा बल्ला और ये तुम्हारी क्या
4: गेंद।

0: आधा पूरा। बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
2: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
0: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
2: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
0: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
2: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
0: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
2: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको, लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे। जी
0: डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
2: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है। जी।

0: फाइलेरिया से बचाव की गोली है, ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति ही खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
1: जी बताइए डॉक्टर।
2: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति है वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
2: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है
1: तो दोनों को ही खानी।
2: हाँ, और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वो वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
1: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
2: जी
1: और डॉक्टर साहब
3: क्या फाइलेरिया की दवाई एक बार खा लेने से साल में पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
1: बताइए।
2: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
1: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
2: ये जब अभियान चलता है हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें, जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
1: जी और डॉक्टर साहब एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
2: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 2 बजे से रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं।
1: अच्छा।
2: तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
1: अच्छा। जी रात के 10 बजे से 2 बजे तक ज्यादा
2: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
1: जी।
3: मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
1: जी बताइए।
2: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहां पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
1: जी
4: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज पर।
5: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
6: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।
7: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अब हमारे किसान साथी बिल्कुल तैयारी में लग चुके होंगे क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश भी अब होने लगी है। खासतौर पर देखा जाए अब मानसून भी आने की संभावना बताई जा रही है, ऐसे हमारे मौसम विभाग कह रहा है। खासतौर पर अगर झाबुआ जिले की बात करें तो 15.2 mm की बारिश अभी तक हो चुकी है, तो खुशी की बात है कि इस बार सामान्य वर्षा होने की संभावना बताई जा रही है। तो ऐसे में किसान साथी अपनी भरपूर तैयारी करें, पानी संरक्षण को लेकर काम करें। खासतौर पर अगर हम देखें कि जहां पर उबड़ खाबड़ जमीन है उसको एक सा कराएं, समतलीकरण करा लें, मेड़बंधान करा लें, तालाब का निर्माण भी करा सकते हैं। और किसान साथी तालाब अगर है तो उसका जीर्णोच्चारण भी करा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो किसान साथियों को समझने वाली बात साथ हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं मानसून और खेती पर। आज महत्वपूर्ण चर्चा है, इसको आप सुनिएगा। और

0: हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं उनकी बातचीत को आप सुनकर अपने जीवन में जरूर अपनाइएगा। हम किस तरीके से खेती कर सकते हैं, खासतौर पर जो खरीफ की फसल आने वाली है उसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं, कौन सी फसलें हैं जो लगा सकते हैं, क्या क्या तैयारी हमें करना चाहिए, आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट को।
1: जी हाँ, मॉनसून का हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और खास तौर पर दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बात करें तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था अगर कहें इस मॉनसून पर निर्भर करती है तो गलत नहीं होगी। खास तौर पर अगर खरीफ फसलों की बात करें तो बहुत हद तक इसकी निर्भरता रहती है और ऐसे में ये भी कह सकते हैं कि अगर मॉनसून की बारिश अच्छी होगी तो हमारे खेत लहलहाएंगे। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कि इस बार मॉनसून कैसा रहने वाला है, हमारे किसानों को अपने स्तर पर किस तरह की तैयारी करनी है और कैसे वर्षा जल संचयन भी वो कर सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान स्टूडियो में हैं, आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आर के जैनमणि जी जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में। आप मॉनसून के चाल के बारे में बताएंगे, मॉनसून कैसा रहने वाला इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर वाई शिवे जी हैं, प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली में, और शिवे जी हमें क्रॉप्स के बारे में जानकारी देंगे यानी अलग अलग जो फसलें हैं उनके बारे में। और डॉक्टर अनंता वशिष्ठ जी हैं प्रधान वैज्ञानिक कृषि भौतिकी संभाग पूसा नई दिल्ली में। और अनंता जी से भी हम समझेंगे कि प्रबंधन किस तरीके से करें, मॉनसून भी है फसलें भी हैं तो इनके बीच का प्रबंधन किस तरह से होना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सभी मेहमानों के बारे में आपको हमने बता दिया है और आगे बात करते हैं मॉनसून के बारे में। तो इस बार मॉनसून कैसा रहने वाला है और इसका प्रभाव हमारी कृषि पर किस तरह से होता है, इन तमाम बातों को समेटे हुए देखिए हमारी रिपोर्ट।
2: भारत में मॉनसूनी सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक होता है। इस दौरान हुई बारिश खरीफ फसलों की पैदावार के लिए काफी अहम मानी जाती है, यानी अगर मॉनसून अच्छा हो तो उपज भी भरपूर हो जाती है। लेकिन मॉनसून कमजोर हुआ तो इसका सीधा असर कृषि पर सूखे के रूप में पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और खेती के लिए मॉनसून की अहमियत को समझते हुए मौसम विभाग हर साल मॉनसूनी वर्षा का पूर्वानुमान जारी करता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की वर्षा के दूसरे चरण के दीर्घ अवधि पूर्वानुमान में इस बार जून से सितंबर के दौरान मॉनसूनी बारिश के औसत से 96 से 104% रहने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इस बार पूरे देश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की वर्षा के सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस मॉनसून सीजन में मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीप में सामान्य से ज्यादा बरसात होने की संभावना है। मध्य भारत में ओडिशा, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ आते हैं। इन इलाकों में दूसरी फसलों के साथ मुख्य रूप से गेहूं, धान, कपास और दलहन की बुआई की जाती है। गुजरात में किसान मिर्च, जीरा जैसी फसलों की खेती भी करते हैं। ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए मॉनसून की अच्छी बरसात अच्छी पैदावार की सौगात लेकर आती है। वहीं दक्षिण प्रायद्वीप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय कर्नाटक, उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, केरल और लक्षद्वीप आते हैं। इन इलाकों में मुख्य रूप से धान की खेती होती है। वहीं उत्तर पूर्व भारत और उत्तर पश्चिम भारत में बरसात के सामान्य रहने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार आते हैं। इन इलाकों में मुख्य रूप से धान की खेती होती है। उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान आते हैं। इन राज्यों में अन्य फसलों के अलावा गेहूं, धान और दलहन की खेती मुख्य रूप से की जाती है। हालांकि कई बार मॉनसून हर इलाके में एक जैसा नहीं बरसता, यानी कई बार कहीं कम और कहीं ज्यादा बरसात भी हो जाती है। आमतौर पर जिन इलाकों में मॉनसून के दौरान ज्यादा बरसात होती है वहाँ किसान ऐसी फसलों की बुआई कर सकते हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। जिन इलाकों में कम बरसात होती है वहाँ किसान उन फसलों की बिजाई कर सकते हैं जिनकी पैदावार के लिए कम पानी की जरूरत हो। इसकी जानकारी किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी ले सकते हैं।
3: जो आप काम करने को कह रहे हैं
1: तो बिल्कुल अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको ये भी बताया कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा बारिश की संभावना है वहां के किसान क्या करें, जहां पर बारिश थोड़ी कम रह जाती है वहां पर किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर किस तरह की फसलों या फिर किस्मों का उन्हें चुनाव करना चाहिए। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले डॉक्टर जयनमणि जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए मानसून का इंतजार हर किसी को होता है लेकिन किसान जो है उसका जीवन उसके ऊपर निर्भर करता है, उसकी आमदनी उसके ऊपर निर्भर करती है, सिर्फ मौसम में बदलाव ठंड या गर्म का मतलब उससे उसका नहीं रहता। तो ऐसे में इस बार का मॉनसून कैसा रहने वाला है, क्या बताता है भारत मौसम विज्ञान विभाग?
3: देखिए जो अभी तक हमारा जो प्रेडिक्शन आया है, जो भविष्यवाणी है, वो जून मंथ का मंथली जो रहेगा और कौन सा एरिया में कम रेन होगा और कौन सा एरिया में ज्यादा रेन होगा, और उसके साथ साथ पूरा जो सीजन है 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक सारा भारत में मानसून स्थिति क्या रहेगा। तो पहले अगर बात करें सारा भारत का, तो इस साल ऐसे कुछ फीचर्स नेगेटिवली नहीं है। तो हम अगर ग्लोबल फीचर्स का बात करें, जैसे लानीना चल रहा है और ऐसे ही अप्रैल मई में भी ज्यादा गर्मी हुआ है, तो ये सारा बहुत इंडिकेट करता है कि मानसून अच्छा रहेगा ओवरऑल जो है। अगर ऑल इंडिया रेनफॉल जो सारा भारत का बारिश का अगर हम हिसाब करें, तो पूरा सीजन में जो है टोटल रेन लगभग जो हमारा 89 सेंटीमीटर होता है वो नॉर्मल रहेगा। हम रादर बढ़ाया, इनका मान था 99%, हम 103% दिया अपडेट में। और उसके साथ साथ जून महीने का जो है, सभी को ये मैं बताना चाहता हूँ कि मानसून का जो आगमन होता है ये एडवांस फेज में मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ता है, हर साल का यही स्टोरी है, मतलब यही ऑब्जर्वेशन है, इसमें घबराने का कोई बात नहीं होना चाहिए। और कुछ कुछ मीडिया जो बोलते हैं वो बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी जैसे हमारा जो रहेगा स्थिति, अभी पेनिनसुलर इंडिया जो दक्षिण भारत कवर कर रहा है, आगे से भी केंद्रीय भारत और हमारा उत्तर पश्चिम भारत को भी आएगा। और यही है कि कौन सा डेट जो है, डेट तो वैरी करता है, कभी 10 दिन लेट में आता है, कभी 10 दिन पहले आता है। जैसे दिल्ली का अगर बात करें, पिछले साल बहुत लेट में आया,
1: 25 के बाद
3: जून 27 नॉर्मल डेट होता है, राजस्थान जुलाई फर्स्ट वीक होता है। तो लगभग जो प्रेडिक्शन है जून महीना का सेकेंड हाफ है वो बारिश अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ मानसून का जो आगमन है, अभी तक जो आंकड़ा है कुछ डिले नहीं हुआ है, और महाराष्ट्र का कवर टाइम पर करेगा और केंद्रीय भारत भी टाइम पर करेगा।
1: बिल्कुल, तो अभी जो मानसून की चाल है या फिर रफ्तार है उसमें किसी तरह की हम तब्दीली नहीं देख रहे हैं, जो सामान्य रूप से जो होना चाहिए वैसा ही है। शिवे साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए जो रिपोर्ट भी हमने दिखाई तो उसमें भी हमने बताया कि किस तरीके से कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब हम एवरेज निकालते हैं पूरे देश का तो लगता है कि हाँ मानसून अच्छा रहा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है और किसानों को इसके लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। आप जो अभी खासतौर पर जो खरीफ सीजन की फसलें हैं उनके लिए विशेष तौर पर क्या बताना चाहेंगे?
4: हम देखिए मानसून जैसा कि इस साल नॉर्मल रहने की संभावना है, तो बहुत से क्षेत्रों में जो है अलग अलग किस्में लगाई जाती हैं, अलग अलग फसलें लगाई जाती हैं, तो उस अनुसार जो है किसानों को अपनी तैयारी करने की जरूरत है। जैसे विशेषकर मध्य प्रदेश के अंदर जो है सोयाबीन लगाई जाती है, महाराष्ट्र के अंदर जो है कपास लगाई जाती है, या छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार के अंदर जो है धान का बहुत खेती होती है। इसके साथ साथ यदि हम उत्तरी भारत की बात करें, पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो है धान मक्का ज्वार बाजरा इनकी बहुत खेती होती है। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी फसलें भी हैं हमारी, जैसे दाल वाली फसलें हैं, अरहर है, मूंग है, उड़द है, इनकी खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है खरीफ के मौसम में। लेकिन बात ये ध्यान रखने की है कि जो अपने क्षेत्र के लिए अनुमोदित किस्में उन्हीं को लगाएं, और उसके साथ साथ जो है इस चीज का भी ध्यान रखें, पानी यदि आपके यहाँ अच्छी बारिश हो रही है तो उसका जो है पूरा सदुपयोग करें। सदुपयोग करने का मतलब ये है कि पानी को बाहर न जाने दें, और यदि पानी बहुत ज्यादा भर गया है, जैसे हमारी अरहर की है, मूंग की है, उड़द की है, तो वहाँ पानी निकालने की संभावना भी बढ़ जाती है,
1: बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है फसलें, ये भी हम जानते हैं। अनंता जी आपसे मैं समझना चाहूंगी कि देखिए प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है, रेन और क्रॉप इसके बीच में जब प्रबंधन की बात करते हैं तो इसे हम किस तरीके से समझें?
5: जी, जैसे कि अभी मानसून के समय में विभिन्न फसलें लगती हैं, जिसमें जैसे कुछ धान है, मक्का है, दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें, इसके अलावा सब्जी वर्गीय फसलें भी लगती हैं, तो इसमें सभी फसलों को सामान्य रूप से पानी की जरूरत नहीं होती है। जैसे धान है उसको ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तिलहनी या दलहनी फसलें हैं उनको कम पानी की जरूरत होती है, तो आपको जो उस हिसाब से जो पानी का जो है प्रबंधन करना चाहे फसलों में। जैसे अभी डॉक्टर सीवे जी ने भी कहा है कि धान के लिए पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तो आपको वहाँ पे जो ऐसे मैने ऊंची बना लीजिए ताकि अगर बरसात का पानी आता है तो ज्यादा से ज्यादा पानी जो है आपके खेतों में रुक सके। आपकी जैसे तिलहनी फसलें हैं या दलहनी फसलें हैं या सब्जी वर्गीय फसलें हैं तो पानी के प्रति काफी संवेदनशील होती है। अगर ज्यादा पानी बरस गया तो उनकी जो जड़ें होती है वो खराब होने की संभावना होती है, तो उसमें जो आप जल निकासी का प्रबंधन कर सकते हैं या फसलों को आप मेंढों में लगा सकते हैं जिससे जो है आपका पानी से नुकसान नहीं हो सकता। जैसे कि हम देख ही रहे हैं आजकल जलवायु परिवर्तन की वजह से जो वर्षा की तीव्रता है वो ज्यादा हो जाती है और जो आपके रेनी डे हम जो कहते हैं कि वर्षा के दिन उनमें कमी आ रही है। जैसे कि टोटल बारिश हम कहते हैं कि जो आपका मानसून वर्षा है वो तो आपकी उतनी ही रहेगी लेकिन जो वितरण है वो आपका सामान्य नहीं रहता है। कभी आपकी बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, कभी आपका ड्राई पीरियड जो सूखा समय है फसलों के दो बारिश के बीच का समय वो ज्यादा रह जाता है। तो अगर आप जो ये जो पानी है जो पानी एकत्रित नहीं तो आपको ये सलाह दूंगी कि आप खेत के पास में एक पौंडनुमा स्ट्रक्चर बना दीजिए और जो बरसात का पानी आता है उसमें इकट्ठा हो जाएगा, साथ ही जो आप जल निकासी करते हैं खेतों से उसका पानी भी उसमें इकट्ठा हो जाएगा। और जब आपका जो सूखा पीरियड ज्यादा होता है उसमें आप जब पंप की मदद से वो जो पौंड में आपका पानी एकत्रित हुआ है उसको आप फसलों में डाल सकते हैं। इसके आपके कई फायदे होंगे, एक तो आपको पानी मिल जाएगा फसलों में, दूसरा जो खेत का जो उर्वरक है वो पानी के साथ आपका उसमें इकट्ठा हो गया तो फिर से आपके जो खेतों में आ जाएगा, तो ये भी आपका फायदा हो जाएगा।
6: जी बिल्कुल अनंता जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई क्योंकि देखिए हम पानी को सिर्फ पानी की तरह लेते हैं कि एक पोषक तत्व है जितने जो जरूरत होती है फसलों को उनमें से एक ये भी है कंपोनेंट है महत्वपूर्ण, लेकिन उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी मिले जो अनंता जी ने बताया कि आपके खेत की जो मिट्टी बहती है वो बहुत रिच होती है, वो बर्बाद ना जाए, उस पानी को बर्बाद आप बिल्कुल ना जाने दें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसान इसके लिए अपने स्तर पर तैयारी करें, वहां पर भी जहां पर बारिश कम होती है और वहां पर भी जहां पर ज्यादा होती है, दोनों ही स्थिति में आपको अपने स्तर पर जरूर तैयार रहना चाहिए। अब बात मैं करती हूँ जनमणि जी से। जनमणि जी, जैसे कि हम वितरण की बात करें, देखिए सारा प्रबंधन जो है इसी बात पर फोकस हो जाता है कि कहीं बारिश ज्यादा ना हो जाए और कहीं बारिश कम ना हो जाए, लेकिन अगर एक समझने की हम कोशिश करें, एक मेरा सवाल है कि ये दरअसल वितरण कम हो क्यों रहा है, मतलब एक दिन एक क्षेत्र में देखते बहुत ज्यादा बारिश हो रही है वहीं दूसरी जगह देखते हैं कि कम हो रही है, तो एवरेज तो आपका ज्यादा निकलता है लेकिन पानी जो है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता, प्यास धरती की नहीं बुझती।
3: देखिए मैं इसका ना जो डिस्कशन है दो बातें बताऊंगा। जो एक तो जो एरिया है जैसे उड़ीसा है या हमारा पूर्वोत्तर राज्य है और जैसे हमारा पश्चिम का जो कोंकण गोवा कर्नाटक और केरल, यहाँ तो हर साल ज्यादा बारिश होता है, फ्लड होता है, ठीक है ना। इसकी जो वेरिएबिलिटी है कम है, चाहे मानसून कैसा भी परफॉर्म करो लेकिन जो रेन है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ज्यादा बारिश मिलता है, ठीक है। और अगर हम अंदरूनी इलाका का बात करें जैसे मध्य प्रदेश है या ज्यादा से ज्यादा जो राजस्थान है, ये इलाका में जो है एक तो रेनफॉल का जो अमाउंट है 100 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर टोटल होता है और राजस्थान में भी तो ऐसा इलाका है टोटल 50 सेंटीमीटर है, तो ये इलाका में जो मानसून का जो जैसे अभी डिस्कशन हो रहा है यहाँ जो है जो हम रेनफॉल एरिया बोलते हैं कि जहां बारिश कम होता है उसके साथ साथ इसका जो वेरिएबिलिटी है, मतलब 6 दिन बारिश हुआ या 2 दिन बारिश हुआ फिर एकदम ड्राई स्पेल लंबा है, तो ज्यादा हमारा जो फोकस रहता है ये राजस्थान मध्य प्रदेश इसी इलाका का रहता है कि इनको सही इन्फॉर्मेशन मिले कि कब वेट स्पेल होगा कब ड्राई स्पेल होगा, सो दैट जैसे दे कैन यूज दैट इन्फॉर्मेशन, पानी को स्टोर करना है कौन सा यू नो सोइंग सीजन कौन सा टाइम में होता है, इसलिए वो मौसम विज्ञान विभाग से जो नियरेस्ट सेंटर है वहाँ से टाइम टू टाइम हमारा एसएमएस जाता है उसका इस्तेमाल करें।
6: जी यानी जनमणि जी, जो भी प्रिडिक्शंस होते हैं पूर्वानुमान होते हैं इस पर हमारे किसान बहुत गौर करें, क्योंकि अगर उन्हें ये पता चलता है कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली, जैसे आपने बताया कि हैवी स्पेल की अगर संभावना बन रही है, तो किसान सिर्फ इस सीजन की फसल को ध्यान में रखते हुए अपने स्टेप्स ना उठाएं बल्कि ये भी सोचे कि इस पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। और जैसे कि हाल में हमने विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया, उसमें भी फोकस यही था कि धरती एक ही है और पानी जो है इसे आप लैब में नहीं क्रिएट कर सकते हैं, बारिश होगी ऊपर से वही पानी आप इस्तेमाल करेंगे या फिर ग्राउंड वाटर होगा, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसान पहले से किस तरीके से पानी को बचाया जाए ताकि आगे भी काम आए।
3: और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि एक तो वाटर मैनेजमेंट है, दूसरा क्या होता है कि क्रॉप का जो डिफरेंट स्टेज होता है तो अकॉर्डिंगली जैसे हैवी स्पेल होता है तो पेस्ट एंड डिजीज और आपको जो भी खाद या कुछ भी फर्टिलाइजर डालना है तो वेट स्पेल में तो चला जाता है नीचे, ठीक है ना। तो इसलिए जो मौसम का भविष्यवाणी लेके नॉट ओनली कि आप लगाए धान कि कब आ रहा है मानसून, वो एक है, उसके बाद भी कम्प्लीटली मैनेजमेंट जो है वो मौसम का भविष्यवाणी पर होना चाहिए।
1: जी जी।
3: जैसे पेस्ट डिजीज कंट्रोल है, जैसे फर्टिलाइजर लगाना है तो बारिश को देखते या कब ड्राई स्पेल है वही विंडो में करना चाहिए।
1: जी शिवे जी, इस पे मुझे लगता है और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। आप क्या बताना चाहेंगे सर, चाहे वो खाद डालने की बात हो या फिर पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो मौसम या फिर खासतौर पर बारिश की जो संभावना है उसको देखते हुए कैसे हमारे किसान कर सकते हैं?
4: देखिए, बारिश का जो है बहुत बड़ा महत्व है हमारे खाद्यान्न उत्पादन में, विशेषकर जो है खरीफ के मौसम में। ये एक तो पानी पौधों को डायरेक्ट मिलता है, दूसरे जो हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में हम पंप सेट से ट्यूबवेल से पानी को निकालते हैं तो उसके लिए भी रिचार्ज होना ग्राउंड वाटर बहुत जरूरी है और ये वर्षा पर ही निर्भर करता है। तो इसका बहुत अच्छे ढंग से किसानों को सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि पानी एक ऐसी कमोडिटी है कि इसके बिना खेती नहीं की जा सकती, चाहे वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है चाहे इरीगेटेड है, कैसी भी कंडीशन है पानी बहुत जरूरी है। तो किसानों को, क्योंकि आजकल कृषि विज्ञान केंद्र हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और वहां पे जो मौसम की भविष्यवाणी की सूचना जाती है और उन्होंने जो है अपने व्हाट्सएप मैसेज से किसानों को जोड़ रखा है, तो उनके हर किसानों के पास में कम्युनिटी सेंटर पे जाती है कि भी अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है या हवा तेज चलने वाली है या हमको जो है खाद डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा इस माध्यम से किसान भाइयों को जागरूक होने की जरूरत है और उनको जो है समय समय पर जो भी उनको मैसेज मिलता है उसी अनुसार जो है, चाहे वो किसी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे किसी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखकर करें कि आज बारिश होने वाली है तो हम नहीं डालेंगे, यदि थोड़ा ड्राई स्पेल आ रहा है तो उस समय जो फर्टिलाइजर लगाएं या हो सकता है उनके कुछ इरिगेशन देने की जरूरत पड़े तो इस तरीके से करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्रॉप की प्लानिंग भी इस तरीके से करनी चाहिए कि जैसे इंटरक्रॉपिंग है या मिक्स क्रॉपिंग है या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, ऐसे आयाम यदि वो अपनी कृषि पद्धति में लेके आएंगे तो वहां पर पानी की उपयोग क्षमता बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ उनकी आमदनी भी बनेगी। और यदि कुछ दुर्भाग्यवश किसी कारणवश कुछ ड्राई स्पेल आ जाता है तो वहां पर फसल होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती
1: जी,
4: है।
1: लेकिन जी जी जी सर,
4: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, किसान भाई जो है इस चीज का भी ध्यान रखें कि उनके पास में कोई अवशेष बचा हुआ है किसी फसल का तो उसको जलाएं नहीं बल्कि उसको मिट्टी के ऊपर छोड़ें, तो आच्छादन का काम करेगा, मल्चिंग का काम करेगा, उससे उनका जो है पानी का ह्रास कम होगा और उनकी जो है वाटर रिटेंशन
1: और कार्बन कंटेंट भी बढ़ेगा मिट्टी का।
4: बिल्कुल, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट तो आत्मा मानी जाती है मिट्टी की और वो जो है पोषक तत्व प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी है और जो हमारे जैसे माइक्रोबियल बायोमास है, माइक्रोबियल बायोमास कार्बन है, बैक्टीरिया फंजाई एक्टिनोमाइसिन, इनके लिए भी बहुत जरूरी है।
1: जी जी, लेकिन डॉक्टर शिवे, जैसा कि आपने बताया कि मौसम कैसा रहने वाला है, पूर्वानुमान देखे उसी के अनुसार चाहे सिंचाई करनी है या फिर पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें, खाद डालें या कीटनाशक डालें हैं, उसी के अनुसार हमारे किसान अपनी योजना बनाए। लेकिन एक बात हम ये भी जानते हैं कि किसान जो एक पैटर्न फॉलो करता आ रहा है, मतलब जो परंपरागत तौर पर कि इस फसल में इतनी सिंचाई लगनी है तो 21 दिन बाद हम पहली सिंचाई लगाएंगे फिर इतने दिन बाद, तो वो भी ये बात सही है कि अगर वो डे मिस हो गया तो उसकी फसल में नुकसान होगा, तो इसे मतलब ये बड़ा जटिल हो जाता है, किसान कैसे समझे इसे?
4: समझने की जरूरत यह है कि यदि बारिश हो जाती है जैसे क्रिटिकल स्टेज बताते हैं कि भाई इस पर पानी देने की जरूरत पड़ती है, धान के अंदर हम बताते हैं कि जिस समय मैक्सिमम टिलिंग स्टेज हो या हमारी जो है बालियां निकलनी अंदर ही बननी शुरू हो में तो उस समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और बालियां इनिशिएशन से और बाली बाहर आने तक तो बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्टेज को ध्यान में रखते हुए किसान भाई पानी का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन उस समय यदि बारिश हो जाती है तो फिर पानी देने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मक्का के अंदर जो है हमारी नी हाई स्टेज है, बहुत क्रिटिकल है पानी के लिए, तो उस समय पानी नहीं लगा तो लगेगा तो काफी नुकसान हो जाएगा। यदि बारिश हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बारिश होती है तो उस समय सप्लीमेंटल इरिगेशन कहते हैं उसको, पूरक सिंचाई कहते हैं, उस समय सिंचाई करेंगे तो उनकी पैदावार अच्छी होगी। इसी तरीके से जैसे हम मैं बताना चाहूंगा कि अरहर की फसल है, अरहर की फसल या मूंग उड़द की फसल को अभी डॉक्टर अनंत अवशिष जी ने बताया कि बेड पे लगाना चाहिए, और आजकल ब्रॉड बेड पे लगा रहे हैं किसान, तो उसी पद्धति को अपनाना चाहिए। तो इस पद्धति को अपनाएंगे तो उनके यहाँ जल भराव की कोई समस्या होती है तो वो उससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारी फसल बच जाएगी और उससे हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा, बाहर नहीं जाएगा और जड़ों को भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से यदि कुछ नए आयाम लेकर आएंगे बिजाई के लिए या क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो उनसे जो है ज्यादा हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और हमारी फसल भी अच्छी होगी और इसके साथ साथ जो हमारे जो दूसरे प्रबंधन के आयाम है वो भी अच्छे होंगे।
6: जी अनंता जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जैसा कि डॉक्टर शिवे बता रहे हैं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, लेकिन हम इस बात को भी समझते हैं कि जब किसान की फसल खेत में होती है या फिर बुआई कर देता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस उसकी फसल होती है उस वक्त, वो उसके आगे पीछे नहीं सोचता, वो उसका पूरा ध्यान ही रहता कि मेरी फसल कैसे अच्छी हो। तो कैसे यहाँ पर एक सामंजस्य भी रहे और दोनों तरह से काम होते रहे, क्या बताएंगे?
5: जी इसमें तो मैं किसान भाई बहनों को यह सलाह दूंगी कि उन्हें मौसम आधारित कृषि करनी चाहिए या मौसम आधारित कृषि प्रबंधन उसमें करना चाहिए, उन्हें समय समय पर मौसम की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अभी मानसून के समय जो मुख्य मौसमी तत्व होता है वो बारिश होती है, बारिश केवल सिंचाई के लिए नहीं, खरपतवार नियंत्रण करना है या आपका कीटनाशक है या आपका जो आपके बीमारियां आ रही हैं उसके प्रबंधन के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी डॉक्टर सिवे बता रहे थे कि आपको कब सिंचाई देनी है, आप डिफरेंट स्टेज होती है इसमें आपको सिंचाई देते हैं और किसान भाई बहन क्या करते हैं कि उसी में दे देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उन्होंने सिंचाई कर दी और उन्हें मौसम की जानकारी नहीं है, उसके तुरंत बाद बारिश आ गई, तो फसलों को जितना पानी चाहिए था उससे ज्यादा पानी उनको फसलों को मिल गया। तो हर चीज को अपना ऑप्टिमम जो कहते हैं उतनी जरूरत होती है, तो अगर ऑप्टिमम से ज्यादा उनको पानी मिल जाता है तो उनकी फसलें खराब हो सकती है। इसके अलावा जैसे खरपतवार नाशी डालना है या कीटनाशी डालना है, आपको बीमारियों से बचाना है अपनी फसलों को, तो किसान भाई बहनों को अगर इसकी सूचना नहीं है कि अगले दो तीन दिन में बारिश होने वाली है और उन्हें कीटनाशक आपके फसलों में डाल दिया, तो इसका क्या होगा कि तुरंत उसके बाद बारिश हो गई तो कीटनाशक उसका धुल जाएगा और धुल के जो है ये आपका
6: मिट्टी को भी दूषित
5: करेगा और वहां से जो है वो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। और अगर आपका बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो रन ऑफ करके पानी के साथ बह के जो नजदीकी नाले हैं या नाले से होते होते जो नजदीक के तालाब है उनमें भी चला जाएगा, उसमें मछलियां हैं अन्य जलीय जंतु हैं,
6: प्रदूषित हो जाएगा, कंटैमिनेट हो जाएगा।
5: तो आपका देखो एक तो एनवायरमेंट पॉल्यूट होने से बच जाएगा अगर आपको मौसम की जानकारी है, आपकी मृदा प्रदूषित होने से बच जाएगा, आपका जो भूजल है वो प्रदूषित होने से बच जाएगा और आपके जो जलीय जंतु हैं वो भी आपके बच सकते हैं। तो अगर आपको छोटी सी जानकारी एक मिल जाती है तो आपके इतने जो साइड फायदे हैं हम कहते हैं ये फायदे आपके हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी रिसोर्स सेविंग हो जाती है क्योंकि आपने जो है पानी की आपकी बचत हो रही है, आपने पानी लगाया तो पानी लगाने में आपका लेबर का जो खर्चा आ रहा है या डीजल का खर्चा आ रहा है तो वो भी आपका बच जाता है, तो उनका जो नेट प्रॉफिट है वो बच जाता है।
6: बिल्कुल देखिए, यानी कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि मॉनसून का प्रिडिक्शन, उसका पूर्वानुमान कितना सटीक होगा इस पर भी आपकी आय निर्भर करती है, क्योंकि उसी के अनुसार आप आगे की जो कृषि क्रियाएं हैं उनके बारे में विचार कर सकते हैं, उनके बारे में स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, योजना बना सकते हैं। इसीलिए इस विषय को हमने आज शामिल किया अपने कार्यक्रम में ताकि किसानों तक जागरूकता फैले और मॉनसून के चाल पर वो नजर रखें। लेकिन कई बार समस्या ये आती है कि किसानों तक इतनी सटीक जानकारी सही समय पर पहुंचे तो पहुंचे कैसे, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि मौसम की चाल इतनी तेजी से बदलती है कि किसान खुद भाप नहीं पाता। तो इसके लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं

0: रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: आज हम बात कर रहे हैं मॉनसून और खेती की। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है और किसान कितने खुशहाल होंगे, उनकी आय में वृद्धि होगी, किस हद तक होगी, ये भी निर्भर करता है मॉनसून कैसा रहने वाला है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जयनमणि, जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, किसान मौसम पर नजर रखता है, मौसम के अनुसार अपनी योजना बनाना चाहता है, लेकिन सही समय पर सही जानकारी उसे मिलेगी तभी यह संभव होगा कि कल बारिश होने वाली है, तभी वो तैयारी करेगा ना कि आज वो सिंचाई ना लगाए। तो इसके लिए किस तरह का तंत्र बनाया जा रहा है, किसानों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है?
2: देखिए, जो मेनली जो आजकल हमारा जो किसान भाई और बहन के साथ है, एक व्हाट्सएप ग्रुप हर जैसे ग्राम या डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, जहां हमारा जो लेटेस्ट है 4 बार पर डे बुलेटिन जाता है। तो उसमें हम 2 तरीके का भेजता है। एक है, एक नावकास्ट जाता है जो मेनली सडन डेवलपमेंट के बारे में बताता है। नेक्स्ट 2-3 घंटा है तो किसान भाई के लिए ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन अपने सेफ्टी के लिए है। जैसे लाइटनिंग है जो सडनली लोगों के ऊपर, आप सभी को मालूम है बिहार झारखंड उड़ीसा में ज्यादा जाने जाता है, तो उनका सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है। वो एक SMS जाता है, उसमें ध्यान देना चाहिए अपना सेफ्टी के लिए, क्योंकि जून महीना में ज्यादा जान को खतरा रहता है, जून जुलाई में जैसे मानसून आगमन का टाइम होता है। और दूसरा एक है कि हमारा जो शॉर्ट रेंज है, मतलब 5 दिन तक जो प्रेडिक्शन है वो आता है, डेली हम लोग भेजते हैं, मैसेज के थ्रू में भेजते हैं। अगर कोई सीवियर वेदर है, लंबा स्पेल है, एक्टिव स्पेल है, मानसून आ रहा है, सारा डिटेल कवर करता है। और उसके साथ साथ एक एक्सटेंडेड रेंज, लंबा अवधि का 2 हफ्ते तक वैलिड है, हम भेजते हैं। वो 2 हफ्ते वाले जो 14 दिन का जो प्रेडिक्शन है वो जाता है। सभी किसान भाई जो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो हमारा होता है, जैसे हर स्टेट में हमारा सेंटर है, तो अगर वो जैसे कृषि विज्ञान केंद्र का बात हो रहा था, अगर वहां संपर्क करे तो सारा डिटेल मिल जाएगा। तो आजकल का जो टेक्नोलॉजी है वो 80% to 90% एक्यूरेटली जो है, ड्राई स्पेल है या ज्यादा बारिश होगा, कितना दिन बरसेगा, वो डिटेल्स आजकल से ही जा रहा है इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए इसका इस्तेमाल जरूर करें। और मैं तो और बोलूंगा कि जो नावकास्ट है उसको अपना सेफ्टी के लिए जरूर व्यवहार करें, क्योंकि ज्यादा जाने जो है हमारा एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं उन्हीं का भी जाता है। हम अगर पिछले स्टैटिस्टिक्स
1: बिल्कुल, और पिछली बार का मुझे भी याद भी आता है कि किस तरीके से आप बताए कि लाइटनिंग की वजह से
2: कई बिहार में
1: जान भी गई,
2: उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में
1: जी। और डॉक्टर शिवे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो किसान है मौसम देखते रहे, उसी के अनुसार अपनी पूरी जो स्ट्रेटजी है वो डेवलप करें, तो ऐसे में ये तो बात हुई सिंचाई की, तो क्या ये सिर्फ सिंचाई तक ही सीमित है या फिर पोषक तत्व प्रबंधन और बारिश का भी किसी तरह का संबंध है जिसे हमारे किसान ध्यान में रखें?
3: हाँ, देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। किसान भाइयों को ये जानने की जरूरत है कि पानी है तो तभी वो अच्छे ढंग से पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं, पानी नहीं है तो फिर वो पोषक तत्व भी नहीं डालते हैं, क्योंकि पोषक तत्व जो है पानी से ही लिए जाते हैं, जड़ों के माध्यम से। तो इस तरीके से ध्यान करने की जरूरत है। जैसे बारिश बहुत ज्यादा हो गई है जिस दिन, तो उस दिन जो है उनको नाइट्रोजन नहीं डालनी चाहिए, जब तक पानी खेत में खड़ा है, धान के खेत में विशेषकर, क्योंकि धान हमारे भारत में लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में होता है, सभी प्रदेश के अंदर होता है, तो उसमें जो है नाइट्रोजन का बहुत बड़ा ह्रास होता है। और नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता धान के अंदर देखें वो 25-30% से ज्यादा नहीं है, बाकी लॉस ही होता है, चाहे अमोनिया गैस बनकर उड़ जाता है, चाहे नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, या जो है फिर वो नाइट्रेट लीचिंग के द्वारा ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है किसानों को कि जैसे हमारा ड्राई स्पेल आ रहा है तो उसमें जो है आप फोलियर फीडिंग कर सकते हैं, पानी का घोल बनाकर पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं, और यदि आपकी बहुत ज्यादा बारिश हो गई है तो उस समय जो नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब पानी निकल जाए खेत से तभी दें, तो इससे हमारी नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ साथ आजकल बायोफर्टिलाइजर्स भी पानी के साथ साथ बहुत अच्छे पोषक तत्व प्रबंधन में हमारी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, अच्छी फसल लेने के लिए, मृदा स्वास्थ्य के लिए, इसका भी इस्तेमाल किसान भाइयों को जरूर करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ग्रीन मैन्योरिंग है या
1: हमारा
3: गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो जो है हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दूसरा हमारे जो फसल अच्छी होती है, और तीसरा जो हमारा ग्राउंड वाटर का रिचार्ज भी अच्छा होता है, क्योंकि ऐसी मृदा के अंदर जो है पानी का अवशोषण ज्यादा होता है तो पानी बह के नहीं जाता है ऐसी मृदाओं के अंदर, और जो हमारी वैसी मिट्टी होती है जिसमें हम ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट की कमी है वहां पानी बह के भी चला जाता है और मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी नहीं बढ़ती है। तो इस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन करें। अभी दूसरे जो है भारत सरकार ने और हमारा इफ्को जो है नैनो यूरिया बना रहा है, तो कुछ नाइट्रोजन उपारणीय छिड़काव से नैनो यूरिया के माध्यम से भी कर सकते हैं, इससे नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ेगी
1: और श्रम भी इसमें कम लगता है
3: और इसके साथ साथ कभी कभी हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और पौधों के अंदर दिखाई देते हैं कि भी जिंक की कमी होगी, आयरन की कमी होगी। विशेषकर मैं बताना चाहूंगा जैसे डायरेक्ट सीधी बिजाई धान की कर रहे हैं और अभी चली रही है पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादातर किसान और दूसरी जगह भी करते हैं, तो यदि शुरू में उनके यहाँ आयरन की हरिमाहीनता दिखाई देती है तो उसके लिए जो है पर्णीय छिड़काव से कर सकते हैं। बाद में जब बारिश होगी तो फिर उनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बारिश अच्छी होती है तो फिर जो है आयरन की कमी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो है पानी की और पोषक तत्व प्रबंधन का एक सामंजस्य है जो एक अच्छा मृदा स्वास्थ्य के लिए और अच्छी उत्पादकता के लिए और अच्छा जो है रिटर्न देने के लिए जरूरी है।
1: जी डॉक्टर अनंता, एक चीज हम ये भी देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो पहले नहीं होती है। तो अगर बारिश उस क्षेत्र में ज्यादा हो गई तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आर्द्रता हो जाती है और उसके बाद बीमारियों अपने आप ही आने लगती है। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए हमारे किसानों को, किस तरीके से इसको लेकर वो सजग रहें।
4: जी, जैसे कि आपने काफी अच्छा प्रश्न पूछा है, बरसात के मौसम में जो बीमारी और कीड़े आते हैं ये जो है एक तो तापमान और नमी आर्द्रता जो हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस पर निर्भर करते हैं। और विभिन्न जो आईसीआर के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान है उन्होंने ऐसे कई मॉडल डेवलप किए हैं जो हम कहते हैं कि डिजीज फॉर वार्निंग मॉडल्स, वो जो है आपके जो मौसम के आधार पे आप उसकी पहले से वार्निंग दे सकते हैं कि फसल की आपकी ये फसल लगी हुई है और ये फसल की कौन सी स्टेज है और इसमें कौन सी बीमारी है कीड़ा आने वाला है, तो इसकी फॉर वार्निंग पहले से पता चल जाती है मॉडल के आधार पर। तो ये जो है अलर्ट जो है हम किसान भाई बहनों को दे सकते हैं कि भाई आपकी ये फसल लगी है इसमें ये कीड़ा या बीमारी आ सकती है, तो आप पहले से इस फसल की निगरानी करना शुरू कर दीजिए। लेकिन इसके लिए किसान भाई लोगों को अपने जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो आपके अनुसंधान संस्थान है या आपकी कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके संपर्क में, कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में तथा मौसम वैज्ञानिकों के संपर्क में रहना चाहिए और समय समय पर आपको जानकारी लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप जो है अपना मोबाइल पे जो है जैसे मेघदूत ऐप अभी बताया है या दामिनी ऐप है, इससे बिजली की आपको जानकारी मिल जाएगी। मेघदूत ऐप है इसमें आपको मौसम की जानकारी के साथ साथ ही कैसे आपको प्रबंधन करना है, मौसम आधारित कृषि प्रबंधन करना है, ये भी आप उसमें जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में जो प्ले स्टोर से ये जो मेघदूत ऐप और दामिनी ऐप इसमें
1: ये बहुत अच्छा आपने बताया। मेघदूत ऐप के बारे में तो काफी प्रचार प्रसार हुआ, दामिनी ऐप जो
2: लाइटनिंग
1: के बारे में बताइए कि बिजली का प्रेडिक्शन भी पता चल सकता है।
2: देखिए बिजली का जो प्रेडिक्शन है वो मॉनिटरिंग है, हमारा जो सिस्टम है कहीं कहीं इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है उसके साथ साथ सैटेलाइट बेस्ड भी हम लोग पता चलता है, तो आधा घंटे विद इन वन आवर वो मैसेज जाता है कि जस्ट फोर वार्निंग, मतलब कहीं इलाके में हो रहा है आगे जाएगा, तो उसको हम लोग ये जैसे बताए कि जो दामिनी ऐप है उसके थ्रू में आपको पता चलेगा कौन सा एरिया में वो एक्टिविटी चल रहा है या थोड़ा बहुत होने वाला है। अच्छा। वो मैपिंग की वजह से वो गूगल ऐप में दामिनी डाउनलोड करके कर सकते हैं बिजली की गिरने का जो है। और जैसे बताया मेघदूत, मेघदूत में आपका पूरा अपना एरिया का भी आप देख सकते हैं, लोकेशन और जो जगह है वहाँ क्या बारिश का संभावना है वो मिल सकता है डिटेल।
1: जी,
4: इसके अलावा मैं कुछ यहाँ पे जैसे बरसात के मौसम में आप खरपतवार नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में आप देखते हैं कि खरपतवार काफी आती है और खरपतवार का जो मुख्य फसल है उससे काफी प्रतिस्पर्धा होती है, वो मृदा से पोषक तत्व तो लेती है इसके साथ साथ जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको भी बाध्य करती है, क्योंकि उनकी बढ़वार जो है मुख्य फसल से ज्यादा हो जाती है और वो जो मुख्य फसल है उसको प्रकाश कम मिलता है तो उसकी बढ़ोतरी रुक जाती है या कम हो जाती है, तो इसका काफी उपज की गुणवत्ता पे भी इसका असर पड़ता है। तो समय समय पर जो आपको खरपतवार नियंत्रण भी करना चाहिए, इससे आपके जो मृदा है उसमें भी क्या होगा कि जो हवा का आदान प्रदान अच्छे से होगा, हवा का आदान प्रदान अच्छा होगा तो आपकी जो जड़ें होंगी वो भी मजबूत होंगी, ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व वो जमीन से ले लेगी, अच्छे से आपका प्रकाश संश्लेषण होगा और आपकी जो उपज की गुणवत्ता है और उत्पादकता दोनों में बढ़ाव होगा।
1: जी जी बिल्कुल। तो अभी आपने बताया, देखिए सुनने में बातें बहुत आम सी लगती है लेकिन इसका प्रभाव बहुत दूरगामी होता है और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है फसलों पर। जयरमणि जी, जैसा कि हम मॉनसून की बात कर रहे हैं और पहले तो जो तरीका होता था कि विंड्स की किस तरफ हवा बह रही है और आसमान में बादल छाए या नहीं छाए उसको देखकर अंदाजा लगाया जाता था, लेकिन अब तो सब चीजें बहुत सिस्टमैटिक हो गई, नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम मॉनसून को ओवरऑल समझने की कोशिश करें तो हमारे देश का मॉनसून किस तरह का है, नेचर ऑफ मॉनसून क्या है?
2: देखिए ये मतलब जानकर हम गर्व अनुभव करना चाहिए कि जो मानसून है वो भारत में सबसे ज्यादा रेन होता है। अगर सारा विश्व का जो क्लेम करते हैं, जैसे अमेरिका भी क्लेम करता है हमारा मानसून है, या कहीं भी आप जो ट्रॉपिकल एरिया है, मानसून मतलब विंड एक्चुअली मेनली हवा, हवा का गति एंड हवा का दिशा, तो हमारा भारत का ऐसा नेचर मतलब हमारा जैसे लैंड है केरला से लेकर के हिमालय अगर जाए और हमारा दो जो समुन्द्र है जो अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, तो ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। हिमालय तो एक जो है जो हमारा हवा आ रहा है समुद्र से उसको रुकता है, अगर हिमालय नहीं होता तो हमारा ये पूरा रेगिस्तान बन जाता, ठीक है ना। सो हमारा जो रेन का जो अमाउंट है वो भी बहुत ज्यादा है, जैसे अगर किसी के साथ कंपेयर करें तो मानसून का सबसे ज्यादा रेन होता है हमारा पूर्वोत्तर, सभी को मालूम है मौसम राम है, चेरापूंजी है, उसके साथ साथ हमारा जो कोंकण का क्षेत्र है चाहे कर्नाटक का क्षेत्र है बहुत ज्यादा बारिश होता है, 2500 मिलीमीटर एक्चुअली 250 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर, तो ये हमारा का पूरा साल का जो पानी है और बिजली भी है मानसून के ऊपर डिपेंड करता है कि खेती तो है ही है, उसके साथ साथ हमारा जो पूरा जीवन है मानसून के द्वारा नियंत्रित होता है, तो इसलिए मानसून बहुत अहम माना जाता है साउथ एशिया के लिए, पर्टिकुलरली हमारा भारत के लिए है।
1: जी जी शिवेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्रॉप के हिसाब से अगर हम बात करें, खरीफ की जो फसलें हैं अगर उनके बारे में एक एक करके और बारिश से जोड़कर अगर इसको थोड़ा समझना चाहें तो किस तरह से?
3: हाँ देखिए, जैसे भारत के अंदर जो लगभग खरीफ में राइस है, धान है, सभी प्रदेशों में उगाया जाता है, इसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है, बिना पानी के धान नहीं हो सकता, तो इसके लिए बारिश का बहुत बड़ा रोल है। और जो हाँ ये हमारी खाद्यान्न की जो पूर्ति के लिए नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा कमाने के लिए,
1: खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है,
3: खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है और इसके साथ साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भी जरूरी है। जैसे पिछले साल जो लगभग हमने 32-36 हजार करोड़ रुपए का जो है
1: रिकॉर्ड एक्सपोर्ट
3: धान का किया है, तो उससे अर्निंग हुई है, तो उस तरीके से धान के प्रबंधन के लिए जरूरी है कि पानी का जो है सदुपयोग करें। और विशेषकर मैं पंजाब हरियाणा में क्योंकि बासमती की खेती होती है, यहाँ बताना चाहूंगा इस माध्यम से कि वो डायरेक्ट सीधी बिजाई करेंगे, डायरेक्ट सीडिंग करेंगे तो उसमें पानी की बचत होगी और पानी कम लगता है, लगभग उसमें 25-30% पानी की बचत हो सकती है, क्योंकि हमको जो है लगभग उसमें 20-22 इरीगेशन देनी पड़ती है लेकिन जो ट्रांसप्लांटेड राइस है उसमें हमको जो 28-30 इरीगेशन देनी पड़ती है। और साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा, जैसे हम पडलिंग करते हैं उस समय यदि बारिश नहीं होती है तो उसमें लगभग हमारा 15 लाख लीटर पानी लग जाता है पडलिंग के अंदर, तो उस पानी की बचत कर सकते हैं हम सीधी बिजाई करके, लेकिन ये सीधी बिजाई जो है अभी कर लें वो बारिश आने से पहले ताकि उनका जमाव हो जाए, तो इस तरीके से जो है धान के अंदर पानी का प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन मक्का है, ज्वार है, बाजरा, इनको थोड़ा कम पानी की जरूरत पड़ती है, मक्का ज्वार बाजरे को, हमेशा जो रेज बेड पर लगाना चाहिए, रिज पर लगाना चाहिए, तो रिज पर लगाएंगे उससे दो फायदे होंगे, एक तो उनकी फसल को नुकसान नहीं करेगा पानी यदि अधिक हो जाता है, और दूसरा उनका ग्राउंड वाटर कहीं पानी खेत का पानी खेत में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, और ये हमारा स्लोगन भी है और ये हमारा विजन भी है,
1: पानी खेत में, गांव का पानी गांव में,
3: गांव का पानी गांव में ही रहे, तो इस तरीके से यदि बिजाई करेंगे वो मक्का ज्वार बाजरे के अंदर तो उनकी फसल अच्छी होगी। और हमारा, मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। अब बात आती है कपास, कपास बहुत हमारी प्रमुख
1: सफेद सोना भी कहा जाता है,
3: हाँ जी बिल्कुल, बहुत मतलब अच्छी क्रॉप है, तो लगभग जो ये पंजाब में भी, हरियाणा में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, गुजरात में भी होती है, और हमारे लगभग महाराष्ट्र, हमारे जो मध्य प्रदेश में, इनमें सभी प्रदेशों में होती है, तो इसके लिए जो है आजकल ये बताते हैं कि रेज बेड पर लगाएं, रेज बेड पर लगाएंगे तो उनका ये फायदे होंगे कि दो लाइनें आ जाएंगी और दो लाइनों के बीच में खूड बन जाएगा, तो अधिक पानी होगा तो खूड के अंदर जो है वो अवशोषित हो जाएगा, फसल को नुकसान नहीं होगा। अब आती है जैसे गन्ने की बात, गन्ना एक हमारी बहुत ही कॉमर्शियल क्रॉप है, सभी जानते हैं चीनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, सभी खाते हैं लगभग, तो इसके लिए जो है पानी की बहुत जरूरत पड़ती है गन्ने के लिए। गन्ने के लिए पानी खेत से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो है गन्ने की पानी जो सहन करने की क्षमता वो अधिक है और इसको पानी की भी जरूरत पड़ती है, तो इसको भी जो है इस तरीके से जब लास्ट जुताई करें, लास्ट अर्थिंग करें, तो गन्ने के ऊपर जो है मिट्टी चढ़ा दें, मिट्टी चढ़ा देंगे तो उनकी जो है गूल बन जाएंगी और गूल के अंदर जो पानी रहेगा तो पानी बाहर बहकर नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह है यदि अधिक पानी भर भी जाता है गन्ने के अंदर तो गन्ने की फसल को जो है बांधने का जरूर सोचें, उसको जो है गिरने से बचाने के लिए। अब बात आती है जैसे हमारी जो है कुछ दाल वाली फसलें हैं, दाल वाली फसलें भी हमके लिए बहुत जरूरी है खाद्यान्न आपूर्ति के लिए, पोषण सुरक्षा के लिए भी प्रोटीन का स्रोत है, और विशेषकर जैसे हमारा अरहर है, अरहर दूसरे नंबर पर आती है चने के बाद में, और लगभग सभी प्रदेशों में इसकी खेती की जाती है और लंबी अवधि की भी है, मध्य अवधि की भी है और बहुत कम अवधि की भी किस्में पूसा ने निकाली है, पूसा अरहर 16 करके वो भी लगा सकते हैं किसान भाई, तो पानी के अनुसार जो लगा सकते हैं लेकिन उसको भी जो है रेज बेड पे लगाना चाहिए, यानी कि खूड बनाकर जो हमारी बेड बनी हुई है उस पर लगाना चाहिए। और मूंग उड़द को तो पहले से बताते हैं 2-3 लाइन लग जाएंगी और उसके बाद में जो है पानी का जो है कोई नुकसान नहीं होगा और फसल अच्छी होगी, या कीट प्रबंधन करने में या खरपतवार नियंत्रण में भी यदि रेज बेड पर लगाएंगे तो उसमें काम आता है।
1: और जो जो हमारे किसानों की एक ये शिकायत रहे या कहे समस्या रहती है कि दाल दलहन लेने में थोड़ा सा वो घबराते भी है कि बारिश अगर ज्यादा होगी तो फसल को नुकसान हो जाएगा, काफी सेंसिटिव होती है ये फसल, तो ऐसे में जैसे कि डॉक्टर शिवे आपने बताया कि रेज्ड बेड यानी कितना ऊंचा होना चाहिए, किस तरीके से मतलब रेज्ड बेड
3: लगभग जो है ये 5-8 सेंटीमीटर ऊंचा होता है और उस तरीके से उस पर लाइनें भी 2-3 आ जाती हैं, तो इसके यही फायदा होता है कि हमको खरपतवार नियंत्रण करना है तो खूड के अंदर जाके हम होइंग कर सकते हैं या किसी को इंसेक्टिसाइड डालना है तो उसके खूड के अंदर चलकर डाल सकते हैं, और जो एक्सेस पानी है वो खूड के अंदर आ जाता है, वो जड़ों में नहीं रहता है, तो इसका ये फायदा है। तो रेज बेड जो है बहुत ही जरूरी है, हालांकि किसान कुछ क्षेत्रों में जागरूक हैं लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी उनको जागरूक होने की जरूरत है ताकि उनकी फसल को वाटर लॉगिंग से बचाया जा सके और उनको किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो।
1: जी, और डॉक्टर अनंता आप क्या बताना चाहेंगे जो कीट और बीमारियों का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि दलहन में ये समस्या काफी रहती है।
4: इसके लिए आपको मौसम की जानकारी होनी जरूरी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मौसम आधारित फॉरवार्निंग मॉडल है, तो उस फॉरवार्निंग मॉडल के आधार पर आप जो आने वाले कीड़े और बीमारी की जानकारी समय पर ले सकते हैं, और जब मौसम आपका अच्छा है मतलब बारिश नहीं हो रही है उसी समय आप जो कीड़े या बीमारी को बचाने के लिए उसमें कीटनाशी का छिड़काव कर सकते हैं, या अगर बारिश आने वाली है तो आप कभी भी उसमें छिड़काव न करें। और जैसे कि अभी डॉक्टर शिवे जी भी बता रहे थे कि धान के लिए और इनके लिए बारिश की मानसूनी जो वर्षा होती वो काफी अच्छी होती है, एक टाइप से वरदान है, और जो पिछले कई वर्षों के सांख्यिकीय आंकड़े हैं उनसे भी पता चला है कि अगर मानसूनी वर्षा, जैसे हम एक तो सिंचाई के रूप में पानी दे रहे हैं, दूसरा आपका जो मानसूनी वर्षा हो रही है, तो अगर मानसूनी वर्षा अच्छी हो रही है तो उससे जो फसल की जो गुणवत्ता होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। इन दोनों में जो मानसूनी वर्षा है और फसल की गुणवत्ता उपज है इसमें एक सकारात्मक रिलेशनशिप है, अगर आप सिंचाई का पानी ज्यादा देते हैं तो उसमें उतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं आएगी बजाय आपकी मानसूनी वर्षा की। तो नहीं तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप जो मौसम के बारे में जानकारी अवश्य लें और अपने क्षेत्र में कौन सी फसल लगानी है, फसल का चुनाव उसी आधार पर करें कि आपके वहाँ पे कितनी बारिश होने वाली है, अगर बारिश ज्यादा होने वाली है तो जो पानी को नवीन क्रॉप है जैसे धान है या कपास है या गन्ना वो वाली फसलें लगा सकते हैं, और या अगर बारिश कम हो रही है तो वहाँ पे आप जैसे बाजरा है या दलहनी है या तिलहनी फसलें लगा सकते हैं, और उसमें समय समय पर मौसम आधारित प्रबंधन आप कर सकते हैं, इससे आपका नई रिसोर्स की तो सेविंग होगी, आपकी लागत में भी कम आएगी और आपकी जो उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, और अगर गुणवत्ता अच्छी है तो आपको उसका जो है बाजार भाव भी अच्छा। अच्छा
1: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, जैसा आप पूछ रहे थे ना कैसे इंसेक्ट और डिजीज का प्रबंधन करें, और क्योंकि जैसे डॉक्टर अनंत अवस्थी जी ने पहले भी बताया था कि बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से कीड़े मकोड़े और बीमारियां ज्यादा आती हैं, तो किसानों को ये सलाह देंगे हम कि वो जागरूक रहें, अपने खेतों में जाते रहें, देखते रहें कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं आ गए हैं या कोई बीमारी तो नहीं आ गई है। अपने जो कृषि विज्ञान केंद्र नजदीक के हैं वहां से वो सलाह लेते रहें, और दूसरे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डेवलपमेंटल एजेंसीज हैं उनसे कॉन्टेक्ट करते रहें, सही दवा का सही समय पर इस्तेमाल करें, और जब बारिश ना हो रही हो तभी जो है उसका स्प्रे करें। और ये आपको वार्निंग मिल जाती है कि भाई आज बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, फिर आपको जो है किसी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे कोई डिजीज है चाहे कोई आपका।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
4: यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगी, एक भारत मौसम विज्ञान विभाग और आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से एक परियोजना, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सलाह चलती है, तो ये हर केवीके में कृषि विज्ञान केंद्र है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, उसमें भी ये जानकारी जो है आप हर शुक्रवार और हर मंगलवार को ले सकते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहा, पिछले सप्ताह मौसम कैसा रहा, आगे आने वाले दिनों में क्या करवट बदलेगा, और मौसम आधारित कृषि प्रबंधन चाहे वो कीड़े
1: मतलब वो एग्री एडवाइजरी भी मतलब साथ साथ
4: कृषि सलाह भी रहती है, आप वहां से ले सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो देखिए कई तरह की व्यवस्था है किसानों के लिए कि उन्हें सही जानकारी, सटीक जानकारी और सही समय पर मिलती रहे, क्योंकि खेती में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अगर आप कृषि में अनुशासन के साथ नहीं चलेंगे तो उसका नुकसान आपको फसलों के रूप में देखने को मिलेगा, यानी उस तरह की उपज आपको प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि सब कुछ रुक सकता है लेकिन खेती नहीं रुकती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अब मौसम पूर्वानुमान को लेकर किसानों में किस तरह की जागरूकता है और किस हद तक उनका विश्वास पैदा हुआ। छोटा सा ब्रेक।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: डॉक्टर जनमणि जी, जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि एक जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर आपने पूर्वानुमान देखा है तो उसको बिल्कुल आप मानकर आगे बढ़ें। तो आपको किस तरह का फर्क लग रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से भी काफी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका प्रभाव या फिर इसका असर किसानों पर किस तरह का देख रहे हैं आप?
2: नहीं, देखिए, जैसे जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैं महाराष्ट्र का बात करूं, कुछ कुछ राज्यों हैं जहां जो पेनिट्रेशन है, जिसको माना जाता है, बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र में तो हर कृषक के पास जो भी जागरूकता है पहुंचता है, ग्रामीण कृषि केंद्र है, जैसे वहां तक लेवल पर पूरा आयोजन है। लेकिन कुछ कुछ एरिया है, जैसे झारखंड एरिया है, कुछ एरिया बिकॉज जो टेक्नोलॉजी है, जैसे मोबाइल का पेनिट्रेशन हो, व्हाट्सएप का हो, तो जहां जहां नेटवर्किंग कम है, फिर भी मतलब जैसे ग्रामीण कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचता है। लेकिन कृषक का पर्सनल जागरूकता बहुत जरूरी है कि वो उनका जो जैसे बात हो रहा था, नियरेस्ट कहाँ है, इन्फॉर्मेशन कौन देता है, तो एक बार एक चैनल बन जाए और वो व्हाट्सएप जो ग्रुप है वहाँ मेंबर बन जाए, तो आपको देखिए, एक तो मिलता है कि पिछले हफ्ते में कैसा बारिश था, और वो भी दर्शाता है, जैसे हमारा कलर भी रहता है, जैसे ग्रीन कलर मतलब बहुत ज्यादा बारिश चल रहा है, ठीक है ना, तो फ्लड का सिचुएशन क्या रहेगा, तो अपने आप को एक शिक्षणीय या शिक्षित हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं अनुरोध करूंगा सारे किसान भाई और बहन को कि वो जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जरूर इस मानसून का पहले वहाँ दर्शन कर, वहाँ जाके विजिट करें और डिटेल उनसे ले,
1: विशेषज्ञों के टच में रहे, उनके संपर्क में रहे।
2: दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि नॉट ओनली हमारा जो एग्रीकल्चर का जो क्रॉप है वो उसके लिए चाहिए, बट खुद का सेफ्टी के लिए भी। जैसे आजकल जो है जलवायु का परिवर्तन वजह से बारिश का जो परिमाण है बहुत बढ़ जाता है, एकदम से 400 मिलीमीटर, 500 पिछले साल देखे होंगे, कि
1: काफी नुकसान भी हो जाता है।
2: तो वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है उनको, नावकास्टिंग के रूप में, वार्निंग के रूप में, सब कुछ इन्फॉर्मेशन डिफरेंट टाइम स्केल में मिल जाता है, लोकेशन एरिया में भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर शिवे, क्योंकि अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है, किस तरह का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर मॉनसून का आप देखते हो? कि हम देखते हैं कि जिस दिन भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मॉनसून का प्रेडिक्शन होता है तो अच्छा हुआ तो शेयर बाजार मुस्कुरा उठता है, अगर गड़बड़ रहता है तो मुरझा जाता है, तो इतना मतलब इतना प्रभाव है मॉनसून का हमारी अर्थव्यवस्था पर, उसे किस तरीके से उसका असर दिखाई देता है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में?
3: देखिए, मॉनसून का जो है हमारी खेती पे बहुत आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जरूरी है, हर मामले में, चाहे वो खाद्यान्न का उत्पादन है, चाहे दलहन उत्पादन है, चाहे तिलहन उत्पादन है, चाहे हमारी गन्ने की फसल है, चाहे हमारी धान की फसल है, सभी फसलों के लिए, क्योंकि खरीफ के मौसम में अधिक उत्पादन होता है हमारा, और बरसात के दिनों में यदि पानी का हम अच्छा सदुपयोग करते हैं और बरसात की सूचना मिल जाती है किसानों को, तो उनके चेहरे पर अलग से मुस्कान आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? क्योंकि उनकी फसल जो है, हम कितना ही पानी दे लें धान और गन्ने के लिए, जब तक ऊपर से मानसून की बारिश नहीं होती तो ये दो फसलें बहुत अच्छे ढंग से नहीं होती। तो इस वजह से जो है हमारी अर्थव्यवस्था में जो मानसून का है बहुत बड़ा रोल है, चाहे हमारा खाद्यान्न उत्पादन है, चाहे एक्सपोर्ट में है, चाहे हमारा किसान की खुशहाली है, चाहे हमारी देश की अर्थव्यवस्था है, तो उस सब में जो है मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये बहुत ही मतलब जरूरी है, और ये इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना और समय से होना बहुत जरूरी है अच्छी पैदावार।
1: डॉक्टर अंता, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे?
4: जी, जैसे कि अभी बताया कि मानसूनी वर्षा से काफी फायदा होता है, मैं तो ये कहूंगी कि अभी जो पूर्वानुमान है उसकी जो सटीकता है उसमें काफी अच्छा आ रहा है, क्योंकि पहले जैसे हम देते थे मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट जो हम देते थे IMD से जो मिलता था वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलता था, तो उसके आधार पर ही जो है मौसम आधारित परामर्श बनाए जाते हैं, लेकिन अब ये ब्लॉक लेवल पे आ गया है।
1: बिल्कुल,
4: ब्लॉक लेवल पे आने से इसकी जो

0: एक्यूरेसी जो है अच्छी हो गई है, तो अगर एक्यूरेसी अच्छी होगी तो जो मौसम आधारित हम सलाह दे रहे हैं वो भी आपकी अच्छी होगी,
1: बिल्कुल
0: सटीक होगी और उससे जो है किसान भाई बहनों को ज्यादा फायदा होगा।
1: जी बिल्कुल, तो जानकारी का सटीक होना बहुत जरूरी होता है और खासतौर पर जैसे कि हम कह रहे हैं जब खेती की बात करते हैं तो मौसम का क्या रोल है, क्या भूमिका है, ये शायद बताने की भी जरूरत नहीं है, ये हम सभी समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा पर आपने अपने अपनी राय रखी और महत्वपूर्ण चर्चा में आपने जानकारी साझा की हमारे किसानों तक। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
3: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा को सुना हमारे विशेषज्ञों द्वारा, ये जानकारी आपको दी जा रही थी और खासतौर पर उन्होंने मौसम और खेती को हम किस तरीके से देख सकते हैं, खासतौर पर मौसम आधारित हम लोग खेती करते हैं कि अगर सामान्य से अधिक वर्षा हुई या सामान्य वर्षा हुई किस क्षेत्र में कैसी वर्षा होगी, किस तरीके से हमें फसल को बोना चाहिए, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। हमारा वक्त हो चुका है आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी से जाने का, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
4: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग, जहां हम बात करते हैं सिर्फ जिंदगी के रंगों की नहीं बल्कि सेहत की, सोच की और संवेदना की। आज हमारे साथ एक ऐसी एक्सपर्ट है जिन्होंने न्यूट्रिशन को सिर्फ क्लिनिक तक सीमित नहीं रखा बल्कि कम्युनिटी, पॉलिसी और पब्लिक हेल्थ तक ले जाने का एक सपना देखा है। न्यूट्रिशनिस्ट, रिसर्चर और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल, दिल से स्वागत करते हैं हम डॉक्टर मितुल पुरोहित जी का। वेलकम डॉक्टर।
1: थैंक यू सो मच तनुषा, आपने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करी है, थैंक यू सो मच।
0: बिल्कुल नहीं मैम, बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कहने की कोशिश करी है, बट बहुत कुछ आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपका प्रोफाइल देखा है, आप बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं समाज में, पब्लिक के लिए, पब्लिक हेल्थ से जुड़े हैं आप, जबकि आपके पास एक ऑप्शन था टू बी इन अ मोर ल्यूक्रेटिव जॉब, बट यू चोज द डिफिकल्ट पाथ, यू चोज द रोड नॉट टेकन, विच इज अ बिग थिंग मैम, आई रियली सल्यूट यू। वी नीड मोर डॉक्टर्स लाइक यू।
1: यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू
0: जी। चलिए शुरू करते हैं आपकी शुरुआत से, सफर से, आपका एकेडमिक सफर स्कूलिंग से लेकर पीएचडी और पब्लिक हेल्थ तक रहा है। जैसे कि हम जानते हैं आपके लिए न्यूट्रिशन हमेशा से एक सब्जेक्ट नहीं, एक तरह का एक मिशन रहा है, एक सोच रही है और एक इम्पैक्ट क्रिएटिंग का एक रास्ता रहा है जिसको आपने तय करने की कोशिश करी है अपने एफर्ट से, अपने डिसीजन से। तो ये किस तरह का सफर रहा, कब ये आपके अंदर ये थॉट आया या डेवलप होना शुरू हुआ, या शुरुआत से ही आप श्योर थे कि दिस इज व्हाट यू वांट इन लाइफ?
1: मुझे बचपन से डॉक्टर बनना था तनुषा। 12th क्लास के बाद ही मुझे मेरी माँ ने बताया कि न्यूट्रिशनिस्ट नाम का भी एक नया प्रोफेशन है और काफी कम लोग इसके बारे में जानते थे उस वक्त। मैंने जब इसकी पढ़ाई शुरू की तब मुझे मालूम पड़ा कि ये कितना जरूरी है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। हमको जिस तरीके से स्कूल में टैक्स, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, उसी प्रकार हमको क्या खाना चाहिए, उम्र के अनुसार कितना खाना चाहिए, किस चीज को कम या ज्यादा खाने से क्या बीमारी होती है, ये सब कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। एटलीस्ट हमारे टाइम पे, हमारी स्कूलिंग के टाइम पे हमको नहीं पढ़ाया गया।
0: ट्रू।
1: मेरी एमएससी के टाइम मैंने अपनी डेजिटेशन एचआईवी एड्स के बच्चों और औरतों पर करी थी जिनको अपनी बीमारी और उससे लड़ने के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। इसके बारे में उनको ये नहीं पता था कि उनको क्या खाना है, क्या खाने से उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। और तब से मुझे लग गया था कि मैं लोगों को जागरूक करूं, उनको बताऊं कि मैगी, चिप्स, नमकीन ये नहीं बल्कि दाल, रोटी, सब्जी, अंडा ये खाने से सेहत बनती है। लोगों को जब तक कोई गाइडलाइन नहीं पढ़ाई जाती तब तक उनको पता नहीं होता कि हमको क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो मेरा ये मिशन बन गया कि मैं वर्कशॉप्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर या मैगजीन के आर्टिकल्स के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से ही, जैसे आज मैं आपसे इस विषय में चर्चा कर रही हूँ, लोगों को जागरूक करूं, बताऊं कि सारी बीमारियां आपके खान पान से ही जुड़ी हैं। अगर आप वो ठीक रखोगे तो आपकी सेहत ठीक रहेगी। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत और सच्चाई से निकला हुआ ये जवाब। आपका हर शब्द आपके इम्पैक्ट को और आपके रिजोल्व को रिफ्लेक्ट करता है कि कितनी सच्चाई से और कितने जुनून से आप इस कॉज से जुड़े हैं। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि आपकी पीएचडी रिसर्च बहुत ही यूनिक टॉपिक पे रही है। आपने रिसर्च करी है डॉक्टर्स के न्यूट्रिशन पर और जो रिजल्ट्स आपने देखे वो काफी आई ओपनिंग रहे, काफी रेवोल्यूशनल रहे। तो डॉक्टर्स खुद अपनी डाइट में और न्यूट्रिशन में ध्यान नहीं दे रहे हैं, इग्नोर करते हैं, ये आपकी रिसर्च का एक कंक्लूजन रहा। तो आपको किस तरह से लगा कि ये एक एक एक मौका है कि आप अपनी सोच को, लोगों की सोच को बदलें और इस सोच को, इस बदलाव की सोच को एक डायरेक्शन दें? ये किस तरह से आपकी रिसर्च ने आपको हेल्प किया? आई एम श्योर उसने आपके आइडियाज को और फ्यूल किया कि जब डॉक्टर्स ही अपने न्यूट्रिशन और हेल्थ की ध्यान नहीं रख रहे हैं तो कॉमन लोग किस तरह से जी रहे होंगे। जैसे कि आपने बताया कि स्कूल कॉलेजेस में हमें नहीं पढ़ाया जाता कि क्या खाना ठीक है, क्या खाना ठीक नहीं है, और मेरे हिसाब से आज भी कोई सिलेबस या करिकुलम ये नहीं बताता है। हाँ, इसके बारे में डायलॉग जरूर है स्कूल्स में, बट उस तरह से अभी भी नहीं है। इनफैक्ट अब तो हालत और भी खराब है विद जोमैटो एंड स्विगी। एटलीस्ट हमारे जमाने में ये सब चीजें नहीं थी तो हम हफ्ते में शायद एक ही दिन बाहर खाना खाते थे और इंजॉय करते थे, बाकी 6 दिन आप घर का दाल रोटी ही खाते थे। बट अब इतनी टॉक होने के बाद भी, इतने डिस्कशंस होने के बाद, डेलिब्रेशंस होने के बाद भी बच्चे ज्यादा डिपेंडेंट है बाहर के खाने पे और जोमैटो स्विगी पे और मैल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन पे। आई थिंक मैल न्यूट्रिशन से ज्यादा हम हाइपर न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ गए हैं विथ ऑल द एक्सपोजर। तो ये किस तरह से आपकी रिसर्च ने आपको डायरेक्ट किया मैम?
1: हाँ जी बिल्कुल, देखिए जब मैं अपनी पीएचडी कर रही थी उस दौरान कोविड आ गया था, तब देश विदेश में डॉक्टर्स की इम्पोर्टेंस का पता चल रहा था कि वो लोग कितना काम करते हैं। मेरी रिसर्च में भी यही मालूम पड़ा, पर यह भी मालूम चला कि काम के बोझ इतना ज्यादा होता है कि वो खुद की सेहत के लिए या एक्सरसाइज के लिए या अपने तीनों टाइम के प्रॉपर खाने के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। स्ट्रेस की वजह से बुरी आदतें जैसे शराब सिगरेट, इनकी लत उनको नॉर्मल लोगों से ज्यादा लगती है। सबसे ज्यादा स्ट्रेस महिला डॉक्टर्स में देखा गया जो कि 30-40 की उम्र के बीच की थी, और अंडरवेट मेल डॉक्टर्स में थे, पुरुष डॉक्टर्स थे जो कि 30-40 के बीच में थे। उनके न्यूट्रिशन और डाइट की नॉलेज जितनी आप और हम अच्छी मानते हैं, मेरी स्टडी के जो रिजल्ट्स आए थे उनके अनुसार उतनी अच्छी नहीं मालूम पड़ी मुझे, क्योंकि उनका सब्जेक्ट न्यूट्रिशन नहीं है
0: जी।
1: बीमारी को देखना परखना उसको ठीक करना है। उनके जो मैंने ब्लड टेस्ट करवाए, जो उनका खान पान का विश्लेषण किया, जो मैंने असेसमेंट्स किए, तो मैंने ये सामने आया मुझको कि उनको एक स्वस्थ जीवन शैली की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब डॉक्टर स्वस्थ होगा तो ही तो वो अपने पेशेंट का ध्यान रख पाएगा।
0: बिल्कुल।
1: पर इन सबके लिए चेंजेस पॉलिसीज में होने बहुत जरूरी हैं। मैं एक रिसर्चर के तौर पर बहुत निर्बल समझ पा रही थी खुद को, इसलिए मैंने ये डिग्री करी जो कि मैं अभी कर रही हूँ, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। और मैंने वो डिग्री इसलिए उठाई क्योंकि मैंने समझा कि अगर मुझे प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स में काम करके पॉलिसीज को चेंज करना है या मैं अपना योगदान जिसमें मैं दे सकूं, तो वो इसी प्रकार मैं कर पाऊंगी। अभी मेरी पब्लिक हेल्थ में शुरुआत है और मैं आशा करती हूं कि कुछ ही सालों में मैं लोगों के हक की गाइडलाइंस बनवा सकूं और उनके भले के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए पॉलिसीज में चेंजेस करवा सकूं।
0: बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक्सपीरियंस से लेड ये सवाल था, ये जवाब था आपका, कि एक्चुअली जब तक पॉलिसीज में चेंजेस नहीं होंगे तब तक कोई भी रिसर्च का कोई एंड नहीं है, कोई एक मुकाम नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। तो इसी से हम चलते हैं हमारे आज के पहले गीत की तरफ। कभी कभी हम दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद ही को भूल जाते हैं, जैसे कि आपने डॉक्टर्स के बारे में बताया। तो इसी भाव के साथ चलिए सुनते हैं हमारा पहला गीत, जिंदगी कैसी है ये पहेली।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: वेलकम बैक डॉक्टर मित्तल।
2: थैंक यू।
1: आपने हमें बताया कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के रूप में आप 200 से ज्यादा पेशेंट्स के साथ काम कर चुके हैं, श्री गंगाराम हॉस्पिटल से लेकर एसएमएस और एसडीएमएच तक आप काम कर चुके हैं यहाँ पे। तो आज के पेशेंट्स में आप अगर जब अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो सबसे कॉमन गलती डाइट और लाइफस्टाइल को लेकर आप क्या देखते हैं और किस तरह से आप सोचते हैं कि इसको रिजॉल्व कर सकते हैं कुछ सिंपल स्टेप्स में?
2: देखिए, आजकल लोग दादी नानी की जो डाइट की बातें करते हैं तो ये नहीं समझ पाते कि दादी नानी की जीवन शैली या उनकी लाइफस्टाइल वो फॉलो नहीं करते हैं। उनकी तरह रोज घी खाओ, पेट भर के खाना खाना चाहिए और भी बहुत कुछ ऐसी बातें लोग मुझे बोलते हैं जब भी वो मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, मेरे से परामर्श लेते हैं, पर वो उनके से इतना काम नहीं करते। उनके पास आजकल बहुत सुविधाएं आ गई हैं जिस वजह से खाना ज्यादा मात्रा में खाया जाता है पर एक्सरसाइज ना के बराबर होती है। इससे बीमारियां जैसे कि डायबिटीज और मोटापा बहुत बढ़ने लग गया है। बड़े लोग ही नहीं, बच्चों में भी ये बीमारियां देखने को मिल रही हैं अब तो।
1: बिल्कुल।
2: कॉमन गलतियां जो देखी मैंने वो ये थी कि लोग टीवी देखने और मोबाइल में इतना लिप्त हो चुके हैं कि खाना या तो वो बाहर से मंगवा के खाते हैं या टीवी के सामने बैठ के खाते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि कितनी मात्रा में खाना उनके शरीर में जा रहा है। और या फिर वो आलस्य या अब मोह बोल लीजिए कि टीवी का प्रोग्राम नहीं मेरा छूट जाए तो बाहर का खाना कि मैगी खा ली, चिप्स खा लिए, नमकीन खा ली, नूडल्स खा ली, इनका सेवन ज्यादा करने लगे हैं। फ्रूट्स और सैलड बहुत कम खाते हैं, ना उसका शौक रखते हैं, उसको घास फूस बोल के टाल देते हैं, जबकि इनके पोषक तत्व जो होते हैं वो हमको बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं, हमारे बाल हमारी स्किन को अच्छा रखते हैं, कब्ज दूर करते हैं, पर लोगों को ये जानकारी नहीं है। खाने में दालें, राजमा, छोला, लोबिया, अंडा, दूध, इनका जो सेवन होता है वो बहुत जरूरी है। इसमें प्रोटीन होता है जो कि हमारे शरीर को मजबूती देता है, पर लोग रोटी और सब्जी से ही खाना खा लेते हैं जिससे पूरा पोषण उनके शरीर में नहीं जाता।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं जैसे हमने शुरुआत में भी बात की कि सच में आज की जितनी कॉन्वर्जेशन आज न्यूट्रिशन और फूड और डाइट के अराउंड हो रही है, हेल्थ के अराउंड हो रही है, स्पेशली न्यूट्रिशन, उतनी पहले किसी डेकेड में नहीं हुई और फिर भी हम फॉल आउट कर रहे हैं इन मेंटेनिंग एक आइडियल स्ट्रक्चर, एक आइडियल साइज। हम ओवरवेट, ओबेसिटी, हर तरह के स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो फूड रिलेटेड हैं और ओवर न्यूट्रिशन रिलेटेड हैं उनसे सफर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा लैप है सिस्टम में, समझ में और हमारी लाइफस्टाइल में। और दादी नानी की जैसे आपने कहा कि वो चीजें अब उन्हें फॉलो करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज बहुत अलग टाइम्स और लाइफस्टाइल्स में हम बंधे हैं, तो कॉन्शियस चॉइसेस करना आई थिंक इज द वे आउट। इसी से मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आप संस्थाओं, एनजीओज और फाउंडेशंस के साथ भी बहुत जुड़े हैं और रिमोट एरियाज में भी आपने काफी सर्विसेज दी हैं, काम किया है, कंसल्टेशंस लिए हैं, तो रूरल लाइफ और सेमी अर्बन एरियाज में क्या स्थिति सेम है? क्या उनके न्यूट्रिशन अवेयरनेस में कुछ डिफरेंस है या बेहतरी है या कमी है? वो किस तरह से, क्या एक्सपीरियंस है मैम आपका?
2: देखिए, जैसे अभी आपने बोला लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैं ये बोलूंगी कि हम लोगों को जैसे हमारे आमतौर पे जितने भी लोग हैं उनको इस चीज के बारे में पता ही नहीं है कि पूरी दुनिया भर में इंक्लूडिंग आवर ओन कंट्री इंडिया, हमारे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया भर में 70% से ज्यादा लोगों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो कि हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से होती है उससे उनकी मौत हो रही है, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर मतलब दिल से रिलेटेड बीमारी, कैंसर, डायबिटीज, मोटापा, उक्त रक्तचाप, ये सारी नॉन कम्युनिकेबल या लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीजेस हैं। अब इन चीजों के बारे में जब पढ़े लिखे लोगों को ही पूरी नॉलेज नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि रूरल एरियाज या जो रिमोट एरियाज हैं जिनमें लोग रहते हैं उनको तो इसके बारे में कुछ वैसे भी पता नहीं होगा। वहां पर एक मैगी का पैकेट इजीली पहुंच जाता है, पर ये बताना कि वो जो मैगी का पैकेट आप खा रहे हैं उसके अंदर जो केमिकल्स जले हुए हैं वो आपके शरीर के लिए कितने हार्मफुल हैं वो कोई नहीं बताता है। मैंने ये देखा कि लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में या क्या खाना चाहिए इसके बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, और हमारी एजुकेशन में ही हमको ये पढ़ाया नहीं जा रहा। पढ़े लिखे लोग भी आपको ये बोलेंगे कि घी खाने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, जो कि गलत है, क्योंकि आप जब घी खाते हैं तो उससे आपकी सिर्फ चर्बी बढ़ती है, हड्डियां तो आपकी प्रोटीन खाने से ही मजबूत होंगी। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि आप दूध लीजिए, अंडा लीजिए, मीट लीजिए, दालें लीजिए, पर इसके बारे में कोई नहीं बताता, ना कोई ठीक करता है। पहले की सोच अब साइंटिफिक नॉलेज की वजह से बहुत गलत फैक्ट्स को ठीक कर रही है, पर लोगों को ये नॉलेज हमारी एजुकेशन सिस्टम ही दे सकती है, जो कि गवर्नमेंट उसको प्रमोट नहीं कर रही। जो भी लोगों को नॉलेज है वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इनसे, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से आ रही है, जिनको खुद को आधी नॉलेज है और लोग उसको सच मानकर फॉलो करते हैं, और इससे उनका बहुत नुकसान हो जाता है। अवेयरनेस तब आएगी जब सरकार सही एजुकेशन, सही मार्गदर्शन देगी और लोग अपनी समझ से, न्यूट्रिशनिस्ट से या डायटिशियन की सलाह से अपनी नॉलेज को चेक करेंगे, ना कि सुनी हुई बातों को और सोशल मीडिया पोस्ट को सही मानकर ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। एक छोटा एग्जाम्पल दूंगी बीच में, ये अच्छी बात है कि आजकल के यूथ को जिम जाने का बहुत शौक लग गया है, पर उनको इस चीज के बारे में करेक्ट नॉलेज ना होने की वजह से वो इतनी अधिक मात्रा में प्रोटीन खाने लग गए हैं कि सबकी किडनी में प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं, कुछ लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं, स्कूल जाते हुए बच्चों को हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनको यही नहीं पता कि कितने अमाउंट का, कितनी मात्रा का प्रोटीन आपके शरीर के लिए जरूरी है और कितना नहीं। अब अगर आप अमेरिका के किसी इन्फ्लुएंसर की बात मानेंगे तो वो हमारी कद काठी में बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी एवरेज हाइट 5'8" होती है एक लड़की की, हिंदुस्तान में एवरेज हाइट 5 या 5'1" होती है। उनका खाने पीने का शैली बिल्कुल अलग है हमारे से, पर लोग उनको फॉलो करते हैं, जिस वजह से ये सारी तकलीफें आ रही हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अगेन बहुत अनुभव से भरा जवाब था आपके, आपके अनुभवों का एक समावेश था आपका जवाब, बहुत ही अच्छी जानकारी आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। सच है कि हम एक फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन के जमाने में रह रहे हैं, जहां एवरीबडी एंड एनीबडी आई थिंक आई नो ऑन द इंटरनेट इज टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जो बहुत गलत है क्योंकि उसका एक्सेस इतने लोगों तक है, इतने लोगों तक है, तो बहुत ही खतरनाक एक एक एक रास्ते पे हम चल रहे हैं, एक डबल एज स्वर्ड है, जहां पे ये बातचीत होना जरूरी है, बट सही माउथ से आना, सही एक नॉलेज बेस्ड सिस्टम से ये बात डाउनलोड करना जरूरी है, ना कि सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे। आई होप जो हमारे लिसनर्स हैं वो इस बात को समझें, इसकी गहराई को समझें और सच में अपनी हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेके एक्सपर्ट्स का गाइडेंस लें। अगर खुद नहीं जानते हैं, खुद पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी मैं कहूंगी कि किसी एक्सपर्ट की राय लें और अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। आगे चलते हैं हमारे अगले गीत की तरफ। जब सही जानकारी मिल जाए तो रास्ता अपने आप साफ होने लगता है, और इसी उम्मीद के साथ हम सुनेंगे ये गाना, ये सफर बहुत है कठिन मगर ना उदास हो मेरे हम सफर।

0: क्या खूबसूरत गीत है उम्मीद से भरा। वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक डॉक्टर मित्तल। डॉक्टर, आप ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ भी जुड़े हैं और हमारा बहुत सारा लिसनर बेस, हमारा बहुत सारा श्रोतागण ट्राइबल कम्युनिटीज से जुड़ा हुआ है, उनके अपलिफ्टमेंट से जुड़ा हुआ है। रेडियो तांतिया भील 90.8 FM जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां ये प्रोग्राम एयर होते हैं, तो ट्राइबल महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए बहुत सारे जो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स होते हैं वो माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, इन सब के अराउंड रहते हैं। आज भी ये चीजें बहुत समस्या है वहां पे। हम माल न्यूट्रिशन की जब बात करते हैं तो ये ही वो तबके हैं जो माल न्यूट्रिशन एनिमिक लोगों से भरे हुए हैं और उनसे ग्रसित हैं। आपके हिसाब से ग्राउंड लेवल पर कौन से सिंपल और लोकल डाइटरी चेंजेस हम ला सकते हैं इन एरियाज के लोगों के लिए और वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हों इन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए?
1: ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, जो कि जैसे अभी आप बोल रही थी तनुषा, कि एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है जिस पे हमारा देश चल रहा है, जो कि एकदम सच बात है। एक तरफ हमारे में कुपोषण है, एनीमिया है, और दूसरी तरफ हमारे ओवर न्यूट्रिशन है जिसमें मोटापा है, डायबिटीज है और हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कुछ ही महीनों पहले राजस्थान में एक ट्राइबल कम्युनिटी को में काम किया था, जिसमें मैंने जो वहां पर सोशल वर्कर्स हैं उनकी वर्कशॉप ली थी 3 दिनों की। उनके काफी प्रश्नों के जवाब दिए थे मैंने, उनकी डाइट और लोकल फूड अवेलेबिलिटी से रिलेटेड, और मैंने उनको ये बताया था कि आपके जो खान पान जो वहीं पर ही आपके उगते हैं उन चीजों को कैसे आप खाने में ले सकते हैं। हमारे यूथ को जागरूक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कंट्री में मेल न्यूट्रिशन और एनीमिया इतने सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होने के बावजूद भी खत्म नहीं हो रही है। मुझे ये बताते हुए बेहद दुख होता है कि मध्य प्रदेश में 1.5% ज्यादा, जो हमारे नेशनल एवरेज है उससे ज्यादा बच्चों में मेल न्यूट्रिशन है। एनीमिया की, हाँ जी, एनीमिया की जो दर है वो भी 75% से भी काफी ज्यादा है ट्राइबल्स के अंदर एमपी के, जो कि अपने आप में शॉकिंग न्यूज है। कुछ सिंपल डाइट में चेंजेस जिससे मेल न्यूट्रिशन को रोका जा सकता है वो ये है कि खाने में, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, दाल, दूध, अंडा, मीट का सेवन बढ़ाना बहुत जरूरी है, और एक बैलेंस्ड डाइट लेना जिसमें अन्न जैसे चावल, रोटी, दालें, सब्जी और कच्चे फल सब्जियां हों। जब तक हम भूख के टाइम मैगी, चिप्स, कुरकुरे, जूस ऐसी पैकेट वाली चीजें खाकर भूख मिटाएंगे तो हमारी हेल्थ के लिए वो चीजें एकदम खराब हैं। तब तक हमारा शरीर मैल नरिश्ड या कुपोषित ही रहेगा। इन सारी पैकेट वाली चीजों में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो जिनसे बनता है, वो ज्यादातर हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक हैं। इनसे मोटापा, डायबिटीज, दिल की बीमारी, रक्त की बीमारी जिसको हम एनीमिया के नाम से जानते हैं, और मेल न्यूट्रिशन बढ़ता है। 2 से 3 टाइम हमको एटलीस्ट घर का खाना, घर पे खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे छोटे बच्चों को माएं एक रोटी का टुकड़ा पकड़ा देती हैं या बिस्किट दे देती हैं, उसके बजाय उनको गाजर का टुकड़ा दें। खाने के टाइम जो उनका है वो फिक्स रखें, और 6 महीने का होते ही दाल का पानी, चावल का पानी ये देने के बजाय मैश करके खिचड़ी दें थोड़ी गाढ़ी, या दूध में बिस्किट भिगा के देने के बजाय दूध में चावल का पेस्ट से खीर बना के गाढ़ी सी बच्चों को वो दे सकते हैं। 7-8 महीने के बच्चे को धीरे धीरे अलग अलग तरीके की सब्जियां, जैसे हरी पत्ते की सब्जियां, अंडा, विभिन्न विभिन्न प्रकार की दालें, ये धीरे धीरे देना शुरू कर देना चाहिए, जिससे बच्चा जब 1 साल का हो तो उसको इन चीजों की आदत आराम से लग सके और वो सब कुछ आराम से खा सके। हम ये कहते हैं 6 महीने तक के बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी है, मतलब पानी भी नहीं देना है ऊपर से, सिर्फ माँ का दूध, और 6 महीने के बाद बच्चे को धीरे धीरे करके दूसरी चीजें देनी है, कि कभी थोड़ा सा दिन, 6 महीने का बच्चा 6 महीने से 5 दिन ऊपर हुआ है तो उसको एक टाइम पर थोड़ा सा आपने खीर खिला दी, धीरे धीरे करके इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है 1 साल तक। अब मैंने देखा है कि पहले 3 साल बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी होती है, और ये हमारी सारी किताबों में भी लिखा हुआ है, WHO के गाइडलाइंस में भी लिखा हुआ है। ये सारी बातें मेल न्यूट्रिशन को ठीक करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीमिया या खून की कमी सबसे ज्यादा औरतों में, किशोरावस्था में और छोटे बच्चों में देखा गया है, तो कोशिश करके दिन में किसी भी एक टाइम पे हरी पत्ते की सब्जी बनाना बहुत जरूरी है, जैसे कि बथुआ, सेजने के पत्ते, मूली के पत्ते, सरसों का साग, जो भी लोकल मिल जाता है वो देना बहुत जरूरी है। आजकल सर्दियां हैं तो ये हमको आसानी से मिल भी जाएंगी। काले तिल के लड्डू हैं, बाजरे की खिचड़ी है, मटर की सब्जी या पराठा है, ये जो चीजें आप बना के खिलाएंगे वो आपके लिए आयरन में भी अच्छा है, आपके लिए प्रोटीन में भी अच्छा है, कैल्शियम भी इनमें अच्छा मिलता है। हरे पत्ते की सब्जियों को धूप में सुखाकर उसका पाउडर बना के रख सकते हैं, जिससे गर्मियों में इसके पराठे या चटनी के तौर पे आप इसको काम में ले सकते हैं, और ये आपको एनीमिया में आपकी जो खून की कमी है उसमें मदद करता है। साथ साथ में हम ये भी कर सकते हैं, जैसे मटर है, मटर में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, उसको आप फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं, सर्दियों के टाइम पे बहुत सस्ता भी मिलता है और गर्मियों में इसको आराम से आप खाने में ले सकते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, वो हमको दालों से, दूध से, दूध की बनी चीजों से, अंडे से, चिकन, मछली, इन सबसे मिलता है और यही हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। एनर्जी वो है जिससे हमारे को स्फूर्ति मिलती है, जो हमको अनाज से मिलता है, जैसे आटा, चावल, रागी, बाजरा, जौ, और साथ साथ में वसा से भी, जैसे कि तेल है, घी है। पर डालडा ना खाएं, मार्गरीन ना खाएं, क्योंकि ये हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। और मीठा, जैसे कि चीनी, बूरा, एस्पार्टेम, या मीठा करने वाले जो केमिकल पदार्थ होते हैं, जो कि टॉफियों में और चॉकलेट में आपको बहुत मिलेंगे, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। ये मोटापा भी बढ़ाते हैं और ये डायबिटीज जैसी बीमारी को भी न्योता देते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंफॉर्मेशन से भरा जवाब था आपका। मेरे लिसनर्स को, हमारे लिसनर्स को बहुत फायदा हुआ होगा आपके इस जवाब से, और आपने बहुत ही रूट लेवल पे जाके इस क्वेश्चन का आंसर दिया, जो मेरे अगले सवाल को भी एक तरह से आपने कवर कर ही दिया, जहां पे मैं पूछती आपसे कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं या हाई शुगर और हाई सॉल्ट में जो जो फूड आइटम्स हम कंज्यूम करते हैं और वो हमारे लिए किस तरह से हानिकारक हैं, उनसे बचने के लिए भी आपने काफी सारी चीजें मुझे इस आंसर में दी। तो और हमारा तो हिंदुस्तान, हमारा, हमारे देश का जो पूरा सिस्टम है, जो सीजनल हमारे फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं, हर सीजन का एक फ्रूट है, हर सीजन की एक सब्जी है, हर सीजन का एक फ्लेवर है, तो अगर हम सिर्फ उस सीजन के हिसाब से खाना खाएं और अपने डाइट में वो चेंजेस लाएं सीजनल चेंजेस के हिसाब से, तो हम एक्चुअली कितना हेल्दी खा सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, क्योंकि दीज आर थिंग्स जो हम ग्रो करते हैं, हमारे यहाँ उगती हैं, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर हम सीजनल रिदम्स को फॉलो करें तो हमारा न्यूट्रिशन और हेल्थ अपने आप इम्प्रूव होगा। और आई एम श्योर इट्स डिफिकल्ट कि आप एक ऐसी लाइफ लीड करें जहां पे आप ये हाई प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाएं, बट एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तो कर सकते हैं, जो आप हफ्ते में चार बार या हफ्ते में तीन बार इन पे डिपेंडेंट हैं और बिना एक कॉन्शियस थॉट के आप ये चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, उनको कम करके शायद आप हफ्ते में दो बार इन चीजों को कर सकते हैं, व्हेन यू गो आउट एंड व्हेन यू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। बट कम से कम चार दिन तो हफ्ते के हेल्दी फूड खाएं, सीजनल फूड खाएं, जो हमारी कंट्री में इतना ब्यूटिफुली एक रिदम है, सीजनल रिदम, उसको फॉलो करें तो शायद बहुत चीजें अपने आप ट्रैक पे आ जाएंगी। और सेहत जब साथ हो तो जिंदगी खुद मुस्कुराती है, इसी पॉजिटिव एहसास के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, मैं चली देखो प्यार की गली।

0: Welcome back, Dr. Mitul.
1: Thank you so much.
0: Ma'am, ये मेरा सबसे favorite question है क्योंकि ये हमारे music से related है, हमारे जिंदगी के रंग गीतों के संग की बात को ये और आगे बढ़ाता है और उसमें कुछ गीतों की मिठास घोलता है. आप खुद एक trained हिंदुस्तानी classical vocalist हैं, तो हम ऐसे तो आपको जाने नहीं देंगे. तो पहले आप मुझे ये बताएं कि music, mental health और nutrition ये सब आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं और कितनी हेल्प म्यूजिक कर सकता है आपकी मेंटल हेल्थ और उसी से रिलेटेड आपकी न्यूट्रिशनल हैबिट्स को बेटर करने के लिए. और उसके बाद हम सुनेंगे आपसे कुछ थोड़े से गीत.
1: जरूर जरूर
0: जी.
1: ये आपका सवाल बहुत ही अलग तरीके का है क्योंकि मुझे कभी किसी ने एक सवाल पूछा नहीं, तो मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से इसका आंसर ढंग से करने का जो कि इसका कुछ महत्व बता सके. देखिए, ये म्यूजिक और मेंटल हेल्थ के बीच में जो लिंक है वो सदियों से साइंटिस्ट बना रहे हैं. हम भी जानते हैं कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे जो ये सारे गम पधनी सारे जो नोट्स होते हैं ये हमारे ब्रेन में हमारे मस्तिष्क में अलग तरंगों से जुड़ते हैं. ये हमारे शरीर में जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं जैसे कि सेरोटोनिन है, डोपामीन है, जिससे हमको शांति, खुशी, एक ठहराव सा, कामनेस और बहुत सुख का एहसास होता है. क्योंकि जब गाने का म्यूजिक बहुत ही सूदिंग होता है, जैसे पुराने जमाने के गाने हुआ करते थे, जैसा कि अभी आपने गाना प्ले किया, वो कानों में सुनते ही हमको मजा आ जाता था. उससे हमारा जो मानसिक संतुलन होता है लोगों का जो कि बहुत डिप्रेशन में है या दुखी है, उनका मूड अच्छा हो जाता है म्यूजिक से. और इनकी म्यूजिक के नोट्स की बहुत इम्पोर्टेंस होती है अपने आप में. तभी आप देखेंगे कि क्लासिकल म्यूजिक के जो नोट्स होते हैं वो बिल्कुल रागों पर निर्धारित होते हैं, किस समय पे कौन सी राग गाई जाती है, उसके पर्टिकुलर अलग अलग अपने स्वर होते हैं. और जो आप मूवी के गाने या फिल्मों के गाने होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं. पर अगर आप बहुत ज्यादा उत्तेजक गाना सुनेंगे जिसमें बहुत ज्यादा जोर का म्यूजिक है तो हमारा खुद का दिमाग भी वैसा ही हो जाता है. और यही चीज आपने नोटिस किया होगा, जब आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं तो बहुत भीना भीना म्यूजिक चल रहा होता है, शादियों में जाते हैं तो शहनाई बज रही होती है, और आप जब बारात में जाते हैं तो ढोल लगा रहे बज रहे होते हैं, पर वहां पर कोई खा नहीं रहा होता. जब आप खाने की ओर जाते हैं तो म्यूजिक हमेशा भीना और एकदम सूदिंग होता है क्योंकि तब आपको खाने की भूख ज्यादा अच्छी लगती है. अगर बहुत जोर से खाने बज रहे हो कि भांगड़ा कर रहे हैं लोग और बहुत जोर से खाना मतलब गाने ऐसे बज रहे हैं तो लोगों का खाना भी कम खाया जाता है क्योंकि आपका जो दिमाग होता है वो थोड़ा सा अनसेटल हो जाता है, आपको भूख इतनी नहीं लगती. तो गाने का आपके मस्तिष्क की तरंगों से, आपकी कामनेस से सीधा लिंक है और उन्हीं चीज का आपके न्यूट्रिशन से भी है. अगर आप शांति से कामनेस से बैठ के खाना खाते हैं और बहुत भीना म्यूजिक होता है तो आपको खाना ज्यादा अच्छा पचता है, शरीर को ज्यादा अच्छा लगता है. और ये साइंटिफिकली प्रूवन है. हमारी बॉडी के अंदर ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे पाचन शक्ति को बहुत ठहराव देती है, कामनेस देती है, जिससे कि हमारे एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का बेटर होता है.
0: बहुत ही दिशा देने वाला और सोचने वाला जवाब है मैम ये सच में, कि कैसे दिमाग इन टोन से जुड़ा हुआ है, इन म्यूजिकल नोट्स से जुड़ा हुआ है और उन्हीं पे रिस्पॉन्स करता है, रिएक्ट करता है स्टिम्युलाय ऑफ म्यूजिक पे. और इसी से जुड़ा हुआ, आपके खूबसूरत जवाब से जुड़ा हुआ, हम एक खूबसूरत सा गीत आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप हमारे लिए कुछ गा दें तो.
1: जरूर, मैं दो पंक्ति गा देती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आप मुझे गाने के लिए बोलेंगी.
0: मैंने सोचा चलिए एक सरप्राइज एलिमेंट रखते हैं.
1: जी मैं दो पंक्ति सुना देती हूँ.

0: थैंक यू।
1: बहुत ही खूबसूरत मैम, क्या सुर हैं आपके और क्या ब्यूटीफुल गीत आपने गाया, बहुत ही सुंदर। आई विश आई कुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज गाना खत्म करें, बट हमारे पास इतना समय नहीं है और समय आगे बढ़ता है तो हमें भी शो को आगे बढ़ाना पड़ता है। बट आज का मेरा आखिरी सवाल आपसे बहुत ही सिंपल है कि डॉक्टर, आपका एक एक कोई जीवन जीने का इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेसफुल लाइफ को, जहां पे हम हर तरह की चीजें, जिसकी हमने अभी ऑलरेडी बात की, लाइफस्टाइल डिजीजेस, गलत ईटिंग हैबिट्स, ओबेसिटी, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, सब कुछ, इन सब से लड़ने के लिए कुछ एक या दो एडवाइस आपकी, जो एक लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है जिससे, वो एक ऐसी चीज नहीं है जो मैं कर रही हूं क्योंकि मुझे किसी ने बताया है, ये मैं अपने जीवन शैली में अपना लूं तो शायद जीवन सुधर जाए, ऐसा कोई एडवाइस जो वन साइज फिट्स ऑल सब एज ग्रुप्स के लिए हो, वो क्या होगा?
0: जरूर, देखिए एज अ न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट और एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल मैं यही एडवाइस करूंगी कि प्लीज घर का बना हुआ ताजा खाना खाएं। जैसे कि आपने कहा कि हम लोग आजकल के यूथ बाहर जाके खाना खाना बहुत पसंद करते हैं, तो हफ्ते में एक दो दिन हो जाता है। मैं बोलूंगी ये हफ्ते में एक दो दिन के बजाय महीने में एक दो दिन करें। पहले के टाइम पे कभी भी आप नोटिस करेंगे लोग बाहर जाके खाना नहीं खाते थे, एक दूसरे के घरों पे ही खाना खाया जाता था, बाहर जाके खाना खाना इतना अच्छा नहीं मानते थे। बट आजकल ये एक कल्चर हो गया है, इसको अच्छा मानने लग गए हैं, जहाँ पता ही नहीं है कि जिस रसोई में खाना बन रहा है उसकी सफाई कितनी होती है, वहां पर कितनी सफाई से धोकर सब्जियां कट रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज, आपको एक बैलेंस्ड प्लेट बनानी होती है, अपनी प्लेट में एक बैलेंस्ड आहार लें, जिसका मतलब है चौथाई प्लेट का हिस्सा, आधा हिस्सा, मतलब आपकी पूरी प्लेट के अंदर चौथाई प्लेट, उसका भी आधा हिस्सा डाल लेना है, और उसका जो आधा हिस्सा बचता है उसका वसा, घी, तेल, ड्राई फ्रूट्स ये लेना है। अब उस प्लेट का एक चौथाई हिस्सा आपको अनाज लेना है, जिसमें आपके चावल, रोटी, जौ, रागी, ये जो चीजें हैं, बाजरा, ये इसमें आएंगी। चौथाई प्लेट में सब्जियां, जिसमें सीजन के हिसाब से सब्जियां खाएं, और हरी पत्तेदार सब्जियां खाना बहुत ज्यादा जरूरी है एनीमिया मुक्त बनने के लिए।
1: बिल्कुल।
0: और चौथाई प्लेट आपको लेना है कच्चे फल। फल जो कि लोग घास फूस बोल के खाते नहीं हैं, उसके अंदर इतने पोषक तत्व हैं, इतने विटामिन्स और मिनरल्स हैं, जिनको बहुत कम मात्रा में आपके शरीर को जरूरत होती है, पर जब ये आपके शरीर में होते हैं तो आपकी त्वचा, आपके बाल, आपका मानसिक संतुलन, आपकी मूड, आपका गट, मतलब आपके जो पाचन क्षमता है वो उसको बहुत अच्छा कर देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक ग्लास दूध, चाहे वो फिर आप दही के फॉर्म में ले रहे हैं, छाछ के फॉर्म में ले रहे हैं, पर एक ग्लास दूध भी साथ में लेना अति आवश्यक है। रोज व्यायाम करें, किसी भी एक दिन ये ना सोचें कि मैंने आज घर का इतना काम कर लिया, मैं थक गई। नहीं, एक कंसिस्टेंट टाइम, कोई एक टाइम सुबह का आप सोच लें कि मैं सुबह 5 बजे उठ के 40 मिनट या 45 मिनट रोज मैं अपने जल्दी जल्दी चलूंगी, जिसको ब्रिस्क वॉक कहते हैं, वो करूंगी, नहीं तो मैं सूर्य नमस्कार करूंगी, या मैं योगा करूंगी, या मैं जिम जाऊंगा, जो भी आपको सही लगता है। एक अपना निर्धारित समय आपको व्यायाम को देना बहुत जरूरी है। और चीनी, बाजार की मिठाई, टॉफी, चॉकलेट, पैकेट में मिलने वाली खाने की चीजें, इन सबको ना खाएं। ये पहले बोला जाता था कि चीनी तो आपको शक्ति देती है, उसमें आपको और ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, पर चीनी से जो आपको बीमारियां होती हैं उसके बारे में कुछ ही एक दशक पहले से ही मालूम पड़ने लगा है कि ये हमारे लिए कितनी ज्यादा खराब है। इनफैक्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए तो चीनी को हम बिल्कुल मना करते हैं लेने के लिए। तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको चीनी, आपको मीठा ही खाना है, तो आप थोड़ा सा गुड़ खा सकते हैं, गुड़ वाली चाय पी ली, या आपको मीठे में सपोज आपको शेक पीना है कोई, तो दूध के अंदर आपने केला डाल लिया चीनी डालने के बजाय, या खजूर डाल लिए, खजूर का पाउडर बना के डाल लिया, वो चीजें आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। वनस्पत, आप बाजार की मिठाई, चीनी, बूरा, गुड़िया शक्कर, ये चीजें खाएं, वो ना खाए, वो ही मैं आप लोगों को सलाह दूंगी। और ये इस बात का ध्यान रखें कि आपको खुश रहना है, कि जिंदगी तो चलेगी, तकलीफें भी आएंगी, पर अगर आप खुश रहेंगे, आपका मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, आपको अपनी जिंदगी में जीने की जो इच्छा है वो कम नहीं होने देनी है। हमारा खान पान ठीक होगा तो हमारा मन खुश रहेगा, हम व्यायाम करेंगे तो हमारी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिससे कि हमको जो भी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में भी आपने देखा होगा बहुत स्ट्रेस हो गया है,
1: बिल्कुल
0: ये सब आपके खाने पीने से, आपके व्यायाम से ही रिलेटेड है। तो स्ट्रेस ना लें, खुश रहें, अच्छा खाना खाएं, व्यायाम रोज करें और अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से जिएं, जिसमें बाहर की चीजें, पैकेट की चीजें, बहुत मीठा, बहुत तला बुना, उसको अवॉइड करें, मैं ये कहूंगी।
1: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। जैसे कि आपने शुरू में भी कहा था कि जैसा अन्न वैसा मन, और अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा जैसे कहते हैं, तो मन को ठीक करने के लिए काम करें, अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन, जैसे डॉक्टर मितुल ने हमें बताया इतना डिटेल में, इतनी गहराई से, और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ डॉक्टर मितुल ने आज साझा की। तो मेरे लिसनर्स को मैं बहुत बहुत बहुत रिक्वेस्ट करूंगी कि जो आज बातें डॉक्टर मितुल ने हमारे साथ शेयर करी हैं, उन्हें कोशिश करें कि अगर 100% नहीं तो कम से कम 60-70% अपने जीवन में उनको उतारने की कोशिश करें। उसी से बहुत चेंजेस, बहुत बदलाव आप फील करेंगे, और जब आपका ओवरऑल मन ठीक होगा, आपका न्यूट्रिशन ठीक होगा तो आपका मन ठीक होगा, और आपका मन ठीक होगा तो आपका जीवन बेहतर होगा। तो डॉक्टर मितुल, आज की ये बातचीत सिर्फ न्यूट्रिशन पर नहीं थी बल्कि एक जिम्मेदारी पर थी, जानकारी पर थी, और एक सेहतमंद भविष्य पर थी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद माई लिसनर्स।
0: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और मुझे बात मालूम करके बहुत खुशी होती है कि आपने ऐसा समझा कि मैं आपके व्यूअर्स लिसनर्स के लिए कुछ ज्ञानपूर्वक बातें लेकर आऊं, और मैं चाहूंगी कि आपके लिसनर्स इस बात को अपने मन में उतारें और अपने जीवन शैली में भी। थैंक यू सो मच।
1: बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच वंस अगेन। दोस्तों याद रखिए, सेहत कोई लग्जरी नहीं है, ये रोज का एक डिसीजन है, हर रोज लेने वाला एक कॉन्शियस चॉइस है, एक डिसीजन है जो आपको लेना पड़ेगा और अपनी लाइफस्टाइल में उतारना ही पड़ेगा। आज उतारें या कल उतारें, देर ना हो जाए। दोस्तों मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों के हमसफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग गीतों के संग। अपना ख्याल रखिए और सेहत को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाइए। नमस्कार।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है संगीत की दुनिया का सतरंगी रंग। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज की शख्सियत केवल एक नाम नहीं, एक यात्रा है। वर्दी से सुरों तक की यात्रा, कानून व्यवस्था से कला संवर्धन तक की यात्रा,

0: सरल सी बात आज एक अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक आंदोलन बन चुकी है। सृजन द स्पार्क भारत के 12 शहरों में अध्याय, यूएसए, यूके और कनाडा तक विस्तार, 400 से अधिक वैश्विक ऑनलाइन प्रस्तुतियां और अब उदयपुर में एक वैश्विक संगीत संस्थान का स्वप्न, एपिटोम ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक। आज हमारे साथ हैं सेवा, संवेदनशीलता और सृजन के अद्भुत संगम रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर तथा चीफ पैट्रन प्रसन्ना कुमार जी खमेसरा। खमेसरा जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: आलोक जी नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि आप अपने रेडियो स्टेशन के माध्यम से कुछ लोगों को जो समाज के लिए काम कर रहे हैं उनको सामने लाने का कार्य कर रहे हैं।
0: चलिए सर, तो शुरुआत करते हैं और शुरुआत से ही करते हैं। उदयपुर में आपका कदाचित बचपन बीता रहा है, तो कैसा रहा, क्या घर का माहौल था, क्या घर में भी संगीत और संवेदनशीलता को आकार दिया आपके बचपन में, कुछ उसके बारे में छोटी मोटी बातें हमें बताइए।
1: जहां तक मेरे परिवार और बचपन की बात है, मेरे ग्रैंडफादर दादाजी आजादी के पहले बीएससी और एलएलबी किए हुए थे। उन्होंने जयपुर महाराजा कॉलेज से बीएससी किया था। रहने वाले उदयपुर के हैं लेकिन यहाँ आके उन्होंने बीएससी करके इंदौर से एलएलबी किया था। इसी तरीके से फादर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचडी में रहे।
0: अच्छा।
1: तो फादर की पोस्टिंग राजस्थान के विभिन्न शहरों में अलग अलग जगह रही, तो इसलिए मेरा बचपन भी कभी फालना, कभी डूंगापुर, कभी निम्बाड़ा, इस तरीके से व्यतीत हुआ। और उसके बाद में नवी के बाद में मैं उदयपुर पापा जी के साथ, फैमिली के साथ जब हम लोग उदयपुर आए तो वहां से मेरा ग्रेजुएशन उदयपुर का है। और उसके बाद में मैंने एमबीए भी सुखड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से उस वक्त किया था 87 में।
0: जी चलिए, तो उदयपुर से ही आपका बहुत सबका रहा है। तो फिर आपने एमबीए की शिक्षा भी ली और खेलों में भी आपकी रुचि थी, तो क्या इन दोनों चीजों ने, शिक्षा और खेलों ने, आपके जीवन को कुछ संतुलन दिया, कुछ दोनों चीजों में इंटरेस्ट आपका रहा है, तो कुछ उसके बारे में बताइए।
1: जी ये एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हमारी लाइफ का रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स मेरे लिए बहुत बचपन से ही बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है और इसी के साथ पढ़ाई में भी। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि न केवल पढ़ाई में हम लोग क्लास में काफी आगे रहे, बट विभिन्न खेलों के माध्यम से सभी लोगों के साथ में, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे टेबल टेनिस हो, चाहे हॉकी हो, तो इसको कॉलेज लेवल पर रिप्रेजेंट करने का मौका मिला।
0: भाई ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्रिकेट और हॉकी दोनों आप खेलते थे। नॉर्मली लोग क्रिकेट खेलते हैं तो हॉकी नहीं खेलते, हॉकी खेलते हैं तो क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन आप दोनों खेलते थे, तो बहुत ही खूबसूरत बात है। तो क्रिकेट और हॉकी की बात पे खमेसरा साहब हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा संगीत को भी अपने कार्यक्रम में लाते हैं और एक गाने के लिए रुक जाते हैं, एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, फिर आगे बातचीत करेंगे। और आगे हम बातचीत करेंगे आपसे आपके जो डिस्टिंग्विश्ड पुलिस कैरियर है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करें।

0: 1989 से आईपीएस तक की यात्रा, कौन सा मोड़ आपको सबसे निर्णायक लगता है? इसके तरह तरह की मोड़ आए होंगे, तो कुछ उसके बारे में बताइए। कौन सा आपको ऐसा लगता था बहुत चेंजेस आए जहां से आपकी लाइफ में?
1: आलोक जी, सबसे बड़ा चेंज तो इस पुलिस में सर्विस में आने का ही रहा, क्योंकि कहीं दूर दूर तक भी ये ख्याल नहीं था कि मैं इस पुलिस की नौकरी में आऊंगा। जब मैंने एमबीए किया था, तब हमने हमारे पारिवारिक अंकल की एक फैक्ट्री थी, तो उस फैक्ट्री को हमने एमबीए करने के बाद में करियर बनाने का किया था। फिर अचानक हमारे एक मित्र का मेरे पास में एक पत्र आता है, उस पत्र को मेरे चाचा जी ने पढ़ा, क्योंकि मैं अहमदाबाद उस वक्त शिफ्ट हो चुका था एमबीए करने के बाद में। उसमें उसने लिखा था कि दो नावों की सवारी करना उचित नहीं होता। और जब चाचा जी ने चीज पढ़ा, तो उन्होंने मुझे बोला कि जाके एग्जाम दे लीजिए, साल दो साल के लिए कोशिश कर लीजिए, हो जाता है ठीक है, नहीं तो वापस इसमें आइए। तो वह एग्जाम मैंने, एक मित्र की चिट्ठी ने मेरा पूरा करियर वहां से चेंज कर दिया, और मैं एग्जाम दी और पहले अटेम्प्ट में मेरा एस डीवाईएसपी सिलेक्शन हुआ
0: दैट्स वंडरफुल।
1: है।
0: देखिए, कोई ना कोई ट्रिगर होता है, एक चिट्ठी ट्रिगर बन गई आपके लिए।
1: जी
0: और नहीं तो आप अपने बिजनेस में ही लग जाते, फैक्ट्री संभालते। वाह।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एज ए प्रोफेशन मेरे को एमबीए के बाद में एक नेचुरल रिकॉर्ड्स वही था कि इंडस्ट्री लाइन में जाएं, क्योंकि मुझे जॉब नहीं करना था, तो इंडस्ट्री लाइन में जाने वाले थे। एकदम से ट्विस्ट आ गया करियर में पूरा टोटली।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चित्तौड़गढ़ में भी आपका काफी लंबा टेन्योर रहा है, उस दौरान नेतृत्व का आपका मूल सिद्धांत क्या था? आपने काफी वहां कुछ अच्छे अच्छे काम भी किए हैं पुलिस सेवा के दौरान, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा क्या खास रहा वहां के टेन्योर में?
1: जी, चित्तौड़ का मेरा कार्यकाल पूरे करियर में काफी एक अलग सा स्थान रखता है। वैसे जैसे मैं आपको बताया था कि 89 में मैं एज डीवाईएसपी प्रोबेशनर के तौर पर करियर शुरू किया। उसके बाद में पहली पोस्टिंग हिंडौन डीवाईएसपी, फिर छोड़ीसाली डीवाईएसपी, फिर राजसमंद डीवाईएसपी, फिर प्रतापगढ़, फिर वापस झुंझुनू। ये मेरी डीवाईएसपी के तौर पर पोस्टिंग्स रही। देन एडिशनल एसपी के तौर पर प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, दौसा, सिरोही आगे मेरी पोस्टिंग रही। आईपीएस बनने के बाद में मेरी पहली पोस्टिंग आईपीएस बनते ही एसपी डूंगरपुर हुई थी, और एसपी डूंगरपुर से मेरी पोस्टिंग चित्तौड़ एसपी के तौर पर रही, जो बहुत लंबी पोस्टिंग है। एसपी 4 साल 8 महीने करीब, जो अपने आप में काफी लंबा समय हो जाता है, वो मेरी पोस्टिंग रही। अब चूंकि चित्तौड़ कानून व्यवस्था की दृष्टि से और दृष्टि से भी काफी सेंसिटिव रहता है, तो जैसा आपने कहा कि हमेशा ही कुछ न कुछ चीज चैलेंजिंग होता रहा लाइफ में वहां पे, और उस चीज को हमने जैसे भी है डील किया, और समय वहां निकला। उसके बाद में एसडीआईजी जयपुर में मेरे को 2.5 साल रहने का काम रहा। उसके बाद में आईजी भरतपुर और आईजी कोटा के तौर पे मेरा करियर चलता रहा। लास्ट में आईजी क्राइम के तौर से मैं लास्ट में जयपुर से रिटायर हुआ था।
0: अच्छा,
1: तो
0: कोटा भी
1: जी, इस पूरे लंबे करियर में सभी जगह का एक अपना महत्व रहा है, और अलग अलग अनुभव रहे हैं।
0: नहीं, चित्तौड़ में जैसे आपने बताया 4 साल एज एसपी, तो आपकी पुलिस के हिसाब से काफी लंबे समय है। मतलब आपने बहुत
1: चार साल
0: ही
1: आठ महीने सर, और
0: 4 साल
1: ये लगातार पोस्टिंग रही, तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा
0: ना, रिकॉर्ड सही
1: एक
0: है। बिल्कुल सही बात है।
1: जी।
0: अच्छा, ये छोटी सादरी एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत बात होती है, जब भी कोई पुलिस वाले पुराने मिलते हैं तो ये इंटरफेस प्रोग्राम पुलिस जनसंबंधों में, ये कौन सी पहल आपने इनिशिएटिव लिया था, कुछ इसके बारे में बताएंगे शॉर्ट में हमें?
1: मेरी पहली पोस्टिंग से मेरे मस्तिष्क में ख्याल था कि हमें जनता के साथ जुड़ाव, जो आज हम पुलिस अधिकारियों में काफी अच्छा देखते हैं, लेकिन उस वक्त समय के साथ, क्योंकि ये 92, 93, 94 के आसपास की बातें हैं, तो उस वक्त थोड़ा सा ये चीज पहली बार करने का मौका मिला, जनता को अपने साथ जोड़ने का। और इस एक्सपेरिमेंट को हमने छोटी साड़ी, जब मेरी पोस्टिंग थी तब शुरू किया था, और पूरे सर्कल के सारे जितने भी गांव है, पंचायत है, उस सब जगह हमारा जाना हमने सुनिश्चित किया था लोगों के बीच में, और जनता के साथ जो संवाद डायरेक्ट हमने स्थापित किया था, उसमें हमारे तत्कालीन एसपी साहब का भी काफी रोल रहा था। और उसके बाद में इंटरफेस प्रोग्राम, जब मैं राजसमंद एडिशनल एसपी था, तो हमने विद्यार्थियों को, क्योंकि हमारा मानना है कि जब एज बड़ी हो जाती है, आदमी जब वयस्क हो जाता है, तो उसको पुलिस के बारे में जो बचपन से ही जो बात आ जाती है वही उसके दिमाग में चलती रहती है। हमारा सोच ये था इस विषय में कि अगर कम एज के बच्चों को ही शुरू से अगर हम पुलिस के बारे में जो गलत फहमियां हैं उनको दूर करें, और पुलिस की वर्किंग एक्चुअली किस तरीके की होती है उसकी रियल लाइफ जानकारी देंगे, तो भविष्य में आगे जाके जब वो एज ए नागरिक बड़े होंगे तो उनके मन में पुलिस के बारे में कोई गलत फहमी नहीं होगी, और जो पुलिस जैसी है उसको एक्चुअल पुलिस किस तरीके के काम करती है, अच्छी या बुरी, उसको खुद को जानने का मौका मिले। और ये बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि काफी लोग बच्चे, क्योंकि हम लोग उस दौरान में सैकड़ों स्कूल में गए, कॉलेज में गए, विद्यार्थियों से बात की, और उसके बाद में उनकी पुलिस से संबंधित रवैये में कुछ परिवर्तन डेफिनेटली आए।
0: अच्छा, तो मतलब ये बच्चों को जोड़ना, ये तो बहुत ही एक तरह से इनोवेटिव सी बात है। कि आपके स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जाते थे, वहां कुछ उनसे इंटरेक्शन करते थे बच्चों से,
1: जी जी
0: स्टूडेंट से,
1: जी
0: राइट राइट
1: बिल्कुल, सैकड़ों की संख्या में हम पहले इन्फॉर्म करते थे स्कूल में, फिर नेक्स्ट डे हमारे अधिकारी और हम स्वयं जाते थे, बच्चों से 1.5 घंटा पूरा बात करके उसके बाद में उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन के तौर पे वो पूरा इंटरफेस चलाया गया था। इसी तरीके से छोटी साड़ी प्रयोग में हमने ग्रामीण जनता, शहर की जनता, उनको डायरेक्ट जोड़ते हुए, और हमारे पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को उनके साथ रेगुलर टच बनाए रखने के लिए ये प्रयोग चालू किया था। दोनों ही प्रयोग अपनी जगह काफी अच्छे रहे, सक्सेस रहे, और पब्लिक में पुलिस के प्रति ये पॉजिटिव भावना का उदय हुआ।
0: चलिए, बहुत इनफैक्ट अब तो आजकल तो ये काफी इंट्रेक्शन होने लग गए। लेकिन आप जब
1: जी
0: 92-93 की बात करें, उस टाइम में थोड़ी सी पुलिस फोर्स एलूफ सी रहती थी, तो आपने एक तरह से उनको कनेक्ट करने की कोशिश की। बहुत खूबसूरत है, मजा आ गया सुनकर। तो अब सर, आप ये बताइए, जैसे कुछ नार्कोटिक्स और ब्लाइंड मर्डर वगैरह भी आपने सॉल्व किए हैं, तो ये जब मसले चलते होंगे तो काफी स्ट्रेस भी रहता होगा, क्योंकि पूरी फोर्स मोबिलाइज करनी पड़ती है और आपको इन्फॉर्मर्स भी खबर देते होंगे। तो इस टाइम अपना किस तरह से आप बैलेंस बना के रखते हैं, किस तरह से डायरेक्शंस देते हैं, कुछ इसके बारे में अंदर की कोई बात बताइए, कैसे करते हैं जब इस तरह का टफ सिचुएशंस होती हैं।
1: जी, मैं इसमें एक लाइन बताना चाहूंगा कि जब मेरी राजसमंद और चित्तौड़ पोस्टिंग थी, क्योंकि उस दौरान हमने करीब 800 किलो से ऊपर अफीम का सीजर इन दोनों जगह की पोस्टिंग्स में किया, जो अपने आप में काफी एक कीर्तिमान सा लगता है। और जब वो अपने ब्लाइंड मर्डर्स की बात की, क्योंकि पुलिस और क्राइम का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि पुलिस है ही इसीलिए कि क्राइम हो, क्राइम जब होता है तो उसको वापस डिटेक्ट करने का, खोलने का पुलिस का काम रहता है। तो ये तो पूरे कैरियर में क्राइम को कंट्रोल करना, और अगर कोई क्राइम हो गया है तो उसको ब्लाइंड मर्डर हो, लूट हो, डकैती हो, उसको खोलने का तो बहुत सारा अनुभव रहा है। और जहां तक आपने कहा कि स्ट्रेस, डेफिनेटली स्ट्रेस, क्योंकि पुलिस का काम इसी तरीके का है कि 24 घंटे कुछ ना कुछ लगातार चलता रहता है, और विशेष तौर पर स्ट्रेस आता था लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम्स के दौरान, जब कभी कोई हिंदू मुस्लिम या और कोई लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम्स होती थी तो उसमें स्ट्रेस आता था। लेकिन अब इस स्ट्रेस को अगर हम घर पे लाएंगे तो स्ट्रेस और बढ़ता था। हम लोगों ने कोशिश की कि हमारे सहयोगियों के साथ में मिलकर उस स्ट्रेस को तत्काल डील करें, जो भी प्रॉब्लम है उसको तत्काल डील करें, कैसे इसको खोलें, जनता के साथ अच्छा संबंध बनाए रखें, और पुलिस कर्मियों में एज ए टीम वर्क, टीम स्पिरिट की तरह काम करें। और घर पे आने के बाद, जो आपका मूल प्रश्न है कि स्ट्रेस से कैसे डील करते थे,
0: जी,
1: घर पे आने के बाद में पुलिस संबंधी कोई घर पे चर्चा नहीं। और जिस पे आपने मेरे परिचय में जो बात कही थी कि संगीत, स्पोर्ट्स, इनके माध्यम ये हमें डी स्ट्रेस करने का एक बहुत अच्छा माध्यम।
0: मजा आ गया आपकी बात सुन के। तो इसी संगीत का जो ने जिस तरह से जीवन में आपको डी-स्ट्रेस किया है, इसी को लेके यहाँ हम एक गाना सुन लेते हैं अच्छा सा, और फिर आगे बातचीत जारी रखते हैं।

0: तो वेलकम बैक हमेशा जी। अब आते हैं, आप हम दूसरी तरफ रुख करते हैं। एक सख्त पुलिस अधिकारी के भीतर संगीत का यह कोमल, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? क्या आपको बचपन से गाना गाना पसंद था या संगीत पसंद था, कुछ बताइए। ये बहुत ही दिलचस्प होगा।
1: ये वास्तव में बहुत दिलचस्प आपका प्रश्न है। मैं पूरे लाइफ में कभी कोई गाना नहीं गा पाया। ये एक चीज आपको बताते हुए थोड़ा आपको भी सुनते हुए अजीब लगा होगा, लेकिन ये सत्य है कि मैं कभी गाना नहीं गाता। लेकिन उसके बावजूद बचपन से जो संगीत का शौक लगा, वो शौक लगा हमारे घर पे दादाजी के जमाने का एक रेडियो हुआ करता था। और फादर ने, मैं जब छोटा था, बहुत छोटा था, तो एक मुझे टेप रिकॉर्डर लाके दिया था। और स्कूल से जब मैं 5वीं के बाद में, जब चौथी पांचवी में जब पढ़ता था, घर जब आता था, तो उस रेडियो पे, जो मर्फी का एक छोटा रेडियो हुआ करता था उस
0: बिल्कुल
1: जमाने
0: बिल्कुल
1: में,
0: बर्फी का होता
1: तो
0: था।
1: उस पे 12:30 बजे बाद जो संगीत ऑल इंडिया रेडियो पे जो गाने आते थे, वो मैं सुनता था। और धीरे धीरे ऐसी आदत बचपन से ही होती चली गई कि मुझे बताते हुए भी अच्छा लगता है कि कभी बुधवार शाम को अमीन सयानी का बिना का गीत माला
0: आए
1: सुन रहे हैं,
0: हाय
1: कभी 7:05 सुबह जो पुराने गाने ऑल इंडिया रेडियो पे आते थे, और द सर्विस पे 7:30 से 8 के बीच में वो सुनते थे, रेडियो सलोन सुनते थे मॉर्निंग में, और दिन में ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस पे जो 3:30 बजे बाद वाले जो गाने आते थे वो सुनना। और धीरे धीरे आदत ऐसी पड़ गई कि रात को 12:30 से 1 बजे एक पुराने गानों का एक प्रोग्राम रेडियो पर आया करता था, उसको सुनते हुए। विविध भारती के कार्यक्रमों का तो खैर कहना ही क्या था, आपने पुरानी दिनों की याद
0: संगीत सरिता हवा
1: दिला
0: महल सब बिल्कुल।
1: दी।
0: अब ये तो आपने दिल की बात छेड़ दी। हम तो वैसे भी रेडियो के दीवाने हैं, और अभी 13 को सर वर्ल्ड रेडियो डे था, उस दिन भी
1: जी
0: बहुत कार्यक्रम आए थे, बहुत बहुत। और ये तो आपने जो जो बताया बिल्कुल मजा आ गया। और रेडियो सिलोन, अमीन सयानी, अब मैं कुछ, मेरे पास अमीन सयानी जी के बारे में, मैं भी उनका बहुत शैदाई हूँ, तो आपके साथ शेयर करूंगा मैं कभी। चलिए तो ये
1: स्पेशल तौर पे जब 7:55 हुआ करता था, रेडियो सिलोन का लास्ट गाना जब केएल सहगल साहब का बजना शुरू
0: सहगल साहब का
1: करता
0: आता था, और पहला गाना वो चुप है जमाना आज पहली तारीख है,
1: था।
0: किशोर
1: बिल्कुल
0: कुमार
1: सर,
0: वाला जो
1: उनका वो
0: गाना,
1: दिन
0: जो
1: अलग
0: फर्स्ट
1: थे।
0: तारीख, फर्स्ट
1: बिल्कुल
0: तारीख होती थी जब हमेशा वो गाना आता था। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पुराने गाने, और अमीन सयानी और शिव कुमार सरोज, गोपाल, ये स्टारवर्स थे सर एनाउंसर उस जमाने के।
1: अमीन सैनी साहब का पूरा जो बिना का गीतमाला का जो रहा है, जो उनका सफर बाद में उन्होंने अलग से पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड भी
0: हाँ
1: कराया था, वो मेरे पास है।
0: हाँ बिल्कुल
1: और कभी कभी
0: बिल्कुल
1: मैं अभी भी सुनता हूँ उनकी आवाज, और मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है, कल परसों मैं अमीन सैनी के बारे में वापस पढ़ रहा था
0: अरे वाह।
1: कहीं।
0: मैं अभी उनकी एक बहुत बड़ी आ रही है, मेरे को आज ही मिली है, मैं आपके पास भी एक उसका टीजर आया है, और एक पूरा प्रोग्राम आ रहा है अमीन से, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये तो बात अपनी और दूसरी शुरू हो गई। चलिए, क्योंकि हम लोग तो दीवाने हैं सारे। तो एक तरह से संगीत आपके लिए तनाव मुक्ति का तो माध्यम रहा ही है, और आपने जैसे बताया विविध भारती तो बाद में शुरू हुआ, लेकिन विविध भारती भी हम लोग ये रात को जो मनचाहे गीत तो आया करते थे, छाया गीत प्रोग्राम आया करता था, बहुत ही
1: जी,
0: बढ़िया था।
1: और इसी के साथ में मैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में मेरा शौक रहा है, तो 1971-72 ऑनवर्ड, जब मैं 7-8 साल का था, तब से ही क्रिकेट टेस्ट मैचेस की कमेंट्री सुनना, टेनिस मैचेस की कमेंट्री सुनना, हॉकी मैच जो वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस 72 का जो एमस्टरडम अपन हॉलैंड से फाइनल में 3-2 से हारे थे,
0: हाँ
1: उसकी कमेंट्री मैंने लाइव 7-8 साल की उम्र में सुनी थी। तो
0: हाय हाय, तो
1: वो शौक जो आपने, जो बिल्कुल जसदेव
0: जसदेव
1: सिंह जी, मुरली मनोहर मंजू, सुशील दोषी, सब बार में सुनते रहे इनको।
0: सिंह जी,
1: तो ये
0: जसदेव सिंह
1: सारा
0: जी,
1: शौक, ये सारा शौक इसीलिए, सारा स्पोर्ट्स का, म्यूजिक का, ये सभी, इसका शौक शुरू करने वाला मेरे लिए रेडियो रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। जसदेव सिंह साहब की अभी 2009 में मेरी उनकी डेथ से पहले मुलाकात
1: जी
0: हुई थी, बहुत
1: जी जी
0: बढ़िया।
1: जी
0: चलिए सर, तो मजा आ गया सारी बातचीत करके, इनफैक्ट डी स्ट्रेस हो गए हम भी। मुझे भी आपने डी स्ट्रेस कर दिया। तो अब अब आते हैं खमिसा साहब 2013 की उस शाम के बारे में कुछ बातचीत करते हैं जब सजन द स्पार्क का विचार जन्मा। उस क्षण को आप कैसे याद करें, कैसे उन लम्हों को याद करते हैं, क्या हुआ था उस दिन, कुछ ये तो बताइए उस शाम को क्या खास बात हुई थी।
1: एक्चुअली उस दौरान मेरी पोस्टिंग उदयपुर में थी और मेरे मन में काफी दिनों से ख्याल था कि कुछ न कुछ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जहां नए आने वाली टैलेंट को एक शोकेस करने का मौका मिले, साथ में जो एस्टेब्लिश्ड अच्छे बड़े सिंगर्स हैं उनको भी रूबरू कराने का जनता के साथ ऐसा कोई अवसर मिले। जब ये हमने शुरू किया तो मेरे 5-7 दोस्तों को घर पे बुलाया था, उनके साथ में सारी चर्चा शुरू की गई और चर्चा शुरू करते ही सबने इस पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और देखते ही देखते पहले प्रोग्राम जब हमने शुरू किया तो हमारे साथ में 38-40 जने, फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने किया था वो हमारे एक मित्र के गार्डन में ही किया था, 40 जने जोड़े। तो उसके बाद से फिर लगातार ये अपने आप में क्योंकि इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट चलता चला गया, देखते ही देखते पूरे शुरुआत उदयपुर से हुई, फिर राजस्थान में 6 चैप्टर हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, झुंझुनू, भीलवाड़ा, इसी तरीके से इंडिया में 6 बड़े शहरों में और अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली वगैरह चैप्टर से इसके लॉन्च हुए। और देखते देखते मुझे खुद को पता नहीं ये कैसे अपने आप में बढ़ता चला गया सब मित्रों के सहयोग से।
0: नहीं बहुत खूबसूरत, तो आपको क्या अंदाजा लगा था उस टाइम के एक अंतरराष्ट्रीय मंच बन जाएगा आपकी इन छोटी सी जो गार्डन में आपने एक शुरुआत की थी, महफिल टाइप लगाई होगी उस टाइम, तो आपने अभी इतना बड़ा इंटरनेशनल फोरम बन जाएगा, कुछ अंदाजा था उस टाइम?
1: टू बी फ्रैंक एनफ उस वक्त ऐसा कोई अंदाजा नहीं था जी। शुरुआत में इतना ही था कि ये उदयपुर में है और हमारे मित्रों के साथ सहयोग से कुछ सुनेंगे करेंगे, लेकिन हमारे एक अजीज मित्र जो उन दिनों हिंदुस्तान जिंक में कर रहे थे एज ए सीईओ, तो उन्होंने इसको और सपोर्ट देने के लिए फैसला किया और सपोर्ट से फिर जब एक दो बार बड़े कार्यक्रम हुए तो लोगों का जुड़ाव भी इसके साथ बढ़ता चला गया और फिर देखते ही देखते सभी जगह हमारे जो दोस्त लोग हैं उनके सहयोग से आज एक संगीत की दुनिया में एक बड़ा नाम अपने आप में ये ऑर्गेनाइजेशन कर चुका है।
0: नहीं सर, इसके लिए आपको सलाम है, क्योंकि देखिए क्या है कि मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि किसी भी चीज को शुरुआत करना तो फिर भी शुरुआत हो जाती है, लेकिन इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन करना, बनाए रखना उसको और आगे बढ़ाता रहना, ये बहुत मुश्किल होता है और जिस तरह का हमारा माहौल है उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो वो जो सस्टेन आपने किया है इसको और बढ़ाया है तो ये बहुत बहुत ही अद्भुत है, मैं तो यही कहूंगा।
1: तो सर इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो हमारे मित्रों का और उन साथियों का जो इसके साथ जुड़ते चले गए, और इसके पीछे एक प्रिंसिपल इसमें हमें

0: अच्छा काम किया डिसेंट्रलाइजेशन का।
1: जी जी,
0: हमने जहां जहां भी ये चैप्टर्स बने वहां सेपरेट ट्रस्ट आज जो सब जगह बहुत अपने आप में अच्छा कार्य कर रहा है, उसके पीछे कारण ये है कि सब जगह सेपरेट ट्रस्ट बने जो उनके ऑफिस बीरर्स होते हैं वो उस ट्रस्ट के और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो अपने आप में पूर्णतया सक्षम है, अपने सारे फैसले वही लेते हैं, वही अपना सारा डिसीजन लेते हैं। और क्योंकि बड़ा डेमोक्रेटिक वे में ऑर्गेनाइजेशन वो लोग भी अपने लेवल पे काफी उस तरीके से चलाते हैं, तो इसमें लोगों को जुड़ने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई और सारे अच्छे लोग इसके साथ जुड़ते चले गए। और चूंकि भावना सही है, किसी का इसके पीछे कोई गलत इंटेंशन नहीं है, तो जो अच्छे लोग जब एक साथ चलते हैं तो फिर और काफी लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं और यही इसकी ताकत है।
1: हाँ, वो बात तो बिल्कुल आपकी सही है, बजा फरमाया आपने, क्योंकि डिसेंट्रलाइज करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन आपने सही लोगों को जोड़ा और सही लोग इसलिए जुड़े कि आप सही थे, तो ये दोनों बातें एक दूसरे पे बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है। आपने अच्छे लोगों को जोड़ा और वो भी इसलिए जुड़े कि आप जो शुरू का सेंट्रल फिगर है वो सही होता है, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए इसी सही और खूबसूरत बात पे कि एक छोटी सी चीज की शुरुआत होती है और आगे बढ़ जाती है, हम एक कोई अच्छा सा गाना सुन लेते हैं और फिर आगे इस सफर की शुरुआत करते हैं।

0: हमेशा साहब, आज 12 भारत में आपके चैप्टर्स हैं, यूएसए, यूके, कनाडा में विस्तार है, तो वही जैसा आपने अभी थोड़ा सा जिक्र कर ही दिया था कि प्रबंधन का मॉडल क्या है, कुछ और बताना चाहेंगे इसके बारे में?
1: इसका विशेष रूप से जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो फैला हुआ है, ये कोविड पीरियड में ऑनलाइन प्रोग्राम्स जब शुरू किए तो बताते हुए अच्छा लगता है कि कोविड में ऑनलाइन प्रोग्राम्स, क्योंकि बाद में तो काफी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हुए, लेकिन शुरुआती ऑर्गेनाइजेशंस सजेंद्र स्पार्क हुआ करता था उस वक्त। उदयपुर और जयपुर हमारे दो चैप्टर वर्क कर रहे थे, जोधपुर भी था। उसके बाद में जब ऑनलाइन शुरू हुए, पूरे वर्ल्ड से हमारे साथ में श्रोता जुड़ने शुरू हुए उस प्रोग्राम्स में, तो धीरे धीरे आपस के संपर्क से, दोस्तों के संपर्क से अलग अलग जगह चैप्टर्स लॉन्च हुए। और बताते हुए अच्छा लगता है कि 400 से ज्यादा ऑनलाइन प्रोग्राम उस वक्त कोविड पीरियड में किए गए थे। कुल मिला के आज तक 400 से ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, ऑनलाइन प्रोग्राम, लेकिन 200 250 से ऊपर, 250 300 से ऊपर प्रोग्राम ऑफलाइन यानी स्टेज प्रोग्राम अलग अलग शहरों में जहाँ हमारे सजन चैप्टर्स हैं वहाँ किए गए हैं। और इसके माध्यम से संगीत की सेवा करने का, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काफी प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी एक, जैसा अपन ने बात की है, डी स्ट्रेस करने का एक बहुत बढ़िया मौका, और समाज के साथ जुड़ने के लिए उनको एक मौका मिला है।
0: ये तो आपने बता दिया, मेरे मेरे जहन में अभी दो सवाल आए हैं, तो आप तक काफी है। एक तो मुझे ये बताइए कि सृजन द स्पार्क, जो आपने नाम दिया है इस मूवमेंट को या सांस्कृतिक आंदोलन को, ये नाम कैसे आया, पहला तो ये? और क्या आपके लिए कुछ लोग टेक्निकली भी आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एमपी फेसबुक के प्रोग्राम्स, ये जो लाइव करना ऑनलाइन, ये भी काफी टेक्निकल सा काम है, तो कुछ इन दोनों चीजों के बारे
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। वास्तव में जब हम लोग
0: बताइए।
1: ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम रख रहे थे तो
0: जी
1: शुरू में सृजन, क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी रही, सृजन कैसे
0: ओके,
1: नाम
0: हाँ
1: आया और द स्पार्क कैसे जुड़ा।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: 1998 में, मुझे आज भी याद है, 1998 में तलत महमूद साहब की डेथ हुई थी,
0: आय हाय आय हाय
1: तो
0: अच्छा।
1: उनकी याद में हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखना चाहा था। और राजसमंद झील के अंदर हमने वो प्रोग्राम बहुत बड़े लेवल पे कुछ मित्रों के साथ आयोजित करवाया था,
0: जी
1: तब इसका नाम हमने सजन 98 दिया था। तो वही नाम हमेशा से जहन में रहा, और जहां जहां भी हम रहे, कभी सजन स्पार्क की तब फॉर्मली कोई ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था, लेकिन जहां कोई भी संगीत का कार्यक्रम होते थे तो हम सजन का नाम उसमें लिखते थे। ये मेरे दिमाग में शुरू से रहा। अब जब 2013 में जब हम लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया, तो शुरू में सजन की बात आई, हमने कहा केवल इस नाम से तो और भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे और कार्यक्रम होते ही रहे हैं सृजन, क्योंकि अपने आप में काफी, हमने कहा इसमें कुछ ना कुछ ऐसा एडजेक्टिव जोड़ा जाए, तो क्योंकि हम नए आर्टिस्ट को बढ़ावा देने का इसके पीछे मेन मकसद था, जो उनको मंच देने के लिए एक ऐसी स्पार्क ढूंढने का हमारे मन में ख्याल था,
0: ओके ओके
1: तो इसलिए
0: ओके
1: द स्पार्क इसमें जोड़ा गया, और
0: ओके ओके
1: सृजन द स्पार्क, और इसी नाम से फिर इसको रजिस्टर करवाया गया।
0: नहीं, ये आपने क्लेरिफाई कर दिया, स्पार्क मतलब नई टैलेंट्स के हिसाब से कि जिसमें स्पार्क हो, और सृजन तो क्रिएटिविटी है ही, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और तलत महमूद साहब की याद करके आपने बहुत मजा कर दिया कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, तो
1: मुझे विशेष तौर पे रविवार के दिन शाम को 4 बजे बाद बैठ के तलत महमूद को जो सुनने का रेडियो का मजा आता था टेप रिकॉर्ड पे, वो अलग ही था।
0: बस सर, मैं तो उस जमाने में जब वो रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करते थे, तो इनके एलपी आया करते थे
1: जी,
0: तलत महमूद साहब के, मधुशाला के, और वो सारे, वो मुझे आज भी याद है कि वो दिन क्या क्या दिन हुआ करते
1: सर इसी बात पे
0: थे।
1: मुझे मैं पहले बताना भूल गया, हमारे घर पे उस वक्त का जिसको चूड़ी वाला बाजा कहते थे, पुराने जमाने का रिकॉर्ड प्लेयर हाथ से चलाने वाला, वो हुआ करता था। और मेरे पास 1930s की रिकॉर्ड्स, उस वक्त की जो एक साइड में एक ही सॉन्ग उसमें होता है, तो वो रिकॉर्ड्स भी, और आज भी उस पर कभी कभी सुनते हैं तो कुछ अलग ही अनुभूति होती
0: आए हाय हाय,
1: है।
0: 78 आरपीएम के जो रिकॉर्ड हुआ
1: जी,
0: करते थे,
1: जी,
0: बिल्कुल
1: जी,
0: बिल्कुल फिर बाद में ईपी आए, फिर एलपी आए, लेकिन 78 आरपीएम में वो चाबी लगा के, और फिर कभी जब
1: बिल्कुल,
0: उसकी
1: बिल्कुल,
0: चाबी खत्म हो जाती थी तो बड़ा वैसा गाना बजता था,
1: पिन पिन मिलना बड़ा
0: पिन मिलना,
1: मुश्किल,
0: उसको उल्टा करके टेढ़ा करके उसमें पिन लगाया करते थे। अरे साहब क्या क्या किस, बड़ा नॉस्टैल्जिक है ये सारी बातें करना, तो वो चीज ही नहीं रही। क्या रिकॉर्ड प्लेयर ही खत्म हो गए, फिएस्टा का एक एचएमवी का आता था वो मेरे पास,
1: बिल्कुल खत्म, इवन अब तो सीडी भी खत्म हो गई, कैसेट्स खत्म हो गए, सीडी खत्म हो गए, दौर ही अलग आ गया।
0: अब ये जो आप ग्लोबल म्यूजिक इंस्टीट्यूशन बनाना चाह रहे हैं, ये क्या विजन है, कुछ बताएंगे इसके बारे में?
1: ये हमारे उदयपुर ऑर्गेनाइजेशन के जो साथी हैं उन सब लोगों का एक ख्याल था कि अपन जब संगीत के लिए काम करना चाहते हैं तो एक अपनी खुद की एकेडमी हो। तो इसके लिए उन्होंने अपनी सेविंग से, क्योंकि सजन का कोई भी कार्यक्रम कभी भी कोई टिकटेड या डोनेशन कार्ड पे नहीं होता, सब मेंबर्स अपने खुद का कंट्रीब्यूट करके या कोई स्पॉन्सर कोई हो जाता है तो उसी के थ्रू करते हैं।
0: okay,
1: okay. तो उसके थ्रू आपस में इकट्ठा करके अपने सेविंग्स के थ्रू एक एकेडमी बनाने का फैसला किया, और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने एक जमीन ली है, और बता दू लगता है कि हमने शायद 6 अप्रैल को इसी वर्ष 2025 में अकेडमी के कंस्ट्रक्शन का काम भी हमारी उदयपुर टीम ने शुरू किया है, और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले 2 सालों में सभी साथियों के सहयोग से और कोई अच्छे, अगर कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़ेंगे तो इसको जल्दी इस बिल्डिंग को पूरा करने का काम किया जाएगा। इस जगह हम लोग चाहते हैं कि हमारी फोक आर्ट्स को, हमारी लोक कलाओं को, हमारे अच्छे संगीत को आगे बढ़ाने के लिए ये अकेडमी एक अच्छी तरीके से काम करे, बाहर के अच्छे एक्सपर्ट्स को बुला के बच्चों को ट्रेन करें, और जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनका परिचय भी उस एकेडमी के माध्यम से उभरते हुए आर्टिस्ट को कराए।
0: जी बहुत खूबसूरत साहब, और ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आपका कोई प्रोग्राम में टिकटिंग नहीं होती है और सब लोग आप ही रिसोर्सेज मोबिलाइज करके और प्रोग्राम करते हैं, और फिर आपको, आपने उसको मूर्त रूप भी दे दिया है, जो आपका विजन है इनफैक्ट वो जमीन पर उतर गया है होगा, और 1-2 साल के अंदर वो पूरा मतलब फाइनल शेप में आ जाएगा। बहुत खूबसूरत है। तो इसी जो संगीत की आप सेवा कर रहे हैं इसी के नाम पे रुक के एक हम गाना सुन लेते हैं और फिर आगे चलते हैं।

0: वेलकम बैक हमेशा साहब। जश्न परवाज जैसे बड़े आयोजनों की रूपरेखा कैसे तैयार करते हैं? आपके पास कुछ एक्सपर्ट हैं, किस तरह से ये शुरुआत करते हैं? क्योंकि जश्न परवाज ही बहुत शब्द ही अपने आप में अनूठा है।
1: जब 2014 में हमने पहली बार, जैसे मैंने आपको बताया था, हिंदुस्तान जिंक के एक सीनियर अफसर हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने जब कहा कि नहीं, इसको एक बड़े लेवल पे एक प्रोग्राम आयोजित किया जाए उदयपुर में, तब जैसा स्वजन द स्पार्क नाम कैसे हुआ, उसी तरीके से जश्न परवाज नाम भी हमारे एक मित्र हैं उदयपुर में, जो हमारे शुरू से इस संस्थान के एक पिलर की तरह काम कर रहे हैं, अब्बास अली बंदूकवाला जी, उन्होंने कहा कि इसका नाम, क्योंकि अपन एक जश्न शुरू कर रहे हैं, तो इसका परवाज
0: परवाज
1: जो एक उड़ान है उसी हिसाब से इसको
0: उड़ान
1: रखा जाए, तो
0: जी
1: जश्न परवाज नाम रखा गया। और पहले प्रोग्राम को हमने एक मुशायरे के तौर पर आयोजित किया था,
0: ओहो वंडरफुल
1: पहला दूसरा और तीसरा, तीनों प्रोग्राम शुरुआती मुशायरे, जिसमें तमाम देश के जो बड़े शायर हैं, जिनको आप सोच सकते हैं, सभी शायर, चाहे निदा
0: अच्छा
1: फाजली साहब हो, चाहे वसीम बरेलवी हो, चाहे
0: राहत इंदौरी
1: शकील
0: हो
1: लाजमी हो, चाहे राहत इंदौरी साहब हो, चाहे अनवर जलालपुरी हो, या शिनकाफ निजाम हो जोधपुर वाले, और मतलब सारे एक से एक, हसन कमाल साहब हैं, सारे शायर हमारे यहाँ उन मुशायरे में आए, और उस इसीलिए पहला नाम जश्न परवाज के नाम से ही हमने इसको हमेशा के लिए एस्टेब्लिश किया। बाद में इस कार्यक्रम में पंकज उदास, सुरेश वाडकर वगैरह सभी, सुदेश भोंसले साहब, कविता सेठ, सभी ये उदयपुर में और नई प्रतिभा के तौर पे जो प्रतिभा सिंह बघेल, आज पूरे इंडिया में उसका वर्ल्ड वाइड नाम है।
0: अच्छा, प्रतिभा सिंह बघेला, इनका मैंने भी सुना है कहीं।
1: ऐसे और नितिन मुकेश जी, इन सबके प्रोग्राम उदयपुर, जयपुर में भी राजकुमार रिजवी साहब, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब, उषा उत्तूप जी, अभी जस्ट रिसेंटली कविता कृष्णमूर्ति जी का, इन सभी के प्रोग्राम, और अलग अलग चैप्टर्स ने अपने अपने बड़े प्रोग्राम इस तरीके से आयोजित किए हैं, जिसमें देश के ख्यातनाम सिंगर्स आर्टिस्ट आए। साथ में हमने एक इसमें और विशेष बात रखी है कि संगीत के क्षेत्र में या आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में जो विशेष जिनका योगदान रहा है, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी स्पार्क के द्वारा हर चैप्टर में दिया जाता है, और आज तक करीबन 22 से ज्यादा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अलग अलग चैप्टर्स के द्वारा दिए जा चुके हैं, और उसमें देश के तमाम ख्यातनाम संगीतकार, गीतकार और गायक उसमें सम्मानित, मतलब मेरा तो ये मानना है कि वो हमें सम्मानित करने के लिए आए, हम तो उन्हें क्या सम्मानित करेंगे,
0: जी, बिल्कुल।
1: वो लोग सभी आए हैं।
0: इनफैक्ट आपने मेरा अगला जो सवाल था उसका भी जवाब दे दिया कि जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होते हैं, आपने उन बड़े बड़े लोगों को जोड़ा है। तो अब मुझे एक सिर्फ ये बताइए, जैसे अनूप जलोटा साहब है, रूप कुमार राठौड़ है, एल सुब्रमण्यम, इनसे जुड़ी कोई याद हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो, कोई एनेक्डोट हो, अगर आप हमें, हमारे साथ कोई शेयर करना चाहें तो प्लीज, स्वागत है।
1: यादें अनेक हैं। मैं एकदम लेटेस्ट, अभी जब हमने डॉक्टर एल सुब्रमण्यम,
0: जी
1: जिनको इसी वर्ष पद्म विभूषण भी केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था,
0: जी
1: कविता जी के प्रोग्राम में जब उनको इनवाइट किया था हमने, और हमें यकीन नहीं था कि हमारे इनविटेशन पे वो, बेसिकली वो कविता जी के हस्बैंड भी हैं, तो नॉर्वे वगैरह गए हुए थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप भी पधारिए, और हम आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करना चाहते हैं। तो ये बात सो ग्रेसफुल, बहुत इजीली उन्होंने हाँ कर दिया। लेकिन चूंकि हम कोई भी आर्टिस्ट जो जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हम देते हैं, कभी हम उनसे ये रिक्वेस्ट नहीं करते हैं कि आप कहीं सोलो, आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी है बीच प्रोग्राम के दौरान, कुछ अपना एक जस्ट ऑडियंस के
0: प्रस्तुति
1: लिए थोड़ा सा अपना प्रस्तुति।
0: प्रस्तुति दे,
1: बट
0: हाँ
1: डॉक्टर एल सुब्रमण्यम साहब जो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, ही वाज सो सिंपल, और जितने आज तक हमारे आर्टिस्ट आए उन सब ने कुछ ना कुछ ऐसा किया। बट मैं इसमें ये था कि डॉक्टर एल सुब्रमण्यम कहीं करें ना करें, क्योंकि कविता जी का प्रोग्राम है उस बीच में, वो लेकिन वो स्टूल लगा के बाहर साइड में बैठ गए चेयर पे जब कविता जी का प्रोग्राम चल रहा था, और मुझे बुला के उन्होंने कहा कि बिल्कुल चिंता ना कीजिए, मैं करूंगा, और हम ये सोच रहे थे 5 मिनट का वो परफॉर्म करेंगे, लेकिन उन्होंने करीबन आधे घंटे का परफॉर्मेंस दिया और पब्लिक को बड़ा जबरदस्त उसका आनंद मिला। तो ऐसे उषा मंगेशकर जी ने जब उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था तो उसपे जैसा हमें बताया गया कि लता जी ने उस वक्त तुरंत ही अवार्ड लेती जैसे उषा जी ने अवार्ड ग्रहण किया था, उन्होंने स्वयं ट्वीट किया था और ये बात सत्य है कि उनको लता जी ने ही कहा था कि अब अच्छा ऑब्जर्वेशन है आप जाइए, और वो पहले वो उषा जी थोड़ा हिचक रही थी
0: okay.
1: वो लता जी के कहने पे वो आई थी mm-hmm. कुछ यादें बड़ी अच्छी अच्छी यादें हैं mm-hmm. कल्याण जी आनंद जी भाई के जब आनंद जी भाई आए थे mm-hmm. तो it was such a jam person mm-hmm. की रात को प्रोग्राम के बाद में 12 से लेकर 3 बजे तक हम होटल में जहाँ वो रुके थे तो उनके साथ जो चर्चाएं हुई वो चर्चा का अपने आप में एक अलग ही आनंद था।
0: वो तो शायद हंसी मजाक भी काफी करते हैं
1: बहुत ज्यादा, मैं वही
0: मैंने सुना है
1: जबकि उस वक्त होटल में खाना बंद हो चुका था तो वापस से नया खाना बनवाया था तो उसके लिए जो 2-3 घंटे टाइम लगा बीच में तो उन्होंने बड़ा एंजॉय किया उस समय को और हम लोगों को भी लगा कि अच्छा ही हुआ कि खाना नहीं बना।
0: सही बात है। तो अब मैं थोड़ा सा एक सवाल पूछ रहा हूँ, आई डोंट नो सही है, जैसे आप लोग कलाकारों का सम्मान करते हैं तो ये लोकप्रियता से जुड़ा है या योगदान से जुड़ा है, मतलब जो संगीत के प्रति योगदान है उससे जुड़ा है, किस तरह क्या पैरामीटर डिसाइड करते हैं, किस तरह से करते हैं?
1: सर इसमें दोनों ही है, लोकप्रियता तो है ही लेकिन इसके साथ में चूंकि हम लोग जो ये अवार्ड करते हैं इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे भी लोग का हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है जिनका कंट्रीब्यूशन भारतीय संगीत भारतीय कला संस्कृति को बहुत ज्यादा, लेकिन आम तौर पे लोग उनको नहीं जानते आज।
0: जी जी,
1: जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि महान गीतकार योगेश जी, आज आप आम जनता से पूछेंगे तो वो नहीं जानेंगे, लेकिन योगेश जी को हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किया। पियानो के बहुत बड़े प्लेयर ब्रायन सिलास को हमने किया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, उनको बुला के उनको हमारा ऑर्गेनाइजेशन उनसे सम्मानित हुआ। इसी तरीके से जैसे पर्दे के पीछे रहते हैं गीतकार है समीर अंजान है, बहुत बड़े गीतकार हैं, हजारों गाने उन्होंने लिखे हैं लेकिन आम जनता नहीं जानती, वो गाने वाले के बारे में जानती है। वो ऐसे लोग को भी हम लोग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज तक करीबन 50 से ऊपर ऐसी विभूतियां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के अलावा हम लोग हमारे देश की जो 6 महान आर्ट एंड कल्चर की विभूतियां रही हैं, चाहे वो नंदलाल बोस साहब हो, ओंकारनाथ ठाकुर साहब हो, टीवी पलुस्कर साहब हो, इन सब के नाम से अमीर खुसरो साहब के नाम से हम लोग 6 अवार्ड और हर साल देते हैं। तो उसमें देश की करीबन 50 से ऊपर ऐसी विभूतियां जो पर्दे के पीछे है वो सामने कहीं नहीं है, वो पत्रकार भी हो सकते हैं जो सिनेमा पे लिखते हैं या संगीत पे लिखते हैं,
0: पेंटर भी हो सकते हैं
1: और कोई डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई टीवी एक्टर भी हो सकता है, ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे रह के जिन्होंने संगीत और आर्ट की, जैसे हमने अपने राजकुमार केशवानी जी के बारे में जो बात कर,
0: अरे राजकुमार केशवानी जी की याद आ गई, मैं भी फैन हूं, तो डेथ हो गई उनकी।
1: हाँ उनकी डेथ हो गई, वो हमारे साथ बहुत गहरे जुड़े हुए थे और
0: अच्छा।
1: ऐसे लोग को हमने सम्मानित करने का, पंकज ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सम्मानित किया है जो पीछे से संगीत की और आर्ट कल्चर की बहुत सेवा करते हैं।
0: राजकुमार केशवानी के बारे में तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनका, फैन भास्कर के अंदर उनका एक कॉलम आया
1: रसरंग, रसरंग आया
0: रसरंग, बिल्कुल
1: जब पंकज दुबे लिख रहे हैं अभी आजकल,
0: बिल्कुल तो राजकुमार केशवानी जब तक थे तो मैं काफी रेगुलरली पढ़ता था उस कॉलम को, संडे वनडे को आता था मेरे ख्याल
1: जी, संडे को आता था। और आपको बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी हर महीने उनसे लंबी टेलीफोन पे बात जब तक वो जीवित रहे हुआ करती थी हमेशा।
0: अरे वाह वाह वाह,
1: बहुत संगीत पे चर्चा करते थे
0: और पुराने किस्से सुनाते थे और उर्दू भी बहुत अच्छी थी उनकी, और मैं थोड़ा उर्दू का शैदा ही हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था उनकी बात सुनते, पुराने पुराने किस्से लाते थे, अरे मजा आ गया था। अब खमेसरा साहब बकौल अमीन सयानी करीब करीब पायदान पर ही आ गए हैं, आपका जिस तरह का लीडरशिप स्टाइल है, आप पर्दे के पीछे रहकर काम करना ज्यादा है ऐसा लोग कहते हैं, क्या नेतृत्व शैली का हिस्सा है, बताइए इसके बारे में।
1: जैसा मैंने पहले भी अपनी बातचीत में आपको बताया था कि थोड़ा मेरा डेमोक्रेटिक रूप से अपना रुझान रहता है हर मामले में। पुलिस की नौकरी में भी शुरू से लेकर आखिर तक मैंने अपने नीचे मातहत जो भी कर्मचारी रहे उनको कभी मातहत नहीं माना, मैंने साथ का कार्य करने वाला उनको माना है, एक ही एम की उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उनको अपने टीम का सदस्य माना है। तो सब जब मिलके काम करते हैं, आपसी राय से करते हैं, हो सकता है कि फाइनल डिसीजन हमेशा हमने लिया हो। जैसे मान लीजिए मैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हूँ या आईजी हूँ उस जिले का या उस रेंज का, अगर मेरे पास पूरी जिम्मेवारी है तो डेफिनेटली सारा फाइनल कॉल मेरा रहेगा, फाइनल डिसीजन मेरा रहेगा। लेकिन अगर हम पांच व्यक्तियों से बात करके और उस डिसीजन की तरफ आगे अग्रसर होते हैं तो वो हमेशा बेहतर होता है। ये कार्य प्रणाली शुरू से रही और मुझे इसमें कहते हुए संकोच नहीं है कि मेरे सभी साथियों का मुझे पुलिस में, चाहे वो कांस्टेबल हो या चाहे अधिकारी हो, सबका बहुत सहयोग मिला। और उसी सहयोग से और टीम स्पिरिट से काम करने की वजह से पुलिस की जो लंबी 35 साल की यात्रा रही वो संपन्न हुई थी। और वही कार्य प्रणाली चाहे कहीं भी रहे, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो चाहे खेल के क्षेत्र में, वही कार्य प्रणाली हमेशा मेंटेन रखेगी।
0: बहुत खूबसूरत साहब, क्या क्या बढ़िया बात बताई है आपने। और पुलिस सेवा और सांस्कृतिक सेवा, ये दोनों ही सेवाएं आप कर रहे हैं, दोनों के एक ही रूप है, एक ही ध्येय, और आपने करीब करीब बता ही दिया कि किस तरह से कर रहे हैं। अच्छा, मैं खमिश्रा साहब, अब चूंकि हम इतनी आराम से बातें कर रहे हैं, आपने शुरुआत में कहा था, आई डोंट नो मुझे ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं, कि आप गाना नहीं गाते, ठीक है, लेकिन माशाल्लाह आपकी जो आवाज आ रही है ऑनलाइन मेरे को बहुत बहुत खूबसूरत है और बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। तो अगर कुछ गुनगुना ना चाहें तो गुनगुना दीजिए, कोई पंक्तियां सुनाना चाहें तो पंक्तियां सुना दीजिए, कोई शेर व शायरी सुनाना चाहें तो वो सुना दीजिए, कुछ कर सकते हैं हमारे लिए।
1: हमारे अजीज और जो हमारे सदन के पैटर्न भी हैं उस्ताद अहमद हुसैन साहब, मोहम्मद हुसैन साहब
0: जी,
1: उनकी गजल की लाइन है जो मैं ऐसे ही आपको बोल के सुना सकता हूँ कि जर्रों से राह गुजर कर चमक अपनी छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर अलग छोड़ जाऊंगा। और जहाँ गुनगुनाने की आप बात कहेंगे तो मुझे बचपन से केवल एक गाना में कभी कभी एक आध लाइन उसकी गुनगुना देता हूँ कि जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। ये हमारा बड़ा फेवरेट गाना रहा है और बड़ी इसमें कल्याण जी आनंद जी साहब की दम रही है, और आनंद जी साहब से जो इस पे वापस जब चर्चा हुई तो अलग ही बात थी।
0: वाह, शायद सफर फिल्म का गाना है जहां तक मुझे याद
1: जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और फिरोज खान की पिक्चर थी, बड़ी प्यारी पिक्चर थी। और जीवन से भरी ते मजबूर करें जीने के लिए, ये दो गाने बहुत ही मकबूल थे इस पिक्चर के।
1: ये मैं जब 7-8 साल का था तब, 8-9 साल का तब मैंने गाना पहली बार सुना था, और तब से एक फेवरेट गाना ये और एक मन्नाडे साहब का जिंदगी कैसी है पहेलिया है, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं,
0: बहुत ही बढ़िया आनंद का।
1: उसके गीतकार साहब योगेश जी को जब हमने बुलाया तो इसी बैठ के जो उन्होंने सारी चीजें बताई वो जिंदगी के अमूल्य यादों में से हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मजा आ गया साहब आपके साथ, सारा कुछ जितनी बातें हुई इतनी नॉस्टैल्जिक हैं कि मैं क्या कहूँ, कि इंटरव्यू तो बहुत होते हैं लेकिन आपके साथ बात करके मजा आ गया। तो अब लास्ट में कुछ युवा पीढ़ी को आप कोई मैसेज देना चाहें, कोई संदेश देना चाहें।

0: कर रहे हैं, आप प्रोफेसर हैं, ठीक है, आपके सब्जेक्ट में आप अच्छा करें, बहुत अच्छा करना चाहिए, आप बिजनेसमैन हैं, करिए, लेकिन साथ के साथ अपने चारों तरफ जीवन में जो अलग विधाएं हैं, चाहे वो आप संगीत का हो, चाहे कोई पेंटिंग का हो, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे किसी अन्य स्पोर्ट्स का हो, चाहे पॉलिटिक्स का हो, किसी का भी हो, आप अपनी रुचि अन्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं, ये नहीं कहता कि आप 5 तरीके की रुचि पैदा करें, लेकिन 1, 2, 3 जो भी आप कर सकते हैं आप मेंटेन रखें, उसकी वजह से क्या होगा कि आपके संपर्क बहुत अच्छे बनेंगे, आप जिस प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन का कार्य भी आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल बताता हूँ कि जिस फील्ड में मैं रहा पुलिस में, क्योंकि अगर मैं इन डिफरेंट चैनल के माध्यम से ज्यादा लोगों से नहीं जुड़ पाता तो जिंदगी में पुलिस और वही एक सर्कल रह जाता। अब समाज के जो आगे रहने वाला तबका जो रहता है, हर फील्ड का अलग अलग, वो आपके संपर्क में रहता है, तो कानून व्यवस्था में भी आपको बहुत मदद करता था, तो आपके प्रोफेशन में भी ये मदद करेगा, और आप एक डिफरेंट, आप चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, आप एक डिफरेंट किस्म के डॉक्टर, डिफरेंट किस्म के इंजीनियर, डिफरेंट किस्म के प्रोफेसर कहलाएंगे, वो आपकी छवि को एक अलग निखार देगा, तो ये मैं अवश्य कहना चाहूंगा।
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत ही वजनदार बात है और बहुत ही अहम बात है। तो दोस्तों, आज की बातचीत ने यह साबित कर दिया कि जीवन केवल एक पेशे का नाम नहीं होता, वह एक दृष्टि का नाम होता है। एक और वर्दी में अनुशासन, दूसरी ओर सुरों में संवेदना, एक ओर अपराध नियंत्रण की कठोरता, दूसरी ओर कला संरक्षण की कोमलता। प्रसन्ना खमेसरा जी ने दिखाया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो समाज को सुरक्षा भी दे और संस्कृति को भी संबल दे। सृजन द स्पार्क सिर्फ एक संस्था नहीं, एक सांस्कृतिक आंदोलन है, जहां कलाकारों को सम्मान मिलता है, युवा प्रतिभाओं को मंच मिलता है और भारतीय संगीत को वैश्विक पहचान। खमेसरा जी, आपने अपने कर्म से सेवा की, अपने स्वप्न से सृजन किया, इसके लिए हम दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपका आज हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
0: आलोक जी, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसलिए भी कि आज आपने ऐसी ऐसी चर्चा हमारे साथ छेड़ी कि बचपन की बात की सारी नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स अभी भी मन में रह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बातचीत आपके द्वारा मेरे साथ की गई।
1: तो दोस्तों, अगर इस बातचीत ने आपके भीतर भी कला के प्रति सम्मान जगाया हो तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि संस्कृति तभी जीवित रहती है जब समाज उसे जीवित रखता है। मैं हूं आलोक कुमार, आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ, तब तक संगीत सुनते रहिए, संवेदनशील बने रहिए। नमस्कार।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ, जिंदगी के रंग गीतों के संग इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार हैं देव आनंद जी। हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों को अपने हुनर, अदाकारी और रोमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। देवानंद का असली नाम धर्मदेव किशोरीमल आनंद था। जी हाँ, है ना मजेदार बात। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वो बॉम्बे पहुंचे तब उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। चलिए सुनते हैं उनका ये नगमा।

देवानंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में उनके पास तीन अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिशें कर रहे थे। देवानंद को पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की एक फिल्म हम एक हैं उसमें मिला। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

हालांकि फिल्म फ्लॉप होने से दर्शकों के बीच वो अपनी पहचान नहीं बना सके। इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई, जो उस समय फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए दोस्तों, देवानंद जी की फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

देवानंद को पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में एक लिपिक के तौर पर मिल गई, जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था।

फिर साल 1948 में जिद्दी उनकी पहली फिल्म थी जो हिट हुई। सन 1949 में उन्होंने नवकेतन बैनर्स नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस एस्टैब्लिश किया और वर्ष 1950 में अफसर नाम की फिल्म का निर्माण किया, जिसका निर्देशन उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने किया था।

1951 में उनके बैनर की अगली फिल्म बाजी का निर्देशन उनके दोस्त गुरुदत्त ने किया, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। आइए दोस्तों सुनते हैं देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

तुम भी तो इस आग में जलते हो, चेहरे से बयां हो जाता है, हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल भरता है। तुम भी तो इस आग में जलते हो, चेहरे से बयां हो जाता है, हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल भरता है। जब दिल पे चुनिया चलती है, जब चैन से कोई सोता है, जिया ओ जिया ओ जिया।

0: बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है, तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो।
1: दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि देवानंद साहब ने कुछ भूमिकाएं ऐसी भी निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड लिए हुए थीं। जब राज कपूर की आवारा प्रदर्शित हुई, तभी देवानंद की राही और आंधियां भी प्रदर्शित हुई थी। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर, जो हिट साबित हुई। देवानंद साहब की फिल्म का एक और गीत।

1948 के साल में जब देवानंद 25 साल के थे, उनकी दो फिल्में और रिलीज हुईं, फणी मजूमदार की हम भी इंसान हैं और गिरीश त्रिवेदी की विद्या। पहली फिल्म की नायिका रमोला थी, जो 1951 में

सिनेमा जगत में सदाबहार माने जाने वाले देवानंद साहब ने कभी राजनीति में भी कदम रखा था। मौका था देश में इमरजेंसी का। जून 1975 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया तो देवानंद ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उनका विरोध किया था। बाद में जब आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया। लीजिए दोस्तों उनकी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: जमाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने।
1: जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहे।

0: दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हाँ हाँ हा, छोड़ दो अचल, जमाना क्या कहेगा।
0: हाँ हाँ हा, इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि देवरन साहब इतने सुंदर थे कि उनको सफेद कलर का सूट यानी कि कोट और पैंट पहनना मना था, क्योंकि महिलाएं उनको इस रूप में देखकर आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती थीं। इस बात की सच्चाई को साबित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो तय है उनके लटकते छटकते अंदाज बेहद खूबसूरत थे। लीजिए उनकी फिल्म का एक और गीत सुनते हैं।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में आज की कलाकार हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी। हेमा मालिनी जी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को अम्मनकुड़ी तमिलनाडु में हुआ था। उनका जन्म एक तमिलियन परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम हेमा मालिनी आर चक्रवर्ती है। आइए सुनते हैं हेमा मालिनी जी की फिल्म का ये गीत।

हेमा मालिनी जी की शादी बॉलीवुड के मैचो मैन अभिनेता धर्मेंद्र से हुई है। उनकी दो बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल।

अपूर्णा मालिनी जी ने चेन्नई के आंध्र महिला सभा से अपनी पढ़ाई पूरी की। रुपहले पर्दे पर हेमा ने पहली बार एक डांसर के रूप में एंट्री ली। एक तेलुगु फिल्म में हेमा ने एक डांस में पहली बार बड़े पर्दे पर अपनी झलक दिखाई, लेकिन साउथ इंडिया फिल्म निर्माताओं को वो इम्प्रेस नहीं कर पाई। इस तरह 4 साल के संघर्ष के बाद हेमा साउथ इंडिया फिल्मों में हिट नहीं हो पाई। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

लगभग 4 दशक के फिल्मी करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में की, लेकिन करियर की शुरुआत में उन्हें वो दिन भी देखना पड़ा जब एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें यहां तक कह दिया कि उनमें स्टार अपील है ही नहीं। चलिए दोस्तों, उनकी फिल्म का एक गीत सुनते हैं।

हेमा ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तब एक तमिल निर्देशक श्रीधर ने उन्हें अपनी फिल्म में काम देने से मना कर दिया और कहा कि आप में स्टार अपील है ही नहीं। बाद में 70 के दशक में इसी निर्माता निर्देशक ने उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन्हें लेकर 1973 में गहरी चाल नाम की फिल्म बनाई। आइए दोस्तों सुने उनकी फिल्म का ये गीत।

हिमा की खूबसूरती और डांस टैलेंट ने हिंदी फिल्मों के शोमैन राज कपूर को प्रभावित किया। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म सपनों का सौदागर में एंट्री दी। सपनों का सौदागर की नायिका के रूप में हिंदी फिल्मों को उसकी ड्रीम गर्ल की पहली झलक मिली। आइए दोस्तों सुने उन्हीं के ऊपर फिल्माया गया इसी नाम का ये गीत।

धीरे धीरे हेमा का अट्रैक्शन बढ़ता गया और हिंदी फिल्म दर्शकों के सर पर चढ़कर बोलने लगा। उनका नाम शीर्ष अभिनेत्री की सूचियों में सबसे ऊपर आ गया। लगभग 30 साल तक हेमा मालिनी के अभिनय और आकर्षण का जादू सभी बाकी अभिनेत्रियों पर हावी रहा। आइए सुने उनकी फिल्म का गीत।

हिमा जी ने लगभग 150 फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं सीता और गीता, प्रेम नगर, अमीर गरीब, शोले, महबूबा, चरस, ड्रीम गर्ल, किनारा वगैरह वगैरह। पेश है उनकी फिल्म का एक खूबसूरत गीत।

हेमा मालिनी 1999 में राजनीति में उतर गईं, जब उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया। वो अब भी राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी फिल्म का एक और की

0: दोस्तों हिमा को वर्ष 1973 में सीता और गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा 1999 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। हिंदी सिनेमा और कला जगत में योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2000 में पद्मश्री की प्रतिष्ठित उपाधि भी दी। पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।
1: हंसो मत, बोलो।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय। रेडियो एफएम और रेडियो कांतिया भी 90.8 FM पर, और आप सबका खैर मकदम करती हूं आज के इस नए सफर में जिसका नाम है अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि उन जज्बातों की महफिल है जो हम सब के दिल में कहीं ना कहीं छुपे होते हैं, कभी किसी की याद बनकर तो कभी किसी अधूरी कहानी की तरह

ये एहसास हमारे साथ चलते ही रहते हैं और गजल उन्हीं एहसासों की सबसे खूबसूरत जुबान है, जहां हर लफ्ज एक कहानी कहता है और हर सुर दिल को छू लेता है। तो आइए आज की इस हसीन महफिल में हम साथ मिलकर महसूस करते हैं कुछ अनकहे अल्फाज और कुछ गहरे से एहसास। इन आंखों की मस्ती के आगे हर जामे शराब भी फीका है। इन आंखों की मस्ती के आगे हर जामे शराब भी फीका है। मोहब्बत करने का हमने बस इन्हीं से तो सलीका सीखा है। वो देखें तो कयामत है, वो ना देखें तो हसरत है। इन्हीं के दम से दुनिया में हर एक दिल की हिफाजत है। दोस्तों, मेहदी हसन साहब की आवाज में जो ठहराव है वो हमें उन आंखों के तसव्वुर में ले जाता है जिनमें हया भी है और सदियों का इंतजार। अक्सर हम जुबान से वो नहीं कह पाते जो नजर कह जाती है। मोहब्बत की पहली सीढ़ी ही नजर है। इन आंखों में खुदा की कारीगरी देखिए कि कैसे कैसे दो शर्मीले नैन किसी की पूरी दुनिया ही बदल देते हैं। आइए अल्फाज से एहसास तक में खो जाते हैं इन्हीं निगाहों के गहरे समंदर में। तो सुनिए मेहदी हसन साहब की ये नायाब प्यार भरे दो शर्मीले नैन। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। मेहदी हसन साहब।

घर की दीवारों पर क्या क्या लिखा है हसरत ने? घर की दीवारों पर क्या क्या लिखा है हसरत ने कि जब से तुम गए हो हर कोने में तन्हाई का साया बिखरा है। दुनिया की इस भीड़ में कहां खो गए हम रस्ते में। अब तो फकत यादें ही बची हैं इस जिंदगी के बस्ते में। दोस्तों, जुदाई का दर्द वही समझ सकता है जिसने किसी को पूरी शिद्दत से चाहा हो। जब जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें मिलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे दो टूटे हुए दिल आपस में गुफ्तगु कर रहे हों। लोग अक्सर पूछते हैं कि नींद क्यों नहीं आती, उन्हें क्या मालूम, नींद तो उन आंखों के साथ ही चली गई जो कभी हमारा ख्वाब हुआ करती थी। इन अल्फाजों में जो दर्द है वो सिर्फ शायरी नहीं है, वो हर उस शख्स की दास्तां है जिसने मोहब्बत में हिजर को झेला हो। तो आइए रोते नहीं हैं बल्कि यादों को महसूस करते हैं। सुनिए ये बहुत उदास सी गजल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में। मिलकर जुदा हुए तो न सोया करेंगे हम, मिलकर जुदा हुए तो न सोया करेंगे हम, एक दूसरे की याद में रोया करेंगे हम।

दिल में कुछ ख्वाब थे, आंखों में कुछ यादें थी, हम गुजरते रहे बस एक सफर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मिले हैं मगर असर की तरह। दोस्तों, कुछ यादें कुछ मुलाकातें मुकम्मल नहीं होती, लेकिन उनकी यादें उम्र भर साथ रहती हैं। शायर कहता है, आज की रात मेरा दर्दे मोहब्बत सुन ले, आज की रात मेरा दर्दे मोहब्बत सुन ले, कप कपाते हुए होठों की शिकायत सुन ले, आज इजहारे ख्यालात का मौका दे दे, और फिर भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था, सिर्फ दो चार सवालों का मौका दे दे। अब सुनिए गुलाम अली साहब की आवाज में ये पुरअसरार सी गजल, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे।

हंसी होंठों पे सजी है, हंसी होंठों पे सजी है, मगर दिल उदास है। कोई राज है छुपा जो अभी तक अनकहा सा है। नजरें झुकी झुकी हैं, बात कुछ और कहती हैं। ये जो सुकून दिखता है, अंदर कहीं तूफान सा है। शायद हर मुस्कान के पीछे एक खामोश कहानी होती है। कभी कभी चेहरे की हंसी दिल का हाल नहीं बताती। कुछ राज ऐसे भी होते हैं जो वक्तों में नहीं ढल पाते। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक ऐसे ही एहसासों से भरी ये गजल जगजीत सिंह जी की आवाज में। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। आंखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो। सुनिए ये खूबसूरत गजल।

दोस्तों, कुछ बातें अगर धीरे से कहीं जाए ना तो दिल तक और गहराई से पहुंचती हैं। जैसे तेरी आवाज में जैसे कोई नशा सा है, तेरी आवाज में जैसे कोई नशा सा है, हर लफ्ज में छुपा है एक सिलसिला सा। जरा आहिस्ता कहो ये मोहब्बत की बातें, ये दिल भी सुन रहा है, ये मौसम भी गवाह सा है। ऐसे बोलो कि दिल का अफसाना दिल सुने और निगाहें दोहराएं। अपने चारों तरफ की ये दुनिया सांस का शोर भी ना सुन पाए। तो आइए दोस्तों, पंकज उदास की आवाज में ये खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं। और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा, लफ्ज गिरने ना पाए होंठों से, वक्त के हाथ इनको चुन लेंगे। और आहिस्ता कीजिए बातें, सुनिए पंकज उदास की ये खूबसूरत गजल।

ऐ देखने वालों मुझे हंस हंस के ना देखो, ऐ देखने वालों मुझे हंस हंस के ना देखो, तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझसा ना बना दे। अगर कोई सूरत भी तो हो खाने दिल की, अगर कोई सूरत भी हो तो खाने दिल की, काबा नहीं बनता तो बुत खाना ही बना दे। बहजाद बहजाद हर गाम पर हर एक सजदाए मस्ती, हर दर को संगे दर जानाना बना दे। बेगम अख्तर की पुरसुकून आवाज में बेजाद लखनवी का ये कलाम सुनिए दोस्तों। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा ना बना दे। बेगम अख्तर की आवाज में सुनिए ये कलाम।

दोस्तों, कुछ दर्द आवाज नहीं करते, बस खामोशी में गूंजते रहते हैं। दिल की हर बात जुबां तक नहीं आती, अक्सर कुछ सदा बन के फिजाओं में बिखर जाती है। हम भी चुप हैं किसी गहरी सी उदासी में मगर, हम भी चुप हैं किसी गहरी सी उदासी में मगर, एक फरियाद है जय, एक फरियाद है जो दिल में ही रह जाती है। जगजीत सिंह साहब की आवाज में ये उदास सी गजल सुनिए। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आंखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे। जगजीत सिंह की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां सुनिए।

तो दोस्तों, ये थी आज की महफिल, आवाज अल्फाज से एहसास तक। कुछ लफ्ज थे जो दिल से निकले और कुछ एहसास थे जो आपकी धड़कनों तक पहुंचे। शायद इन गजलों में आपको अपनी भी कोई कहानी मिली हो जैसे, या कोई अधूरी सी याद मुस्कुरा उठी हो जैसे। इस उम्मीद के साथ कि ये अल्फाज आपके साथ देर तक गूंजते रहेंगे, मैं आपकी दोस्त आरती रॉय आपसे लेती हूं इजाजत। फिर मिलेंगे कुछ नए अल्फाज और कुछ नए एहसासों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिएगा, गुनगुनाते रहिएगा, अपना खूब ख्याल रखिएगा। शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

0: આપણું રેડિયો આપણી વાતે.
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में. और अब हमारे किसान साथी बिल्कुल तैयारी में लग चुके होंगे क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश भी अब होने लगी है. खासतौर पर देखा जाए अब मानसून भी आने की संभावना बताई जा रही है, ऐसे हमारे मौसम विभाग कह रहा है. खासतौर पर अगर झाबुआ जिले की बात करें तो 15.2 mm की बारिश अभी तक हो चुकी है. तो खुशी की बात है कि इस बार सामान्य वर्षा होने की संभावना बताई जा रही है. तो ऐसे में किसान साथी अपनी भरपूर तैयारी करें, पानी संरक्षण को लेकर काम करें. खासतौर पर अगर हम देखें कि जहां पर उबड़ खाबड़ जमीन है उसको एक सा कराएं, समतलीकरण करा लें, मेड़बंधान करा लें, तालाब का निर्माण भी करा सकते हैं. और किसान साथी तालाब अगर है तो उसका जीवोच्चारण भी करा सकते हैं. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो किसान साथियों को समझने वाली बात है. तो आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं मानसून और खेती पर. आज महत्वपूर्ण चर्चा है, इसको आप सुनिएगा और हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं उनकी बातचीत को आप सुनकर अपने जीवन में जरूर अपनाइएगा. हम किस तरीके से खेती कर सकते हैं, खासतौर पर जो खरीफ की फसल आने वाली है उसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं, कौन सी फसलें हैं जो लगा सकते हैं, क्या क्या तैयारी हमें करना चाहिए, आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट को.
2: जी हाँ, मानसून का हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और खास तौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था अगर कहें इस मानसून पर निर्भर करती है तो गलत नहीं होगी. खास तौर पर अगर खरीफ फसलों की बात करें तो बहुत हद तक इसकी निर्भरता रहती है. और ऐसे में ये भी कह सकते हैं कि अगर मानसून की बारिश अच्छी होगी तो हमारे खेत लहलहाएंगे. तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कि इस बार मानसून कैसा रहने वाला है, हमारे किसानों को अपने स्तर पर किस तरह की तैयारी करनी है और कैसे वर्षा जल संचयन भी वो कर सकते हैं. इन तमाम बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान स्टूडियो में हैं. आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं. हमारे साथ हैं डॉक्टर आर के जैनमणि जी जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में. आप मानसून के चाल के बारे में बताएंगे, मानसून कैसा रहने वाला इसके बारे में विस्तार से बताएंगे. हमारे साथ डॉक्टर वाई शिवे जी हैं, प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली में. और शिवे जी हमें क्रॉप्स के बारे में जानकारी देंगे, यानी अलग अलग जो फसलें हैं उनके बारे में. और डॉक्टर अनंता वशिष्ठ जी हैं, प्रधान वैज्ञानिक कृषि भौतिकी संभाग पूसा नई दिल्ली में. और अनंता जी से भी हम समझेंगे कि प्रबंधन किस तरीके से करें, मानसून भी है फसलें भी हैं तो इनके बीच का प्रबंधन किस तरह से होना चाहिए. तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. सभी मेहमानों के बारे में आपको हमने बता दिया है और आगे बात करते हैं मानसून के बारे में. तो इस बार मानसून कैसा रहने वाला है और इसका प्रभाव हमारी कृषि पर किस तरह से होता है, इन तमाम बातों को समेटे हुए देखिए हमारी रिपोर्ट.
3: भारत में मानसूनी सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक होता है. इस दौरान हुई बारिश खरीफ फसलों की पैदावार के लिए काफी अहम मानी जाती है, यानी अगर मानसून अच्छा हो तो उपज भी भरपूर हो जाती है. लेकिन मानसून कमजोर हुआ तो इसका सीधा असर कृषि पर सूखे के रूप में पड़ता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए और खेती के लिए मानसून की अहमियत को समझते हुए मौसम विभाग हर साल मानसूनी वर्षा का पूर्वानुमान जारी करता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण पश्चिमी मानसून की वर्षा के दूसरे चरण के दीर्घ अवधि पूर्वानुमान में इस बार जून से सितंबर के दौरान मानसूनी बारिश के औसत से 96 से 104% रहने की संभावना जताई है. विभाग के मुताबिक इस बार पूरे देश में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वर्षा के सामान्य रहने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक इस मानसून सीजन में मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीप में सामान्य से ज्यादा बरसात होने की संभावना है. मध्य भारत में ओडिशा, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ आते हैं. इन इलाकों में दूसरी फसलों के साथ मुख्य रूप से गेहूं, धान, कपास और दलहन की बुआई की जाती है. गुजरात में किसान मिर्च, जीरा जैसी फसलों की खेती भी करते हैं. ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए मानसून की अच्छी बरसात अच्छी पैदावार की सौगात लेकर आती है. वहीं दक्षिण प्रायद्वीप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय कर्नाटक, उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्से, केरल और लक्षद्वीप आते हैं. इन इलाकों में मुख्य रूप से धान की खेती होती है. वहीं उत्तर पूर्व भारत और उत्तर पश्चिम भारत में बरसात के सामान्य रहने की संभावना है. उत्तर पूर्व भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड,

0: मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार आते हैं। इन इलाकों में मुख्य रूप से धान की खेती होती है। उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान आते हैं। इन राज्यों में अन्य फसलों के अलावा गेहूं, धान और दलहन की खेती मुख्य रूप से की जाती है। हालांकि कई बार मॉनसून हर इलाके में एक जैसा नहीं बरसता, यानी कई बार कहीं कम और कहीं ज्यादा बरसात भी हो जाती है। आमतौर पर जिन इलाकों में मॉनसून के दौरान ज्यादा बरसात होती है, वहां किसान ऐसी फसलों की बुआई कर सकते हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। जिन इलाकों में कम बरसात होती है, वहां किसान उन फसलों की बिजाई कर सकते हैं जिनकी पैदावार के लिए कम पानी की जरूरत हो। इसकी जानकारी किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी ले सकते हैं।
1: जो आप काम करने को कह रहे हो,
2: तो बिल्कुल अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको ये भी बताया कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा बारिश की संभावना है वहां के किसान क्या करें, जहां पर बारिश थोड़ी कम रह जाती है वहां पर किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर किस तरह की फसलों या फिर किस्मों का उन्हें चुनाव करना चाहिए। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले डॉक्टर जयनमणि जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिये मानसून का इंतजार हर किसी को होता है, लेकिन किसान जो है उसका जीवन उसके ऊपर निर्भर करता है, उसकी आमदनी उसके ऊपर निर्भर करती है। सिर्फ मौसम में बदलाव, ठंड या गर्म का मतलब उससे उसका नहीं रहता। तो ऐसे में इस बार का मॉनसून कैसा रहने वाला है, क्या बताता है भारत मौसम विज्ञान विभाग?
3: देखिए, जो अभी तक हमारा जो प्रेडिक्शन आया है, जो भविष्यवाणी है, वो जून मंथ का मंथली जो रहेगा और कौन सा एरिया में कम रेन होगा और कौन सा एरिया में ज्यादा रेन होगा, और उसके साथ साथ पूरा जो सीजन है 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक सारा भारत में मानसून स्थिति क्या रहेगा। तो पहले अगर बात करें सारा भारत का, तो इस साल ऐसे कुछ फीचर्स नेगेटिवली नहीं है। तो हम अगर ग्लोबल फीचर्स का बात करें, जैसे लानीना चल रहा है और ऐसे ही अप्रैल मई में भी ज्यादा गर्मी हुआ है, तो ये सारा बहुत इंडिकेट करता है कि मानसून अच्छा रहेगा ओवरऑल जो है। अगर ऑल इंडिया रेनफॉल, जो सारा भारत का बारिश का अगर हम हिसाब करें, तो पूरा सीजन में जो है टोटल रेन लगभग जो हमारा 89 सेंटीमीटर होता है वो नॉर्मल रहेगा। हम रादर बढ़ाया, इनका मान था 99%, हम 103% दिया अपडेट में। और उसके साथ साथ जून महीने का जो है, सभी को ये मैं बताना चाहता हूँ कि मानसून का जो आगमन होता है, ये एडवांस फेज में मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हर साल का यही स्टोरी है, मतलब यही ऑब्जर्वेशन है, इसमें घबराने का कोई बात नहीं होना चाहिए। और कुछ कुछ मीडिया जो बोलते हैं वो बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी जैसे हमारा जो रहेगा स्थिति, अभी पेनिनसुलर इंडिया जो दक्षिण भारत कवर कर रहा है, आगे से भी केंद्रीय भारत और हमारा उत्तर पश्चिम भारत को भी आएगा। और यही है कि कौन सा डेट जो है, डेट तो वैरी करता है, कभी 10 दिन लेट में आता है, कभी 10 दिन पहले आता है। जैसे दिल्ली का अगर बात करें, पिछले साल बहुत लेट में आया,
2: 25 के बाद
3: जून 27 नॉर्मल डेट होता है, राजस्थान जुलाई फर्स्ट वीक होता है। तो लगभग जो प्रेडिक्शन है जून महीना का सेकेंड हाफ है वो बारिश अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ मानसून का जो आगमन है, अभी तक जो आंकड़ा है कुछ डिले नहीं हुआ है, और महाराष्ट्र का कवर टाइम पर करेगा और केंद्रीय भारत भी टाइम पर करेगा।
2: बिल्कुल, तो अभी जो मानसून की चाल है या फिर रफ्तार है, उसमें किसी तरह की हम तब्दीली नहीं देख रहे हैं, जो सामान्य रूप से जो होना चाहिए वैसा ही है। शिव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए जो रिपोर्ट भी हमने दिखाई, तो उसमें भी हमने बताया कि किस तरीके से कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब हम एवरेज निकालते हैं पूरे देश का तो लगता है कि हाँ मानसून अच्छा रहा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है और किसानों को इसके लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। आप जो अभी खासतौर पर जो खरीफ सीजन की फसलें हैं उनके लिए विशेष तौर पर क्या बताना चाहेंगे?
4: हम देखिए, मानसून जैसा कि इस साल नॉर्मल रहने की संभावना है, तो बहुत से क्षेत्रों में जो है अलग अलग किस्में लगाई जाती हैं, अलग अलग फसलें लगाई जाती हैं, तो उस अनुसार जो है किसानों को अपनी तैयारी करने की जरूरत है। जैसे विशेषकर मध्य प्रदेश के अंदर जो है सोयाबीन लगाई जाती है, महाराष्ट्र के अंदर जो है कपास लगाई जाती है या छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार के अंदर जो है धान का बहुत खेती होती है। इसके साथ साथ यदि हम उत्तरी भारत की बात करें, पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो है धान मक्का ज्वार बाजरा इनकी बहुत खेती होती है। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी फसलें भी हैं हमारी, जैसे दाल वाली फसलें हैं, अरहर है, मूंग है, उड़द है, इनकी खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है खरीफ के मौसम में। लेकिन बात ये ध्यान रखने की है कि जो अपने क्षेत्र के लिए अनुमोदित किस्में उन्हीं को लगाएं और उसके साथ साथ जो है इस चीज का भी ध्यान रखें, पानी यदि आपके यहाँ अच्छी बारिश हो रही है तो उसका जो है पूरा सदुपयोग करें। सदुपयोग करने का मतलब ये है कि पानी को बाहर न जाने दें, और यदि पानी बहुत ज्यादा भर गया है जैसे हमारी अरहर की है, मूंग की है, उड़द की है, तो वहाँ पानी निकालने की संभावना भी बढ़ जाती है,
2: बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है, ये भी हम जानते हैं। अनंता जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि देखिए प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है, रेन और क्रॉप इसके बीच में जब प्रबंधन की बात करते हैं तो इसे हम किस तरीके से समझें?
5: नहीं, जैसे कि अभी मानसून के समय में विभिन्न फसलें लगती हैं, जिसमें जैसे कुछ धान है, मक्का है, दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, इसके अलावा सब्जी वर्गीय फसलें भी लगती हैं, तो इसमें सभी फसलों को सामान्य रूप से पानी की जरूरत नहीं होती है। जैसे धान है उसको ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तिलहनी या दलहनी फसलें हैं उनको कम पानी की जरूरत होती है। तो आपको जो उस हिसाब से जब पानी का जो प्रबंधन करना चाहे फसलों में, जैसे अभी डॉक्टर सीवर जी ने भी कहा है कि धान के लिए पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तो आपको वहां पे जो ऐसे मैंने ऊंची बना लीजिए ताकि अगर बरसात का पानी आता है तो ज्यादा से ज्यादा पानी जो है आपके खेतों में रुक सके। आपकी जैसे तिलहनी फसलें हैं या दलहनी फसलें हैं या सब्जी वर्गीय फसलें हैं, तो ये पानी के प्रति काफी संवेदनशील होती है, अगर ज्यादा पानी बरस गया तो उनकी जो जड़ें होती है वो खराब होने की संभावना होती है। तो उसमें जो आप जल निकासी का प्रबंधन कर सकते हैं या फसलों को आप में लगा सकते हैं, जिससे जो है आपका पानी से नुकसान नहीं हो सकता। जैसे कि हम देख ही रहे हैं आजकल जलवायु परिवर्तन की वजह से जो वर्षा की तीव्रता है वो ज्यादा हो जाती है, और जो आपके रेनी डे हम जो कहते हैं कि वर्षा के दिन, उनमें कमी आ रही है। जैसे कि टोटल बारिश हम कहते हैं कि जो आपका मानसूनी वर्षा हो तो आपकी उतनी ही रहेगी, लेकिन जो वितरण है वो आपका सामान्य नहीं रहता है, कभी आपकी बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, कभी आपका ड्राई पीरियड जो सूखा समय है फसलों के दो बारिश के बीच का समय वो ज्यादा रह जाता है। तो अगर आप जो ये जो पानी है जो पानी एकत्रित नहीं, तो आपको ये सलाह दूंगी कि आप खेत के पास में एक पौंडनुमा स्ट्रक्चर बना दीजिए और जो बरसात का पानी आता है उसमें इकट्ठा हो जाएगा, साथ ही जो आप जल निकासी करते हैं खेतों से उसका पानी भी उसमें इकट्ठा हो जाएगा। और जब आपका जो सूखा पीरियड ज्यादा होता है उसमें आप जब पंप की मदद से वो जो पौंड में आपका पानी एकत्रित हुआ है उसको आप फसलों में डाल सकते हैं। इसके आपके कई फायदे होंगे, एक तो आपको पानी मिल जाएगा फसलों में, दूसरा जो खेत का जो उर्वरक है वो पानी के साथ आपका उसमें इकट्ठा हो गया तो फिर से आपके जो खेतों में आ जाएगा, तो ये भी आपका फायदा हो जाएगा।
2: जी बिल्कुल अनंत जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई, क्योंकि देखिए हम पानी को सिर्फ पानी की तरह लेते हैं कि एक पोषक तत्व है, जितने जो जरूरत होती है फसलों को उनमें से एक ये भी है, एक कंपोनेंट है महत्वपूर्ण, लेकिन उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी मिले। जो अनंता जी ने बताया कि आपकी खेत की जो मिट्टी बहती है वो बहुत रिच होती है, वो बर्बाद ना जाए, उस पानी को बर्बाद आप बिल्कुल ना जाने दें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसान इसके लिए अपने स्तर पर तैयारी करें, वहां पर भी जहां पर बारिश कम होती है और वहां पर भी जहां पर ज्यादा होती है, दोनों ही स्थिति में आपको अपने स्तर पर जरूर तैयार रहना चाहिए। अब बात मैं करती हूँ जनमणि जी से। जनमणि जी, जैसे कि हम वितरण की बात करें, देखिए सारा प्रबंधन जो है इसी बात पर फोकस हो जाता है कि कहीं बारिश ज्यादा ना हो जाए और कहीं बारिश कम ना हो जाए, लेकिन अगर एक समझने की हम कोशिश करें, एक मेरा सवाल है कि ये दस में वितरण कम हो क्यों रहा है? मतलब एक दिन एक क्षेत्र में देखते बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, वहीं दूसरी जगह देखते हैं कि कम हो रही है, तो एवरेज तो आपका ज्यादा निकलता है लेकिन पानी जो है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता, प्यास धरती की नहीं बुझती।
3: देखिए मैं इसका ना जो डिस्कशन है दो बातें बताऊंगा। जो एक तो जो एरिया है जैसे उड़ीसा है या हमारा पूर्वोत्तर राज्य है और जैसे हमारा पश्चिम का जो कोंकण गोवा कर्नाटक और केरल, यहाँ तो हर साल ज्यादा बारिश होता है, फ्लड होता है, ठीक है ना। इसकी जो वेरिएबिलिटी है कम है, चाहे मानसून कैसा भी परफॉर्म करो लेकिन जो रेन है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ज्यादा बारिश मिलता है, ठीक है। और अगर हम अंदरूनी इलाका का बात करें जैसे मध्य प्रदेश है या ज्यादा से ज्यादा जो राजस्थान है, ये इलाका में जो है एक तो रेनफॉल का जो अमाउंट है 100 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर टोटल होता है, और राजस्थान में भी तो ऐसा इलाका है टोटल 50 सेंटीमीटर है। तो ये इलाका में जो मानसून का जो जैसे अभी डिस्कशन हो रहा है, यहाँ जो है जो हम रेनफॉल एरिया बोलते हैं कि जहाँ बारिश कम होता है उसके साथ साथ इसका जो वेरिएबिलिटी है भी, मतलब 6 दिन बारिश हुआ या 2 दिन बारिश हुआ फिर एकदम ड्राई स्पेल लंबा है, तो ज्यादा हमारा जो फोकस रहता है ये राजस्थान मध्य प्रदेश इसी इलाका का रहता है कि इनको सही इन्फॉर्मेशन मिले कि कब वेट स्पेल होगा कब ड्राई स्पेल होगा, सो दैट जैसे दे कैन यूज दैट इन्फॉर्मेशन, पानी को स्टोर करना है कौन सा यू नो सोइंग सीजन कौन सा टाइम में होता है, इसलिए वो मौसम विज्ञान विभाग से जो नियरेस्ट सेंटर है वहां से टाइम टू टाइम हमारा SMS जाता है उसका इस्तेमाल करें।
2: जी यानी जरा मनी जी, जो भी प्रिडिक्शन होते हैं पूर्वानुमान होते हैं इस पर हमारे किसान बहुत गौर करें, क्योंकि अगर उन्हें ये पता चलता है कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली, जैसे आपने बताया कि हैवी स्पेल की अगर संभावना बन रही है, तो किसान सिर्फ इस सीजन की फसल को ध्यान में रखते हुए अपने स्टेप्स ना उठाएं, बल्कि ये भी सोचें कि इस पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। और जैसे कि हाल में हमने विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया, उसमें भी फोकस यही था कि धरती एक ही है और पानी जो है इसे आप लैब में नहीं क्रिएट कर सकते हैं, बारिश होगी ऊपर से वही पानी आप इस्तेमाल करेंगे या फिर ग्राउंड वाटर होगा, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसान पहले से किस तरीके से पानी को बचाया जाए ताकि आगे भी काम आए।
3: और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो वाटर मैनेजमेंट है, दूसरा क्या होता है कि क्रॉप का जो डिफरेंट स्टेज होता है तो अकॉर्डिंगली जैसे हैवी स्पेल होता है तो पेस्ट एंड डिजीज और आपको जो भी खादी या कुछ भी फर्टिलाइजर डालना है तो वेट स्पेल में तो चला जाता है नीचे, ठीक है ना। तो इसलिए जो मौसम का भविष्यवाणी लेके नॉट ओनली कि आप लगाए धान कि कब आ रहा है मानसून वो एक है, उसके बाद भी कम्प्लीटली मैनेजमेंट जो है वो मौसम का भविष्यवाणी पर होना चाहिए।
2: जी जी।
3: जैसे पेस्ट डिजीज कंट्रोल है, जैसे फर्टिलाइजर लगाना है, तो बारिश को देखते या कब ड्राई स्पेल है वही विंडो में करना चाहिए।
2: जी शिवे जी, इस पे मुझे लगता है और बेहतर तरीके से बता पाएंगे, आप क्या बताना चाहेंगे सर, चाहे वो खाद डालने की बात हो या फिर पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो मौसम या फिर खासतौर पर बारिश की जो संभावना है उसको देखते हुए कैसे हमारे किसान कर सकते हैं।
4: देखिए बारिश का जो है बहुत बड़ा महत्व है हमारे खाद्यान्न उत्पादन में, विशेषकर जो है खरीफ के मौसम में। ये एक तो पानी पौधों को डायरेक्ट मिलता है, दूसरे जो हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में हम पंप सेट से ट्यूबवेल से पानी को निकालते हैं तो उसके लिए भी रिचार्ज होना ग्राउंड वाटर बहुत जरूरी है, और ये वर्षा पर ही निर्भर करता है। तो इसका बहुत अच्छे ढंग से किसानों को सभी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पानी एक ऐसी कॉमोडिटी है कि इसके बिना खेती नहीं की जा सकती, चाहे वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है चाहे इरीगेटेड है, कैसी भी कंडीशन है पानी बहुत जरूरी है। तो किसानों को, क्योंकि आजकल कृषि विज्ञान केंद्र हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और वहां पे जो मौसम की भविष्यवाणी की सूचना जाती है, और उन्होंने जो है अपने व्हाट्सएप मैसेज से किसानों को जोड़ रखा है, तो उनके हर किसानों के पास में कम्युनिटी सेंटर पर जाती है कि भी अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है या हवा तेज चलने वाली है, या हमको जो है खाद डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा इस माध्यम से किसान भाइयों को जागरूक होने की जरूरत है, और उनको जो है समय समय पर जो भी उनको मैसेज मिलता है उसी अनुसार जो है, चाहे वो किसी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे किसी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखकर करें कि आज बारिश होने वाली है तो हम नहीं डालेंगे, यदि थोड़ा ड्राई स्पेल आ रहा है तो उस समय जो फर्टिलाइजर लगाएं, या हो सकता है उनका कुछ इरिगेशन देने की जरूरत पड़े तो इस तरीके से करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्रॉप की प्लानिंग भी इस तरीके से करनी चाहिए कि जैसे इंटरक्रॉपिंग है या मिक्स्ड क्रॉपिंग है या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, ऐसे आयाम यदि वो अपनी कृषि पद्धति में लेकर आएंगे तो वहां पर पानी की उपयोग क्षमता बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। और यदि कुछ दुर्भाग्यवश किसी कारणवश कुछ ड्राई स्पेल आ जाता है तो वहां पे फसल होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती
2: जी,
4: है।
2: लेकिन जी जी जी सर,
4: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, किसान भाई जो है इस चीज का भी ध्यान रखें कि उनके पास में कोई अवशेष बचा हुआ है किसी फसल का तो उसको जलाएं नहीं, बल्कि उसको मिट्टी के ऊपर छोड़ें, तो आच्छादन का काम करेगा, मल्चिंग का काम करेगा, उससे उनका जो है पानी का ह्रास कम होगा और उनकी जो है वाटर रिटेंशन
2: और कार्बन कंटेंट भी बढ़ेगा मिट्टी का,
4: ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट तो आत्मा मानी जाती है मिट्टी की, और वो जो है पोषक तत्व प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी है। और जो हमारे जैसे माइक्रोबियल बायोमास है, माइक्रोबियल बायोमास कार्बन है, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिन, इनके लिए भी बहुत जरूरी है।
2: जी जी, लेकिन डॉक्टर शिवे, जैसे कि आपने बताया कि मौसम कैसा रहने वाला है, पूर्वानुमान देखे उसी के अनुसार चाहे सिंचाई करनी है या फिर पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें, खाद डालें या कीटनाशक डालें, उसी के अनुसार हमारे किसान अपनी योजना बनाए। लेकिन एक बात हम ये भी जानते हैं कि किसान जो एक पैटर्न फॉलो करता आ रहा है, मतलब जो परंपरागत तौर पर कि इस फसल में इतनी सिंचाई लगनी है तो 21 दिन बाद हम पहली सिंचाई लगाएंगे, फिर इतने दिन बाद, तो वो भी ये बात सही है कि अगर वो डे मिस हो गया तो उसकी फसल में नुकसान होगा, तो इसे मतलब ये बड़ा जटिल हो जाता है, किसान कैसे समझे इसे?
4: समझने की जरूरत ये है कि यदि बारिश हो जाती है, जैसे क्रिटिकल स्टेज बताते हैं कि भाई इस पर पानी देने की जरूरत पड़ती है। धान के अंदर हम बताते हैं कि जिस समय मैक्सिमम टिलिंग स्टेज हो या हमारी जो है बालियां निकलनी अंदर ही बननी शुरू हो में, तो उस समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, और बालियां इनिशिएशन से बाली बाहर आने तक तो बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्टेज को ध्यान में रखते हुए किसान भाई पानी का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन उस समय यदि बारिश हो जाती है तो फिर पानी देने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मक्का के अंदर जो है हमारी नी हाई स्टेज है, बहुत क्रिटिकल है पानी के लिए, तो उस समय पानी नहीं लगा तो लगेगा तो काफी नुकसान हो जाएगा। यदि बारिश हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बारिश होती है तो उस समय सप्लीमेंटल इरिगेशन कहते हैं उसको, पूरक सिंचाई कहते हैं, उस समय सिंचाई करेंगे तो उनकी पैदावार अच्छी होगी। इसी तरीके से जैसे हम मैं बताना चाहूंगा कि अरहर की फसल है, अरहर की फसल या मूंग उड़द की फसल को अभी डॉक्टर अनंत अवशिष्ट जी ने बताया कि बेड पर लगाना चाहिए, और आजकल ब्रॉड बेड पर लगा रहे हैं किसान, तो उसी पद्धति को अपनाना चाहिए। तो इस पद्धति को अपनाएंगे तो उनके यहाँ जल भराव की कोई समस्या होती है तो वो उससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारी फसल बच जाएगी, और उससे हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा, बाहर नहीं जाएगा और जड़ों को भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से यदि कुछ नए आयाम लेकर आएंगे बिजाई के लिए या क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो उनसे जो है ज्यादा हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और हमारी फसल भी अच्छी होगी, और इसके साथ साथ जो हमारे जो दूसरे प्रबंधन के आयाम है वो भी अच्छे हैं।
2: जी अनंता जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जैसे कि डॉक्टर शिवे बता रहे हैं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, लेकिन हम इस बात को भी समझते हैं कि जब किसान की फसल खेत में होती है या फिर बुआई कर देता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस उसकी फसल होती है, उस वक्त वो उसके आगे पीछे नहीं सोचता, वो उसका पूरा ध्यान ही रहता कि मेरी फसल कैसे अच्छी हो। तो कैसे यहां पर एक सामंजस्य भी रहे और दोनों तरह से काम होते रहे, क्या बताएंगे?
5: जी इसमें तो मैं किसान भाई बहनों को यह सलाह दूंगी कि उन्हें मौसम आधारित कृषि करनी चाहिए या मौसम आधारित कृषि प्रबंधन उसमें करना चाहिए, उन्हें समय समय पर मौसम की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अभी मानसून के समय जो मुख्य मौसमी तत्व होता है वो बारिश होती है, बारिश केवल सिंचाई के लिए नहीं, खरपतवार नियंत्रण करना है या आपका कीटनाशक है या आपका जो आपके बीमारियां आ रही हैं उसके प्रबंधन के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी डॉक्टर सिवे बता रहे थे कि आपको कब सिंचाई देनी है, आप डिफरेंट स्टेज होती है इसमें आपको सिंचाई देते हैं, और किसान भाई बहन क्या करते हैं कि उसी में दे देता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उन्होंने सिंचाई कर दी और उन्हें मौसम की जानकारी नहीं है, उसके तुरंत बाद बारिश आ गई, तो फसलों को जितना पानी चाहिए था उससे ज्यादा पानी उनको फसलों को मिल गया। तो हर चीज को अपना ऑप्टिमम जो कहते हैं उतनी जरूरत होती है, तो अगर ऑप्टिमम से ज्यादा उनको पानी मिल जाता है तो उनकी फसलें खराब हो सकती है। इसके अलावा जैसे खरपतवार नाशी डालना है या कीटनाशी डालना है, आपको बीमारियों से बचाना है अपनी फसलों को, तो किसान भाई बहनों को अगर इसकी सूचना नहीं है कि अगले 2-3 दिन में बारिश होने वाली है और उन्हें कीटनाशक आपके फसलों में डाल दिया, तो इसका क्या होगा कि तुरंत उसके बाद बारिश हो गई तो कीटनाशक उसका धुल जाएगा, और धुल के जो है ये आपका
2: मिट्टी को भी दूषित
5: करेगा और वहां से जो है वो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। और अगर आपका बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो रन ऑफ करके पानी के साथ बह के जो नजदीकी नाले हैं या नाले से होते होते जो नजदीक के तालाब है उनमें भी चला जाएगा, उसमें मछलियां हैं, जलीय जंतु हैं,
2: दूषित हो जाएगा, कंटैमिनेट हो जाएगा।
5: तो आपका देखो एक तो एनवायरमेंट पॉल्यूट होने से बच जाएगा अगर आपको मौसम की जानकारी है, आपकी मृदा प्रदूषित होने से बच जाएगा, आपका जो भूजल है वो प्रदूषित होने से बच जाएगा, और आपके जो जलीय जंतु हैं वो भी आपके बच सकते हैं। तो अगर आपको छोटी सी जानकारी एक मिल जाती है तो आपके इतने जो साइड फायदे हैं हम कहते हैं, ये फायदे आपके हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी रिसोर्स सेविंग हो जाती है, क्योंकि आपने जो है पानी की आपकी बचत हो रही है, आपने पानी लगाया तो पानी लगाने में आपका लेबर का जो खर्चा आ रहा है या डीजल का खर्चा आ रहा है तो वो भी आपका बच जाता है, तो उनका जो नेट प्रॉफिट है वो बच जाता है।
2: बिल्कुल, देखिए यानी कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि मानसून का प्रिडिक्शन, उसका पूर्वानुमान कितना सटीक होगा, इस पर भी आपकी आय निर्भर करती है, क्योंकि उसी के अनुसार आप आगे की जो कृषि क्रियाएं हैं उनके बारे में विचार कर सकते हैं, उनके बारे में स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, योजना बना सकते हैं। इसीलिए इस विषय को हमने आज शामिल किया अपने कार्यक्रम में, ताकि किसानों तक जागरूकता फैले और मानसून के चाल पर वो नजर रखें। लेकिन कई बार समस्या ये आती है कि किसानों तक इतनी सटीक जानकारी सही समय पर पहुंचे तो पहुंचे कैसे, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि मौसम की चाल इतनी तेजी से बदलती है कि किसान खुद भाप नहीं पाता। तो इसके लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।

0: रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: आज हम बात कर रहे हैं मॉनसून और खेती की। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है और किसान कितने खुशहाल होंगे, उनकी आय में वृद्धि होगी, किस हद तक होगी, ये भी निर्भर करता है मॉनसून कैसा रहने वाला है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जयनमणि, जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, किसान मौसम पर नजर रखता है, मौसम के अनुसार अपनी योजना बनाना चाहता है, लेकिन सही समय पर सही जानकारी उसे मिलेगी तभी यह संभव होगा कि कल बारिश होने वाली है, तभी वो तैयारी करेगा ना कि आज वो सिंचाई ना लगाए। तो इसके लिए किस तरह का तंत्र बनाया जा रहा है, किसानों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है?
2: देखिए, जो मेनली जो आजकल हमारा जो किसान भाई और बहन के साथ है, एक व्हाट्सएप ग्रुप हर जैसे ग्राम या डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, जहाँ हमारा जो लेटेस्ट है 4 बार पर डे बुलेटिन जाता है। तो उसमें हम दो तरीके का भेजता है, एक है एक नावकास्ट जाता है जो मेनली सडन डेवलपमेंट के बारे में बताता है, नेक्स्ट 2-3 घंटा है तो किसान भाई के लिए ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन अपने सेफ्टी के लिए है। जैसे लाइटनिंग है जो सडनली लोगों के ऊपर, आप सभी को मालूम है बिहार झारखंड उड़ीसा में ज्यादा जाने जाता है, तो उनका सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है। वो एक SMS जाता है, उसमें ध्यान देना चाहिए अपना सेफ्टी के लिए, क्योंकि जून महीना में ज्यादा जान को खतरा रहता है, जून जुलाई में जैसे मानसून आगमन का टाइम होता है। और दूसरा एक है कि हमारा जो शॉर्ट रेंज है, मतलब 5 दिन तक जो प्रेडिक्शन है वो आता है, डेली हम लोग भेजते हैं, मैसेज के थ्रू में भेजते हैं। अगर कोई सीवियर वेदर है, लंबा स्पेल है, एक्टिव स्पेल है, मानसून आ रहा है, सारा डिटेल कवर करता है। और उसके साथ साथ एक एक्सटेंडेड रेंज लंबा अवधि का 2 हफ्ते तक वैलिड है, हम भेजते हैं। वो 2 हफ्ते वाले जो 14 दिन का जो प्रेडिक्शन है वो जाता है सभी किसान भाई, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो हमारा होता है, जैसे हर स्टेट में हमारा सेंटर है, तो अगर वो जैसे कृषि विज्ञान केंद्र का बात हो रहा था, अगर वहां संपर्क करे तो सारा डिटेल मिल जाएगा। तो आजकल का जो टेक्नोलॉजी है वो 80% to 90% एक्यूरेटली जो है ड्राई स्पेल है या ज्यादा बारिश होगा, कितना दिन बरसेगा, वो डिटेल्स आजकल से ही जा रहा है इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए इसका इस्तेमाल जरूर करें, और मैं तो और बोलूंगा कि जो नावकास्ट है उसको अपना सेफ्टी के लिए जरूर व्यवहार करें, क्योंकि ज्यादा जाने जो है हमारा एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं उन्हीं का भी जाता है। हम अगर पिछले स्टैटिस्टिक
1: बिल्कुल, और पिछली बार का मुझे भी याद भी आता है कि किस तरीके से आप बताए कि लाइटनिंग की वजह से
2: बिहार में,
1: जान भी गई,
2: उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में
1: जी। और डॉक्टर शिवे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो किसान है मौसम देखते रहे, उसी के अनुसार अपनी पूरी जो स्ट्रेटजी है वो डेवलप करें, तो ऐसे में ये तो बात हुई सिंचाई की, तो क्या ये सिंचाई तक ही सीमित है या फिर पोषक तत्व प्रबंधन और बारिश का भी किसी तरह का संबंध है जिसे हमारे किसान ध्यान में रखें?
3: देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। किसान भाइयों को ये जानने की जरूरत है कि पानी है तो तभी वो अच्छे ढंग से पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं, पानी नहीं है तो फिर वो पोषक तत्व भी नहीं डालते हैं, क्योंकि पोषक तत्व जो है पानी से ही लिए जाते हैं जड़ों के माध्यम से। तो इस तरीके से ध्यान करने की जरूरत है, जैसे बारिश बहुत ज्यादा हो गई है जिस दिन, तो उस दिन जो है उनको नाइट्रोजन नहीं डालनी चाहिए, जब तक पानी खेत में खड़ा है, धान के खेत में विशेषकर, क्योंकि धान हमारे भारत में लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में होता है, सभी प्रदेश के अंदर होता है, तो उसमें जो है नाइट्रोजन का बहुत बड़ा ह्रास होता है। और नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता धान के अंदर देखें वो 25 से 30% से ज्यादा नहीं है, बाकी लॉस ही होता है, चाहे अमोनिया गैस बनकर उड़ जाता है, चाहे नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, या जो है फिर वो नाइट्रेट लीचिंग के द्वारा ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है किसानों को कि जैसे हमारा ड्राई स्पेल आ रहा है तो उसमें जो है आप फोलियर फीडिंग कर सकते हैं, पानी का घोल बनाकर पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं, और यदि आपकी बहुत ज्यादा बारिश हो गई है तो उस समय जो नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब पानी निकल जाए खेत से तभी दें, तो इससे हमारी नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ साथ आजकल बायो फर्टिलाइजर्स भी पानी के साथ साथ बहुत अच्छे पोषक तत्व प्रबंधन में हमारी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, अच्छी फसल लेने के लिए, मृदा स्वास्थ्य के लिए, इसका भी इस्तेमाल किसान भाइयों को जरूर करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ग्रीन मैन्योरिंग है या हमारा
1: हरी खाद वगैरह,
3: सड़ी गड़ी गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो जो है हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दूसरा हमारा जो फसल अच्छी होती है, और तीसरा जो हमारा ग्राउंड वाटर का रिचार्ज भी अच्छा होता है, क्योंकि ऐसी मृदा के अंदर जो है पानी का अवशोषण ज्यादा होता है, तो पानी बह के नहीं जाता है ऐसी मृदाओं के अंदर, और जो हमारी वैसी मिट्टी होती है जिसमें हम ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट की कमी है, वहाँ पानी बह के भी चला जाता है और मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी नहीं बढ़ती है। तो इस तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन करें। अभी दूसरे जो है भारत सरकार ने और हमारा इफ्को जो है नैनो यूरिया बना रहा है, तो कुछ नाइट्रोजन उपरणीय छिड़काव से नैनो यूरिया के माध्यम से भी कर सकते हैं, इससे नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता बढ़ेगी
1: और श्रम भी इसमें कम लगता है,
3: कम भी लगता है। और इसके साथ साथ कभी कभी हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और पौधों के अंदर दिखाई देते हैं कि भी जिंक की कमी होगी, आयरन की कमी होगी, विशेषकर मैं बताना चाहूंगा जैसे डायरेक्ट सीधी बिजाई धान की कर रहे हैं और अभी चली रही है पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ज्यादातर किसानों और दूसरी जगह भी करते हैं, तो यदि शुरू में उनके यहाँ आयरन की हरिमाहीनता दिखाई देती है तो उसके लिए जो है पर्णीय छिड़काव से कर सकते हैं, बाद में जब बारिश होगी तो फिर उनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बारिश अच्छी होती है तो फिर जो है आयरन की कमी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो है पानी की और पोषक तत्व प्रबंधन का एक सामंजस्य है जो एक अच्छा मृदा स्वास्थ्य के लिए और अच्छी उत्पादकता के लिए और अच्छा जो है रिटर्न देने के लिए जरूरी है।
1: जी डॉक्टर अनंता, एक चीज हम ये भी देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो पहले नहीं होती है, तो अगर बारिश उस क्षेत्र में ज्यादा हो गई तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आर्द्रता हो जाती है और उसके बाद बीमारियों अपने आप ही आने लगती है, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए हमारे किसानों को, किस तरीके से इसको लेकर वो सजग रहें।
4: जी, जैसे कि आपने काफी अच्छा प्रश्न पूछा है, बरसात के मौसम में जो बीमारी और कीड़े आते हैं ये जो है एक तो तापमान और नमी आर्द्रता जो हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस पर निर्भर करते हैं, और विभिन्न जो आईसीआर के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान है उन्होंने ऐसे कई मॉडल डेवलप किए हैं जो हम कहते हैं कि डिजीज फॉर वार्निंग मॉडल्स, वो जो है आपके जो मौसम के आधार पे आप उसकी पहले से वार्निंग दे सकते हैं कि फसल की आपकी ये फसल लगी हुई है और ये फसल की कौन सी स्टेज है और इसमें कौन सी बीमारी है, कीड़ा आने वाला है, तो इसकी फॉर वार्निंग पहले से पता चल जाती है मॉडल के आधार पर। तो ये जो है अलर्ट जो है हम किसान भाई बहनों को दे सकते हैं कि भाई आपकी ये फसल लगी है इसमें ये कीड़ा या बीमारी आ सकती है, तो आप पहले से इस फसल की निगरानी करना शुरू कर दीजिए। लेकिन इसके लिए किसान भाई लोगों को अपने जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो आपके अनुसंधान संस्थान है या आपकी कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके संपर्क में, कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में तथा मौसम वैज्ञानिकों के संपर्क में रहना चाहिए और समय समय पर आपको जानकारी लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप जो है अपना मोबाइल पे जो है जैसे मेघदूत ऐप अभी बताया है या दामिनी ऐप है, इससे बिजली की आपको जानकारी मिल जाएगी, मेघदूत ऐप है इसमें आपको मौसम की जानकारी के साथ साथ ही कैसे आपको प्रबंधन करना है, मौसम आधारित कृषि प्रबंधन करना है ये भी आप उसमें जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में जो प्ले स्टोर से ये जो मेघदूत ऐप और दामिनी ऐप इसमें
1: जी ये बहुत अच्छा आपने बताया, जानकारी मेघदूत ऐप के बारे में तो काफी प्रचार प्रसार हुआ, दामिनी ऐप जो
2: लाइटनिंग का
1: है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि बिजली का प्रिडिक्शन भी पता चल सकता है।
2: देखिए बिजली का जो प्रिडिक्शन है वो मॉनिटरिंग है, हमारा जो सिस्टम है कहीं कहीं इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है उसके साथ साथ सैटेलाइट बेस्ड भी हम लोग को पता चलता है, तो आधा घंटे विद इन वन आवर वो मैसेज जाता है कि जस्ट फोर वार्निंग, मतलब कहीं इलाका में हो रहा है आगे जाएगा, तो उसको हम लोग ये जैसे बताए कि जो दामिनी ऐप है उसके थ्रू में आपको पता चलेगा कौन सा एरिया में वो एक्टिविटी चल रहा है या थोड़ा बहुत होने वाला है। अच्छा। वो मैपिंग के वजह से वो गूगल ऐप में दामिनी डाउनलोड करके कर सकते हैं बिजली की गिरने का जो है, और जैसे बताया मेघदूत में आपका पूरा अपना एरिया का भी आप देख सकते हैं लोकेशन और जो जगह है वहाँ क्या बारिश का संभावना है वो मिल सकता है डिटेल।
4: जी इसके अलावा मैं कुछ यहाँ पे जैसे बरसात के मौसम में आप खरपतवार नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में आप देखते हैं कि खरपतवार काफी आती है और खरपतवार का जो मुख्य फसल है उससे काफी प्रतिस्पर्धा होती है, वो मृदा से पोषक तत्व तो लेती है, इसके साथ साथ जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसको भी बाध्या करती है, क्योंकि उनकी पैदावार जो है मुख्य फसल से ज्यादा हो जाती है और वो जो मुख्य फसल है उसको प्रकाश कम मिलता है तो उसकी बढ़ोतरी रुक जाती है या कम हो जाती है, तो इसका काफी उपज की गुणवत्ता पे भी इसका असर पड़ता है। तो समय समय पर जो आपको खरपतवार नियंत्रण भी करना चाहे, इससे आपके जो मृदा है उसमें भी क्या होगा कि जो हवा का आदान प्रदान अच्छे से होगा, हवा का आदान प्रदान अच्छा होगा तो आपकी जो जड़ें होंगी वो भी मजबूत होंगी, ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व वो जमीन से ले लेगी, अच्छे से आपका प्रकाश संश्लेषण होगा और आपकी जो उपज की गुणवत्ता है और उत्पादकता दोनों में बढ़ा होगा।
1: जी जी बिल्कुल। तो अभी आपने बताया, देखिए सुनने में बातें बहुत आम सी लगती है लेकिन इसका प्रभाव बहुत दूरगामी होता है और बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है फसलों पर। जनरली जैसा कि हम मानसून की बात कर रहे हैं और पहले तो जो तरीका होता था कि विंड्स किस तरफ हवा बह रही है और आसमान में बादल छाए या नहीं छाए उसको देखकर अंदाजा लगाया जाता था, लेकिन अब तो सब चीजें बहुत सिस्टमैटिक हो गई, नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम मानसून को ओवरऑल समझने की कोशिश करें तो हमारे देश का मानसून किस तरह का है, नेचर ऑफ मानसून क्या है?
2: नहीं देखिए ये मतलब जानकर हम गर्व अनुभव करना चाहिए कि जो मानसून है वो भारत में सबसे ज्यादा रेन होता है। अगर सारा विश्व का जो क्लेम करते हैं, जैसे अमेरिका भी क्लेम करता है हमारा मानसून है, या कहीं भी आप जो ट्रॉपिकल एरिया है, मानसून मतलब विंड एक्चुअली मेनली हवा, हवा का गति एंड हवा का दिशा, तो हमारा भारत का ऐसा नेचर मतलब हमारा जैसे लैंड है केरला से लेकर के हिमालय अगर जाए और हमारा दो जो समुन्द्र है जो अरेबियन सी है बे ऑफ बंगाल है, तो ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। हिमालय तो एक जो है जो हमारा हवा आ रहा है समुद्र से उसको रुकता है, अगर हिमालय नहीं होता तो हमारा ये पूरा रेगिस्तान बन जाता है, ठीक है ना। सो हमारा जो रेन का जो अमाउंट है वो भी बहुत ज्यादा है, जैसे अगर किसी के साथ कंपेयर करें तो मानसून का सबसे ज्यादा रेन होता है हमारा पूर्वोत्तर, सभी को मालूम है मानसून राम है चेरापूंजी है, उसके साथ साथ हमारा जो कोंकण का क्षेत्र है चाहे कर्नाटक का क्षेत्र है बहुत ज्यादा बारिश होता है, 2500 मिलीमीटर एक्चुअली 250 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर, तो ये हमारा का पूरा साल का जो पानी है और बिजली भी है मानसून के ऊपर डिपेंड करता है कि खेती तो है ही है, उसके साथ साथ हमारा जो पूरा जीवन है मानसून के द्वारा नियंत्रित होता है, तो इसलिए मानसून बहुत अहम माना जाता है साउथ एशिया के लिए, पर्टिकुलरली हमारा भारत के लिए है।
1: जी जी शिवेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर, क्रॉप के हिसाब से अगर हम बात करें खरीफ की जो फसलें हैं अगर उनके बारे में एक एक करके और बारिश से जोड़कर अगर इसको थोड़ा समझना चाहें तो किस तरह से?
3: हाँ देखिए जैसे भारत के अंदर जो लगभग खरीफ में जो राइस है धान है सभी प्रदेशों में उगाया जाता है, इसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है, बिना पानी के धान नहीं हो सकता, तो इसके लिए बारिश का बहुत बड़ा रोल है और जो ये हमारी खाद्यान्न की जो पूर्ति के लिए नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा कमाने के लिए,
1: हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है,
3: खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है और इसके साथ साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भी जरूरी है। जैसे पिछले साल जो लगभग हमने 32-36 हजार करोड़ रुपए का जो है
1: रिकॉर्ड एक्सपोर्ट
3: धान का किया है तो उससे अर्निंग हुई है, तो उस तरीके से धान के प्रबंधन के लिए जरूरी है कि पानी का जो है सदुपयोग करें और विशेषकर मैं पंजाब हरियाणा में क्योंकि बासमती की खेती होती है यहाँ बताना चाहूंगा इस माध्यम से कि वो डायरेक्ट सीधी बिजाई करेंगे डायरेक्ट सीडिंग करेंगे तो उसमें पानी की बचत होगी और पानी कम लगता है, लगभग उसमें 25-30% पानी की बचत हो सकती है क्योंकि हमको जो है लगभग उसमें 20-22 इरीगेशन देनी पड़ती है लेकिन जो ट्रांसप्लांटेड राइस है उसमें हमको जो 28-30 इरीगेशन देनी पड़ती है। अब साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा जैसे हम पडलिंग करते हैं उस समय यदि बारिश नहीं होती है तो उसमें लगभग हमारा 15 लाख लीटर पानी लग जाता है पडलिंग के अंदर, तो उस पानी की बचत कर सकते हैं हम सीधी बिजाई करके, लेकिन ये सीधी बिजाई जो है अभी कर लें वो बारिश आने से पहले ताकि उनका जमाव हो जाए, तो इस तरीके से जो है धान के अंदर पानी का प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन मक्का है ज्वार है बाजरा इनको थोड़ा कम पानी की जरूरत पड़ती है, मक्का ज्वार बाजरे को हमेशा जो रेज बेड पर लगाना चाहिए, तो रिज पर लगाएंगे उससे दो फायदे होंगे, एक तो उनकी फसल को नुकसान नहीं करेगा पानी यदि अधिक हो जाता है और दूसरा उनका ग्राउंड वाटर कहीं पानी खेत का पानी खेत में ही रहेगा बाहर नहीं जाएगा और ये हमारा स्लोगन भी है और ये हमारा विजन भी गाँव का पानी गाँव में ही रहे, तो इस तरीके से यदि बिजाई करेंगे वो मक्का ज्वार बाजरे के अंदर तो उनकी फसल अच्छी होगी और हमारा मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। अब बात आती है कपास, कपास बहुत हमारी प्रमुख
1: सफेद सोना भी कहा जाता है इसे।
3: हाँ जी बिल्कुल, बहुत मतलब अच्छी क्रॉप है। तो लगभग जो ये पंजाब में भी, हरियाणा में भी होती है, राजस्थान में भी होती है, गुजरात में भी होती है, और हमारे लगभग महाराष्ट्र, हमारे जो मध्य प्रदेश में, इनमें सभी प्रदेशों में होती है। तो इसके लिए जो है आजकल ये बताते हैं हम कि रेज बेड पर लगाएं। रेज बेड पर लगाएंगे तो उनका ये फायदे होंगे कि दो लाइनें आ जाएंगी और दो लाइनों के बीच में खूड बन जाएगा, तो अधिक पानी होगा तो खूड के अंदर जो है वो अवशोषित हो जाएगा, फसल को नुकसान नहीं होगा। अब आती है जैसे गन्ने की बात, गन्ना एक हमारी बहुत ही कॉमर्शियल क्रॉप है, सभी जानते हैं, चीनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, सभी खाते हैं लगभग, तो इसके लिए जो है पानी की बहुत जरूरत पड़ती है गन्ने के लिए। गन्ने के लिए पानी खेत से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो है गन्ने की पानी जो सहन करने की क्षमता वो अधिक है और इसको पानी की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसको भी जो है इस तरीके से जब लास्ट जुताई करें, लास्ट अर्थिंग करें, तो गन्ने के ऊपर जो है मिट्टी चढ़ा दें, मिट्टी चढ़ा देंगे तो उनकी जो है गूल बन जाएंगी और गूल के अंदर जो पानी रहेगा तो पानी बाहर बहकर नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह है यदि अधिक पानी भर भी जाता है गन्ने के अंदर तो गन्ने की फसल को जो है

0: बांधने का जरूर सोचें, उसको जो है गिरने से बचाने के लिए. अब बात आती है जैसे हमारी जो है कुछ दाल वाली फसलें हैं, दाल वाली फसलें भी हमके लिए बहुत जरूरी है खाद्यान्न
1: आपूर्ति के लिए,
0: पोषण सुरक्षा के लिए भी प्रोटीन का स्रोत है. और विशेषकर जैसे हमारा अरहर है, अरहर दूसरे नंबर पर आती है चने के बाद में, और लगभग सभी प्रदेशों में इसकी खेती की जाती है, और लंबी अवधि की भी है, मध्य अवधि की भी है, और बहुत कम अवधि की भी किस्में पूसा ने निकाली है, पूसा अरहर 16 करके, वो भी लगा सकते हैं किसान भाई. तो पानी के अनुसार जो लगा सकते हैं, लेकिन उसको भी जो है रेज बेड पे लगाना चाहिए, यानी कि खूड बना कर जो हमारी बेड बनी हुई है उस पर लगाना चाहिए. और मूंग उड़द को तो पहले से बताते हैं 2-3 लाइन लग जाएंगी, और उसके बाद में जो है पानी का जो है कोई नुकसान नहीं होगा और फसल अच्छी होगी, या कीट प्रबंधन करने में या खरपतवार नियंत्रण में भी यदि रेत बेड पर लगाएंगे तो उसमें काम
1: बिल्कुल. और जो जो हमारे किसानों की एक ये शिकायत रहे या कहे समस्या रहती है कि दाल दलहन लेने में थोड़ा सा वो घबराते भी है कि बारिश अगर ज्यादा होगी तो फसल को नुकसान हो जाएगा, काफी सेंसिटिव होती है ये फसल, तो ऐसे में जैसे कि डॉक्टर शिवे आपने बताया कि रेज्ड बेड यानी कितना ऊंचा होना चाहिए, किस तरीके से मतलब रेज्ड बेड किस तरीके से,
0: लगभग जो है ये 5 से 8 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, और उस तरीके से उस पर लाइनें भी 2-3 आ जाती हैं. तो इसके यही फायदा होता है कि हमको खरपतवार नियंत्रण करना है तो खूड के अंदर जाके हम होइंग कर सकते हैं, या किसी को इंसेक्टीसाइड डालना है तो उसके कूड़ के अंदर चलकर डाल सकते हैं, और जो एक्सेस पानी है वो कूड़ के अंदर आ जाता है, वो जड़ों में नहीं रहता है, तो इसका ये फायदा है. तो रेज बेड जो है बहुत ही जरूरी है, हालांकि किसान कुछ क्षेत्रों में जागरूक है लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी उनको जागरूक होने की जरूरत है, ताकि उनकी फसल को वाटर लॉगिंग से बचाया जा सके और उनको किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो.
1: जी, और डॉक्टर अनंता आप क्या बताना चाहेंगे, जो कीट और बीमारियों का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि दलहन में ये समस्या काफी रहती है.
2: इसके लिए आपको मौसम की जानकारी होनी जरूरी है. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मौसम आधारित फॉरवार्निंग मॉडल है, तो उस फॉरवार्निंग मॉडल के आधार पर आप जो आने वाले कीड़े और बीमारी की जानकारी समय पर ले सकते हैं. और जब मौसम आपका अच्छा है, मतलब बारिश नहीं हो रही है, उसी समय आप जो कीड़े या बीमारी को बचाने के लिए उसमें कीटनाशी का छिड़काव कर सकते हैं. या अगर बारिश आने वाली है तो आप कभी भी उसमें छिड़काव न करें. और जैसे कि अभी डॉक्टर शिवे जी भी बता रहे थे कि धान के लिए और इनके लिए बारिश की मानसूनी जो वर्षा वो काफी अच्छी होती है, एक टाइप से वरदान है. और जो पिछले कई वर्षों के सांख्यिकीय आंकड़े हैं उनसे भी ये पता चला है कि अगर मानसूनी वर्षा, जैसे हम एक तो सिंचाई के रूप में पानी दे रहे हैं, दूसरा आपका जो मानसूनी वर्षा हो रही है, तो अगर मानसूनी वर्षा अच्छी हो रही है तो उससे जो फसल की जो गुणवत्ता होती है वो ज्यादा अच्छी होती है. इन दोनों में जो मानसूनी वर्षा है और फसल की गुणवत्ता उपज है, इसमें एक सकारात्मक रिलेशनशिप है. अगर आप सिंचाई का पानी ज्यादा देते हैं तो उसमें उतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं आएगी बजाय आपकी मानसूनी वर्षा की. तो नहीं तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप जो मौसम के बारे में जानकारी अवश्य लें, और अपने क्षेत्र में कौन सी फसल लगानी है, फसल का चुनाव उसी आधार पर करें कि आपके वहाँ पे कितनी बारिश होने वाली है. अगर बारिश ज्यादा होने वाली है तो जो पानी को लविंग क्रॉप है, जैसे धान है या कपास है या गन्ना, वो वाली फसलें लगा सकते हैं. और अगर बारिश कम हो रही है तो वहाँ पे आप जैसे बाजरा है या दलहनी है या तिलहनी फसलें लगा सकते हैं, और उसमें समय समय पर मौसम आधारित प्रबंधन आप कर सकते हैं. इससे आपका नहीं रिसोर्स की तो सेविंग होगी, आपकी लागत में भी कम आएगी, और आपकी जो उपज है उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी. और अगर गुणवत्ता अच्छी है तो आपको उसका जो बाजार भाव भी अच्छा.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो
0: मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, जैसा आप पूछ रहे थे ना कैसा इंसेक्ट और डिजीज का प्रबंधन करें, और क्योंकि जैसा डॉक्टर अनंत अवस्थी जी ने पहले भी बताया था कि बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से कीड़े मकोड़े और बीमारियां ज्यादा आती हैं, तो किसानों को ये सलाह देंगे हम कि वो जागरूक रहें, अपने खेतों में जाते रहें, देखते रहें कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं आ गए हैं या कोई बीमारी तो नहीं आ गई है. अपने जो कृषि विज्ञान केंद्र नजदीक के हैं वहां से वो सलाह लेते रहें, और दूसरे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डेवलपमेंटल एजेंसीज है उनसे कॉन्टेक्ट करते रहें, सही दवा का सही समय पर इस्तेमाल करें, और जब बारिश ना हो रही हो तभी जो है उसका स्प्रे करें. और ये आपको वार्निंग मिल जाती है कि भाई आज बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, फिर आपको जो है किसी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे कोई डिजीज है चाहे कोई आपका.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
2: यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगी, एक भारत मौसम विज्ञान विभाग और आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से एक परियोजना, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सलाह चलती है, तो ये हर केवीके में कृषि विज्ञान केंद्र है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, उसमें भी ये जानकारी जो है आप हर शुक्रवार और हर मंगलवार को ले सकते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहा, पिछले सप्ताह मौसम कैसा रहा, आगे आने वाले दिनों में क्या करवट बदलेगा, और मौसम आधारित कृषि प्रबंधन चाहे वो कीड़े भी
1: मतलब एग्री एडवाइजरी भी मतलब साथ साथ कृषि सलाह
2: जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो देखिए कई तरह की व्यवस्था है किसानों के लिए कि उन्हें सही जानकारी, सटीक जानकारी और सही समय पर मिलती रहे, क्योंकि खेती में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और अगर आप कृषि में अनुशासन के साथ नहीं चलेंगे तो उसका नुकसान आपको फसलों के रूप में देखने को मिलेगा, यानी उस तरह की उपज आपको प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि सब कुछ रुक सकता है लेकिन खेती नहीं रुकती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अब मौसम पूर्वानुमान को लेकर किसानों में किस तरह की जागरूकता है और किस हद तक उनका विश्वास पैदा हुआ है। छोटा सा ब्रेक।

0: स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: डॉक्टर जनमणि जी, जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि एक जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर आपने पूर्वानुमान देखा है तो उसको बिल्कुल आप मानकर आगे बढ़ें। तो आपको किस तरह का फर्क लग रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से भी काफी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका प्रभाव या फिर इसका असर किसानों पर किस तरह का देख रहे हैं आप?
2: देखिए, जैसे जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैं महाराष्ट्र का बात करूं, कुछ कुछ राज्यों में जहाँ जो पेनिट्रेशन है, जिसको माना जाता है, बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र में तो हर कृषक के पास जो भी जागरूकता है पहुंचता है, ग्रामीण कृषि केंद्र है जैसे, वहां तक लेवल पर पूरा आयोजन है। लेकिन कुछ कुछ एरिया है, जैसे झारखंड एरिया है, कुछ एरिया बिकॉज जो टेक्नोलॉजी है, जैसे मोबाइल का पेनिट्रेशन हो, व्हाट्सएप का हो, तो जहां जहां नेटवर्किंग कम है, फिर भी मतलब जैसे ग्रामीण कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचता है। लेकिन कृषक का पर्सनल जागरूकता बहुत जरूरी है कि वो उनका जो जैसे बात हो रहा था, नियरेस्ट कहाँ है, इन्फॉर्मेशन कौन देता है, तो एक बार एक चैनल बन जाए और वो व्हाट्सएप जो ग्रुप है वहाँ मेंबर बन जाए, तो आपको देखिए एक तो मिलता है कि पिछले हफ्ते में कैसा बारिश था, और वो भी दर्शाता है, जैसे हमारा कलर भी रहता है, जैसे ग्रीन कलर मतलब बहुत ज्यादा बारिश चल रहा है, ठीक है ना, तो फ्लड का सिचुएशन क्या रहेगा, तो अपने आप को एक शिक्षणीय या शिक्षित हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं अनुरोध करूंगा सारे किसान भाई और बहन को कि वो जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जरूर इस मानसून का पहले
1: जी
2: वहाँ दर्शन कर, वहाँ जाके विजिट करें
1: और डिटेल
2: उनसे ले,
1: विशेषज्ञों के टच में रहे, उनके संपर्क में रहे।
2: दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि नॉट ओनली हमारा जो एग्रीकल्चर का जो क्रॉप है वो उसके लिए चाहिए, बट खुद का सेफ्टी के लिए भी। जैसे आजकल जो है जलवायु का परिवर्तन वजह से बारिश का जो परिमाण है बहुत बढ़ जाता है, एकदम से 400 मिलीमीटर, 500 पिछले साल दिखे होंगे, कि
1: काफी नुकसान भी हो
2: तो वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है उनको, नाउ कास्टिंग के रूप में, वार्निंग के रूप में, सब कुछ इन्फॉर्मेशन डिफरेंट टाइम स्केल में मिल जाता है, लोकेशन एरिया में भी।
1: बिल्कुल
2: मिलता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर शिवे, क्योंकि अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है, किस तरह का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर मॉनसून का आप देखते हो? कि हम देखते हैं कि जिस दिन भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मॉनसून का प्रिडिक्शन होता है तो अच्छा हुआ, तो शेयर बाजार मुस्कुरा उठता है, अगर गड़

0: अलग से मुस्कान आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? क्योंकि उनकी फसल जो है, हम कितना ही पानी दे लें धान और गन्ने के लिए, जब तक ऊपर से मानसून की बारिश नहीं होती तो ये दो फसलें बहुत अच्छे ढंग से नहीं होती।
1: जी, जी।
0: तो इस वजह से जो है हमारी अर्थव्यवस्था में जो मानसून का है बहुत बड़ा रोल है, चाहे हमारा खाद्यान्न उत्पादन है, चाहे एक्सपोर्ट में है, चाहे हमारा किसान की खुशहाली है, चाहे हमारी देश की अर्थव्यवस्था है। तो उस समय जो है मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये बहुत ही मतलब जरूरी है, और ये इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना और समय से होना बहुत जरूरी है अच्छी पैदावार।
1: डॉक्टर अंता, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: जी, जैसे कि अभी बताया कि मानसूनी वर्षा से काफी फायदा होता है, मैं तो ये कहूंगी कि अभी जो पूर्वानुमान है उसकी जो सटीकता है उसमें काफी अच्छा आ रहा है, क्योंकि पहले जैसे हम देते थे मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट जो हम देते थे IMD से जो मिलता था वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलता था, तो उसके आधार पर ही जो है मौसम आधारित परामर्श बनाए जाते हैं। लेकिन अब ये ब्लॉक लेवल पे आ गया है।
1: बिल्कुल,
2: तो जैसे ब्लॉक लेवल पे आने से इसकी जो है एक्यूरेसी जो है अच्छी हो गई है, तो अगर एक्यूरेसी अच्छी होगी तो जो मौसम आधारित हम सलाह दे रहे हैं वो भी आपकी अच्छी होगी, सटीक होगी, और उससे जो किसान भाई बहनों को ज्यादा फायदा होगा।
1: जी बिल्कुल, तो जानकारी का सटीक होना बहुत जरूरी होता है, खासतौर पर जैसे कि हम कह रहे हैं जब खेती की बात करते हैं तो मौसम का क्या रोल है, क्या भूमिका है, ये शायद बताने की भी जरूरत नहीं है, ये हम सभी समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा पर आपने अपने अपनी राय रखी और महत्वपूर्ण चर्चा में आपने जानकारी साझा की हमारे किसानों से। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भी 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में, और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा को सुना हमारे विशेषज्ञों द्वारा, ये जानकारी आपको दी जा रही थी, और खासतौर पर उन्होंने मौसम और खेती को हम किस तरीके से देख सकते हैं, खासतौर पर मौसम आधारित हम लोग खेती करते हैं कि अगर सामान्य से अधिक वर्षा हुई या सामान्य वर्षा हुई किस क्षेत्र में कैसी वर्षा होगी, किस तरीके से हमें फसल को बोना चाहिए, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। हमारा वक्त हो चुका है आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी से जाने का, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
5: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM, आपनो रेडियो आपड़ी बातें। ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM, आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
4: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और दोस्तों कैसे हैं, कैसे है हमारे किसान साथी, हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे और हमारा रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुन रहे होंगे। हाँ, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आते हैं। तो हमारे किसान साथियों के लिए आज के इस खास कार्यक्रम में 30 सेगमेंटों पर हम बात करते रहते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम खेतीबाड़ी में बात करेंगे FPO, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी FPO के बारे में जानते नहीं है, यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किस तरीके से गठित होती है, इसका क्या फायदा होता है और कौन कौन एजेंसियां इसको सहायता करती है, और हमारे किसान साथियों को बहुत मदद करेगी FPO, क्योंकि FPO बनाना यानी संगठन बनाना और उससे लाभ लेना ये बेहद जरूरी है। साथ में हमारे जो भारत सरकार द्वारा इस पर बहुत सारा काम किया जा रहा है, सरकार द्वारा बहुत सारे काम किया जा रहे हैं, क्योंकि यदि हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यानी FPO बनाते हैं तो बहुत सारे फायदे हैं। तो आइए हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज हम FPO पर चर्चा करेंगे और साथ साथ में पशुधन पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पशुधन हमारे लिए बहुत जरूरी है और खेती किसानी में पशुधन का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। और साथ साथ में हम एक उन्नतशील किसान जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उनकी एक कहानी भी सुनेंगे आज के कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। तो नहीं करते हैं, आपको सीधा ले चलते हैं और इस सेगमेंट में सबसे पहले जानते हैं FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किस तरीके से काम करती है, कैसे इसका हमारे किसान साथी लाभ ले सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट को।
6: किसान भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी।

0: ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आजादी का अमृत महोत्सव का। बता दें आपको कि 6 दिवसीय इस अभियान का मकसद ये है कि हमारे किसानों को खेती किसानी और पशुपालन के क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, उनके बारे में अवगत कराया जा सके, उनके प्रति जागरूक किया जा सके। और आज इसमें क्या कुछ खास होने वाला है बता दें आपको, आज बात होगी FPO की, किसान उत्पादक संगठन की। क्या है ये, किस तरह से हमारे किसान इससे जुड़कर लाभ ले सकते हैं, आइए जानते हैं।
1: हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या काफी है। ऐसे में जब ये किसान अकेले खेती करते हैं तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही जब वो अपनी उपज को बाजार में ले जाते हैं तो उन्हें उपज का सही दाम भी नहीं मिल पाता। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए कई किसान मिलकर किसान समूह बनाते हैं। ये समूह खेती में आ रही सभी बाधाओं को मिलकर पार करते हैं, जिससे बिना किसी रुकावट के हर किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिल सके। ये संगठन किसानों का एक ऐसा समूह है जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है। ये संगठन खेती किसानी से जुड़े काम को आगे बढ़ाने में मदद करता है। FPO से कई किसान जुड़े होते हैं। मौजूदा समय में FPO की मदद से किसानों को अपनी उपज का मोल भाव करने का मौका मिल रहा है। किसान उत्पादक संगठन से किसानों को न सिर्फ अपनी फसल बेचने की सुविधा मिल रही है, बल्कि कृषि उपकरण, खाद, बीज, उर्वरक जैसी जरूरी और अहम चीजें अच्छी गुणवत्ता और उचित मूल्य में मिलते हैं। FPO ने छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को इकट्ठा कर किसानों की आर्थिक शक्ति और उनके बाजार लिंकेज को बढ़ाने में मदद की है, जिससे उनकी आय में सुधार हो सके। FPO से खासकर छोटे किसानों को काफी फायदा हो रहा है और किसानों की आय बढ़ रही है। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक देश में किसान उत्पादक संगठनों को बनाने और उनको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार 2021-22 में 2500 किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना करेगी। इससे देश के करीब 60,000 किसानों को मदद मिलेगी। ये 2500 FPO बनाने का काम केंद्र की उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत सरकार ने 2023-24 तक देश भर में 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 5 साल के लिए हर एक किसान उत्पादक संगठन को सहायता दी जाएगी। हर एक FPO में 50% छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान शामिल होंगे।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो, आपड़ी बातें।
3: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस खास रिपोर्ट को सुना। अब आपको हम FPO के बारे में सतर्क जानकारी देने के लिए हम तैयार हैं और हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हमारे साथ विशेषज्ञ, उनकी हम बात को सुनेंगे कि FPO हमारे लिए कितना महत्व है, किस तरीके से गठित होता है, कौन कौन एजेंसी इसमें मदद करती है, इसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन इससे पहले सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके RJ मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो 90.8 FM। आप लोग रेडियो, अपनी बात है।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: 90.8 FM, આપણો રેડિયો આપણી વાતે.
1: साथियों, जैसे आपको सबको सूचित है कि भारत सरकार ने कृषि किसान उत्पादक संगठन की एक महत्वपूर्ण योजना लेके आई थी. भारत सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले विगत वर्षों में 10,000 से अधिक देश भर में कृषक उत्पादक संगठन बनाना. इस कृषक उत्पादक संगठन का प्रमुख ये फायदा है कि इसका उद्देश्य है कि किसानों को योजनाबद्ध तरीके से उनके उत्पाद को मूल्य संवर्धित करके या सीधा बाजार से उपभोक्ता तक जोड़ना. सरकार का उद्देश्य है कि किसान अपना उत्पाद है सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाए और उनको मंडी से और उनके जो मिलने वाली जो उनको राशि है वो मंडी की तुलना में उपभोक्ता से अच्छी राशि मिले और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहे और मंडी से किसानों को जो लागत लगने वाली है फालतू की वो लागत से वो बचे. इसमें किसान उत्पादक संगठन वर्तमान में बनाने में 3-4 संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसमें एक नाबार्ड बैंक है, नेफेड है, SFC है और NCDC है. इन सब ऑर्गेनाइजेशन संस्थानों ने क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं. ये विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. ये वहाँ पे ये संगठन इन महत्वपूर्ण संस्थानों के सहयोग से किसान उत्पादक संगठन के निर्माण और उसमें उनके रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की प्रक्रिया और उनके बिजनेस के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. यदि किसी किसान साथी अपने क्षेत्र में कृषक उत्पादक संगठन का निर्माण करना चाह रहा है तो इन संस्थानों से संपर्क करके वो एक क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से मिल सकते हैं.
2: देश भर की सहकारी समितियां FPO के गठन में सहयोग करेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेती में निवेश को बढ़ाया जा सके. इतना ही नहीं, छोटे और सीमांत किसानों के पास मूल्य संवर्धन सहित उत्पादन तकनीक, सेवाओं और मार्केटिंग को अपनाने के लिए आर्थिक क्षमता नहीं होती है. ऐसे ही किसान हैं जो FPO से जुड़कर कामयाबी की दहलीज को छू रहे हैं.
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM. आपनो रेडियो आपड़ी बातें.

0: एक एफपीओ का जो है गठन किया है, नीर आदर्श ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जिसमें 11 मेंबर हैं, 5 डायरेक्टर हैं, 6 मेंबर हैं। हमारे क्षेत्र में जबकि बेल्ट जो है ये गन्ने की बेल्ट है, लेकिन फिर भी डॉक्टर रितेश शर्मा जो बासमती के प्रधान वैज्ञानिक हैं, उनके सुपरविजन में यहाँ पर जो धान का एरिया है पिछले करीब 18 साल से उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है और गन्ने का क्षेत्रफल जो है थोड़ा सा कम हुआ है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नाबार्ड के द्वारा एक एफपीओ का गठन किया, जिससे कि यहाँ के किसानों को जो उनके मार्केट संबंधी दिक्कतें हैं उसमें लाभ मिले। जो खेती में खर्चा आता है, जो लागत आती है, उसको कैसे कम किया जाए, जिससे कि किसान एकत्रित होकर संगठित होकर सभी चीज को जो है इकट्ठा लें और उसको जो है जो भी बेनिफिट हो जिसके मार्जिन में, वो भी किसानों को बराबर बराबर मात्रा में उसका हिस्सा उसके जो उसने एफपीओ के अंदर अपना हिस्सा लिया है, शेयर किया है, उसके हिसाब से उसको मार्जिन जाए।
1: विशेषज्ञों और किसानों का भी मानना है कि ऐसे में एफपीओ के गठन के माध्यम से किसान सामूहिक रूप से अधिक मजबूत होने के साथ साथ अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आजादी का 75वां वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में जन भागीदारी के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रकार के निर्णय लिए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान उत्पादक संगठन, कृषि अवसंरचना कोष, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग जैसी अनेक योजनाएं और आर्थिक सुविधाएं शामिल हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
3: बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए।
1: अन्नदाता को सशक्त बनाने तथा उनकी बुनियादी जरूरतों को समझते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की, जिसके तहत प्रत्येक किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रूपए 3 समान किश्त में, यानी प्रत्येक 4 माह पर 2,000 रूपए सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आरंभ से अब तक 11,30,00,000 से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में सीधे 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि विभिन्न किश्तों के माध्यम से हस्तांतरित कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाने तथा उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के उद्देश्य से 1,00,00,000 रुपए की कृषि अवसंरचना कोष की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर सरकारी गारंटी एवं ब्याज में 3% की छूट का प्रावधान है। किसान भाई बहन, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां एवं स्वयं सहायता समूह एवं कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठाते हुए प्राथमिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट, भंडारण, सेलोज, छटनी ग्रेडिंग इकाइयों का निर्माण कर सकते हैं। ऐसी ही अनेक योजनाओं से किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक जोखिमों की स्थिति में किसानों को उनकी फसल का सस्ता बीमा प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक मजबूती और बाजार से जुड़ाव के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानी यानी FPOs का गठन किया जा रहा है। ई नाम के माध्यम से किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल के लिए सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से जल संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से फसल संरक्षण तथा फसलों पर पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए मौजूदा कस्टम हायरिंग सेंटर्स द्वारा ड्रोन तथा संबंधित सामानों पर मूल लागत का 40% या 4,00,000 रुपए जो भी कम हो वित्तीय सहायता का प्रावधान है। किसान भाई बहन अब नई टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर उन्नत खेती कर सकते हैं। सभी कृषि योजनाओं और सेवाओं को डिजिटल रूप से प्रयोग करने के लिए किसान सुविधा ऐप तैयार किया गया है तथा ये सुविधा ऐप देश की विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपरू रेडियो आपड़ी बातें।
4: किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपरू रेडियो आपड़ी बातें।
5: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी आपने FPO के बारे में सब जानकारी सुनी। हमारे विषय विशेषज्ञ ने भी बताया कि किस तरीके से बहुत जरूरी रहता है FPO संगठन बनाना, और साथ साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया है, और खासतौर पर हमारे जो कृषि मंत्री हैंगे उनने भी खासतौर पर इस पर जोर दिया है। और ये आपको बता देना चाहते हैं कि ये एक अभियान चलाया जा रहा है कि किसानों को किस तरीके से सरकारी योजना का लाभ दिया जाए, कैसे लाभ दिया जाए, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जानी है, उस पर भी विशेष तौर पर चर्चा की है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब वक्त हो चुका है हमारे अगले सेगमेंट जिसका नाम है पशुपालन पर चर्चा, विशेष चर्चा। तो आइए इनको बात को सुनते हैं, लेकिन इससे पहले सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो अपनी बात है।

0: माता की जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार।
1: हमारे देश में पशुपालन का विशेष स्थान रहा है। इससे जहां कृषि के बहुत सारे काम संपन्न होते हैं, वहीं ये आय का अतिरिक्त जरिया भी होते हैं। लेकिन कुछ सालों से पशुपालन का मुख्य उद्देश्य उत्पादकता हो गया है। पिछले कुछ सालों से हमारे देश में दूध की मांग और उत्पादकता दोनों में इजाफा हो रहा है। एक अनुमान के हिसाब से करीब 16% की वृद्धि के साथ हम आगे बने हुए हैं, जिसकी खास वजह सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाएं हैं। सरकार की इन योजनाओं में पशुपालन, उनका स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण युक्त आहार, आवास और नस्ल सुधार जैसे विषय शामिल है, जिनमें मुख्य है राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुधन किसानों के लिए KCC, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण
2: होता है।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो, आपड़ी बातें।
4: हमारे किसान भाइयों को इसकी जानकारी हो, नस्ल को संवर्धित करने के लिए आप जानते हैं कि नस्ल को तैयार करने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। एक नस्ल जब तैयार होती है तो इसीलिए काफी इम्पोर्टेंट है हम नस्ल के दूध को लगातार बढ़ाते रहे। तो नस्ल का दूध बढ़ाने के लिए अच्छे सांडों से उनका मिलान करवाना और अच्छे सांडों का चयन करना। हम बात करते हैं सांडों के चयन के लिए, जैसे हमारा प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम है कि हम क्योंकि जो हमारा सांड होता है वो तो दूध नहीं देता, दूध उसके बच्चे देते हैं, तो उसके जो फीमेल काफ किस तरह का परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे हम असेसमेंट करते हैं कि ये बुल कैसा है, इसकी अनुवांशिक क्षमता क्या है, इसकी दूध देने की क्षमता क्या है, क्योंकि बुल जो है बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारे नस्लों के संवर्धन में। तो नस्लों का संवर्धन करने के लिए बुल का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कृत्रिम गर्भाधान का इसलिए प्रयोग करें, कृत्रिम गर्भाधान से नस्ल को आप संवर्धित कर सकते हैं, उसके उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे बुल सीमेन स्टेशन पे उपलब्ध होते हैं वो अच्छी उत्पादकता वाले होते हैं। उनका जो है प्रोजेनी टेस्टेड बुल्स होते हैं, पेडिग्री सिलेक्टेड बुल्स होते हैं, तो उन बुलों का ही सीमेन हम यूज करके अपने जो है नस्ल को संवर्धित कर सकते हैं, अपने नस्ल को विकसित कर सकते हैं। अच्छी नस्ल के पशु हमारे पास हो, इसके लिए किसानों को हमेशा जागरूक रहना चाहिए। अच्छी नस्ल का मतलब मेरा कहना है कि अच्छी नस्लें हमारे देश की कई सारी है, जैसे कि आपने देखा होगा साहिवाल पंजाब से है, गिर हमारे गुजरात से है, राठी हमारी राजस्थान से है, साथ ही साथ थारपारकर एक नस्ल है वो भी राजस्थान से है, रेड सिंधी भी नस्ल हमारे देश में है,

0: उसके भी बहुत सारे पशु हैं हमारे देश में, फोर हेड सिंधी के भी पशु हैं, तो अच्छी नस्लों का सीमन भी आप जो आपकी कम दूध उत्पादन करने वाली गाय उनमें उपयोग कर सकते।
1: सरकार के प्रयासों से एक बार फिर देश में देसी नस्लों के पशुओं का चलन बढ़ा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि विदेशी नस्लों की तुलना में देसी नस्लों के पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया होती है। वहीं उत्पादन क्षमता में इजाफा करने के लिए नस्ल सुधार जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आजकल तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए IVF तकनीकों का भी सहारा लिया जा रहा है।
0: कुछ नए नए तकनीक आ गई है आजकल, जैसे हम बात करते हैं IVF तकनीक जो मनुष्य में उपयोग की जाती थी, IVF तकनीक के द्वारा भी आप अपना नस्ल का सुधार कर सकते हैं और एक ही जनरेशन में यानी कि एक ब्यांत में ही आप एक पुश्त में ही आप अपनी नस्ल को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं अगर आप IVF तकनीक का उपयोग करेंगे। नहीं तो अगर आप कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं तो आपकी नस्ल को बढ़ाने में मतलब 7 पुश्तें लग जाती हैं, तो 7 पुश्तों में जो आप चीज ठीक कर रहे हैं वो एक पुश्त में IVF तकनीक से ठीक कर सकते हैं। हमारे किसान भाई और भी फायदा ले सकते हैं क्योंकि अब सेक्सॉर्टेड सीमन अवेलेबल हो गया है हमारे देश में। पहले ये तकनीक केवल अमेरिका देश में ही उपलब्ध थी, अब हमारे देश में हमारी देसी नस्लों के लिए सेक्सॉर्टेड सीमन उपलब्ध है। तो सेक्सॉर्टेड सीमन का उपयोग करके केवल बछिया ही पैदा की जा सकती है, तो इससे आपके जो मेल पशु है, क्योंकि अब मेल की उपयोगिता खत्म होती जा रही है, एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन बढ़ रहा है, ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं ना आप, तो अब जब आप ट्रैक्टर का उपयोग करेंगे तो आपको बैलों की तो जरूरत नहीं है खेतों में, तो बैलों की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप सेक्सॉर्टेड सीमन का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों से आग्रह भी करूंगा कि वे सेक्सॉर्टेड सीमन की तरफ जाएं और जिससे कि उन्हें बच्चियों का लाभ मिले, बछिया पैदा हो, इससे 90% सटीकता के साथ बछिया पैदा आप कर सकते हैं और बहुत अच्छा सेक्सॉर्टेड सीमन हमारे देश में उपलब्ध है। उत्तराखंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड से आप संपर्क कर सकते हैं इसके लिए, मध्य प्रदेश लाइफ स्टॉक पोल्ट्री डेवलपमेंट कारपोरेशन से संपर्क कर सकते हैं इसके लिए, आप गुजरात लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं इसके लिए, सांगली महाराष्ट्र में ABS कंपनी भी सेक्सॉर्टेड सीमन का उत्पादन कर रही है, वहां भी संपर्क किया जा सकता है, मेहसाना डेयरी से संपर्क किया जा सकता है। तो हमारे किसान भाई संपर्क करके सेक्सॉर्टेड सीमन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो उनकी आय में वृद्धि होगी और काफी अच्छा नस्लों का संवर्धन भी होगा।
1: इस तरह देखा जाए तो सरकार का हर प्रयास हमें सफलता की राह पर ले जा रहा है, बस जरूरत है तो समय रहते सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की। इन योजनाओं के लाभ से आने वाले समय में दूध उत्पादन में हम और अच्छे परिणाम हासिल कर सकेंगे, साथ ही पशुपालकों की आय में भी इजाफा हो सकेगा।
2: कार्यक्रम में वक्त है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का, यानी कि जानने का कि वर्तमान समय में आप कौन कौन से पशुपालन से संबंधित कार्य कर सकते हैं जिससे आपके पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। तो फिर आइए नजर डालते हैं पशुपालक कैलेंडर पर।
3: पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गोपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोग रोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पायका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का उपयोग करें।
4: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी अपने किसान साथियों ने जाना कि पशुपालन कैलेंडर इस माह का क्या कहता है, किस तरीके से हमें अपने पशुपालन करना चाहिए, किस तरीके से अपने पशुओं का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बीमारी इसमें होती है, इस पर भी हमें खास तौर पर ध्यान रखना होगा। अब साथियों अगला हमारा सेगमेंट है हमारे जो उन्नतशील किसान है, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में बदलाव किया है उनकी कहानी को हम जानते हैं।
2: किसान भाइयों बहनों, देश में मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, जिसके तहत चलाया जा रहा है एक अभियान जिसका नाम रखा गया है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि आप भी इससे जुड़ें और इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। बता दें आपको कि इस 6 दिवसीय अभियान के पहले दिन बात हुई थी ODOP की, यानी कि एक जिला एक उत्पाद की, और इसके बारे में हमारे किसानों को जागरूक किया गया था। लेकिन कई किसान इससे पहले से ही जुड़े हुए हैं और लाभान्वित भी हुए हैं। आइए ऐसे ही किसानों से मुलाकात करते हैं, जानते हैं उनकी कामयाबी की दास्तान।
1: उत्तर प्रदेश में देश का करीब 40% गन्ना पैदा किया जाता है, इसीलिए गन्ना यहाँ की मुख्य फसल है। पिछले 50 सालों से मुजफ्फरनगर के ज्यादातर किसान गन्ने से गुड़ बनाने का काम करते आ रहे हैं। यहाँ पर बनने वाला गुड़ गुजरात, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में भी भेजा जाता है, इसीलिए मुजफ्फरनगर को गुड़ का बड़ा बाजार माना जाता रहा है। वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ने वाला ये गुड़ अब हौसलों की उड़ान भर रहा है। इस काम में नई रफ्तार देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम काफी कारगर साबित हो रहा है। केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार उन विशिष्ट शिल्प कलाओं व उत्पादों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है जो देश में कहीं और उपलब्ध नहीं है, जैसे प्राचीन व पौष्टिक काला नमक चावल, गेहूं, डंठल शिल्प, चिकनकारी, कपड़ों पर जरी जरदोजी का काम, मृत पशु के सींगों व हड्डियों से बनाई कलाकृतियों और लघु उद्यम शामिल है। इस योजना से उत्तर प्रदेश के किसानों और कारीगरों को भी अलग ही पहचान मिल रही है। हुनर हाट में हमारी मुलाकात ऐसे ही एक किसान से हुई जो न सिर्फ गन्ने की पैदावार लेते हैं बल्कि 13 तरह का गुड़ भी बनाते हैं।
2: और आपके पास कितने तरह के गुड़ हैं?
5: कुल मिलाकर हमारे पास 13 तरह के गुड़ हैं, उसमें एक तरह की शक्कर है, बाकी सब गुड़ है। उसमें कुछ नॉर्मल फ्लेवर्स के हैं, कुछ नेचुरल फ्लेवर्स होते हैं, जैसे नेचुरल फ्लेवर्स हैं कुछ कुछ जिसमें चॉकलेट, बटर स्कॉच, मैंगो, कोकोनट, ग्रीन मैंगो, इस टाइप के फ्लेवर्स हैं। बाकी तिल वगैरह के हैं, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स के हैं, और सौंठ अलसी मेथी का है, सौंफ वाला है, उसमें शक्कर भी है हमारे पास, वो उसमें कोई फ्लेवर नहीं है, नॉर्मल शक्कर है। बिक्री तो सबकी बराबर ही मानी है आप, बेहतर तो ये है गन्ना है जिस गन्ने का हम बना रहे हैं, इसे गन्ने का बना रहे हैं। शुगर इसमें देखिए डायबिटिक नहीं होता गुड़, ऊपर से डॉक्टर भी ये सलाह देते हैं कि गुड़ का ही यूज कीजिए आप, चीनी को थोड़ा अवॉइड कीजिए। इसी वजह से हमने ये किया है कि बच्चे थोड़ा इसको यूज करें, चीनी से बने हुए प्रोडक्ट ना खाएं, चॉकलेट वगैरह ना खाएं, इसीलिए चॉकलेट के फ्लेवर में भी ले आए हम, बटर स्कॉच में भी लेकर आए हैं, मैंगो में भी लेकर आए हैं, कच्चे आम में भी लेकर आए हैं, हर तरह का फ्लेवर है हमारे पास। किसान है, खुद का कोल्लू है हमारा, खुद बनाते हैं, खुद ही यहाँ पे बेच रहे हैं।
1: उनके बनाए अलग अलग स्वाद के ये गुड़ काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। हर उम्र के हिसाब से गुड़ की वैरायटी होने के कारण इनकी मांग काफी बढ़ रही है। युवा किसान की माने तो अब वो अपना उत्पाद ऑनलाइन भी बेचेंगे, जिससे व्यवसाय का दायरा बढ़ाया जा सके और लोगों तक उनका उत्पाद आसानी से पहुंचाया जा सके।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।
4: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और हमारे किसान साथियों ने सारे सेगमेंटों को सुना। सबसे पहले जाना कि FPU यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किस तरीके से गठित होती है, इसका क्या फायदा है, कौन कौन सी एजेंसियां इसमें काम करती है, इसको जाना। साथ साथ में पशुपालन कैलेंडर इस माह का क्या कहता है, किस तरीके से अपने पशुओं की हमें सुरक्षा करनी चाहिए, किस तरीके से पशुओं की देख रेख करनी चाहिए और क्या क्या फायदा होता है पशुपालन से, इस पर भी हमने जिक्र किया। साथ साथ में क्या कौन कौन सी बीमारी इस माह में फैलती है, किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए, उस पर भी हमने नजर डाली। साथ साथ में हमने एक उन्नतशील किसान जिन्होंने गन्ने का व्यापार करके आज एक आसमान और बुलंदियां छुई हैं, उनको भी हमने सुना। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। तो साथियों, कैसा लगा कार्यक्रम हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर। नंबर है हमारा 9425416603। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं हमें अपनी जानकारी या फिर आपको कुछ पूछना है, इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारे अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात। तो चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और ऐसे गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांट्या व्हील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें। नमस्कार।

0: तड़प मारे थोड़ो।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

गीत संगीत की इस महकती हुई शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त समीर, और चलिए मिलते हैं एक और उभरते हुए कलाकार से, एक नए टैलेंट से। कौन है ये, क्या है ये, इनके बारे में जानते हैं और इनके गीतों का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आपके ही आज के कलाकार प्रोग्राम को।

0: आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम हमेशा हमारे प्रोग्राम में टैलेंट्स चूज करके लाते हैं जो आपको एक नई प्रतिभा की एहसास कराते हैं। आज जो टैलेंट हमारे साथ हैं, आज जो गायिका हमारे साथ हैं, उनकी गायकी सुनेंगे आप, उनके बारे में जानेंगे तो अमेज्ड रह जाएंगे। ये हैं मालविका श्याम जी। मालविका जी, हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय देना, आप क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं, कौन है आप?
1: मेरा नाम मालविका श्याम है
0: जी।
1: मैं पुणे में बॉर्न ब्रॉट अप हूँ एंड वहीं रहती हूँ। मैं एक मलयाली से मेरी मैरिज हुई है, हमारा 22-year-old बेटा है। बाय प्रोफेशन मैं एक ग्राफिक आर्टिस्ट हूँ और अब काफी सालों से मैं एक हाउसवाइफ का वेरी फुलफिलिंग रोल अदा कर रही हूँ।
0: शानदार, आई परफेक्टली अंडरस्टैंड मैम, एक हाउस मेकर होना, एक परिवार को संभालना अपने में बहुत बड़ा काम है। कई बार लोग गलती करते हैं इस चीज को समझने में कि ठीक है ये तो छोटा मोटा काम है, लेकिन अभी आजकल सोशल मीडिया पर भी कितनी मीम्स आती हैं जहां पर ये पता चलता है कि एक होम मेकर कितनी मेहनत करती है, उसमें कितना मैनेजमेंट थॉट जाता है, कितनी क्रिएटिविटी होती है, कितना कंट्रोल चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब मालविका जी। तो चलिए एक प्यारा सा गीत सुनाते हैं हमारे श्रोताओं को, हमारे सुनने वालों को आपकी ही आवाज में।

0: बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा गीत। बचपन में चलते हैं मालविका जी।
1: हाँ जी,
0: आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: मैं बचपन में एक टीचर बनना चाहती थी।
0: वाओ, ओके। तो फिर उसकी तरफ आपने कुछ कदम उठाए?
1: नहीं, वैसे हम टीचर, मतलब टीचर होते ही है एक्चुअली हम, पर अभी मैं, मुझे लगता है टीचर फॉर्मली तो नहीं बनी, पर एक अच्छी स्टूडेंट बन गई हूँ लाइफ की।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी इंटेलिजेंट आंसर। बहुत सोच समझ के, बड़ा ही मजाक में कह रहा हूं, डिप्लोमेटिक ही सही, लेकिन जवाब आपका बिल्कुल ठीक है। यूं तो हम अपनी पूरी जिंदगी मरते दम तक स्टूडेंट बने ही रहते हैं, सीखते ही रहते हैं, और सच्चाई ये है कि जिन्होंने भी सीखना बंद किया वो तभी बूढ़े हो जाते हैं, तभी वो मौत की तरफ चल पड़ते हैं। जब तक हम सीखते हैं तब तक हम जवान रहते हैं, तब तक हम जिंदा रहते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो दोस्तों, आपने सुना, चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं मालविका जी की ही आवाज में।

0: में अगर हम हैं तो मालविका जी, कोई ना कोई तो आपके फेवरेट टीचर रहे होंगे, कौन थे वो और क्या, किस वजह से वो आपके फेवरेट टीचर थे?
1: हाँ जी, मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब हमारी एक हिस्ट्री की टीचर थी, मिसेस पीशा रोटी उनका नाम था
0: जी।
1: तो यू नो उनका वे ऑफ टीचिंग वाज रियली फैंटास्टिक। वो लेसन शुरू करने से पहले उसका पूरा बैकग्राउंड बताती थी एंड सिनॉप्सिस भी उस चैप्टर में जो था उसका इतना अच्छे ढंग से वो पेश करती थी कि वो लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था, यू नो। एंड उनके इस वे ऑफ टीचिंग से मैं बहुत ही इम्प्रेस थी। तो मैं जब घर पे हर सब्जेक्ट का, मैंने जो सेल्फ स्टडी करते थे ना घर आके हम
0: जी,
1: तो मैं हर सब्जेक्ट को वो टेक्निक से पढ़ना शुरू किया था एंड आई यूज टू लव स्टडिंग।
0: क्या बात है, बहुत खूब। क्या नाम था उनका?
1: मिसेस पीशा रोटी।
0: मिसेस
1: पीशा रोटी ऐसा ही नाम था उनका, मिसेस पीशा रोटी।
0: ऑलराइट ऑलराइट, बहुत खूब बहुत खूब। दोस्तों आपने सुना कि इनकी फेवरेट टीचर कौन थी और क्यों, तो चलिए अगला गीत सुनते हैं जो मालविका जी के परमिशन से मैं उनकी इन फेवरेट टीचर को ही डेडिकेट करना चाहूंगा। चलिए सुनते हैं।

0: problem. Humdum, oh humdum.
1: बहुत खूब। तो मालविका जी आगे बढ़ते हैं, आप गायिका हैं तो आपका पसंदीदा गायक तो कोई होगा, गायिका तो कोई होंगी, कौन है वो?
2: हाँ जी, बहुत सारे लोग पसंद हैं, बट अगर आप खाली एक या दो ही पूछेंगे तो लता जी एंड आशा जी।
1: ओके,
2: बिकॉज ऑफ देयर वर्सेटिलिटी एंड मास्टरी ओवर देयर आर्ट, लाइक बहुत मुझे
1: बहुत खूब
2: इंस्पायरिंग लगते हैं। या
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो चलिए एक और गीत सुनाते हैं अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को।

0: बहुत बढ़िया, अब कुछ मजे करते हैं, कुछ फन। अपनी जिंदगी में सबसे पहली खाने की चीज आपने क्या बनाई थी और वो कैसे बनी थी?
1: हाँ जी, एक बार आई रिमेम्बर, आई थिंक हम सेवेंथ में थी, तब मेरी मम्मी गई थी अपनी बहन के घर। आई थिंक हम लोग थोड़ा बड़े हुए बाद फर्स्ट टाइम वो हमको अकेला, मतलब मेरे पापा एंड हम दो सिस्टर्स को छोड़ के गई थी छुट्टियों पर। तो तब मेरे पापा ने एग की डिश बनानी सिखाई थी, सनी साइड अप, जो हम उसको ये भी कहते हैं ना, बुलजाई भी बोलते हैं।
0: जी जी जी,
1: बहुत बढ़िया बनी थी, सिंपल डिश है, मगर पहली बार किया था तो बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक लग रही थी, उसको ऐसे गिराओ पैन में, उसको ऐसे करो, तो मजा आया था। या
0: लेकिन वो अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, ऐसा?
1: यस
0: जी हाँ। क्या बात है, क्या बात है, सुन के ही अच्छा लगा कि वो कितनी टेस्टी बनी होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके का एक प्यारा सा गीत सुनते हैं मालविका जी की ही आवाज में।

0: मालविका जी, आपको और बेहतर समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी हॉबीज के बारे में हमें बताइए ना। जब भी आपको वक्त मिलता है तो क्या करना पसंद करती हैं आप?
1: हॉबी मेरी सिंगिंग, दैट्स माय पैशन आल्सो। या तो मैं पूरा दिन भी गा सकती हूँ, जैसे ही अपने काम वाम खत्म हो जाते हैं तो आई लिसन टू म्यूजिक एंड सॉन्ग मैं सीखने के हिसाब से सुनती हूँ। पहले मैं एंजॉयमेंट के लिए सुनती थी, पर काफी सालों से सीखने के हिसाब से, तो सॉन्ग को के हर एस्पेक्ट को सुन के उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना, यू नो, अपनी गायकी में कैसे लाना, वो ये चीजें मेरी हॉबी है।
0: गाने के अलावा, म्यूजिक के अलावा, संगीत के अलावा कोई हॉबी है आपकी?
1: यस, मुझे डांस भी अच्छा लगता था, बट ड्यू टू सम स्पाइन इश्यूज वो मैं डिसकंटिन्यू, अब मैं नहीं डांस कर पाती हूँ। आई ऑल्सो लाइक टू मेक ज्वेलरी, पर वो भी बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज वो बैठ के वो करना वो अभी पॉसिबल नहीं। सो अभी तो मैं फुल फ्लेश पैशन मेरा सिंगिंग, आई कैन परस्यू चलते फिरते भी।
0: ओके, अमेजिंग, बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया बात। तो चलिए एक और गीत सुनवाते हैं हमारे सुनने वालों को।

0: और अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं वो बिल्कुल मजेदार है। आपकी क्रिएटिविटी और आपकी थिंकिंग को देखने के लिए, परखने के लिए नहीं, देखने के लिए हम ये सवाल कर रहे हैं आपसे कि अगर आपको 24 घंटों के लिए गायब कर दिया जाए, मतलब आप गायब हो जाएं, तो उन 24 घंटों में क्या क्या करेंगे आप?
1: हाँ जी, 24 घंटे गायब हो जाऊं तो मैं एक्चुअली एक ही चीज करना चाहूंगी। आशा जी है, श्रेया घोषाल है, सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह, ये जो सिंगर्स हैं इनके रियाज को मैं सुनना चाहूंगी, वो जो क्योंकि वैसे तो मौका नहीं मिलता है ऐसे रियाज प्रॉपर उनका जो डेली रियाज करते होंगे।
0: जी,
1: आई वुड लव टू लिसन टू हाउ दे डू द रियाज।
0: ओके, तो मैं बहुत ही पोलाइटली सजेस्ट करूंगा कि आप उनके घर चले जाएं। जब गायब होंगे तो आपको कोई रोकेगा भी नहीं, आराम से उनके सामने बैठिए, तब सुनिएगा।
1: Absolutely.
0: तब आप उनको देख भी पाएंगे, उनको सुन भी पाएंगे।
1: Yes.
0: Amazing. बहुत खूब दोस्तों, आपने सुना, तो चलिए एक गीत भी सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया। मालविका जी, आपकी जिंदगी में सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि, अकॉम्प्लिशमेंट आज तक की डेट में क्या रहा है?
1: एक्चुअली काफी फुलफिलिंग मोमेंट्स बोल सकती हूँ रहे हैं लाइफ में, पर लाइक एक सुपर ड्रामेटिक लाइक यस आई डिड इट जैसा जो मोमेंट होता है
0: जी।
1: ये कॉलेज टाइम का बता सकती हूँ, काफी ड्रामेटिक था। तो मैं सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए मैंने कराटे क्लासेस ज्वाइन किए थे।
0: ओके।
1: तो या तो हम लोग स्टेट लेवल चैंपियनशिप में खेल रहे थे, तो हम बेल्ट वाइज काफी जूनियर थे, हमारी पूरी टीम लाइक एक ही लेवल में थे, एंड हमारी पूरी टीम बहुत स्किल्ड भी थी इवन दो हम लोग जूनियर लेवल पे थे। तो जब स्पारिंग के कॉम्पिटिशन शुरू हुए, दैट इज जो फाइट्स होते हैं, फाइटिंग कॉम्पिटिशन, तो एक टीम थी जिनमें बहुत सीनियर बेल्ट के लोगों को हमारे लेवल के बच्चों के, मतलब जो किड्स थे हमारे लेवल के लोगों के साथ खेलने पर उतारा था, लेकिन उन्होंने टीचर ने, तो इट वाज अ चीटिंग, या इट वाज अ चीटिंग गन। तो ये हमारी टीचर को समझ में आया था, बट सब पता था, बट सम हाउ आई डोंट नो व्हाट पॉलिटिक्स इट वाज, मैं तो छोटी थी, मैं नहीं जानती थी, पर अलाउड हो गया था वो, एंड

0: हमारे टीम के एक्चुअली सब लोग एक एक करके सब आउट होते जा रहे थे. मेरा टर्न आने तक मैं सबका ये ऑब्जर्व करके समहाउ आई हैड मेरा फोकस मैंने बनाया था एंड मैं 5 राउंड्स जीती थी. एंड वो 5 राउंड्स के बाद मैंने अपनी टीम के लिए गोल्ड मेडल जीता था.
1: ओह माय गॉड.
0: बट या मुझे काफी चोट भी आई थी एकदम जैसे फिल्मी स्टाइल में वो सब मैचेस हुई थी. बट वो जो स्टार्ट टू सी माय टीचर एंड यू नो माय टीम सो हैप्पी इट वाज
1: क्या बात है. काश हाउ आई विश मैं आपसे रिक्वेस्ट कर पाता कि आपकी अगर वो बाउट्स की उस फाइट की हम लोग वीडियो देख पाते तो शायद हम लोग एक लाइव मूवी देख पाते. क्या बात. दैट्स अमेजिंग. दैट्स रियली अमेजिंग. दैट्स रियली फैंटास्टिक. बहुत खूब. तो दोस्तों आपने सुना तो चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं मालविका जी की ही आवाज में.

0: बहुत खूब। एक और फन क्वेश्चन, एक और मजेदार क्वेश्चन, क्रिएटिव। अगर आपको मौका मिले तो अंतरिक्ष से आए हुए किसी प्राणी से, किसी एलियन से मिलना चाहेंगी आप, और क्या पूछेंगी उससे?
1: हाँ, एलियन है। एवेंजर्स करके जो मूवी है उसमें लोकी करके कैरेक्टर है, मुझे बहुत ही पसंद आए। एंड जिस ढंग से उन्होंने उस मूवी में उसको, उनको पेश किया उनका कैरेक्टर, तो मैं उनसे मिलना चाहूंगी बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी भी सिचुएशन में अपने पाइंड को कूल रखते हैं, फिर शैतानी में भी उनके एक प्यारापन होता है, एंड ही इज वेरी ह्यूमरस। तो पूछना तो मैं पता नहीं क्या चाहूंगी, वो मुझे नहीं समझ में आता, पर मैं उनके साथ रहना चाहूंगी एंड देखूंगी कि वो किस ढंग से उनका, मतलब यू नो, किस ढंग से वो सब चीजें डील करते हैं, उनका नजरिया, वो somehow I would like to experience that in his presence.
0: Okay, okay, fantastic. Loki the demigod. क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो दोस्तों आपने सुना, एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं मालविका जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूब। अब ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन भी हो सकता है और मैं फिर भी आपसे गुजारिश करूंगा कि इसका जवाब जरूर दें। आपके जीवन में आज तक की डेट में सबसे अच्छा तोहफा आपको क्या मिला, गिफ्ट आपको क्या मिला?
1: मेरे लिए सबसे प्रेशियस गिफ्ट है मेरी लाइफ, मेरे माता पिता ने मुझे दी है। एंड इस लाइफ के कारण मैं इतने सारे एक्सपीरियंसेस ले चुकी हूँ एंड ग्रोथ हो चुकी है विद दोज एक्सपीरियंसेस, लाइक वेरी थैंकफुल या टू गॉड माय पेरेंट्स।
0: ओके ओके, अमेजिंग, फैंटास्टिक। दोस्तों आपने सुना, तो चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुन लें।

0: और अब हम उस अपने प्रोग्राम के उस जगह पर आ गए हैं मालविका जी, जब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कोई मैसेज दीजिए ना।
1: जी, सुनने वालों से कहूंगी कि हमने माइंडफुली एंड रिस्पॉन्सिबली हम लाइफ जिए, खुद के लिए और दूसरों के भी लिए। एंड बहुत शुक्रिया आप सबने मुझे सुना, राज जी, समीर जी, आपका, रेडियो टंटिया, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी फॉर दिस इस मौके के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर मीना को थैंक यू, बिकॉज उन्होंने एनकरेज किया मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हर।
0: अमेजिंग, थैंक यू सो मच डॉक्टर मीना, एंड थैंक यू सो मच मालविका जी, आप आए हमारे प्रोग्राम में, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत की, आपके बारे में हमने जाना, आपके गीत सुने, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: थैंक यू समीर जी, थैंक यू।
0: बेहद शानदार गायकी, बेहद शानदार टैलेंट, एक और हसीन संगीत और गीत से भरी हुई शाम के लिए कल फिर हाजिर हो जाऊंगा एक नए टैलेंट के साथ। सुनना ना भूलिएगा

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सजते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें।

नमस्कार दोस्तों, आज के कलाकार के नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो साथी नितिन। आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं वंदना माथुर जी। वंदना जी नमस्कार।

0: नमस्ते नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, मेरा हार्दिक अभिनंदन आपको भी और सभी श्रोताओं को।
1: वंदना जी, जरा आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा प्लीज। कहाँ रहती हैं, क्या करती
0: जी,
1: हैं?
0: नितिन जी, मैं बेसिकली तो बैंगलोर से हूँ, पढ़ाई वढ़ाई से वहीं से हुई है। और जब मैं बैंगलोर में थी तब मैं वहां एक कॉलेज में असिस्टेंट लाइब्रेरियन थी। शादी के बाद भोपाल आई हूँ और अब यहाँ मैं एक प्राइवेट स्कूल में लाइब्रेरियन हूँ। अपनी जॉब के साथ साथ जो मेरा संगीत का शौक है उसको भी मैं आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयास करती रहती हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है, हस्बैंड है, बेटी है और मैं हूँ।
1: बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये प्रोग्राम और सुनते हैं प्यारा सा गीत वंदना जी की बहुत ही प्यारी आवाज में।

0: बहुत ही शानदार गायकी वंदना जी।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सुनने के लिए इसको और अप्रिशिएट करने के लिए।
0: थैंक यू वंदना जी। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी म्यूजिकल जर्नी कब शुरू हुई?
1: नितिन जी, मेरी म्यूजिकल जर्नी तो बचपन से ही शुरू हो गई थी। हालांकि मैंने संगीत सीखा नहीं है, लेकिन मुझे संगीत मेरी माँ से विरासत में मिला है, इसलिए मेरे लिए संगीत एक गॉड गिफ्ट है। स्कूल में मैं जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, तब मैंने पहली बार स्टेज पे गाया था, और तब से लेके स्कूल और कॉलेज में हर प्रोग्राम में भाग लेती रही। आज भी जहां प्रोग्राम में मौका मिलता है, मैं जरूर भाग लेती हूँ। यूं समझ लीजिए, म्यूजिक मेरे लिए जर्नी नहीं, मेरे जीवन का हिस्सा है।
0: जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। म्यूजिक हर इंसान के जिंदगी में एक जर्नी होनी ही चाहिए, म्यूजिक की पक्की बात है, वो चाहे गायक हो या ना हो। म्यूजिक गिव्स पीस टू एवरीबॉडी। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत वंदना जी की बहुत ही प्यारी आवाज में।

0: शानदार गाएगी।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
0: वंदना जी, आपके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण परफॉर्मेंस वो कौन सा था?
1: नितिन जी, मेरे लिए ये समझ लीजिए कि हर परफॉर्मेंस एक चुनौती होता है, क्योंकि जब तक मैं किसी गीत को पूरी तरह गले में नहीं उतार लेती ना, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। देखिए, हर गीत का एक अलग भाव होता है, एक अलग बैकग्राउंड होता है ना, हर गीत यूनिक होता है, तो उसके सुर ताल और भाव को समझना एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, कम से कम मेरे लिए तो।
0: बिल्कुल सही कहा, और वो जो फील है और गीत के अंदर पूरी तरह अपने आप को ढाल कर गाना जरूरी है
1: जी,
0: तभी जाके आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकती हो। बिल्कुल सही कहा
1: जी।
0: तो दोस्तों, आपने सुना, फीलिंग लाना बहुत जरूरी है अपनी गायकी में। तो आइए सुनते हैं ना अगला गीत वंदना जी की बेहद खूबसूरत आवाज में।

0: फैंटास्टिक सिंगिंग।
1: थैंक यू नितिन जी, थैंक यू श्रुतम।
0: अब ये बताइए, ऐसा कौन सा गाना है जो आपकी पर्सनालिटी से मिलता है?
1: नितिन जी, एक फिल्म आई थी जब वी मेट,
0: ओके,
1: तो उसमें करीना कपूर ने जो वो गाना गाया है ना, हाँ है कोई तो वजह जो जीने का मजा यूं आने लगा, उसमें उसका जो एक कैरेक्टर है, जो एक मस्ती है, मैं भी काफी कुछ वैसी ही बेफिक्र तबीयत की हूँ, तो मैं बड़ा उससे अपने आप को रिलेट करती हूँ।
0: ओके, तो वो गाना आपको या कुछ याद है तो एक आध लाइन आप गा सकती हैं?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, ये वो गाना ऐसे है, हाँ है कोई तो वजह जो जीने का मजा यूं आने लगा, ये हवाओं में है क्या थोड़ा सा जो नशा क्यों छाने लगा।
0: वाओ, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया, बहुत पक्का सुर आपने लगाया है, बिल्कुल सही कहा,
1: थैंक यू,
0: बहुत सही।
1: थैंक यू नितिन जी।
0: तो दोस्तों, आपने सुना कितनी प्यारी गायकी है वंदना जी की, रॉ वॉइस में भी काफी अच्छा लगता है सुनने में। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सुनते हैं ना एक खूबसूरत सा गीत वंदना जी की आवाज में।

0: शानदार गाएगी।
1: थैंक यू नितिन जी।
0: अब ये बताइए, आप संगीत में अपने आप को कैसे अपग्रेड करना चाहती हैं?
1: नितिन जी, मेरी सबसे बड़ी जो एक लर्निंग प्रोसेस है वो रहती है रिदम में, यानी ताल। इस पर मैं अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने संगीत सीखा नहीं है ना, इसीलिए इन चीजों को, बारीकियों को समझना, ये मैं अपने आप को इस लाइन में मजबूत करना चाहती हूँ। अच्छी तरह से ताल को समझ के और अपने गायन को और सुंदर बनाना चाहती हूँ, साथ ही नियम से रियाज करके अपने गले की, गाने की क्वालिटी को बढ़ाना चाहती हूँ।
0: अब ये जो अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, तो आप ताल को कैसे पकड़ के गा सकती हैं, वो मेरे को बता सकते हैं जरा?
1: नितिन जी, वैसे तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो ट्रैक सुन रही हूँ और जिस गाने को मैं गाने की कोशिश कर रही हूँ, उसे बार बार सुन के और उसकी ताल को पकड़ूं। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मैं किसी से पूछ के उसकी बारीकी को समझ लेती हूँ, मुझे सीखने में कोई संकोच नहीं।
0: छोटा सा टिप आपको मैं देता हूँ
1: जी,
0: जैसे कोई आपने रॉय वॉइस में भी गाना गाया तो उसके पीछे हमेशा ताल बजाते रहिए।
1: हाँ, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: ये में जो ताल है ना, आप क्लैप करते हैं तो आपको और ताल का ज्यादा पता चलता है और ज्यादा आपको इजीली, फिर आपको ट्रैक को ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम समझ रहे हैं, ये ताल हाथ से सिर्फ क्लैप करिए, ताल तो आपको पता ही है कि ये ताल, ऐसा ताल जा रहा है उसका, वो क्लैप करके साथ साथ में गाया करिए। ये रॉ वॉइस में विदाउट, जब ट्रैक के बिना विदाउट ये आप करोगे ना, तो बहुत ही इजीली आप ताल बिठा सकती हो।
1: जी, मैं इस बात का जरूर ध्यान रखूंगी, बहुत धन्यवाद, इतनी आपने अच्छी सलाह दी है, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू। मैं हमेशा जब गाता हूं तो यही प्रैक्टिस पहले करता हूं, क्योंकि ताल को बहुत समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये ताल को समझना बहुत जरूरी बात होती है एक गायक के लिए। वंदना जी ने बहुत सही कहा और उस पर बहुत कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा रखना जरूरी है, क्योंकि सुर नहीं हिलना चाहिए और ताल नहीं जाना चाहिए आपका। ये दो पॉइंट्स आपने अगर परफेक्टली कर लिया तो सिंगिंग विल बिकम वेरी मच इजी फॉर यू।
1: जी।
0: तो आगे बढ़ते हैं ना और सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत वंदना जी की आवाज में।

0: बहुत ही प्यारी गायकी।
1: थैंक यू नितिन जी, एंड थैंक यू ऑडियंस सुनने के लिए।
0: वंदना जी, कहीं ना कहीं से तो आपको एक इंस्पिरेशन तो मिला होगा गाने के लिए, तो आपको किसने ऐसा कहा कि किसने आपको इंस्पायर किया कि आप गा सकती हैं?
1: देखिए, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि बचपन से लेके आज तक मुझे हर किसी ने ये कहा है कि मुझ में गाने का टैलेंट है। शादी से पहले माँ और भाई बहन मुझे प्रोत्साहित करते रहते थे, और अब शादी के बाद मेरे हस्बैंड हैं, बेटी है और बहुत शुभचिंतक हैं जो मुझे संगीत में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। मुझे आज तक, आप यकीन मानिए, मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसने मुझे डिस्करेज किया। सबने एनकरेज किया, सबने आगे बढ़ाया मुझे।
0: तो ये खुद ही एक ब्लेसिंग है आपके लिए कि
1: जी, मेरे आपका बहुत जो बड़ी ब्लेसिंग।
0: हाँ, आपका जो एटमॉस्फेयर है वो संगीत से भरा हुआ है, और जितने लोग आसपास में आपके साथ जुड़े हुए हैं सारे आपके आपको प्रोत्साहित करते हैं संगीत के प्रति। बहुत बढ़िया
1: जी।
0: तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक खूबसूरत से गीत वंदना जी की खूबसूरत आवाज में।

0: शानदार गाएगी।
1: थैंक यू नितिन जी, थैंक यू सो मच।
0: वंदना जी, आप अधिकतर किस तरह का संगीत पसंद करते हैं?
1: अगर संगीत की बात करें हम, तो आजकल ज्यादातर गीत जिस तरह के बन रहे हैं उनमें मुझे लगता है कि शोर ज्यादा है, संगीत कम है। मुझे वो गीत पसंद हैं जिनमें अर्थ हो, लय हो और दिल की भावनाओं को छू लेने का जादू हो। मेरे लिए वही असली संगीत है। तो मुझे सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, गजल और लाइट म्यूजिक पसंद है
0: जी। क्योंकि एक आप सही कह रहे हैं, लिरिक्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है और स्वीटनेस, गाने का जो स्वीटनेस है, ट्यून काफी अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आपको, आप उसको गहराई में आप उसको परफॉर्म कर सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने
1: जी।
0: तो आइए आगे बढ़ते हुए सुनते हैं ना एक खूबसूरत सा गीत।

0: बहुत ही प्यारी गायकी।
1: थैंक यू नितिन जी, थैंक यू श्रोताओं।
0: संगीत में आपके जुनून के बारे में कुछ और बताइए।
1: अब देखिए, संगीत का जुनून तो ऐसा है कि जब मैं गा रही होती हूँ तब तो जो कमिटमेंट है वो है ही, लेकिन जब खामोश बैठी रहती हूँ ना तब भी दिमाग में कोई ना कोई गाना चलता ही रहता है। और अगर कोई गाना सीख रही हूँ तो सोते जागते उसके सुर कानों में गूंजते ही रहते हैं। घर में भी काम करते करते कुछ ना कुछ गुनगुनाती ही रहती हूँ, मतलब संगीत के बिना मैं रह नहीं सकती।
0: क्या बात है दोस्तों, इसे कहते हैं कमिटमेंट। कमिटमेंट होना जरूरी है। जो आप जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपको कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। और सक्सेसफुल ऐसा नहीं है कि अगर आप बॉलीवुड में आप गा रहे हो तो ही आप सक्सेसफुल, ऐसा नहीं है। आप आपके हिसाब से, आपके लेवल पे, आपके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से आप डेफिनेटली एक अच्छे सिंगर हो। और आप उसे ज्यादा से ज्यादा आप उसे ध्यान दीजिए और अपने स्किल्स को पॉलिश कीजिए। एंड डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन।
1: जी जी जी बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल यूनिक रहिए। आपके हिसाब से आपके जो लिमिटेशंस है वो लिमिटेशंस को पकड़ कर ही गाना गाना चाहिए, मेरा ये मानना है।
1: जी जी जी बिल्कुल।
0: तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत वंदना जी की खूबसूरत आवाज में।

0: खूबसूरत गायकी।
1: थैंक यू, थैंक यू नितिन जी, थैंक यू सो मच।
0: वंदना जी, क्या आप अपना खुद का म्यूजिक एल्बम बनाना चाहती हैं?
1: जी हाँ, जहाँ तक एल्बम का सवाल है, देखिए मैं बताया, पहले बता चुकी हूँ मैं प्रोफेशनल गायक नहीं हूँ, लेकिन मेरा सपना है कि मैंने जितने भी गाने सीखे हैं और जितने गाने पुराने वाले और मिड 80s तक के जो मुझे बहुत पसंद हैं, मैं उन सबको रिकॉर्ड करना चाहती हूँ अपनी आवाज में। मैं खुद रिकॉर्ड करना सीखना चाहती हूँ और मैंने ये प्रक्रिया शुरू भी कर दी है, और साथ ही जो बढ़िया कठिन वाले गाने हैं उन्हें भी गाकर रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, और ये मेरा निजी म्यूजिकल एल्बम होगा, प्रोफेशनल तो नहीं लेकिन निजी म्यूजिक एल्बम।
0: ओके, वेरी गुड। हमारा जो रेडियो एसएन है उनका भी ऑलरेडी एक प्रोडक्शन हाउस है जो सपोर्ट करती हैं टैलेंटेड सिंगर्स को, तो अच्छा, उनका डिटेल्स भी आपको मिल सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारे से गीत।

0: बहुत ही शानदार गाएगी।
1: थैंक यू सो मच।
0: वंदना जी, स्टेज में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
1: हाँ, स्टेज पर सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए होती है ट्रैक के साथ हार्मनी और कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, उस पर फोकस बनाए रखना और आवाज में एक समानता बनाए रखना। जनरली क्या होता है, अगर हम ट्रैक पे फोकस करें हैं तो आवाज ऊंची नीचे हो जाती है, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती
0: जी,
1: है ना, और थोड़ा सा भी ट्रैक से हट जाते हैं तो ताल टूट जाती है, सुर बिखर जाते हैं। कभी कभी बहुत रियाज करने के बाद भी सुर और लय को बनाए रखना मुश्किल।